वंदे मातरम। मीडियम वेव 374.5 मीटर अर्थात 801 किलोहर्ट्ज़ एवं न्यूज ऑन AIR ऐप पर हम आकाशवाणी के जबलपुर केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, आज शक संवत 1948 के अषाढ़ मास की 8वीं तिथि तदनुसार दिन सोमवार 29 जून 2026 है। प्रातः के 5:59 हुए हैं। हमारे आज के प्रसारण की प्रथम सभा अब आरंभ होती है। इसमें आप सभी का स्वागत है।

ଗାୟମାନେ ହଉଛି प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेशल्स की स्वतंत्रता की 50वीं वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित राष्ट्रीय दिवस समारोह में शामिल हुए। श्री मोदी ने इस समारोह में सम्मानित अतिथि के रूप में भाग लिया और ये सम्मान पाने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बने। परेड में नौसेना और थल सेना की भारतीय मार्चिंग टुकड़ी ने हिस्सा लिया। इसमें भारतीय नौसेना का बैंड भी शामिल था, जो भारत और सेशल्स के करीबी और विशेष साझेदारी को दर्शाता है। विशेष पहल के तहत

युद्धपोत आईएनएस तरकश और सर्वेक्षण पोत आईएनएस इक्षक को पोर्ट विक्टोरिया में तैनात किया गया, जो सेशल्स के साथ भारत की पुरानी दोस्ती को उजागर करता है। प्रधानमंत्री ने इस ऐतिहासिक अवसर पर भारत की ओर से सेशल्स के लोगों को हार्दिक बधाई।

0: हिंद महासागर क्षेत्र में महत्वपूर्ण समुद्री पड़ोसी होने के नाते सेशल्स भारत के महासागर विजन और ग्लोबल साउथ के देशों के लिए प्रतिबद्धता में विशेष स्थान रखता है। श्री मोदी की यात्रा भारत और सेशल्स के बीच मजबूत और स्थायी दोस्ती को और मजबूत करेगी और सभी क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंधों को बेहतर बनाने के लिए दोनों देशों की साझा प्रतिबद्धता की पुष्टि करेगी। इससे पहले विक्टोरिया में सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हरमिनी के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में श्री मोदी ने कहा कि भारत और सेशल्स की रक्षा और सुरक्षा एक दूसरे से जुड़ी है।
1: मेरी सेशल की यात्रा का संदेश स्पष्ट है। भारत ऐसे हिंद महासागर की कल्पना करता है जहां समुद्री सुरक्षा के साथ आर्थिक समृद्धि भी बढ़े, जहां हमारी साझेदारी आकार नहीं आपसी सम्मान और विश्वास पर आधारित हो, और जहां हम हर देश के पास पास नहीं साथ साथ चलें।
0: प्रधानमंत्री मोदी को पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास में नेतृत्व के लिए सेशल्स के सर्वोच्च सम्मान गार्जियन ऑफ द ब्लू होराइजन से सम्मानित किया गया। प्रधानमंत्री ने कल सेशल्स में मॉरिशस के प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन चंद्र राम गुलाम से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने भारत और मॉरिशस के बीच सहयोग पर चर्चा की। उन्होंने भारत से मिले विशेष आर्थिक पैकेज को लागू करने में प्रगति की भी समीक्षा की। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ब्रिटेन यात्रा पूरी करने के बाद व्यापार, निवेश और रणनीतिक आर्थिक सहयोग को मजबूत करने के लिए ग्रीस की राजधानी एथेंस में उच्च स्तरीय भारतीय व्यापार प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व कर रहे हैं। ये प्रतिनिधि मंडल द एथेंस स्टार्टअप बिजनेस इनक्यूबेटर में प्रस्तुति और स्टार्टअप गतिविधियों में भाग लेगा। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा आज नई दिल्ली में केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण परिषद के 16वें सम्मेलन के दौरान समग्र शिशु बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम आरंभ करेंगे। ये कार्यक्रम पहले 3 साल संपूर्ण देखभाल की पहल को आगे बढ़ाएगा, क्योंकि बच्चे के जीवन, विकास, पोषण और मस्तिष्क के प्रारंभिक विकास के लिए शुरुआती 3 वर्ष बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। महाराष्ट्र में भिवंडी सत्र न्यायालय ने रविवार को महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता परीक्षा पेपर लीक मामले में गिरफ्तार 3 आरोपियों को 6 जुलाई तक पुलिस हिरासत में भेज दिया है। 2 फरार आरोपियों की तलाश की जा रही है। गुजरात में 4था वाइब्रेंट गुजरात क्षेत्रीय सम्मेलन आज से वडोदरा स्थित GSFC विश्वविद्यालय में शुरू होगा। इस सम्मेलन का उद्देश्य गुजरात के मध्य क्षेत्र में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देना है। भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने लंदन में FIH प्रो लीग के रिवर्स मैच में इंग्लैंड को पेनल्टी शूटआउट में 3-2 से हरा दिया। निर्धारित समय तक दोनों टीम कोई गोल नहीं कर सकी थी। ICC महिला 2020 क्रिकेट विश्व कप में ऑस्ट्रेलिया ने ग्रुप ए के अपने आखिरी मैच में भारत को 6 विकेट से हरा दिया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: हम आकाशवाणी के जबलपुर केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, लीजिए प्रस्तुत है आज का विचार। आज का विचार कहता है कि हमारे वचन चाहे कितने भी श्रेष्ठ क्यों ना हो, परंतु मनुष्य के असली पहचान उसके कर्मों द्वारा ही होती है। श्रोताओं, ये था आज का विचार मंथन। लीजिए प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। इसमें सबसे पहले सुनिए ये देशगीत।

0: श्रोताओं, इसी गीत के साथ भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना अब समाप्त होता है। प्रातः के 6:30 हुए हैं। लीजिए, प्रस्तुत है आज का चिंतन। आलेख है श्रीमती सुधा बाला शर्मा का, वाचक है माधवी येंडे।
1: जब दो विभिन्न संस्कृतियां परस्पर मिलती हैं, तब एक नवीन और विचित्र परिस्थिति उत्पन्न होती है। आम लोग ना एक दूसरे के जीवन संबंधी दृष्टिकोण को समझ पाते हैं और ना भाषा को। उनके विचार में भी कोई समानता नहीं होती, परंतु जब एक दूसरे के परस्पर संपर्क में रहने का अवसर मिलता है, तब शनै शनै एक दूसरे की सभ्यता और संस्कृति से परिचय प्राप्त होने लगता है। एक संस्कृति का दूसरी संस्कृति पर प्रभाव पड़ने लगता है। ये प्रभाव जीवन के सभी क्षेत्रों में भाषा, विचार, वेशभूषा सब पर समान रूप से पड़ता है। इसी प्रकार हमारे भारतवर्ष पर भी एक अपरिचित संस्कृति और सभ्यता का प्रभाव पड़ा है। भारतवर्ष के पवित्र धराधाम पर अंग्रेजों का आधिपत्य हुआ, उसके बाद धीरे धीरे पाश्चात्य सभ्यता और संस्कृति का प्रभाव पड़ने लगा। हमारी संस्कृति की पृष्ठभूमि में त्याग और तपस्या, दया और दान, संतोष और शांति का महत्वपूर्ण स्थान था। विदेशी संस्कृति के प्रभाव से भारतीय संस्कृति के इन आधारभूत स्तंभों का स्थान भोगवाद और भौतिकवाद ने ले लिया। जनता ने शासन के संपर्क में आने के लिए उसकी सभ्यता को अपनाना प्रारंभ किया। देशी होते हुए भी विदेशी राग आलापना आरंभ किया। दासता की भावनाएं उत्तरोत्तर दृढ़ होती गईं। देववाणी, संस्कृत और हिंदी की अपेक्षा जनता अधिक से अधिक संख्या में अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रयत्नशील हुई। ऐसा होना स्वाभाविक था, क्योंकि अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त युवकों को ही नौकरी मिलती थी। नौकरी का प्रलोभन जनता के लिए पर्याप्त था। भारतीय जनता को युगों तक अपने वश में आबद्ध रखने के लिए विदेशी शासकों को यह आवश्यक था कि वे यहाँ अपनी भाषा, अपने विचार और अपनी सभ्यता का प्रचार प्रसार करें, तभी उनका साम्राज्य भारत में चिरस्थायी हो सकता था। उन्होंने ऐसा ही किया। हमारे हृदय में दासता की भावना उत्तरोत्तर बढ़ने लगी। खान पान, रहन सहन, आचार विचार अर्थात जीवन के सभी क्षेत्रों में हमने विदेशों को अपना आदर्श मानना आरंभ कर दिया। हम राजनीतिक रूप से परतंत्र तो थे ही, परंतु हमने स्वयं जानबूझकर अपने को सामाजिक परतंत्रता की बेड़ियों में भी जकड़ लिया। परिणाम ये हुआ कि भारतीयों की धमनियों में अंग्रेजियत का खून दौड़ने लगा। आज का भारतीय समाज पाश्चात्य प्रभाव से पूर्णतया प्रभावित नजर आता है। ये भौतिकवाद के पाश में नक्श से शिख तक आबद्ध है। उसके जीवन का लक्ष्य केवल सुख उपभोग ही है, परंतु हम देखते हैं कि आज का मानव अशांत और दुखी है और वर्तमान से असंतुष्ट है। यद्यपि जीवन को सुखमय बनाने के लिए उसे सभी वैज्ञानिक साधन उपलब्ध हैं, फिर भी उसकी अंतरात्मा किसी अज्ञात शांति के लिए बेचैन है। वो भोग और लिप्साओं के साथ उनकी पूर्ति के प्रयत्न में निरंतर श्रम की चक्की में पिसा जा रहा है। ये निश्चित है कि उसका ये मिथ्या स्वाभिमान उसे एक न एक दिन ले डूबेगा। परंतु ये अनिवार्य है कि यदि भारतवर्ष की प्राचीन गौरव गरिमा को हम नष्ट नहीं होने देना चाहते, तो हमें अपनी प्राचीन सभ्यता और संस्कृति को अपनाना होगा, उसकी रक्षा करना होगा और अपनी जीवन शैली का अंग बनाना होगा। अपने पिता को ही पिता कहा जाता है, दूसरे के पिता को नहीं। इसलिए गीता में कहा गया है कि स्वधर्मे निधनम श्रेयः, पर धर्मो भयावह।
0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे आज का चिंतन। लीजिए, प्रस्तुत है श्री रामचरितमानस गान, गायक स्वर हैं ए हरिहरन के।

प्रयाग में त्रिवेणी स्नान करके भरत ने तीर्थराज की वंदना करते हुए अपनी मनोकामना प्रकट की। मैं अपना क्षत्रिय धर्म न त्याग कर अत्यंत आर्त होने के कारण आपसे भीख मांगता हूँ। न मुझे अर्थ में रुचि है, न ही धर्म काम और मोक्ष की कामना है। बस एक ही याचना है कि जन्म जन्मांतर श्री राम के चरणों में मेरा अनुराग बना रहे। भरत को त्रिवेणी के बीच से गूंजती कोमल वाणी सुनाई पड़ी। हे तात, तुम सब प्रकार से साधु हो, श्री राम के चरणों में तुम्हारा अथाह प्रेम है, तुम्हें व्यर्थ ही ग्लानि हो रही है।

क्योंकि श्री राम को तुमसे अधिक कोई भी प्रिय नहीं। भरत का तन मन पुलकित हो गया। वे भरद्वाज मुनि के आश्रम पहुंचे। मुनि के चरणों में झुके ही कि मुनि ने उन्हें हृदय से लगा लिया।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरितमानस गान। लीजिए, हम प्रस्तुत हैं कृषि सामयिकी में कोदो कुटकी की अंतर्वर्तीय खेती पर हमारे ये सुझाव।
1: किसान भैयारो, आज हम आप औरों के लाने कोदो और कुटकी की अंतर्वर्तीय फसल लगावे के लाने सलाह देवो चाहत हैं कि अपन कैसे ज्यादा से ज्यादा उत्पादन प्राप्त कर सकत हैं। सो कोदो और कुटकी की फसलें मुख्यतया लघु धान्य फसलों के अंतर्गत आउत हैं। इनमें मुख्य रूप से जैसे अपन कहें तो डिंडोरी, मंडला, छिंदवाड़ा, सिवनी, शहडोल, बैतूल और झाबुआ जिलों में कोदो कुटकी की फसल बोई जात है। इसकी खेती ज्यादातर हल्की रेतीली, ककरीली, पथरीली, पहाड़ी, ऊबड़ खाबड़ और कम उपजाऊ की जो भूमि होते है उतर कर ली जात है। वर्तमान में इको क्षेत्रफल प्रतिवर्ष कम हो चलो जा रहा है। जा बात आप

0: और रसोई जाना थोइयो। कोदों और कुटकी की दलहनी तिलहनी फसलों के संगे अंतर्वर्ती ये फसल लेख हों और अपन सबई किसान भैया हने ज्यादा लाभ प्राप्त कर सकत हैं। इके लाने सबसे पहलू जानबो जरूरी है कि बोवे को जो समय है वो कब है उमदा रहत है। तो ई फसलों की बुआई मानसून की जो वर्षा है बस शुरू हो जावे के बाद जुलाई में कर दो चाहिए और समय पे बुआई करबे से उपज ज़्यादा मिलत है और रोग और कीट को प्रकोप बिल्कुल कम होते है या फिर ना के बराबर होते है। भूमि को चुनाव करबे के लाने इन फसलों के लाने हल्की भूमि उपयुक्त मानी जात है जिमें पानी को निकास अच्छो भाव चाहिए। और अब उन्नत जातियों के बारे में अपन जाने तो जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय के अंतर्गत कृषि अनुसंधान केंद्र डिंडोरी और रीवा के द्वारा कोदों की उन्नतशील जातियां विकसित करी गई हैं जिनके स्थानीय जातियों की तुलना में 20-30% तक ज्यादा उपज देते हैं। संगई कीट और रोग निरोधक सोई रहते हैं और इन किस्मों खो अपना खो अपन ज्यादा पैदावार ले सकते हैं। और अब ई में सस्य विधि जो अपन खे अपनाऊने परत है वह कोदों और कुटकी की अंतर्वर्तीय फसल के लाने। तो कोदों और कुटकी की जो अंतर्वर्तीय फसल अपन लेवो चाह रहे हैं तो उमें ज्यादा लाभ प्राप्त कर सकते हैं और दलहनी फसलों के संगे अंतर्वर्तीय फसल सोई ले जा सकते हैं जैसे कोदों या फिर कुटकी की दो कतारों के बीच में एक कतार अरहर की या फिर मूंग उड़द की जैसे 2:1 की बुआई करबे से प्रति इकाई क्षेत्र से ज्यादा लाभ प्राप्त करो जा सकत है। और उसी प्रकार से तिलहनी फसलें जैसे सोयाबीन या रामतिल को कोदों और कुटकी के संगे 2:1 के अनुपात में कतार में बुआई करके ज्यादा लाभ प्राप्त करो जा सकत है। अंतर्वर्ती फसल के लाभ में भैया दोनों फसलों में भूमि के अलग अलग स्तरों पर पानी और पोषक तत्वों को उपयोग करो जात है कैसे के उनके जड़ों की जो गहराई है वह अलग अलग होत है। कोदों और कुटकी की फसल सीधी होत है और दलहनी तिलहनी फसल फैली में ही होत है जिससे एक दूसरे पर सूरज की जो किरणें हैं वे प्रभावित होते हैं माने उम्दा खुलासा तरीका से नहीं पड़ पाते हैं। दोनों फसलों की अवधि जो है वह अलग अलग होवे के कारण कटाई में परेशानी होत है। इस प्रकार से प्रति इकाई क्षेत्र से अधिक लाभ प्राप्त करो जा सकत है। और बीज की मात्रा की बात कहें तो कोदों कुटकी की बुआई कतारों में करबे से 11-17% तक ज्यादा उपज प्राप्त होत है। कैसे कतारों में बुआई के लाने 8-10 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर के हिसाब से और छिटका विधि से बुवाई करबे पे 25 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर के हिसाब से पर्याप्त मानो जात है। बीज बोवे के पहले बीज को दवाई से उपचारित कर लो चाहिए। और अब है रासायनिक खाद की मात्रा तो कुटकी के लाने भैया 20 किलोग्राम नत्रजन 20 किलोग्राम स्फोर और कोदों के लाने 10 किलोग्राम स्फोर और 10 किलोग्राम पोटास प्रति हेक्टेयर के हिसाब से अपन खो जमीन में दे दो चाहिए। नत्रजन की आधी मात्रा और स्फोर और पोटास की पूरी मात्रा बोनी के टाइम पे और शेष नत्रजन की मात्रा 25 दिन के बाद में जमीन में दो चाहिए।
1: श्रोताओं अभी आप सुन रहे थे कृषि सामयिकी में कोदो कुटकी की अंतर्वर्ती खेती पर हमारे सुझाव। हम आकाशवाणी के जबलपुर केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं सुबह के 6:50 हुए हैं। लीजिए अब प्रस्तुत है हमारे केंद्र से आज प्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा।

श्रोताओं, प्रातः 7:20 पर सुनिए कार्यक्रम गुड मॉर्निंग जबलपुर। समाचार प्रभात का समय होगा प्रातः 8 बजे से।

श्रोताओं, सुबह 8:30 बजे सुनिए फिल्म संगीत कार्यक्रम लोक रसधार में सुनिए। आज संगीता उपाध्याय द्वारा गाए लोकगीत। ये कार्यक्रम होगा प्रातः 9 बजे। सुबह 9:30 बजे सुनिए उर्दू कार्यक्रम आईना।

श्रोताओं, सुबह 9:30 बजे सुनिए उर्दू कार्यक्रम आईना। आप श्रोताओं के भेजे गए पत्रों पर आधारित फरमाइशी फिल्म संगीत का कार्यक्रम सारंगा आप सुन सकेंगे 10:20 पर। श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी जबलपुर से आज प्रसारित किए जाने वाले मुख्य कार्यक्रमों की रूपरेखा। कुछ ही समय में होंगे संस्कृत में समाचार, कीजिए बस थोड़ा सा इंतजार।

0: भारित हो और जहां हम हर देश के पास पास नहीं साथ साथ चले। आवर विजन इज टू मेक इंडियन ओशन इंटू एन ओशन ऑफ अपॉर्चुनिटी।
1: पर्यावरण संरक्षणस्य सतत विकासस्य च नेतृत्वाय सेशल्स देशेन प्रधानमन्त्रिणे श्री नरेन्द्र मोदिने पर्यावरण नेतृत्वस्य सर्वोच्च सम्मानः गार्डियन ऑफ द ब्लू होरिजन प्रदत्तः। सेशल्स देशस्य राष्ट्रपतिना पैट्रिक हर्मनी इत्यनेन प्रदत्तः अयं पुरस्कारः स्थायी अभिवृद्ध्यर्थं प्रधानमन्त्रिणः दीर्घकालीन संबलस्य तस्य हरितदृष्टेः च प्रतीकः वर्तते। श्री मोदी जलवायु परिवर्तनस्य समाह्वानानां विरुद्धं संघर्षं कुर्वतां राष्ट्राणां कृते एतं पुरस्कारं समर्पितवान्। प्रधानमन्त्री श्री नरेन्द्र मोदी सेशल्स देशे ह्यः मारिशस् देशस्य समकक्षेन डॉक्टर नवीनचन्द्र रामगुलामेन सह मिलितवान्। द्वावपि नेतारौ भारतस्य मारिशस्य च वर्तमान सहकार्यस्य विषये चर्चां कृतवन्तौ। भारतेन प्रदत्त विशेष आर्थिक अनुदानस्य कार्यान्वयनस्य प्रगतेः अपि तौ समीक्षां कृतवन्तौ। द्वावपि नेतारौ भारतस्य विजन महासागर इत्यस्य तथा नेबरहुड फर्स्ट इति नीतेः अन्तर्गतं भारत मारिशस् वर्धित रणनीतिक सहयोगस्य महत्वस्य विषये वैश्विक दक्षिणस्य प्रति तेषां प्रतिबद्धतायाः विषये च सहमतिं प्रकटितवन्तौ। महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता परीक्षा पेपर लीक प्रकरणे भिवांडी नगरस्य सत्र न्यायालयेन त्रयाणां आरोपिणां कृते 6 जुलाई पर्यन्तं बन्धनं विहितम्। आरक्षी अन्वेषकाः अन्ताराज्य परीक्षा तस्कराणां संलग्नतायाः शंकां कृतवन्तः। भिवांडी आरक्षिणः न्यायालयं निवेदयन् यत् आरोपी दिल्लीतः भिवांडीनगरं गत्वा उक्त टीईटी प्रश्नपत्रं 1,50,00,000 रूप्यकेषु विक्रीतवान्। आरक्षी अन्वेषकाः लीक कृतस्य कागदस्य स्रोतः अन्वेष्टुं वित्तीयव्यवहारस्य परीक्षणं कर्तुं महाराष्ट्रे अन्यत्र कागदं विक्रीतम् अस्ति वा इति ज्ञातुं तस्करसमूहस्य अन्येषां सदस्यानां परिचयं कर्तुं च 10 दिनानाम् आरक्षि अभिरक्षणं याचितवन्तः आसन्। अधिकारिणः अवदन् यत् अन्वेषणेन अन्तर्राज्यस्य राष्ट्रियस्तरस्य च जालस्य संलग्नता ज्ञाता वर्तते। स्वास्थ्यपरिवारकल्याणमन्त्री जगत् प्रकाश नड्डा अद्य नवदिल्ल्यां केन्द्रीयस्वास्थ्यपरिवारकल्याणपरिषदः 16 सम्मेलने समग्रशिशुबालस्वास्थ्यकार्यक्रमस्य विमोचनं करिष्यति। श्रीनड्डा अस्मिन् एव सम्मेलने अनीमिया मुक्त भारत अभियानस्य परिचालनमार्गदर्शिकाः अपि विमोचयिष्यति। एनिमिया मुक्त भारत अभियानम् इत्ययं कार्यक्रमः भारतस्य एनिमिया विरुद्ध युद्धे महत्वपूर्णं सोपानं भविष्यति। वाणिज्य उद्योगमन्त्री पीयूषगोयलः संयुक्तराज्यस्य भ्रमणस्य समाप्तेः अनन्तरं ग्रीस् देशस्य एथेन्स् नगरे व्यापारं निवेशं सामरिकम् आर्थिकसहकार्यञ्च सुदृढीकर्तुं भारतीय व्यापार प्रतिनिधिमण्डलस्य उच्चस्तरीयसम्मेलनस्य नेतृत्वं कुर्वन् वर्तते इति वार्ताः।
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेशल्स की स्वतंत्रता की 50वीं वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित राष्ट्रीय दिवस समारोह में शामिल हुए। श्री मोदी ने समारोह में सम्मानित अतिथि के रूप में भाग लिया और ये सम्मान पाने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बने। परेड में नौसेना और थलसेना की भारतीय मार्चिंग टुकड़ी ने हिस्सा लिया। इसमें भारतीय नौसेना का बैंड भी शामिल था, जो भारत और सेशल्स को करीबी और विशेष साझेदारी को दर्शाता है। विशेष पहल के तहत युद्धपोत आईएनएस तरकश और सर्वेक्षण पोत आईएनएस इच्छक को पोर्ट विक्टोरिया में तैनात किया गया, जो सेशल्स के साथ भारत की पुरानी दोस्ती को उजागर करता है। प्रधानमंत्री ने इस ऐतिहासिक अवसर पर भारत की ओर से सेशल्स के लोगों को हार्दिक बधाई दी। श्री मोदी सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हर्मनी के निमंत्रण पर शनिवार को सेशल्स पहुंचे। भारत और सेशल्स के बीच लंबे समय से साझेदारी है, जो साझा ऐतिहासिक सांस्कृतिक और लोगों के आपसी संबंधों पर आधारित है। हिंद महासागर क्षेत्र में महत्वपूर्ण समुद्री पड़ोसी होने के नाते सेशल्स भारत के महासागर विजन और ग्लोबल साउथ देशों के लिए प्रतिबद्धता में विशेष स्थान रखता है। श्री मोदी की यात्रा भारत और सेशल्स के बीच मजबूत और स्थायी दोस्ती को और मजबूत करेगी और

सभी क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंधों को बेहतर बनाने के लिए दोनों देशों की साझा प्रतिबद्धता की पुष्टि करेगी। इससे पहले विक्टोरिया में सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हर्मनी के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता के बाद एक संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में श्री मोदी ने कहा कि भारत और सेशल्स की रक्षा और

0: प्रमाण और विश्वास पर आधारित हो और जहां हम हर देश के पास पास नहीं साथ साथ चले।
1: प्रधानमंत्री मोदी को पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास में नेतृत्व के लिए सेशल्स की सर्वोच्च सम्मान गार्जियन ऑफ द ब्लू होराइजन से सम्मानित किया गया। प्रधानमंत्री ने कल सेशल्स में मॉरिशस के प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन चंद्र रामगुलाम से भी मुलाकात की। दोनों नेताओं ने भारत और मॉरिशस के बीच सहयोग पर चर्चा की। उन्होंने भारत से मिले विशेष आर्थिक पैकेज को लागू करने में प्रगति की समीक्षा की। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ब्रिटेन यात्रा पूरी करने के बाद व्यापार, निवेश और रणनीतिक आर्थिक सहयोग को मजबूत करने के लिए ग्रीस की राजधानी एथेंस में उच्च स्तरीय भारतीय व्यापार प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रहे हैं। ये प्रतिनिधिमंडल द एथेंस स्टार्टअप बिजनेस इंक्यूबेटर में प्रस्तुति और स्टार्टअप गतिविधियों में भाग लेगा। अमेरिका और ईरान जवाबी सैन्य कार्रवाई रोकने और कल कतर की राजधानी दोहा में फिर से वार्ता करने पर सहमत हो गए हैं। इस वार्ता का उद्देश्य रणनीतिक होर्मुज़ जलडमरू मध्य से संबंधित विवाद का समाधान करना है। पिछले कुछ दिनों में दोनों देशों के बीच सैन्य कार्रवाई तेज हो गई थी। अमेरिका ने ईरान पर युद्ध विराम का उल्लंघन करने का आरोप लगाते हुए उसके सैन्य ठिकानों पर हमला किया था। इसके जवाब में ईरान ने बहरीन और कुवैत में अमरीकी सैन्य अड्डों पर बैलिस्टिक मिसाइलों और ड्रोन से हमले किए। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा आज नई दिल्ली में केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण परिषद के 16वें सम्मेलन के दौरान समग्र शिशु बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम आरंभ करेंगे। ये कार्यक्रम पहले 3 साल संपूर्ण देखभाल की पहल को आगे बढ़ाएगा, क्योंकि बच्चे के जीवन, विकास, पोषण और मस्तिष्क के प्रारंभिक विकास के लिए शुरुआती 3 वर्ष बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। महाराष्ट्र में भिवंडी सत्र न्यायालय ने रविवार को महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता परीक्षा पेपर लीक मामले में गिरफ्तार 3 आरोपियों को 6 जुलाई तक पुलिस हिरासत में भेज दिया है। 2 फरार आरोपियों की तलाश की जा रही है। गुजरात में 4था वाइब्रेंट गुजरात क्षेत्रीय सम्मेलन आज से वडोदरा स्थित GSFC विश्वविद्यालय में शुरू हो रहा है। इस सम्मेलन का उद्देश्य गुजरात के मध्य क्षेत्र में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देना है। भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने लंदन में FIH प्रो लीग के रिवर्स मैच में इंग्लैंड को पेनल्टी शूटआउट में 3-2 से हरा दिया। निर्धारित समय तक दोनों टीम कोई गोल नहीं कर सकी थी। ये हॉकी विश्व कप से पहले FIH हॉकी प्रो लीग में भारतीय टीम का आखिरी मैच था। इस जीत के बाद विश्व कप से पहले टीम का आत्मविश्वास बढ़ा है। ICC महिला 2020 क्रिकेट विश्व कप में ऑस्ट्रेलिया ने ग्रुप ए के अपने आखिरी मैच में भारत को 6 विकेट से हरा दिया। लॉर्ड्स में पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत ने 4 विकेट पर 170 रन बनाए। ऑस्ट्रेलिया ने 19 ओवर में 4 विकेट पर 172 रन बनाकर मैच जीत लिया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है।

0: पहुंचाएं हम जन जन तक, सपनों को दें हम आकार।
1: आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं अभिषेक कटियार। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सेशल्स ने दिया सर्वोच्च सम्मान गार्डियन ऑफ द ब्लू होराइजन। सेशल्स यात्रा के दौरान भारत ने की 1250 करोड़ रुपए की लाइन ऑफ क्रेडिट देने की घोषणा। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव आज नीमच और शाजापुर में करेंगे सौर ऊर्जा पार्कों का उद्घाटन। और भारतीय महिला क्रिकेट T20 टीम विश्व कप से बाहर, और पुरुष टीम आयरलैंड से T20 सीरीज हारी। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सेशल्स का सर्वोच्च सम्मान गार्डियन ऑफ द ब्लू होराइजन प्रदान किया गया है। सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हार्मनी ने पर्यावरण संरक्षण, सतत विकास और ब्लू इकोनॉमी को बढ़ावा देने के लिए उन्हें यह सम्मान प्रदान किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेशल्स की सरकार और जनता का धन्यवाद देते हुए यह सम्मान जलवायु परिवर्तन से लड़ रहे सभी देशों को समर्पित किया। इससे पहले भी प्रधानमंत्री श्री मोदी को संयुक्त राष्ट्र का चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार और सियोल शांति पुरस्कार मिल चुका।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सेशल्स यात्रा के दौरान भारत और सेशल्स ने स्वास्थ्य, शिक्षा, अक्षय ऊर्जा, समुद्री सुरक्षा और रक्षा समेत कई क्षेत्रों में सहयोग को मजबूत करने के लिए कई समझौतों पर हस्ताक्षर किए। प्रधानमंत्री श्री मोदी और सेशल्स के राष्ट्रपति डॉ पैट्रिक हार्मनी के बीच विक्टोरिया में हुई वार्ता में भारत ने सेशल्स को 1,250 करोड़ रुपये की लाइन ऑफ क्रेडिट देने की घोषणा की। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने सेशल्स की नेशनल असेंबली को भी संबोधित किया और ऐसा करने वाले वे पहले भारतीय प्रधानमंत्री बने। उन्होंने मॉरिशस के प्रधानमंत्री डॉ नवीन चंद्र रामगुलाम से भी मुलाकात की। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव आज नीमच में 500 मेगावाट और शाजापुर में 450 मेगावाट के सौर ऊर्जा पार्क का उद्घाटन करेंगे। इस मौके पर मुरैना की 440 मेगावाट सोलर प्लस स्टोरेज परियोजना का पावर परचेज एग्रीमेंट भी किया जाएगा, जो प्रदेश की पहली सोलर ऊर्जा भंडारण परियोजना है। मुख्यमंत्री डॉ यादव और केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी करीब 1,593 करोड़ रुपये की औद्योगिक इकाइयों और विकास कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण भी करेंगे। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने कल बैतूल जिले के हिल स्टेशन कुकरू को बड़े पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि 15 करोड़ की लागत से कुकरू, चिखलदरा, मुक्तागिरी और मेलघाट को जोड़ते हुए एकीकृत टूरिज्म सर्किट विकसित किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कुकरू में योगाभ्यास किया और पल्स पोलियो अभियान का शुभारंभ भी किया।
1: पानी को लेकर मैंने कुछ निर्णय किए हैं। ग्राम पंचायत कुकरू में राशि 4,14,00,000 की लागत से तालाब का निर्माण कराया जाएगा। ग्राम कसई में तालाब निर्माण का सर्वे उपरांत जो खर्चा लगेगा हम देंगे। ग्राम जामुखेड़ा में रोड निर्माण के लिए 70,00,000, ग्राम लोकल दरी में पुलिया निर्माण 40,00,000, ग्राम कसई भेड़िया कुंड में 85,00,000, ग्राम खामला में बालिका छात्रावास निर्माण 1,20,00,000, मतलब 120,00,000 की ये छात्रावास की मंजूरी दी है।
0: कृषि और किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को साकार करने में गांवों की केंद्रीय भूमिका का उल्लेख किया है। नई दिल्ली में कल राष्ट्रीय ग्रामीण विकास सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री चौहान ने यह बात कही। उन्होंने कहा कि ग्रामीण श्रमिकों की आजीविका सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए ग्रामीण विकास में तेजी लाने के लिए विकसित भारत ग्रामीण योजना के अंतर्गत राज्यों के हिस्से सहित 1,51,000 करोड़ रुपये से अधिक का प्रावधान किया गया है।
2: इस साल बजट में प्रावधान है 1,51,282 करोड़ रुपया केंद्र और राज्य का मिला के। मजदूरों को मजदूरी देने में तो काम आएगा ही, इससे आप गांव की हालत पूरी तरह से बदल सकते हैं। 5 साल में 7,50,00,000 करोड़ लगभग लगेगा और इसका उपयोग अगर ढंग से हो गया तो गांव की जरूरत के बुनियादी जरूरतों के सारे काम हम इससे पूरा कर रहे हैं। योजना अधिसूचित हो गई, रूल्स बनाने में सहयोग मिला है और लगभग एक आध राज्य शायद अपवाद हो तो हो, नहीं तो सब राज्यों ने बजट में प्रावधान कर दिया है अपने हिस्से का।
0: अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का।
3: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक के साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर या न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
0: समाचारों में पुनः आपका स्वागत है। राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने कल खरगोन के झिरनिया में आयोजित सिकल सेल शिविर में शिरकत की। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राज्यपाल ने कहा कि धरती आबा ग्राम उत्कर्ष योजना और प्रधानमंत्री जनमन योजना जनजाति क्षेत्रों के लिए वरदान सिद्ध हो रही है। उन्होंने कार्यक्रम में ब्लड बैंक का शुभारंभ किया और 2 एम्बुलेंस तथा 1 शव वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। अब रुक करते हैं एक अच्छी खबर का। स्वच्छ भारत अभियान को नई दिशा देते हुए खरगोन नगर पालिका ने धार्मिक आस्था, स्वच्छता और पर्यावरण संरक्षण का अनूठा संगम प्रस्तुत किया है। नगर पालिका शहर के मंदिरों से प्रतिदिन फूल एकत्रित करके फूलों की अगरबत्ती बना रही है। इस खास अभियान की और जानकारी दे रहे हैं हमारे खरगोन संवाददाता आशुतोष पुरोहित।
4: शहर के मंदिरों से निकलने वाले फूल अब कचरा नहीं बन रहे बल्कि उन्हीं फूलों से सुगंधित अगरबत्तियां तैयार की जा रही। नगर पालिका ने शहर के 50 से अधिक मंदिरों से प्रतिदिन करीब 5 क्विंटल फूल एकत्रित करने की व्यवस्था की है। इसके लिए विशेष वाहन लगाए गए जो फूलों को संग्रहित कर अगरबत्ती निर्माण केंद्र तक पहुंचाते हैं। तैयार की गई अगरबत्तियों को कुंदा नाम दिया गया है और उन्हें मंदिरों में निःशुल्क वितरित किया जा रहा है। नगर पालिका का यह नवाचार स्वच्छ भारत अभियान की भावना को मजबूत करते हुए कचरे के पुनः चक्रण और पर्यावरण संरक्षण का उत्कृष्ट उदाहरण बन गया है। अन्नपूर्णी पहल को लेकर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं नगर पालिका के स्वास्थ्य अधिकारी प्रकाश चित्ते।
5: शहर में लगभग 50 से 60 मंदिर हैं, जिनमें कम से कम दिन भर में 5 क्विंटल से अधिक फूल संग्रहण होता है। उनको हम कलेक्ट करते हैं, कलेक्शन करके हम टेंशन ग्राउंड पे हमारा जो मशीन रखी हुई है वहाँ ले जाते हैं, वहाँ सेग्रीगेट करके उसकी सफाई करके पाउडर बनाया जाता है, सुगंधित अगरबत्ती तैयार की जा रही है।
4: खरगोन नगर पालिका की यह पहल अन्य शहरों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन रही है। आकाशवाणी समाचार के लिए मैं खरगोन से आशुतोष पुरोहित।
0: केंद्रीय संचार और पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कल गुना में दिशा समिति की बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में सिंचाई, स्वास्थ्य, शिक्षा, सड़क और पेयजल से जुड़ी विकास योजनाओं की समीक्षा की गई। कलेक्टर किशोर कुमार कन्याल ने प्रेजेंटेशन के जरिए कूनो नदी पुनर्जीवन परियोजना, समृद्धि केंद्र और कार्डियक एम्बुलेंस सेवा जैसी योजनाओं की जानकारी दी। प्रदेश की महिला एवं बाल विकास मंत्री निर्मला भूरिया ने कल झाबुआ जिला चिकित्सालय से बच्चों को पोलियो रोधक दवा की 2 बूंद पिलाकर अभियान की शुरुआत की। झाबुआ जिले में 2,13,000 से अधिक बच्चों को दवा पिलाने के लिए 1,100 से ज्यादा टीमें तैनात की गई हैं। इसके साथ ही इंदौर, सागर, नीमच, देवास, जबलपुर, खंडवा और मंदसौर सहित प्रदेश के सभी जिलों में भी इस अभियान का शुभारंभ किया गया। प्रदेश की 4 पारंपरिक कृषि उपजों सिताही कुटकी, नागदमन कुटकी, बैंगनी अरहर और क्षत्रिय धान को GI टैग मिल गया है। कृषि विभाग के सचिव निशांत वरवड़े ने बताया कि इससे उन उत्पादों को देश विदेश के बाजारों में नई पहचान, कानूनी संरक्षण और बेहतर कीमत मिलेगी। ये चारों उपज मुख्य रूप से डिंडौरी, मंडला, अनूपपुर, बालाघाट और शहडोल जैसे आदिवासी बहुल क्षेत्र महाकौशल के क्षेत्र में उगाई जाती हैं। प्रदेश में 19 मार्च से शुरू हुए जलगंगा संवर्धन अभियान का कल समापन होगा। समापन के मौके पर प्रदेश के सभी जिलों में प्रभारी मंत्रियों की उपस्थिति रहेगी। अभियान के दौरान जल संरक्षण, भूजल संवर्धन और नदी पुनर्जीवन से जुड़े 3.5 लाख से ज्यादा कार्य पूरे किए गए हैं। कल हर ग्राम पंचायत में विशेष ग्राम सभा का आयोजन होगा, जिसमें मुख्यमंत्री का संदेश पढ़ा जाएगा और उत्कृष्ट योगदान देने वाले नागरिकों तथा संगठनों को सम्मानित किया जाएगा। अब बात करते हैं मौसम की। उज्जैन, देवास, छिंदवाड़ा, पांडुना, मंडला और बालाघाट में आज भारी बारिश का अलर्ट है। यहां 24 घंटे में 4 इंच या उससे ज्यादा बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने भोपाल, इंदौर, ग्वालियर और जबलपुर सहित प्रदेश के कई जिलों में तेज बारिश का येलो अलर्ट भी जारी किया है। अब रुक करते हैं खेल का। ICC महिला 20 विश्व कप में ऑस्ट्रेलिया ने लॉर्ड्स में ग्रुप ए के अपने आखिरी मैच में भारत को 6 विकेट से हरा दिया। भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 171 रनों का लक्ष्य दिया, जिसके जवाब में ऑस्ट्रेलिया ने 19 ओवर में 4 विकेट खोकर 172 रन बना लिए। वहीं आयरलैंड ने इतिहास रचते हुए पहली बार मौजूदा वर्ल्ड चैंपियन भारत को कल T20 सीरीज में हरा दिया। अब कुछ समाचार संक्षेप में। खंडवा की 7 शासकीय ITI संस्थानों में प्रवेश के लिए ऑनलाइन आवेदन और त्रुटि सुधार की अंतिम तिथि 30 जून है। मंदसौर में उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा ने पिपलिया मंडी में 1,77,00,000 की लागत से 32 कैश काउंटर दुकानों और ग्राम गुड़बेली छोटी में सड़क का भूमि पूजन किया। डिंडौरी जिले को HPV टीकाकरण अभियान में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए राज्य स्तर पर सम्मानित किया गया है। इंदौर में 45 दिवसीय शौर्य संकल्प प्रशिक्षण योजना 2026 का आवासीय प्रशिक्षण शिविर का कल समापन किया गया और धार वन मंडल के अंतर्गत वन मंडल स्तरीय रूट शूट वृक्षारोपण तकनीक प्रशिक्षण का कल आयोजन किया गया। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए 2:10 पर। नमस्कार।

श्रोताओं, आकाशवाणी जबलपुर केंद्र से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम गुड मॉर्निंग जबलपुर। इतना जो प्यारा सा मौसम के साथ जो ये मतलब सोमवार की सुबह है, आप सभी लोग अपने अपने कामों पर जाने के लिए एकदम तैयार हो रहे होंगे या घर के कामों में ज़रूर मशगूल होंगे। लेकिन आपको मैं बता दूं कि आज का दिन जो है वो एक और चीज़ के लिए बहुत ख़ास है। श्रोताओं, आज हम मना रहे हैं 15वीं शताब्दी के प्रसिद्ध कवि एवं समाज सुधारक संत कबीर की जयंती। जी हाँ,

हर साल हिंदू पंचांग के अनुसार संत कबीर की ये जो जयंती है वो ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा को मनाई जाती है, जो कि आज है। कबीरदास की महान कविताएं और रचनाएं सर्वोच्च सत्ता की एकता और विशालता को दर्शाती हैं। संत कबीर अपने दोहों के माध्यम से समाज को मानवता और प्रेम का संदेश दिया करते थे। उन्होंने समाज में व्याप्त रूढ़िवादी विचारों और जाति भेद का कड़ा विरोध किया था। संत कबीर के अनुसार ईश्वर एक है, चाहे उसे किसी भी नाम से पुकारा जाए। और संत कबीर कर्म की प्रधानता पर भी खासा जोर देते हैं। वो कहते हैं कि और उनके दोहों में हम ये उनके दोहों से हम ये सीख सकते हैं कि इंसान की महानता उसके कर्मों और विचारों से तय होती है, ना कि उसकी संपत्ति और कुल से। तो ऐसे महान विचारों वाले संत कबीर को हम नमन करते हैं। उनकी जयंती की सभी देशवासियों को बहुत बहुत बहुत बधाई। और जबलपुर, इसी बात पर शुरुआत करते हैं आज की संगीतिका। आपके लिए बहुत मधुर मधुर इस सुबह में हम गीत लेकर आए हैं। सबसे पहले ये जो गीत है हम आपको सुना रहे हैं, फिल्म पीके से शान और श्रेया घोषाल की आवाज़ है, संगीत है शांतनु मोहित्रा का और बोल है स्वानंद किरकिरे के। जल्दी लौटते हैं और संत कबीर के महानता के बारे में थोड़ी सी और बातें करेंगे।

कार्यक्रम गुड मॉर्निंग जबलपुर आप सुन रहे हैं। श्रोताओं, आज हम मना रहे हैं संत कबीर की जयंती। और मैं आपको बता दूं कि कबीर जो थे वो एक रहस्यवादी कवि और संत थे। उनकी रचनाओं ने भक्ति आंदोलन को गहराई से प्रभावित किया। बनारस में जन्मे कबीर दास ने पारंपरिक धार्मिक रीति रिवाजों को चुनौती दी और सार्वभौमिक प्रेम और भक्ति के दर्शन को बढ़ावा दिया। उन्होंने सभी धर्मों की एकता पर बल दिया और उनके जो दोहे हैं वो सरलता, गहराई और शाश्वत ज्ञान के लिए पूजनीय हैं, जो आंतरिक पवित्रता और ईश्वर के प्रत्यक्ष अनुभव की वकालत करते हैं। कबीर की विरासत लाखों लोगों को प्रेरित करती है और धार्मिक सीमाओं को पार करती है। सद्भाव को तो बढ़ावा देती ही है और खासकर युवाओं को उनके दोहे बहुत ही प्रेरित करते हैं। उनके दोहे स्पष्ट हैं और बहुत ही तार्किक हैं, लॉजिकल हैं। तो ज़रा सोचिए जबलपुर, कि कबीर के किस एक दोहे ने आपकी ज़िंदगी को गहराई से प्रभावित किया। मुझे तो ज़रूर पता है कि कोई ना कोई एक दोहा होगा जिसने आपकी लाइफ को, आपके जीवन में कहीं ना कहीं बहुत एक असर डाला होगा। जैसे मैं अपनी बात करूं तो कबीर का एक दोहा है जो मुझे बहुत पसंद है। वो कहते हैं कि एकै माटी के सब भांडे एके सर्जन हारा। कबीर जी कहते हैं कि एक ही माटी के सभी बर्तन हैं, एक ही सर्जन हार है। सब ही एके ज्योति समाणी, सब मही एके ज्योति समाणी, को मूरख को सियाणा। तो कितनी गहरी बात कह गए हैं कबीर, संत कबीर। और ऐसे ढेरों दोहे हैं जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम यदा कदा सुन ही लेते हैं। तो ऐसे महान कवि और संत को नमन करते हैं उनकी जयंती पर, और जो उन्होंने हमारी ज़िंदगी में हमें जीने के इशारे दिए हैं उसको अपने दिल में समा के रखते हैं। बढ़ते हैं आगे, अगला गीत आपको सुनाते हैं। फिल्म फिर मिलेंगे से, सलमान खान की ये फिल्म थी, शंकर महादेवन का इसमें संगीत है और बोल भी उन्हीं के हैं। प्रसून जोशी ने इस गीत को लिखा है।

0: आकाशवाणी जबलपुर से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम गुड मॉर्निंग जबलपुर। श्रोताओं, आपके लिए हम लेकर आए हैं आज गुड मॉर्निंग जबलपुर में एक बहुत ही प्यारी कहानी जिसका नाम है समर्पण और जिसकी कहानीकार है श्रीमती सुनंदा पटेरिया। तो लीजिए सुनाते हैं आपको ये कहानी।
1: जैसे ही सूरज ने अपनी किरणों के साथ अंबर की धरती पर अपना पहला कदम रखा, वैसे ही मीरा मंदिर की ओर दौड़ पड़ी। मंदिर के घंटे की डोरी को पकड़कर जोर जोर से घंटा बजाने लगी। डोरी से लगभग लटक कर माँ के चरणों में गिरकर भाव विह्वल होकर माँ के किए उपकार का धन्यवाद करने लगी। माँ, आपको मेरा साष्टांग प्रणाम, आपका कोटि कोटि धन्यवाद। माँ, आपकी कृपा से आज मैं धन्य हुई। हे माँ, माधव और उर्मिला का जीवन भी अब खुशियों से भर दो। उनके बिना कुछ भी संभव ना था। एक गहरी सांस छोड़कर मीरा वहीं बैठ गई, जैसे उसके मृत शरीर में पुनः प्राणवायु का संचार हुआ हो। जिंदगी के जिस अंतिम क्षणों में माँ ने योगेश्वर की सांस की डोर को थामा और जीवन दान दिया, ऐसा स्वप्न तो कोई स्वप्न में भी नहीं देखता। पिछले 6 माह से अपनी लंबी बीमारी से लड़ते लड़ते योगेश्वर ने अपने जीने की सारी उम्मीद छोड़ दी थी। उनकी दोनों किडनी फेल हो गई थी, डॉक्टर ने जवाब दे दिया था। योगेश्वर की पत्नी मीरा को भी उम्मीद की हर किरण अब स्याह होते नजर आई। दोनों पति पत्नी विचार शून्य थे। घर का वातावरण पहले से ही अशांत था। योगेश्वर के छोटे भाई माधव की मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी। एक हाथ से प्रेमिका और दूसरे हाथ से पत्नी मुट्ठी से रेत की तरह फिसल गई। प्रेम प्रसंग में उलझे माधव को उसके असफल वैवाहिक जीवन ने विक्षिप्त सा कर दिया था, इसलिए उससे कोई उम्मीद संभव ना थी। उसकी पत्नी उर्मिला उसके साथ एक अर्थहीन जीवन की यात्रा का सफर तय कर रही थी। BSc गोल्ड मेडलिस्ट उर्मिला का मानना था कि जीवन में सबको सब कुछ नहीं मिलता। अपने माता पिता की इकलौती संतान होने की वजह से उसकी पीड़ा और कर्तव्य दुगने हो गए थे। उसने सोचा कि बहाव में बह जाने में ही सबकी भलाई है। माधव और उर्मिला के बीच 2 अजनबियों सा संबंध था। सुबह की चाय के साथ जैसे ही माधव ड्राइंग रूम में पहुंचा, फ़ोन की घंटी बजी। माधव ने फ़ोन उठाया तो भाभी ने लगभग रोते हुए कहा, माधव, डॉक्टर ने जवाब दे दिया है, कहा आप इन्हें घर ले जा सकती हैं। अब हम कुछ नहीं कर सकते, अब आप ही कुछ कीजिए, मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज़ माधव। माधव ने कहा, भाभी मैं क्या कर सकता हूँ, अब नियति को यही मंजूर है तो हमें यह स्वीकार करना ही पड़ेगा। ऐसा कहकर वह सीधे हॉस्पिटल पहुँचा, डॉक्टरों से संपर्क किया तो उन्होंने कहा कि किसी भी डोनर की किडनी आपके भाई की किडनी से मैच नहीं कर रही है। यदि आप इनको अपनी एक किडनी दे दें तो कुछ हद तक उम्मीद की जा सकती है। माधव को डॉक्टरों के इस प्रस्ताव से कोई ऐतराज नहीं था। वह सोचने लगा कि मेरे इस व्यर्थ जीवन का इससे अच्छा उपयोग और क्या हो सकता है। पर समस्या यह थी कि पत्नी की अनुमति के बिना डॉक्टर माधव की किडनी नहीं ले सकते थे। माधव यह अच्छी तरह से जानता था कि उर्मिला उसके इस फैसले पर अपनी कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं करेगी, क्योंकि जिस लड़की को 12 साल के वैवाहिक जीवन में उसने एक पल की चैन और खुशी न दी हो, बदले में अंतिम सांस तक की पीड़ा, अपमान और जिल्लत से भरा जीवन दिया हो, भला उससे किस हक से कोई अपेक्षा रख सकता है। हालांकि माधव ने डॉक्टरों को समझाने की बहुत कोशिश की कि मेरे जीवन से संबंधित किसी भी निर्णय में पत्नी की सहमति की क्या ज़रूरत। डॉक्टर ने कहा, मिस्टर माधव, यह सरकारी अस्पताल है जिसकी कुछ कानूनी कार्यवाही होती है और उसके बिना कुछ भी संभव नहीं है। हताश होकर माधव किनारे एक बेंच पर बैठ गया। तकरीबन आधा घंटे के बाद एक कर्मचारी ने कहा, आपको डॉक्टर साहब अंदर बुला रहे हैं। डॉक्टर ने माधव से कहा, आप ऑपरेशन के लिए तैयार हो जाइए, आपकी पत्नी ने फॉर्म पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। माधव को लगा जैसे पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई हो। आनन फानन में माधव अविलंब ऑपरेशन थिएटर पहुंचा। ऑपरेशन शुरू हुआ। माधव की किडनी का प्रत्यारोपण किया गया। ऑपरेशन खत्म हुआ, डॉक्टर ने योगेश्वर को होश में आने के लिए 72 घंटे का समय दिया, पर उन्हें 48 घंटे के बाद ही होश आ गया था। योगेश्वर को होश में आता देख मीरा सीधे मंदिर की ओर दौड़ पड़ी। माधव की मूर्छा जब खत्म हुई तो उसकी आंखें उर्मिला को खोजने लगी, जो वहीं पलंग के पास एक स्टूल में बैठी थी। उर्मिला को देखकर माधव ने अपने दोनों हाथ जोड़कर मूक दृष्टि से क्षमा याचना की। प्रत्युत्तर में उर्मिला ने कहा, माधव, ईश्वर की ये खूबसूरत दुनिया प्रेम, विश्वास और संबंधों से चलती है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ समर्पण होता है। लेन देन का कोई व्यापार या सौदा नहीं, हस्ताक्षर तो मात्र एक कार्यवाही थे। अब तुम होश में आ गए हो, मैं जरा घर जा रही हूँ, अपना ख्याल रखना। माधव उर्मिला की बात सुनकर जड़वत हो गया और अपने किए का पश्चाताप करने लगा। उर्मिला घर जाने के लिए जैसे ही हॉस्पिटल के गेट पर पहुंची, उसकी नज़र मीरा भाभी पर पड़ी, जो मंदिर की सीढ़ियों पर बैठी थी। भाभी के पास जाकर मीरा ने कहा, भाभी, मैं घर जा रही हूँ, आप भैया के पास बैठ जाइए। उर्मिला को देखते ही भाभी उससे लिपट कर रोने लगी। उर्मिला, आज तुमने जो किया वह तो मेरी सगी बहन भी ना करती। आखिर इस परिवार ने तुम्हें दिया ही क्या है, सिवाय बेरुखी और एकाकीपन के। तुम कितनी उदार और महान हो उर्मिला। नहीं नहीं भाभी, ऐसा मत कहिए, घर घर के सदस्यों से ही बनता है। फिर एक बहू, आपकी देवरानी और माधव की पत्नी होने का सौभाग्य मुझे इस परिवार से ही मिला है। मेरा इस घर में क्या अस्तित्व है? यदि संबंध है तो इंसान सागर पार कर लेता है, स्त्री तो नाम का सिंदूर भरकर जीवन जी लेती है। मेरे पास तो सिंदूर भरने वाला अभी है ना। मीरा ने कहा, फिर तुम्हारे माँ बाबूजी तुम्हें लेकर कितना परेशान होंगे। नहीं भाभी, ऐसा कुछ नहीं है, आप चिंता ना करें, क्योंकि मैंने उन्हें आज तक अपने परिवार के बारे में कुछ नहीं बताया, सिवाय इसके कि मैं अपने घर में बहुत खुश हूँ। तो उर्मिला, क्या तुमने उन्हें अपने और माधव के बारे में कुछ नहीं बताया? आश्चर्यचकित होकर मीरा ने पूछा। नहीं भाभी, कुछ भी नहीं। मेरे बाबूजी अक्सर कहा करते थे, बेटी, माता पिता जन्म के साथी होते हैं, कर्म के नहीं। जो मेरे भाग्य में नहीं था नहीं मिला। मैं नहीं चाहती थी कि मेरी वजह से मेरे वृद्ध माता पिता को किसी प्रकार की कोई परेशानी हो या उन्हें दुख पहुँचे। और वो तो क्या, मैं किसी को भी अपने दुख का कारण नहीं बनना चाहती थी। यह जीवन सिर्फ परहित के लिए है और यही मानव धर्म है। मुझे अपने परिवार में किसी से कोई शिकायत नहीं है, माधव से भी नहीं। इतना कहकर उर्मिला चली गई। भाभी, उस समर्पित कर्तव्यनिष्ठ धर्मपरायण स्त्री में माँ भगवती की छवि को जाते हुए देखती रह गईं।

0: पार्टी चाहिए।
1: पहले चैंपियन के साथ सेल्फी लेंगे।
2: आइडिया, यही करते हैं पार्टी।
0: पिज्जा पार्टी, ये चल अपना कार्ड और पिन दे।
3: मेरे कार्ड की डिटेल्स मैं खुद ही डालूंगी। RBI कहता है अपना पिन, OTP, CVV या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी के साथ शेयर ना करें। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें।
0: बाय गर्ल्स, कहाँ जा रही है? सुना नहीं, नो शेयरिंग।
3: RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

श्रोताओं, कार्यक्रम गुड मॉर्निंग जबलपुर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी जबलपुर से। अभी ये जो गीत आपने सुना वो था फिल्म प्रेम रतन धन पायो से, पलक मुच्छाल की आवाज़, हिमेश रेशमिया का संगीत। कार्यक्रम में अगला गीत हम आपके लिए लेकर आए हैं फिल्म पार्टनर से, सोनू निगम कुणाल गांजावाला की आवाज़, शबीर अहमद के बोल, साजिद वाजिद का संगीत।

आकाशवाणी जबलपुर से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम गुड मॉर्निंग जबलपुर। श्रोताओं, अगला गीत हम आपके लिए लेकर आए हैं फिल्म फैंटम से। शाहिद माल्या की आवाज़, प्रीतम का संगीत और कौसर मुनीर के बोल।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सम्मानीय अतिथि के रूप में सेशल्स के राष्ट्रपति दिवस समारोह में शामिल हुए। मॉरिशस के प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन चंद्र रामगुलाम के साथ भी चर्चा की। अमेरिका और ईरान जवाबी सैन्य कार्रवाई रोकने और कल कतर की राजधानी दोहा में फिर से वार्ता शुरू करने पर सहमत हुए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू रक्षा अलंकरण समारोह में आज राष्ट्रपति भवन में वीरता पदक प्रदान करेंगी। मौसम विभाग ने आज पश्चिम बंगाल के पर्वतीय क्षेत्रों और सिक्किम में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया। और भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने इंग्लैंड को पेनल्टी शूटआउट में 3-2 से हराकर FIH प्रो लीग में जीत के साथ अपना अभियान संपन्न किया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेशल्स की स्वतंत्रता की 50वीं वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित राष्ट्रीय दिवस समारोह में शामिल हुए। श्री मोदी ने समारोह में सम्मानित अतिथि के रूप में भाग लिया और ये सम्मान पाने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बने। हमारे संवाददाता ने बताया है कि परेड में नौसेना और थल सेना की भारतीय मार्चिंग टुकड़ी ने हिस्सा लिया।
1: परेड में भारतीय नौसेना का बैंड भी शामिल था। ये भारत और सेशल्स की करीबी और विशेष साझेदारी को दर्शाता है। विशेष पहल के अंतर्गत युद्धपोत INS तरकश और सर्वेक्षण पोत INS इक्षक को पोर्ट विक्टोरिया में तैनात किया गया था। प्रधानमंत्री ने इस ऐतिहासिक अवसर पर भारत की ओर से सेशल्स के लोगों को शुभकामनाएं दी। श्री मोदी राष्ट्रपति पैट्रिक हार्मिनी के निमंत्रण पर सेशल्स की 3 दिन की यात्रा पर हैं। भारत और सेशल्स के बीच लंबे समय से साझेदारी है, जो साझा ऐतिहासिक सांस्कृतिक और लोगों के आपसी संबंधों पर आधारित है। हिंद महासागर क्षेत्र में महत्वपूर्ण समुद्री पड़ोसी होने के नाते सेशल्स भारत के महासागर विजन और ग्लोबल साउथ के लिए प्रतिबद्धता में विशेष स्थान रखता है। यह यात्रा भारत और सेशल्स के बीच करीबी और स्थायी दोस्ती को और मजबूत करेगी तथा सभी क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंधों को बेहतर बनाने के लिए दोनों देशों की साझा प्रतिबद्धता की पुष्टि भी करेगी।

0: समुद्री संसाधनों के प्रबंधन में योगदान देना जारी रहेगा। दोनों प्रधानमंत्रियों ने भारत के विजन महासागर और पड़ोसी देशों को प्राथमिकता देने की नीति के तहत भारत मॉरिशस मजबूत रणनीतिक साझेदारी के महत्व और ग्लोबल साउथ के लिए साझा प्रतिबद्धता पर सहमति प्रकट की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पर्यावरण संरक्षण और टिकाऊ विकास में नेतृत्व के लिए सेशल्स के सर्वोच्च सम्मान गार्जियन ऑफ द ब्लू होराइजन से सम्मानित किया गया।
1: सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हर्मिनी से मिले इस सम्मान से टिकाऊ विकास के लिए प्रधानमंत्री मोदी के लंबे समय से जारी प्रयास और उनके ग्रीन विजन को मान्यता मिली है। यह सम्मान टिकाऊ विकास को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री को मिले ऐसे ही कई सम्मानों की कड़ी में एक और उपलब्धि है। इनमें खाद्य और कृषि संगठन का एग्रीकोला मेडल, सियोल शांति पुरस्कार और संयुक्त राष्ट्र का चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार शामिल है। इस सम्मान से पता चलता है कि सेशल्स हिंद महासागर क्षेत्र में क्षमता निर्माण, पर्यावरण संबंधी कार्यों, टिकाऊ विकास के प्रयासों और साझा प्राथमिकताओं को आगे बढ़ाने में भारत की बढ़ती भूमिका को भरोसेमंद साझेदार के तौर पर अत्यधिक महत्व देता है। समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। अमेरिका और ईरान जवाबी सैन्य कार्रवाई रोकने और कल कतर की राजधानी दोहा में फिर से वार्ता शुरू करने पर सहमत हो गए हैं। इस वार्ता का उद्देश्य रणनीतिक होर्मुज जलडमरू मध्य से संबंधित विवाद का समाधान करना है।
2: पिछले कुछ दिनों में दोनों देशों के बीच सैन्य कार्रवाई तेज हो गई थी। अमेरिका ने ईरान पर युद्ध विराम का उल्लंघन करने का आरोप लगाते हुए उसके सैन्य ठिकानों पर हमला किया था। इसके जवाब में ईरान ने बहरीन और कुवैत में अमेरिकी सैन्य अड्डों पर बैलिस्टिक मिसाइलें और ड्रोन से हमले किए। दोनों देश फिलहाल सैन्य कार्रवाई रोकने पर सहमत हुए हैं ताकि हॉर्मुज जलडमरू मध्य से जहाजों की आवाजाही सामान्य बनी रहे। पहले ये वार्ता स्विट्जरलैंड में ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर होनी थी, लेकिन हालात बदलने के बाद इसका स्थान और विषय दोनों बदल दिया गया है। विश्व दर्पण के लिए समाचार कक्ष से अमीशा।
0: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ब्रिटेन यात्रा पूरी करने के बाद व्यापार, निवेश और रणनीतिक आर्थिक सहयोग को मजबूत करने के लिए ग्रीस की राजधानी एथेंस में उच्च स्तरीय भारतीय व्यापार प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रहे हैं। ये प्रतिनिधिमंडल द एथेंस स्टार्टअप बिजनेस इंक्यूबेटर में प्रस्तुति और स्टार्टअप गतिविधियों में भाग लेगा। इस दौरान एथेंस चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में भारतीय और ग्रीक उद्योग जगत के नेताओं के साथ बुनियादी ढांचे, डिजिटलीकरण, रक्षा, खाद्य और कृषि जैसे विषयों पर चर्चा होगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में इस वर्ष के दूसरे रक्षा अलंकरण समारोह में वीरता पदक प्रदान करेंगे। इस अवसर पर राष्ट्रपति सशस्त्र बलों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेशों के पुलिस कर्मियों को वीरता अलंकरण प्रदान करेंगे। ये अलंकरण असाधारण बहादुरी का प्रदर्शन करने वाले सैनिकों को दिए जाते हैं। इससे पहले राष्ट्रपति ने 8 जून को राष्ट्रपति भवन में रक्षा अलंकरण समारोह के पहले चरण में वीरता पदक प्रदान किए थे। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा आज नई दिल्ली में केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण परिषद के 16वें सम्मेलन के दौरान समग्र शिशु बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम आरंभ करेंगे। ये कार्यक्रम पहले 3 साल संपूर्ण देखभाल की पहल को आगे बढ़ाएगा, क्योंकि बच्चों के जीवन विकास, पोषण और मस्तिष्क के प्रारंभिक विकास के लिए शुरुआती 3 वर्ष बेहद महत्वपूर्ण होते हैं। ये कार्यक्रम जन्म से लेकर 3 वर्ष तक के बच्चों के लिए घर और समुदाय में ही स्वास्थ्य सेवाएं देगा। गुजरात में 4था वाइब्रेंट गुजरात क्षेत्रीय सम्मेलन आज से वडोदरा स्थित GSFC विश्वविद्यालय में शुरू हो रहा है। इस सम्मेलन का उद्देश्य गुजरात के मध्य क्षेत्र में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देना है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि सम्मेलन में केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह, मनोहर लाल खट्टर और मनसुख मांडविया तथा राज्य सरकार के कई मंत्री और विभिन्न देशों के राजनयिक हिस्सा लेंगे।
3: 150 से अधिक विशेषज्ञ और जापान, सिंगापुर, UAE, यूक्रेन और रवांडा जैसे भागीदार देशों के प्रतिनिधि मध्य गुजरात के आर्थिक विकास पर मंथन करेंगे। इसके साथ ही सम्मेलन में आयोजित भव्य प्रदर्शनी के 150 से अधिक स्टॉल, स्थानीय MSME, उन्नत तकनीकी स्टार्टअप और अमूल एवं GFSC जैसे बड़े उद्यमों की क्षमता और नवाचार को प्रदर्शित करेंगे। अपर्णा खूट, आकाशवाणी समाचार, वडोदरा।
0: महाराष्ट्र में भिवंडी सत्र न्यायालय ने रविवार को महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता परीक्षा पेपर लीक मामले में गिरफ्तार 3 आरोपियों को 6 जुलाई तक पुलिस हिरासत में भेज दिया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि अंतर्राज्यीय परीक्षा रैकेट शामिल 2 फरार आरोपियों की तलाश की जा रही है।
4: जांच अधिकारियों ने लीक हुए प्रश्न पत्र के स्रोत का पता लगाने, वित्तीय लेन देन की जांच करने, महाराष्ट्र के अन्य हिस्सों में बेचे जाने की छानबीन कराने तथा इस रैकेट में शामिल अन्य लोगों की पहचान कराने के लिए

0: 10 दिन की पुलिस हिरासत की मांग की थी। टीईटी परीक्षा जो रविवार 28 जून को आयोजित होने वाली थी, भिवंडी पुलिस द्वारा परीक्षा से एक दिन पहले पेपर लीक का भंडाफोड़ किए जाने के बाद स्थगित कर दी गई। शैलजा तिवले, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
1: दिल्ली की भ्रष्टाचार निरोधक शाखा एसीबी ने दवाओं, सर्जिकल सामान और मेडिकल उपकरणों की खरीद में बड़े पैमाने पर गड़बड़ियों के आरोप के मामलों में तत्कालीन स्वास्थ्य सेवाएं महानिदेशक डॉक्टर वत्सल अग्रवाल और केंद्रीय खरीद एजेंसी के उपलेखा नियंत्रक नीरज चोपड़ा को गिरफ्तार कर लिया है। उड़ीसा की पूरी तीर्थ नगरी में आज सवेरे श्री जगन्नाथ मंदिर में देव स्नान यात्रा के अवसर पर लाखों श्रद्धालु जुटे हैं। हमारी संवाददाता ने बताया है कि ये भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा का पवित्र स्नान उत्सव है।
2: सदियों पुरानी परंपरा के अनुसार भाई बहन देवताओं को गर्भगृह से औपचारिक रूप से स्नान वेदी तक ले जाया गया। वहां वैदिक मंत्रों के उच्चारण, शंख की ध्वनि और भक्ति संगीत के बीच पवित्र जल के 108 घड़ों से उनका स्नान कराया जाएगा। देव स्नान पूर्णिमा के शुभ अवसर पर मनाया जाने वाला यह त्योहार वार्षिक रथ यात्रा से पहले देवताओं के सार्वजनिक दर्शन का मौका होता है। उत्सव को सुचारू और व्यवस्थित ढंग से सम्पन्न कराने के लिए सुरक्षा और भीड़ प्रबंधन के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
1: असम के धेमाजी जिले में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। इसकी वजह अरुणाचल प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्र में लगातार हो रही भारी बारिश के कारण बढ़े भूस्खलन से गाई नदी का ऊपरी प्रवाह अस्थायी रूप से रुक जाना बताया जा रहा है।
3: धेमाजी जिला प्रशासन ने तत्काल जन सुरक्षा परामर्श जारी करते हुए चेतावनी दी है कि यदि अवरुद्ध जल अचानक नीचे की ओर प्रवाहित होता है तो बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। नदी तटों, नालों, अर्द्रभूमियों, तटबंधों तथा अन्य निचले इलाकों में रहने वाले लोगों से विशेष सतर्कता बरतने की अपील की गई है। जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने लोगों से सरकारी निर्देशों और आधिकारिक सूचनाओं पर लगातार नजर रखने, स्थानीय प्रशासन के साथ सहयोग करने तथा आवश्यकता पर सुरक्षित स्थानों पर जाने के लिए तैयार रहने को कहा है। इस बीच बाहरी क्षेत्रों से आए तेज बहाव के पानी ने जिले के जोनाइको डिस्ट्रिक्ट के कई हिस्सों को जलमग्न कर दिया है। राकेश दोले, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी।
1: मौसम विभाग ने आज पश्चिम बंगाल के पर्वतीय क्षेत्र और सिक्किम में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। अगले 2 से 3 दिन में दक्षिण पश्चिम मानसून के गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ने की संभावना है। वहीं दिल्ली, बिहार, हरियाणा, चंडीगढ़ और उत्तर प्रदेश में कल तक लू की स्थिति बनी रहेगी। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे अपने फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में लघु व्यवसायों के विकास और उद्यमियों के लिए अवसर विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। परिचर्चा में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के अपर सचिव और विकास आयुक्त डॉक्टर रजनीश भाग लेंगे। श्रोता स्टूडियो में उपस्थित हमारे विशेषज्ञों से विशेष संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। सवाल पूछने के लिए टेलीफोन नंबर है 0112317107 और 0112334444। खेलों में भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने इंग्लैंड को पेनल्टी शूटआउट में 3-2 से हराकर एफआईएच प्रो लीग में जीत के साथ अपना अभियान संपन्न कर लिया है। लंदन में निर्धारित समय तक दोनों टीम कोई गोल नहीं कर सकी थी। आईसीसी महिला 2020 क्रिकेट विश्व कप में ऑस्ट्रेलिया ने ग्रुप ए के अपने आखिरी मैच में भारत को 6 विकेट से हरा दिया है। उधर आयरलैंड ने दूसरे और अंतिम 2020 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में भारत को 1 रन से हरा दिया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मनोज।
4: धन्यवाद फरहत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सेशल्स यात्रा से जुड़ा समाचार आज सभी समाचार पत्रों ने प्रकाशित किया है। अमर उजाला ने प्रधानमंत्री मोदी के शब्द दिए हैं, हिंद महासागर को अवसरों का महासागर बनाना लक्ष्य। जनसत्ता लिखता है, प्रधानमंत्री ने सेशल्स में कहा, समुद्री सुरक्षा के साथ आर्थिक समृद्धि भी सुनिश्चित हो। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में छापेमारी का समाचार भी कई समाचार पत्रों ने प्रकाशित किया है। हिंदुस्तान लिखता है, आरोपियों के ठिकानों से संपत्ति के दस्तावेज दस्तावेज जब्त। दैनिक जागरण के शब्द हैं, 6 आरोपियों के साथ ठिकानों पर छापेमारी। आरोपी रामशंकर यादव उर्फ टिन्नू के घर से आभूषण और नकदी बरामद। राजधानी दिल्ली में दोपहर में 51 डिग्री वाली तपिश, जून में पहली बार लू। कल और परसों आंधी बारिश का येलो अलर्ट। 2 जुलाई से गर्मी से बड़ी राहत मिलने की उम्मीद, नव भारत टाइम्स की खबर है। देशबंधु ने बढ़ते तापमान और कम बर्फबारी का समाचार प्रकाशित किया है। गर्मी की मार से तेजी से पिघल रहा हिमलिंग, अमरनाथ यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं और प्रशासन की बढ़ी चिंता। हिंदुस्तान ने मानसून में देरी पर अपना संपादकीय प्रकाशित किया है, समस्या बढ़ाएगा कमजोर मानसून। पत्र लिखता है, भारत में चावल का पर्याप्त सरकारी भंडार है और वो मुख्य खरीफ फसल में कमी को पूरा कर सकता है, अलबत्ता दलहन और तिलहन पर अलनीनो का असर पड़ेगा। लोकसत्य ने वेनेजुएला में आए भीषण भूकंप से मची तबाही के समाचार सचित्र दिए हैं। पत्र लिखता है, 1,500 से अधिक विदेशी बचाव कर्मी पहुंचे, चारों ओर नजर आ रहा तबाही का मंजर। ईरान का ऐलान, अगले 30 दिन होर्मुज पर हमारा कब्जा। बहरीन कुवैत पर फिर हमला। राष्ट्रपति ट्रंप ने चेताया, ईरान नहीं सुधरा तो वजूद मिटा देंगे, दैनिक भास्कर की सुर्खी है। राजस्थान पत्रिका ने अनोखा फार्मूला शीर्षक से नेशनल एकेडमी ऑफ मेडिकल साइंसेज के विशेषज्ञों की अपील से जुड़ा समाचार दिया है। पत्र लिखता है, माँ के लिए चाय की प्याली हो, बच्चे की सेहत की रखवाली भी हो, माँ को चाय में फॉलिक एसिड और विटामिन B12 देने का सुझाव। अपंगता की बीमारी से बच सकेंगे नवजात।
1: धन्यवाद मनोज। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सम्मानीय अतिथि के रूप में सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस समारोह में शामिल हुए। मॉरिशस के प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन चंद्र रामगुलाम के साथ भी चर्चा की। अमेरिका और ईरान जवाबी सैन्य कार्रवाई रोकने और कल कतर की राजधानी दोहा में फिर से वार्ता शुरू करने पर सहमत हुए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू रक्षा अलंकरण समारोह में आज राष्ट्रपति भवन में वीरता पदक प्रदान करेंगी। मौसम विभाग ने आज पश्चिम बंगाल के पर्वतीय क्षेत्रों और सिक्किम में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया। और भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने इंग्लैंड को पेनल्टी शूटआउट में 3-2 से हराकर FIH प्रो लीग में जीत के साथ अपना अभियान सम्पन्न किया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
5: Akashwani presents Morning News. Good morning, I'm Anuja Kumar. The headlines. Prime Minister Narendra Modi attends Seychelles National Day celebrations as guest of honor. Also holds talks with his Mauritius counterpart Naveen Chandra Ramgulam. United States and Iran agree to halt counter-strikes and resume talks in Qatar's capital, Doha, tomorrow. President Draupadi Murmu to present gallantry awards at Defence Investiture Ceremony at Rashtrapati Bhavan today. IMD issues red alert for very heavy rainfall over sub-Himalayan West Bengal and Sikkim today. And in hockey, India beat England 3-2 in penalty shootout to finish FIH Pro League campaign on a winning note. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi attended the National Day celebrations marking the 50th anniversary of the independence of Seychelles. Mr. Modi attended the celebrations as the guest of honour, becoming the first Indian Prime Minister to be accorded this honour. More from our correspondent.
6: An Indian marching contingent comprising Navy and Army teams participated in the parade. An Indian naval band also formed part of the Indian marching unit, underlining the close and special India-Seychelles partnership. In a special gesture, INS Tarkash and INS Ikshak were docked at Port Victoria, highlighting India's long-standing friendship with Seychelles. PM Modi conveyed India's warm wishes to the people of Seychelles on this historic occasion. Mr. Modi arrived in Seychelles on Saturday at the invitation of the President of Seychelles, Patrick Hermini, External Affairs Minister S. Jaishankar, National Security Advisor Ajit Doval, and Prime Minister of Mauritius Naveen Chandra Ramgulam were also present at the event. According to the Ministry of External Affairs, India and Seychelles share a long-standing partnership rooted in shared historical, cultural, and people-to-people ties. As a key maritime neighbor in the Indian Ocean region, Seychelles holds a special place in India's vision Mahasagar, mutual and holistic advancement for security and growth across regions, and a commitment to the Global South. The MEA said Mr. Modi's visit will reaffirm the strong and enduring friendship between India and Seychelles and reinforce the shared commitment of both countries to enhance the bilateral relationship across all sectors. Ashish Abraham, Akashwani News, Delhi.

आकाशवाणी जबलपुर से आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत कार्यक्रम में अगला गीत हम आपके लिए लेकर आए हैं फिल्म फिर मिलेंगे से। सोनू निगम की आवाज, निखिल विजय का संगीत और समीर के बोल।

कार्यक्रम का अगला गीत हम आपके लिए लेकर आए हैं फिल्म प्लान से, अलीशा चनोय और आनंद राज आनंद की आवाज, बोल आनंद राज आनंद के और संगीत देव कोहली का।

श्रोताओं, आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत और इस कार्यक्रम में अगला गीत हम आपके लिए लेकर आए हैं फिल्म फिर हेरा फेरी से। कुणाल गांजावाला, सुनिधि चौहान की आवाज़, हिमेश रेशमिया का संगीत और समीर के बोल।

श्रोताओं, इसी गीत के साथ फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के जबलपुर केंद्र से बोल रहे हैं। कुछ ही देर में आप सुनेंगे समाचार।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सेशेल्स का सर्वोच्च सम्मान गार्डियन ऑफ द ब्लू होराइजन प्रदान किया गया। सेशेल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हारमानी ने पर्यावरण संरक्षण, सतत विकास और ब्लू इकोनॉमी को बढ़ावा देने के लिए उन्हें यह सम्मान प्रदान किया। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को साकार करने में गांवों की केंद्रीय भूमिका का उल्लेख किया है। नई दिल्ली में कल राष्ट्रीय ग्रामीण विकास सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री चौहान ने ये बात कही। केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कल गुना में दिशा समिति की बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में सिंचाई, स्वास्थ्य, शिक्षा, सड़क और पेयजल से जुड़ी विकास योजनाओं की समीक्षा की गई। राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने कल खरगोन के झिरनिया में आयोजित सिकल सेल शिविर कार्यक्रम में शिरकत की। उन्होंने कार्यक्रम में ब्लड बैंक का शुभारंभ किया और 2 एम्बुलेंस तथा 1 शव वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कल बैतूल जिले के कुकरू को बड़े पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने कुकरू में योगाभ्यास किया और पल्स पोलियो अभियान का शुभारंभ भी किया। मौसम विभाग के अनुसार उज्जैन, देवास, छिंदवाड़ा, पांडुना, मंडला और बालाघाट में आज भारी बारिश का अलर्ट है। यहां 24 घंटे में 4 इंच या इससे ज्यादा बारिश हो सकती है। और ICC महिला 2020 विश्व कप में कल ऑस्ट्रेलिया ने लॉर्ड्स में ग्रुप ए के अपने अंतिम मैच में भारत को 6 विकेट से हरा दिया। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
1: श्रोताओं, हम आकाशवाणी के जबलपुर केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 9 बजने वाले हैं। लीजिए अब प्रस्तुत है लोक रसधार। इसमें सबसे पहले सुनिए दिनेश सिंह के गाए ये लोकगीत।

श्रोताओं, आकाशवाणी जबलपुर से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम लोक रसधार। इस कार्यक्रम में अगला लोकगीत हम आपके लिए लाए हैं संगीता उपाध्याय की आवाज़ में।

श्रोताओं, इसी गीत के साथ लोक संगीत का कार्यक्रम लोक रसधार अब यहीं समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के जबलपुर केंद्र से बोल रहे हैं। कुछ ही क्षणों में आप सुनेंगे उर्दू कार्यक्रम आईना हमारे भोपाल केंद्र से।

आशा भारती के गाए बुंदेली लोकगीत अभी आप सुन रहे थे लोक संगीत कार्यक्रम के अंतर्गत। ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। पेशे खिदमत है उर्दू प्रोग्राम आईना।

आकाशवाणी भोपाल की जानिब से हफ्तावार उर्दू प्रोग्राम आईना को लेकर हाजिर हूँ मैं आपका दोस्त जावेद। इस प्रोग्राम में आप सभी का खैर मकदम करता हूँ। सामईन, आज की हमारी बातचीत का मौजू है अदब और इंसानी हकूक़ के ताल्लुक से। अज़ीज़ दोस्तों, अदब और इंसानी हकूक़ के दरमियान गहरा और तारीख़ी ताल्लुक़ है। अदब न सिर्फ माशरे की अक्कासी करता है बल्कि बुनियादी इंसानी हकूक़, आज़ादी और मसावात का सबसे बड़ा अलमबरदार भी रहा है। आज़ादी इजहार और शऊर की बेदारी पैदा करने के लिए अदब इंसानों को अपने हकूक़ के लिए आवाज़ उठाने और जुल्म के ख़िलाफ़ खड़ा होने की तहरीक देता है। मज़लूमीन की तर्जुमानी के लिए अदीब और शायर अपनी तहरीकों के ज़रिए माशरे के पसमानदा तबकों, अकलियतों और मजबूर अफराद के मसाइल को दुनिया के सामने उजागर करने का बेहतरीन हुनर रखते हैं। इंसानी इकदार का तहफ़ और हकूक़ के लिए बेहतरीन अदब हमेशा इंसान दोस्ती, रवादारी और बाहमी एहतराम का दर्स देता आया है, जो किसी भी माशरे में अमन के क़याम के लिए नागुज़ेर है। अगर हम तारीख़ी जद्दोजहद का मुताला करें तो दुनिया भर की अदबी तहरीकों जैसे तहरीक आज़ादी या तहरीक निस्वा से इंसानी हकूक़ की वकालत में कलीदी किरदार अदा किया है। मुख्तलिफ मज़ाहिब और फ़लसफ़ों ने भी अदब और इंसानी हकूक़ की कदरों पर ख़ास ज़ोर दिया है, जहाँ एक दूसरे के हकूक़ की अदायगी और एहतराम को इंसानियत की मेराज करार दिया गया है। दोस्तों, उर्दू ज़बान व अदब में बहुत ज़्यादा वसअत है कि वो किसी भी दूसरी ज़बान के अल्फाज को न सिर्फ अपने अंदर समो लेती है बल्कि इसमें इस कदर लचक है कि हर हाल में इलाके में ख़ुद को ढाल लेती है। इसी ज़बान व अदब ने हिंदुस्तान को मुत्तहिद करने और अमन कायम रखने में भी बेहद अहम किरदार अदा किया है। उर्दू अदब का दायरा बहुत वसी और जामे है। इसमें ज़िंदगी के मसाइल के अलावा इंसानी हकूक़ का बेशबहा सरमाया मौजूद है। इसने हमेशा इंसानी आला कदरों को सराहा है।

0: दोस्तों, अभी आप गुलूकार शंकर दास गुप्ता की आवाज़ में गज़ल समात फरमा रहे थे, जिसमें कलाम था जिगर मुरादाबादी का। सामईन, शायरी अपने दौर के हालात, मसाइल और तहजीबी इकदार का मुशाहिदा करने के साथ साथ इंसान की दबी हुई ख्वाहिशात, उदासी, खुशी और मोहब्बत को अल्फाज का रूप देती है। शायरी बीमार रूह की दवा है, क्योंकि ये दिल का बोझ हल्का करती है। दोस्तों, इसी शायरी के ताल्लुक से हमने आपके लिए एक कलाम का एहतिमाम किया है, जिसमें शायर हैं जलाल मयकश। तो आइए सुनते हैं उनका कलाम उन्हीं की जुबानी। समात फरमाइए।
1: दुश्मन

है दुश्मनों से कह दीजिए। हजरत एक दो तीन चार शेर और एक गजल के मुलाहजा फरमाए, मतलब पढ़ता हूं कि तरकश में जितने तीर थे सब आजमा लिए, तरकश में जितने तीर थे सब आजमा लिए,

पत्थर उठा लिए। और शेर पढ़ता हूँ के जब मांगने से अपना हमें हक नहीं मिला।

थे सब आजम और हजरत ये शेर भी मुलादा फरमाए था, मुलादा करें के बच्चे मेरी गरीबी का रखते हैं यूं भरम, बच्चे

कुले रात के बसी थे खालिए, दुनिया की आखरत में, दुनिया की आखरत

0: अभी आप सुन रहे थे उर्दू प्रोग्राम आईना, ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

0: ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। लीजिए अब सुनिए अशोकनगर जिले की चिट्ठी, आलेख नीरज कुमार शुक्ल का, वाचन स्वर अभिषेक कटियार का।
1: आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है अशोकनगर जिले की चिट्ठी, आलेख नीरज कुमार शुक्ल का है, वाचन स्वर है अभिषेक कटियार का। अशोकनगर जिले की चिट्ठी में सबसे पहले बात प्रशासन और सहकारिता की। जिले में बीते दिनों राज्य सहकारी बैंक मर्यादित भोपाल के नवनियुक्त प्रशासक महेंद्र सिंह यादव ने मुंगावली तहसील का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने सहकारिता, ऊर्जा संरक्षण, सदस्यता महाअभियान और हरित सहकार अभियान की प्रगति की विस्तार से समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन और तय समय पर लक्ष्य पूरे करने के निर्देश दिए। वहीं दूसरी तरफ आम लोगों को बेहतर बिजली सेवाएं देने के लिए मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने विभिन्न स्थानों पर बिजली समाधान शिविर लगाए। इन शिविरों में उपभोक्ताओं की बिजली से जुड़ी शिकायतों का मौके पर ही निराकरण किया गया। पर्यावरण संरक्षण और जल संवर्धन को लेकर भी जिले में लगातार गतिविधियां चल रही हैं। गंगा दशहरा के अवसर पर जलगंगा संवर्धन अभियान के तहत कलेक्टर साकेत मालवी ने अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ तुलसी सरोवर तालाब में श्रमदान कर साफ सफाई की। वहीं मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद ने नवांकुर संस्थाओं के माध्यम से बावड़ी उत्सव का आयोजन किया। अब बात करते हैं जिले की ऐतिहासिक धरोहरों की। अशोकनगर की ऐतिहासिक और पुरातात्विक विरासत को पर्यटन से जोड़ने के लिए जिला पुरातत्व और पर्यटन तथा संस्कृति परिषद की ओर से पर्यटन मित्र तैयार किए जा रहे हैं। इसी क्रम में पर्यटन मित्रों के लिए 12 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन बीते दिनों किया गया। विश्वख्यात चंदेरी साड़ी की विश्वसनीयता बनाए रखने के लिए अब प्रत्येक चंदेरी साड़ी पर GI टैग लगाया जाएगा। कलेक्टर ने बताया कि चंदेरी साड़ियों के संरक्षण और बेहतर विपणन के लिए हैंडलूम पार्क के नाम से एक समर्पित वेबसाइट तैयार की जाएगी और MPIDC को इस कार्य के लिए नोडल एजेंसी बनाया गया है। अब बात करते हैं खेती किसानी की। जिले में खरीफ फसलों की बुआई शुरू हो चुकी है। कृषि उपसंचालक अमित भदौरिया ने बताया कि इस वर्ष 3,08,000 हेक्टेयर क्षेत्र में खरीफ की फसल बोने का लक्ष्य रखा गया है, जिसमें सबसे अधिक 1,78,000 हेक्टेयर में मक्का, 65,000 हेक्टेयर में सोयाबीन और 9,000 हेक्टेयर में मूंग तथा 2,500 हेक्टेयर में उड़द की बुआई की जाएगी। समाज को नशा मुक्त बनाने की दिशा में भी जिले में विशेष अभियान चलाया गया। बीते दिनों नशा मुक्त भारत सप्ताह का आयोजन किया गया। स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा देने के लिए जिले में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस भी उत्साह के साथ मनाया गया। अशोकनगर में आयोजित जिला स्तरीय कार्यक्रम में मुंगावली विधायक ब्रजेंद्र सिंह यादव मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। जिले में संचालित सामाजिक सुरक्षा योजनाओं की बात करें तो इस योजना के तहत जिले के हजारों हितग्राहियों को सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना से लाभान्वित किया गया है। बीते दिनों मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने जिले के हितग्राहियों के खातों में कुल 1,49,22,000 रुपए की पेंशन राशि अंतरित की। अब बात करते हैं कानून व्यवस्था से जुड़ी खबर की। श्रद्धेय जैन मुनि सुधा सागर जी महाराज के संबंध में व्हाट्सएप पर आपत्तिजनक टिप्पणी प्रसारित किए जाने के मामले में जैन समाज ने ज्ञापन सौंपा था। समाज की सूचना पर थाना कोतवाली अशोकनगर में अपराध दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। युवाओं के लिए भी एक अच्छी खबर है। खेल और युवा कल्याण विभाग की ओर से जिले में खेलो इंडिया स्मॉल सेंटर योजना के तहत एथलेटिक्स कोच की नियुक्ति की गई है। ये कोच एथलेटिक्स में रुचि रखने वाले युवाओं के साथ साथ आर्मी और MP पुलिस जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं की शारीरिक तैयारी करने वाले युवक युवतियों को निःशुल्क प्रशिक्षण देंगे। सुशासन और प्रशासनिक व्यवस्था को लेकर भी समीक्षा की गई है। मुख्य सचिव अनुराग जैन ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विभागों की समीक्षा बैठक ली। उन्होंने अधिकारियों की जमीन के सीमांकन और बंटवारे के लंबित मामलों का समय पर निराकरण करने, CM हेल्पलाइन की शिकायतों का समाधान देने और कानून व्यवस्था को और मजबूत

कार्यक्रम के अंतर्गत जन्मजात हृदय रोग से पीड़ित 6 बच्चों का उपचार कराया जाएगा। इन बच्चों को सर्जरी के लिए मुंबई के प्रसिद्ध नारायणा हॉस्पिटल के हेल्थ SRCC भेजा गया है। यहां विशेषज्ञ चिकित्सकों की देखरेख में इन बच्चों का इलाज किया जाएगा। और अंत में बात जागरूकता अभियान की। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने न्याय सबके लिए अभियान के तहत ग्राम सीहोर में बीते दिनों आदिवासी समुदाय के बीच विधिक साक्षरता और जागरूकता शिविर का आयोजन किया। इस शिविर में वन अधिकार अधिनियम 2006, मनरेगा, सामाजिक सुरक्षा पेंशन, छात्रवृत्ति योजना, घरेलू हिंसा से संरक्षण अधिनियम और निःशुल्क विधिक सहायता प्राप्त करने की प्रक्रिया की विस्तार से जानकारी दी गई। अशोकनगर जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।

0: अभी आप सुन रहे थे अशोकनगर जिले की चिट्ठी।
1: हम आकाशवाणी के जबलपुर केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, सुबह के 10:05 हुए हैं। लीजिए, अब प्रस्तुत है हमारी एक विशेष प्रस्तुति, वंदे मातरम गौरव गान की 1.5 सदी।

आजादी किसे अच्छी नहीं लगती, भले ही पिंजरा सोने का ही क्यों ना हो। आजाद होकर परिंदा उसमें कभी लौट कर नहीं आता। आज पिंजरा टूट चुका है और आजाद है सोने की चिड़िया। अपने पूर्ण वैभव के साथ आजादी के आकाश में परवाज भरते हुए आज हम खुद अपने भाग्य विधाता हैं। लेकिन ये आजादी के बाद की तस्वीर है। उससे पहले की तस्वीर इतनी खुशरंग नहीं थी। देश के आकाश पर छाए थे परतंत्रता के बादल। चारों ओर थीं कठिन परिस्थितियां, जिनसे जूझकर हमारे वीर सेनानियों ने आजादी हासिल की। परतंत्रता के बादल छटे और देश में एक नए सूरज का उदय हुआ, जिसकी किरणें अपने साथ सुनहरे भविष्य का संदेश लेकर आईं, जिनसे रोशन हुई समृद्धि और विकास की एक नई इबारत। हम अपनी मातृभूमि की कल्पना ममतामयी माँ के रूप में करते हैं, जिसके प्रति आदर और कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए बंकिम चंद्र चटर्जी ने 7 नवंबर 1875 को रचा था गीत वंदे मातरम, जिसका अर्थ है माँ मैं तुम्हें प्रणाम करता हूँ।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे वंदे मातरम गौरव गान की डेढ़ सदी पर हमारी ये खास प्रस्तुति। कुछ देर में होंगे समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सम्मानीय अतिथि के रूप में सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस समारोह में शामिल हुए। मॉरिशस के प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन चंद्र रामगुलाम के साथ भी चर्चा की। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल के नेतृत्व में उच्च स्तरीय कारोबारी प्रतिनिधिमंडल ग्रीस के एथेंस में व्यापार, निवेश और रणनीतिक आर्थिक सहयोग पर चर्चा करेगा। अमेरिका और ईरान जवाबी सैन्य कार्रवाई रोकने और कल खतर की राजधानी दोहा में फिर से वार्ता शुरू करने पर सहमत हुए। वेनेजुएला में दो शक्तिशाली भूकंप से मृतकों की संख्या 1450 हुई। और भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने इंग्लैंड को पेनल्टी शूटआउट में 3-2 से हराकर एफआईएच प्रो लीग में जीत के साथ अपना अभियान संपन्न किया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेशल्स की स्वतंत्रता की 50वीं वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित राष्ट्रीय दिवस समारोह में शामिल हुए। श्री मोदी ने समारोह में सम्मानित अतिथि के रूप में भाग लिया और ये सम्मान पाने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बने। हमारे संवाददाता ने बताया है कि परेड में नौसेना और थल सेना की भारतीय मार्चिंग टुकड़ी ने हिस्सा लिया।
1: परेड में भारतीय नौसेना का बैंड भी शामिल था। ये भारत और सेशल्स की करीबी और विशेष साझेदारी को दर्शाता है। विशेष पहल के अंतर्गत युद्धपोत आईएनएस तरकश और सर्वेक्षण पोत आईएनएस इक्षक को पोर्ट विक्टोरिया में तैनात किया गया था। प्रधानमंत्री ने इस ऐतिहासिक अवसर पर भारत की ओर से सेशल्स के लोगों को शुभकामनाएं दी। श्री मोदी राष्ट्रपति पैट्रिक हार्मिनी के निमंत्रण पर सेशल्स की 3 दिन की यात्रा पर हैं। भारत और सेशल्स के बीच लंबे समय से साझेदारी है, जो साझा ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और लोगों के आपसी संबंधों पर आधारित है। हिंद महासागर क्षेत्र में महत्वपूर्ण समुद्री पड़ोसी होने के नाते सेशल्स भारत के महासागर विजन और ग्लोबल साउथ के लिए प्रतिबद्धता में विशेष स्थान रखता है। यह यात्रा भारत और सेशल्स के बीच करीबी और स्थायी दोस्ती को और मजबूत करेगी तथा सभी क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंधों को बेहतर बनाने के लिए दोनों देशों की साझा प्रतिबद्धता की पुष्टि भी करेगी। विश्व दर्पण के लिए आनंद पाठक।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल सेशल्स में मॉरिशस के प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन चंद्र रामगुलाम से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने भारत और मॉरिशस के बीच सहयोग पर चर्चा की। उन्होंने भारत से मिले विशेष आर्थिक पैकेज को लागू करने में प्रगति की भी समीक्षा की। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत मॉरिशस के विकास और तरक्की को महत्व देता है। उन्होंने कहा कि मॉरिशस को स्वास्थ्य, संपर्क, सतत विकास और समुद्री संसाधनों के प्रबंधन में योगदान देना जारी रहेगा। दोनों प्रधानमंत्रियों ने भारत के विजन महासागर और देशों को प्राथमिकता देने की नीति के तहत भारत मॉरिशस मजबूत रणनीतिक साझेदारी के महत्व और ग्लोबल साउथ के लिए साझा प्रतिबद्धता पर सहमति प्रकट की। प्रधानमंत्री मोदी को पर्यावरण संरक्षण और टिकाऊ विकास में नेतृत्व के लिए सेशल्स के सर्वोच्च सम्मान गार्जियन ऑफ द ब्लू होराइजन से सम्मानित किया गया।
2: सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हार्मिनी से मिले इस सम्मान से टिकाऊ विकास के लिए प्रधानमंत्री मोदी के लंबे समय से जारी प्रयास और उनके ग्रीन विजन को मान्यता मिली है। यह सम्मान टिकाऊ विकास को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री को मिले ऐसे ही कई सम्मानों की कड़ी में एक और उपलब्धि है। इनमें खाद्य और कृषि संगठन का एग्रीकोला मेडल, सियोल शांति पुरस्कार और संयुक्त राष्ट्र का चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार शामिल है। इस सम्मान से पता चलता है कि सेशल्स हिंद महासागर क्षेत्र में क्षमता निर्माण, पर्यावरण संबंधी कार्यों, टिकाऊ विकास के प्रयासों और साझा प्राथमिकताओं को आगे बढ़ाने में भारत की बढ़ती भूमिका को भरोसेमंद साझेदार के तौर पर अत्यधिक महत्व देता है। विश्व दर्पण के लिए समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
0: इससे पहले विक्टोरिया में सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हार्मिनी के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता के बाद

0: एक संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में श्री मोदी ने कहा कि भारत और सेशल्स की रक्षा और सुरक्षा एक दूसरे से जुड़ी है।
1: मेरी सेशल की यात्रा का संदेश स्पष्ट है, भारत ऐसे हिंद महासागर की कल्पना करता है जहां समुद्री सुरक्षा के साथ आर्थिक समृद्धि भी बढ़े, जहां हमारी साझेदारी आकार नहीं आपसी सम्मान और विश्वास पर आधारित हो, और जहां हम हर देश के पास पास नहीं साथ साथ चलें।
0: विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल के नेतृत्व में उच्च स्तरीय कारोबारी प्रतिनिधिमंडल ग्रीस के एथेंस में व्यापार, निवेश और रणनीतिक आर्थिक सहयोग पर चर्चा करेगा। श्री गोयल ब्रिटेन यात्रा पूरी करने के बाद ग्रीस की राजधानी एथेंस में पहुंचे। ये प्रतिनिधिमंडल द एथेंस स्टार्टअप बिजनेस इंक्यूबेटर में प्रस्तुति और स्टार्टअप गतिविधियों में भाग लेगा। इस दौरान एथेंस चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में भारतीय और ग्रीक उद्योग जगत के नेताओं के साथ बुनियादी ढांचे, डिजिटलीकरण, और खाद्य और कृषि जैसे विषयों पर चर्चा होगी। गुजरात में चौथा वाइब्रेंट गुजरात क्षेत्रीय सम्मेलन आज से वडोदरा स्थित GSFC विश्वविद्यालय में शुरू हो रहा है। इस सम्मेलन का उद्देश्य गुजरात के मध्य क्षेत्र में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देना है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि सम्मेलन में केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह, मनोहर लाल खट्टर और मनसुख मांडविया तथा राज्य सरकार के कई मंत्री और विभिन्न देशों के राजनयिक हिस्सा ले रहे हैं।
2: 150 से अधिक विशेषज्ञ और जापान, सिंगापुर, UAE, यूक्रेन और रवांडा जैसे भागीदार देशों के प्रतिनिधि मध्य गुजरात के आर्थिक विकास पर मंथन करेंगे। इसके साथ ही सम्मेलन में आयोजित भव्य प्रदर्शनी के 150 से अधिक स्टॉल, स्थानीय MSME, उन्नत तकनीकी स्टार्टअप और अमूल एवं GFSC जैसे बड़े उद्यमों की क्षमता और नवाचार को प्रदर्शित करेंगे। अपर्णा खूट, आकाशवाणी समाचार, वडोदरा।
0: अमेरिका और ईरान जवाबी सैन्य कार्रवाई रोकने और कल कतर की राजधानी दोहा में फिर से वार्ता शुरू करने पर सहमत हो गए हैं। इस वार्ता का उद्देश्य रणनीतिक होर्मुज जलडमरू मध्य से संबंधित विवाद का समाधान करना है।
3: पिछले कुछ दिनों में दोनों देशों के बीच सैन्य कार्रवाई तेज हो गई थी। अमेरिका ने ईरान पर युद्ध विराम का उल्लंघन करने का आरोप लगाते हुए उसके सैन्य ठिकानों पर हमला किया था। इसके जवाब में ईरान ने बहरीन और कुवैत में अमेरिकी सैन्य अड्डों पर बैलिस्टिक मिसाइलें और ड्रोन से हमले किए। दोनों देश फिलहाल सैन्य कार्रवाई रोकने पर सहमत हुए हैं ताकि हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य से जहाजों की आवाजाही सामान्य बनी रहे। पहले ये वार्ता स्विट्जरलैंड में ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर होनी थी, लेकिन हालात बदलने के बाद इसका स्थान और विषय दोनों बदल दिया गया है। विश्व दर्पण के लिए समाचार कक्ष से अमीशा।
0: वेनेजुएला में बुधवार को दो जबरदस्त भूकंपों में मृतकों की संख्या बढ़कर 1450 हो गई है। नेशनल असेंबली के प्रेसिडेंट जॉर्ज रोड्रिग्स ने बताया कि 7.2 और 7.5 तीव्रता वाले दो जबरदस्त भूकंपों के बाद देश में हल्के से मध्यम स्तर के 430 झटके महसूस किए गए।
4: इस आपदा में 3,238 लोग घायल हुए हैं और 3,142 परिवार प्रभावित हैं। हजारों लोग अभी भी दिन रात खोज और बचाव कार्य में लगे हैं। अधिकारी राहत कार्यों में तालमेल बिठाने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि बचाव दल तटीय और पहाड़ी इलाकों में प्रभावित समुदाय तक पहुंचने के लिए लगातार काम कर रहा है। इस बीच वेनेजुएला फाउंडेशन फॉर सिस्मोलॉजिकल रिसर्च ने बताया कि शनिवार को देश के मध्य क्षेत्र में 4.1 तीव्रता का भूकंप महसूस किया गया, जिससे इस हफ्ते की शुरुआत में आए दो विनाशकारी भूकंप के कारण पहले से ही डरी आबादी और अधिक परेशान हो गई। विश्व दर्पण समाचार के लिए शक्ति सिंह।
0: खेलों में भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने लंदन में FIH प्रो लीग के रिवर्स मैच में इंग्लैंड को पेनल्टी शूटआउट में 3-2 से हरा दिया। निर्धारित समय तक दोनों टीम कोई गोल नहीं कर सकी थी। ये हॉकी विश्व कप से पहले FIH हॉकी प्रो लीग में भारतीय टीम का आखिरी मैच था। इस जीत के बाद विश्व कप से पहले टीम का आत्मविश्वास बढ़ा है। फीफा विश्व कप के नॉकआउट चरण में कनाडा ने दक्षिण अफ्रीका को 1-0 से हरा दिया। अमेरिका के लॉस एंजलिस में इस मैच में कनाडा के स्टीफन यूस्टाकियो ने एकमात्र गोल किया। ICC महिला 2020 क्रिकेट विश्व कप में ऑस्ट्रेलिया ने ग्रुप ए के अपने आखिरी मैच में भारत को 6 विकेट से हरा दिया है। लॉर्ड्स में पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत ने 4 विकेट पर 170 रन बनाए। वहीं ऑस्ट्रेलिया ने 19 ओवर में 4 विकेट पर 172 रन बनाकर मैच जीत लिया। ऑलराउंड प्रदर्शन के लिए एलिस पेरी को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। आयरलैंड ने दूसरे और अंतिम 2020 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में भारत को 1 रन से हरा दिया। बेलफास्ट में मेजबान आयरलैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 8 विकेट पर 154 रन बनाए। भारतीय पुरुष टीम 20 ओवर में 9 विकेट पर 153 रन ही बना सकी। आयरलैंड के जय मंदुड़ा को प्लेयर ऑफ द मैच और प्लेयर ऑफ द सीरीज चुना गया। आयरलैंड ने दो मैचों की श्रृंखला 2-0 से जीती। आयरलैंड ने पहला मैच 34 रन से जीता था। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सम्मानीय अतिथि के रूप में सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस समारोह में शामिल हुए। मॉरिशस के प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन चंद्र रामगुलाम के साथ भी चर्चा की। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल के नेतृत्व में उच्च स्तरीय कारोबारी प्रतिनिधिमंडल ग्रीस के एथेंस में व्यापार, निवेश और रणनीतिक आर्थिक सहयोग पर चर्चा करेगा। अमेरिका और ईरान जवाबी सैन्य कार्रवाई रोकने और कल कतर की राजधानी दोहा में फिर से वार्ता शुरू करने पर सहमत हुए। वेनेजुएला में दो शक्तिशाली भूकंप से मृतकों की संख्या 1450 हुई। और भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने इंग्लैंड को पेनल्टी शूटआउट में 3-2 से हराकर एफआईएच प्रो लीग में जीत के साथ अपना अभियान संपन्न किया। इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
5: हम आकाशवाणी के जबलपुर केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, लीजिए अब प्रस्तुत है कार्यक्रम सारंगा, जहां पर आपके भेजे हुए पत्रों के आधार पर आपकी फरमाइशी फिल्मी गीत हम आपको सुनाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस कार्यक्रम को। और सबसे पहले हम शामिल कर रहे हैं जय बजरंग रेडियो श्रोता संघ बस स्टैंड बंडा बेलाई के श्रोताओं की पसंद। लक्ष्मण रैकवार, बेनीता रैकवार, लल्लू, दीपेश, वैशाली, वैष्णवी, आप सभी श्रोतागण सुनना चाहते हैं फिल्म हेरा फेरी का ये गीत, जिसे गाया है हिमेश रेशमिया ने, संगीत भी हिमेश रेशमिया का। लीजिए आप सबकी पसंद पर ये गीत।

0: कार्यक्रम सारंगा आप सुन रहे हैं आकाशवाणी जबलपुर से। श्रोताओं, अगला गीत हम आपके लिए लेकर आए हैं फिल्म कयामत से। इस गीत को सुनने के ख्वाहिशमंद हैं घंटाघर चौक खंडवा से संजय पंचोलिया, प्रियंका, गुनगुन, संप्रीत, हरमेंद्र और सन्मति। श्रोताओं, आप सभी के पसंद पे लीजिए प्रस्तुत है ये गीत, जिसके संगीतकार हैं नदीम श्रवण, गीतकार हैं समीर और इस गीत को गाया है अभिजीत और कविता कृष्णमूर्ति ने।
1: बहुत हसीन है, इसे अपने पैरों में मत डालिएगा, लगता है

कार्यक्रम सारंगा आप सुन रहे हैं आकाशवाणी जबलपुर से, जहां पर आपके फरमाइशी खतों के माध्यम से हम आपको आपके पसंदीदा गीत सुना रहे हैं। और इसी सिलसिले में अगला गीत कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाज़ों में, नदीम श्रवण के संगीत में, आनंद बख्शी के बोल और फिल्म का नाम परदेस। गाने को सुनने के ख्वाहिशमंद भटिंडा रोड डब वाली से राजेंद्र, अंजू, मोहित, आप सभी की पसंद पर ये गीत।

कार्यक्रम सारंगा आप सुन रहे हैं आकाशवाणी जबलपुर से, जहां पर श्रोताओं आपके मनपसंद फरमाइशी गीत हम आपके पत्रों के आधार पर उनको आपके सामने पेश कर रहे हैं। और अगली पेशकश हमारे अगली जो फरमाइश है जो हमारे पास आई है वो है दिल्ली मोरी गेट से कन्हैया, रीता, शिल्पा और आकाश की। आप सभी श्रोता सुनना चाहते हैं पापा कहते हैं फिल्म का ये गीत, जिसे गाया है सोनू निगम ने और राजेश रोशन का इसमें संगीत है और जावेद अख्तर के बोल।

यह आकाशवाणी का जबलपुर केंद्र है। श्रोताओं, कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे। अगला गीत आपको सुनाते हैं सोनू निगम कविता कृष्णमूर्ति की आवाज में। संदीप चौटा का संगीत है और बोल नितिन रैकवार के। सुनने के ख्वाहिशमंद हैं आदर्श नगर मालोट से राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश शर्मा, मैंडी शर्मा, सौरभ शर्मा, शाइना शर्मा एवं निवाम शर्मा।

श्रोताओं, कार्यक्रम सारंगा में अगला गीत हम आपके लिए लाए हैं फिल्म पापा कहते हैं से। कुमार सानू ने इसे गाया है, जावेद अख्तर के बोल हैं और राजेश रोशन का संगीत है। सुनने के ख्वाहिशमंद हैं परी महल कासगंज उत्तर प्रदेश से, आबाद खान, नबील खान, आरफा, इल्मा, आफरीन, शमसुल, आप सभी श्रोताओं की पसंद पर। लीजिए सुनिए ये गीत।

श्रोताओं, कार्यक्रम सारंगा का अब अंतिम गीत आपको सुनाने की बारी। इसे सुनने के ख्वाहिशमंद हैं बेलाई जिला सागर से लक्ष्मण रैकवार, विनीता रैकवार, वैशाली वैष्णवी एवं ऋषि रैकवार। आप सभी सुनना चाहते हैं फिल्म फिर हेरा फेरी का ये गीत, जिसे गाया है हिमेश रेशमिया ने और संगीत निर्देशन भी हिमेश रेशमिया का।

0: पेश की जा रही है इस घंटे की खास खबरें।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में इस वर्ष के दूसरे रक्षा अलंकरण समारोह में वीरता पुरस्कार प्रदान करेंगी। इस अवसर पर राष्ट्रपति सशस्त्र बलों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेशों के पुलिसकर्मियों को वीरता पुरस्कार प्रदान करेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सेशेल्स यात्रा के दौरान भारत और सेशेल्स ने स्वास्थ्य, शिक्षा, अक्षय ऊर्जा, समुद्री सुरक्षा और रक्षा समेत कई क्षेत्रों में सहयोग को मजबूत करने के लिए कई समझौतों पर हस्ताक्षर किए। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव आज नीमच में 500 मेगावाट और शाजापुर में 450 मेगावाट के सौर पार्क का उद्घाटन करेंगे। इस मौके पर मुरैना की 440 मेगावाट सोलर प्लस स्टोरेज परियोजना का पावर परचेज एग्रीमेंट भी किया जाएगा। प्रदेश में 19 मार्च से शुरू हुए जलगंगा संवर्धन अभियान का कल समापन होगा। इस अभियान के दौरान जल संरक्षण, भूजल संवर्धन और नदी पुनर्जीवन से जुड़े 3.5 लाख से ज्यादा कार्य पूरे किए गए हैं। ग्वालियर जिले में पल्स पोलियो अभियान के तहत बनाए गए 2356 बूथों पर कल जन्म से 5 वर्ष तक के सभी बच्चों को पल्स पोलियो की 2 बूंद पिलाकर पोलियो रक्षा कवच पहनाया गया। भोपाल स्थित मध्य प्रदेश जनजाति संग्रहालय में शलाका जनजाति चित्र प्रदर्शनी चल रही है। गोंड चित्रकार मनीषा ध्रुवे के चित्र प्रदर्शित किए जा रहे हैं। ये प्रदर्शनी 30 जून तक चलेगी। और प्रदेश में मानसून की रफ्तार फिलहाल थमी हुई है। इस बीच मौसम विभाग ने आज 6 जिलों में भारी बारिश और कई अन्य जिलों में तेज बारिश का अलर्ट जारी किया है। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।

0: ये आकाशवाणी भोपाल है। हमारे अगले प्रसारण की कृपया प्रतीक्षा कीजिए। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए अब सुनिए फोन इन कार्यक्रम, फोन करें गीत सुने।
1: सभी सुनने वालों को शिवम का नमस्कार। उम्मीद, जी हाँ मित्रों, हमारी ज़िंदगी की समूची बुनियाद इसी एक शब्द पर टिकी हुई है, उम्मीद। जैसे रिश्तों की डोर हो, संबंधों की गहराई हो, प्रकृति का संतुलन हो, सब कुछ किसी न किसी रूप में इसी पर निर्भर है। और ऐसा ही एक शब्द है इंतज़ार। उम्मीद और इंतज़ार का दामन थामे हम एक बार फिर मनोहार लगा रहे हैं बादलों से कि वो भी बरसें। क्यों हमें इतना तरसा रहे हैं? हमारे देश के अधिकांश हिस्सों में अभी बारिश ने दस्तक नहीं दी है। इस इंतज़ार को और कितने दिन, इस इंतज़ार की घड़ियां और कितनी लंबी होगी? हम उम्मीद का दामन थाम कर ये तो सोच ही सकते हैं कि ये इंतज़ार जल्द से जल्द ख़त्म होगा और हम बहुत जल्द उस बारिश में भीगते नज़र आएंगे जिसका हम सभी को बड़ी उम्मीदों के साथ बेसब्री से इंतज़ार है। फ़िलहाल हम इंतज़ार कर रहे हैं हमारे आज के पहले श्रोता के कॉल का।
2: हेलो,
1: हाँ जी नमस्कार।
2: नमस्कार
1: जी।
2: ये सर, मैं जबलपुर एमपी से आपका श्रोता अशोक सिंह बात कर रहा।
1: अशोक जी,
2: जी
1: जबलपुर से बोल रहे हैं
2: सर आप?
1: हम तो बहुत बढ़िया हैं और आपसे बातें करते हुए हमको बहुत अच्छा लग रहा है।
2: मैं भी अच्छा हो गया सर, आपसे बात हो रही, पहली बार आपसे बात हो रही, अच्छा लग रहा।
1: जी हाँ जी हाँ, बताइए अशोक जी, आपके शहर का मौसम कैसा है अभी?
2: मौसम तो धूप ही है सर, बहोरा अड़तीस चल रहा है, बारिश का कहीं नामो निशान नहीं आते, बादल बस।
1: अच्छा, सिर्फ बादल आ रहे हैं, बारिश नहीं हो रही है?
2: हाँ, ऐसे कहीं कहीं जो बस जाता है छोटा मोटा।
1: अपने देश का लगभग अधिकांश हिस्सों में लगभग यही स्थिति बनी हुई है।
2: जी सर, आए झमाझम बारिश, तो इसका इंतजार है।
1: हम सभी को उस खूबसूरत बारिश का इंतज़ार है जिसके ज़रिए हम अपनी इस गर्मी से निजात पाएंगे। जी बताइए, कौन सा गीत आज आपके लिए हम निकालें?
2: अब आ जाए तो पर्वत से काली घटा टकराई, चांदनी मूवी का है।
1: अच्छा जी,
2: आशा भोसले, बिपिन कृष्ण देवा की आवाज़।

0: नमस्कार
1: नमस्कार जी, आकाशवाणी भोपाल।
0: जी। हाँ, आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण इस समय आप सुन रहे हैं।
1: जी, मैं रमेश नायक ग्राम खेरोकला जनपद महोबा उत्तर प्रदेश से बोल रहा हूँ।
0: रमेश नायक जी,
1: जी, हाँ
0: कैसे हैं नायक साहब?
1: मैं बढ़िया हूँ जी। सर आप कौन बोल रहे हैं?
0: आज इस कार्यक्रम को लेकर हाजिर हुआ हूँ मैं, शिवम
1: शिवम। अच्छा, जी
0: जी।
1: अच्छा। और सुनाए, और क्या है समाचार?
0: हम तो बढ़िया हैं, आप बताएं आपके यहाँ क्या है, इन दिनों हालात कैसे हैं,
1: सर
0: मौसम?
1: आप तो गर्मियों के ही चल रहे सर, जो है
0: अच्छा
1: अभी तो
0: अच्छा
1: यहाँ
0: अच्छा
1: बारिश नहीं हुई है, जो है बहुत गर्मी पड़ रही।
0: तो अभी वहाँ पर बारिश की दस्तक नहीं हुई है?
1: नहीं अभी यहाँ एमपी में तो सुन रहे कि वहाँ हो चुकी है, इंदौर भोपाल तरफ कहीं।
0: नहीं, बारिश तो हमारे यहाँ पे भी आई है, मौसम में ठंडक आ चुकी है, उतनी गर्मी तो नहीं है,
1: हाँ,
0: लेकिन
1: यहाँ यूपी में नहीं बारिश हुई अभी, उत्तर प्रदेश में।
0: अच्छा जी। चलिए,
1: और
0: हम
1: सुना शिवम भाई, क्या है समाचार? बताओ यार दोस्त यार।
0: बहुत बढ़िया हैं। हम चाहते हैं कि हम ये प्रार्थना करते हैं कि बहुत जल्द आपके यहाँ पे भी उम्मीदों की बरसात
1: बहुत
0: हो।
1: बहुत शुक्रिया दोस्त यार।
0: जी।
1: और फार्मेसी प्रोग्राम चल रहा ना?
0: हाँ जी, आज हम आपके फ़ोन कॉल्स रिकॉर्ड कर रहे हैं, फ़ोन करें गीत सुने कार्यक्रम के लिए।
1: वेरी गुड वेरी गुड यार। तो एक
0: जी
1: गाना सुना देना दोस्त यार शिवम भाई।
0: हाँ जी, बताइए।
1: एक यार, एक अनमोल मोती फिल्म है जो है,
0: हाँ
1: सतपुड़ा
0: हाँ
1: पिक्चर है ये। हाँ,
0: जी
1: उसमें ऐसा भोसले ने एक गीत गाया कि मोतियों की सेज बिछाई हुई है, सेज
0: ये मोतियों की सेज बिछाई हुई।
1: बिछाई हुई है,
0: अच्छा जी।
1: दिल की दुनिया सजाई हुई है, आजा आजा लेके बारात आजा। अभी शादियों का दौर चल रहा है, 11-12 जुलाई तक शादियां हैं अभी।
0: हाँ, इस फरमाइशी गीत को हम ज़रूर पेश करेंगे।
1: बिल्कुल बिल्कुल दोस्त यार, बड़ा अच्छा लगा से हम भाई यार तुमसे बात करके।
0: चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।

0: नमस्ते
1: सर नमस्ते। सिवनी
0: जी।
1: से बात कर रहा हूँ, राहुल धुर्वे,
0: कौन सी वाली सिवनी?
1: जिला सिवनी है मध्य प्रदेश।
0: अच्छा जी, ये छिंदवाड़ा के नज़दीक जो पड़ता है वो?
1: हाँ, छिंदवाड़ा के
0: अच्छा
1: नजदीक
0: अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा
1: 20 किलोमीटर दूर है मेरा गांव यहाँ से, जहाँ पे मैं रहता हूँ।
0: अच्छा क्या करते हैं आप?
1: सर मैं वीडियो कॉन DTH के ऊपर जॉब करता हूँ।
0: अच्छा जी। और घर परिवार में कौन कौन है?
1: हाँ सभी है, मम्मी पापा। सर
0: तो रेडियो का शौक आपको कहाँ से लगा, ये बता सकते हैं?
1: मैं अभी लगभग भोपाल को 1 साल से सुन रहा हूँ सर, मैं तो ज़्यादा, मैं बालाघाट से जुड़ा हुआ हूँ।
0: हाँ
1: अभी भोपाल में मुझे सबसे ज़्यादा जो प्रिय है मेरा, जो प्रेम
0: जी
1: करेगी इसके लिए, ये मुझे लगता है सबसे फेवरेट है। और आप पूरे 7ों दिन चलाते हैं, ये बहुत बड़ी बात है सर। ये मेरे को
0: हाँ
1: सबसे, जितने आकाशवाणी में लगभग मैं सुनता हूँ,
0: जी
1: तो ये जो भोपाल है इसमें 7ों दिन जो चलाते हैं, ये बहुत जबरदस्त लगता है मुझे। जो कॉलर हमारे जुड़ते हैं अलग अलग गांव से, शहर से, ये बहुत अच्छा लगता है।
0: जी। इस कार्यक्रम की सबसे बड़ी खासियत ये है कि अलग अलग शहरों के, अलग अलग हिस्सों के, देश के हिस्सों से जब फ़ोन आते हैं तो हमारे नए नए श्रोता या पुराने श्रोता तरह तरह की बातें करते हैं। गीत तो आप किसी भी कार्यक्रम में सुन सकते हैं। इस
1: हाँ
0: कार्यक्रम की
1: सर,
0: सबसे बड़ी खूबी यही है कि हमारे श्रोताओं की जो बातें हैं वो इस कार्यक्रम में चार चांद लगाती है।
1: हाँ ये जबरदस्त।
0: बताइए, कोई गीत जो आज आप सुनना चाहते हो वो हम आपको ज़रूर सुनवाएं।
1: दीवाना, दीवाना मूवी का रहेगा सर, तेरी
0: अच्छा जी, दीवाना फिल्म का कौन सा गीत?
1: अदा पे।
0: बहुत बढ़िया गीत आपने सुनना चाहा है, और इस गीत को
1: सर आप किससे बात हो रही है आज?
0: आज आप बात कर रहे हैं शिवम से।
1: हाँ शिवम, हाँ सर, धन्यवाद
0: चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।

0: नमस्ते
1: जी नमस्कार
0: जी, किनसे हमारी बात हो रही है ये सबसे पहले जान लें।
1: जी। शुभम जी, मैं ग्राम गौर झामर जिला सागर मध्य प्रदेश से विपिन कटारे बात कर रहा हूँ सर।
0: जी विपिन भाई, कैसे हैं?
1: अच्छा हूँ, बढ़िया हूँ, ठीक हूँ। और आज लगभग 2 ढाई महीने के बाद याद आई भोपाल की, तो हमने कहा चलो आज कॉल करते हैं और
0: बहुत
1: देखते
0: बढ़िया,
1: हैं
0: आपने
1: किससे बात होती है।
0: हमारे अनुरोध को स्वीकार किया कि हमारे वो श्रोता जो फ़ोन कॉल लगाना चाहते हैं लेकिन किन्हीं ही वजहों से उनका फ़ोन नहीं लग पाता है, उनके लिए आपने थोड़ा सा इंतज़ार किया
1: हाँ जी
0: उनके लिए।
1: बिल्कुल। और मई में तो कॉल नहीं किया मैंने, अप्रैल में बात हुई थी मेरी
0: जी,
1: जी, तो जून भी खत्म होने वाला है। आप बताइए क्या हाल चाल है आपके।
0: हम बढ़िया हैं। हमारे पूरे आकाशवाणी परिवार के सभी श्रोता बहुत अच्छे से होंगे ये हम उम्मीद करते हैं।
1: जी बिल्कुल, ठीक ठाक ही हैं और बढ़िया रहेंगे भी।
0: हाँ,
1: और आपसे बात हो जाएगी, हमने सोचा ही नहीं था, लेकिन आप आ गए तो और भी अच्छा लग रहा है
0: कहते हैं ना कि जो मन में दबी हुई इच्छाएं रहती हैं
1: जी।
0: वो कभी कभी अगर बहुत शिद्दत से चाहो ना तो वो उम्मीद, वो इच्छा पूरी होती
1: जी बिल्कुल। और आपने
0: है।
1: जैसे ही हेलो बोला तो हम समझ गए कि आज तो
0: जी
1: शिवम जी
0: जी
1: आए हैं।
0: जी जी बताइए क्या हाल है इन दिनों आपके शहर?
1: हाल चाल बिल्कुल ठीक ठाक ही हैं। और अभी तो बहुत धूप हो रही है, गर्मी पड़ रही है हमारे यहाँ पे, क्योंकि बारिश तो पहले हो चुकी है एक दो बार 3 4 दिन पहले,
0: जी
1: लेकिन अभी वैसी बारिश तो नहीं हुई है, तो धूप बहुत ज्यादा है। और फिर ग्रामीण क्षेत्र है तो उस हिसाब से खेती किसानी की तैयारियां चल रही हैं अभी तो खरीफ की, और यही बुआई की लोग तैयारियों में हैं और मानसून का इंतजार कर रहे हैं। जी
0: वैसे देखा
1: बिल्कुल
0: गया है कि मध्य प्रदेश में मानसून जो है वो लगभग 25-30 तारीख के आसपास, जून की जो तारीख है उसके आसपास ही सक्रिय होता है।
1: हाँ जी बिल्कुल। और कल ही प्रादेशिक समाचार में सुन रहे थे कि 30 तारीख तक मानसून आ जाएगा, मतलब ऐसा बताया गया है, तो उम्मीद करते हैं कि हाँ अगले 2 से 3 दिन में बारिश जरूर होनी चाहिए।
0: चलिए, तो उम्मीदों की बारिश बहुत जल्द आपके यहाँ बरसे, हम ऐसी कामना करते हैं।
1: बिल्कुल सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।
0: जी बताइए, आज कौन सा गीत आपको सुनवाएं हम?
1: मोहम्मद रफी और लता जी ने गाया है तुम तो प्यार हो सजना,
0: अच्छा जी।
1: शायद दिल एक मंदिर फिल्म का गीत है।
0: बहुत
1: मुझे
0: खूबसूरत
1: तुमसे
0: गीत आपने
1: प्यारा
0: सुनना
1: नहीं,
0: चाहा है,
1: कैसा।
0: बहुत खूबसूरत गीत है ये।
1: हाँ बिल्कुल, बहुत खूबसूरत गीत है और अच्छा लगता है मुझे, और अच्छा सदाबहार गाना है, मुझे तुमसे प्यारा और ना कोई, तुम तो प्यार हो सजना।
0: वाह कितने कितने
1: जी
0: खूबसूरत बोल हैं और उतनी खूबसूरत उसकी धुन है, और उससे भी बढ़कर फिर क्या कहें, आवाज़ें जिसमें रफ़ी साहब और लता मंगेशकर की हो, वो गीत सोने पे सुहागा होना ही होना है।
1: बिल्कुल। और इस गाने के अंतरे भी मुझे काफी अच्छे लगते हैं, क्योंकि पहले उस अंतरे को बोल के बताते हैं वो लोग सिंगर जो गा रहे हैं रफी जी और लता जी, और फिर पहले बोल के बताएंगे फिर उसी को गा के बताते हैं।
0: बताइए, चलिए तो कुछ
1: जी
0: आप भी गुनगुना सकते हैं क्या?
1: मुझे तो मुखड़ा ही याद है, अंतरा तो मुझे याद नहीं आ रहा
0: चलिए
1: है
0: मुखड़ा ही।
1: जी। मुखड़ा की गाने की मैं कोशिश करता हूँ। तुम्हें तो प्यारे हो सजना, तुम्हें तो प्यारे हो मुझे तुम से, हाँ मुझे तुम से प्यार।

0: नमस्कार
1: सर,
0: जी।
1: मैं ग्राम बापू तीतरा खलीलपुर तहसील कोंच जिला जालौन से अंजलि जाटा बोल रही हूँ। जी सर,
0: जी कैसे हैं जी?
1: अच्छे हैं सर, आप कैसे हैं?
0: हम भी बहुत बढ़िया हैं।
1: फिर बॉर्डर हिंदुस्तान का सुनवा देना, याद आती है कलेजा चीर जाती है।
0: बॉर्डर हिंदुस्तान
1: हाँ, इसी में याद आती है कलेजा चीर जाती है।
0: याद आती है, कलेजा चीर जाती है।
1: शिवम सर बोल रहे हैं ना
0: जी
1: आप?
0: हाँ जी हाँ जी हाँ।
1: पहचान लिया, आपको सुनते रहते हैं, आपकी प्रस्तुति अच्छी लगती है सर।
0: अरे बहुत बहुत धन्यवाद। ये सब हम आप जैसे श्रोताओं के लिए ही हम अपनी मेहनत करते हैं, और इस मेहनत को अगर आप सराहते हैं तो बहुत अच्छा लगता है।
1: जी सर, रोज कार्यक्रम सुनती रहती हूँ, आपके सभी कार्यक्रम अच्छे लगते हैं। बजता रहता और लखनऊ भी सुन लेते हैं।
0: तो रेडियो से ऐसी कौन सी चीज़ आपने सीखी है, जान सकते हैं?
1: रेडियो से तो सर बहुत कुछ सीखा है हमने, तो 2000 से सुनते आ रहे हैं, बहुत कुछ सीखा है, बात करना
0: हाँ
1: और सभी गायक कलाकारों को पहचानना, आप लोगों की आवाज़ पहचानना, बहुत कुछ सीखा है।
0: चलिए, ये एक अच्छी बात आपने बताई कि रेडियो से बोलने की कला आ जाती है।
1: जी
0: रेडियो जो है वो सुनने का माध्यम है, लेकिन उससे बोलने की कला आ जाती है। ये देखिए कितनी बड़ी बात निकल के सामने आई है।
1: जी
0: चलिए तो ये गीत हम आपकी नज़र करते हैं, आपने फ़ोन किया इसके लिए देते हैं आपको।

0: हाँ जी नमस्कार
1: हेलो। हाँ जी नमस्कार। कम आकाशवाणी भोपाल फोन करेगी सुने।
0: जी।
1: जी हाँ सर, कैसे हैं आप?
0: हम बढ़िया हैं और आपका परिचय एक बार फिर से जान लें।
1: जी सर, मैं ग्राम बिजोरा, जिला सागर, मध्य प्रदेश से आपका नियमित श्रोता गोलू कुमार अहिरवार।
0: गोलू भाई कैसे हैं?
1: बस सर, मैं तो बढ़िया हूँ। और आप बताइए, शिवम सर जी कैसे हैं आप?
0: हम भी बहुत बढ़िया हैं।
1: जी
0: और क्या चल रहा है इन दिनों?
1: बस सर जी, अभी तो मतलब बोनी की बुआई चल रही है, मतलब बोनी स्टार्ट हो गई सर जी हमारा होना।
0: अच्छा, तो आपने क्या किस फसल की बोनी कर रहे हैं इस बार?
1: सर हमारे यहाँ तो सागर जिले में सर जी मक्का की बुआई ज्यादा होती है, मक्का और उड़दा की।
0: अच्छा, तो मतलब ये बारिश के दौरान आप मक्के की खेती करते हैं?
1: हाँ, क्योंकि सर अभी कुछ दिन पहले बारिश हमारे यहाँ हो चुकी है, तो थोड़ा सा बतर आ चुका था सर जी खेत में, तो बोनी मतलब स्टार्ट होने लगे हमारे यहाँ पे।
0: इतना समय निकाल लेते हैं बोनी के बीच में कि रेडियो के लिए वक्त निकल जाए?
1: हाँ सर, समय तो निकाल लेते, क्योंकि रेडियो से सर जी खेती किसानी से जुड़ी हुई बातें बताते हैं विशेषज्ञ लोग, तो उनके लिए सुनना पड़ता है सर जी जरूरी।
0: चलिए, तो वो उन जो बातों पे आप अमल भी करते होंगे उनसे कुछ आपको सुविधाएं भी मिल जाती होगी, लाभ
1: जी
0: भी
1: सर,
0: मिलता होगा।
1: जी सर सुनते हैं, और बाकी उनकी बात को अनसुनी नहीं करते, अमल में भी लाते हैं सर जी। जो बातें जितनी बताते हैं वो सुन के हम लोग ट्राई करते हैं उन बातों के लिए, और जैसा जैसा वो बताते हैं वैसे ही करते हैं हम लोग।
0: बताइए गोलू
1: सर
0: भैया, कौन सा गीत आपके लिए निकालें?
1: सर वो एक गाना ही है, बरस ओ रे मेघा मेघा, बरस ओ रे मेघा
0: अच्छा,
1: मेघा, किस फिल्म का गाना है
0: ये
1: आपको मुझे
0: मनुहार
1: याद है?
0: है, गुरु फिल्म की।
1: अच्छा, गुरु फिल्म का है।

0: हाँ जी नमस्कार
1: जी नमस्कार सर। खुदा
0: जी, बताइए।
1: ने खुश होकर के पूछा कि क्या चाहिए। मैंने कहा खुशी, कामयाबी और लंबी उम्र। अंदर से फिर आवाज आई कि किसके लिए, तो मैंने कहा कि इस वक्त जिनसे मेरी बात हो रही है उनके लिए।
0: बहुत बहुत बहुत बढ़िया, आपका ये तारुफ का जो अंदाज़ है हमें बहुत पसंद आया। अब हम ये भी जान लें कि किनसे हमारी बात हो रही है।
1: मैं आपका नियमित श्रोता बोल रहा हूँ, पालदा नाका इंदौर से, मोहम्मद रफी मंसूरी।
0: मोहम्मद रफ़ी मंसूरी।
1: जी कैसे हैं सर आप?
0: हम भी बहुत बढ़िया हैं जी।
1: बहुत बढ़िया हाल चाल सर, और मौसम भी बहुत सुहाना हो गया। थोड़ी बरसात शाम के टाइम होने लग गई शुरू यहाँ पर।
0: अच्छा जी, बताइए कौन सा गीत हम आपके लिए निकालें।
1: फिल्म का नाम है दो खिलाड़ी, और गायक कलाकार है मोहम्मद रफी, और गाने को बोले झूमता सावन देखो आया, बरखा ने प्यार बरसाया।

0: हेलो।
1: हाँ जी नमस्कार।
0: हाँ नमस्ते सर जी, मैं ग्राम उलझान बोल रहा, गेंदालाल परिहार। हाँ सीहोर के पास गांव है उलझावन जी।
1: कितनी दूर पड़ता है सीहोर से?
0: जी वो जो अपने नियर बाय रातीपुर से भदभद रोड गया नहीं, उसी पड़ता है जी।
1: अच्छा
0: सर जी, वो तो अपनी पसंद के पर रहता है, जो जो नए भी सुनते हैं पुराने सुनते हैं सभी।
1: कहते हैं ना कि जो अच्छा होता है वो नया भी नहीं होता, पुराना भी नहीं होता, वो सदाबहार होता है।
0: जी वो तो परिवर्तन, क्या परिवर्तन होता रहता, अच्छा लगता परिवर्तन भी।
1: एक रास्ता से ऊब जाता है इंसान तो परिवर्तन एक नई ताजगी के साथ में हमारे सामने आता है।
0: जी हाँ सर।
1: जी बताइए कौन सा गीत आपको सुनवाएं हम?
0: जी पुराने फिल्म है आँखें, तो गाना मिलती है जिंदगी में कभी कभी।

0: कभी कभी।
1: अभी आप सुन रहे थे फोन इन कार्यक्रम फोन करें गीत सुने, प्रस्तुति शिवम कश्यप की थी। प्रसारण आकाशवाणी मध्य प्रदेश से किया गया।

0: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। 11:58 हुए हैं। अब सुनिए इस खंड की खास खबरें।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेशेल्स के 50वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया और इस प्रतिष्ठित सम्मान को प्राप्त करने वाले भारत के पहले प्रधानमंत्री बने। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा आज नई दिल्ली में आयोजित होने वाली केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण परिषद की 16वीं बैठक में एनीमिया मुक्त भारत अभियान के परिचालन और दिशा निर्देश जारी करेंगे। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव और केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी आज नीमच में 500 मेगावाट और शाहजहांपुर में 450 मेगावाट के सौर पार्क का उद्घाटन करेंगे। इस मौके पर मुरैना की 440 मेगावाट सोलर प्लस स्टोरेज परियोजना का पावर परचेज एग्रीमेंट भी किया जाएगा। प्रदेश में कल से पल्स पोलियो अभियान की शुरुआत हो चुकी है। इस अभियान के अंतर्गत आज और कल घर घर पोलियो की दवा पिलाने के लिए टीम घर घर पहुंचेगी। श्री अमरनाथ जी की यात्रा जम्मू कश्मीर में 3 जुलाई से शुरू होने वाली है। श्री अमरनाथ यात्रा की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। भोपाल स्थित मध्य प्रदेश जनजातीय संग्रहालय में शलाका जनजाति चित्र प्रदर्शनी के तहत गोंड चित्रकार मनीषा ध्रुवे के चित्र प्रदर्शित किए जा रहे हैं। ये प्रदर्शनी 30 जून तक संचालित की जाएगी। प्रदेश में मानसून की रफ्तार फिलहाल थमी हुई है। इस बीच मौसम विभाग ने आज 6 जिलों में भारी बारिश और कई अन्य जिलों में तेज बारिश का अलर्ट जारी किया है और दीप्ति शर्मा महिला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे अधिक विकेट लेने वाली खिलाड़ी बन गई।

0: उन्होंने अपना 356वां विकेट लेकर दिग्गज झूलन गोस्वामी के 355 विकेटों के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
1: ये प्रसारण आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश से। लीजिए अब सुनिए कार्यक्रम आपकी फरमाइश। इस कार्यक्रम में हम श्रोताओं की फरमाइश पत्रों के द्वारा जो हमें मिलती है उन्हें हम सुनवाते हैं, उनकी पसंद के गीत हम सुनवाते हैं। कार्यक्रम का आरंभ करने जा रहे हैं पुकार फिल्म के इस गीत से, जिसकी धुन बनाई है A.R. रहमान ने, गीत लिखा है जावेद अख्तर ने, आवाज़ें कविता कृष्णमूर्ति और शंकर महादेवन की है। इस गीत को सुनना चाहा है कागज पुनर्ज से महेश हजारे, मिंताशु हजारे, आदित्य हजारे, इचलकरंजी महाराष्ट्र से वसंत जी हजारे, प्रमोद हजारे इसी गीत को पसंद किया है। बस स्टैंड के पास बंडा बेलई जिला सागर से लक्ष्मण रेखवार, श्रीमती विनीता रेखवार, कुमारी वैशाली वैष्णवी, अनरथ रेखवार, हल्ले लल्लू ऋषि रेखवार और खंडा। और साथ ही साथ ये पत्र हमें मिला है शाहूनगर यवतमाल से राहुल मनवर, सरला मनवर, विशाल तथा चेतन मनवर का। और इसी पत्र में दो नाम और हमें दिखाई दे रहे हैं और वो है रोशनी मनवर और बेबी प्रियांशी। इन सभी की पसंद पर सुनते हैं पुकार फिल्म का ये गीत।

आपकी फरमाइश कार्यक्रम में अगला गीत हम आपको सुनवाने जा रहे हैं तेजाब फिल्म से। अनुराधा पौडवाल, अमित कुमार और साथियों की आवाज़ें हैं। गीत लिखा है जावेद अख्तर ने और धुन लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की है। इस गीत को सुनना चाहा है सादुल शहर राजस्थान से ओम प्रकाश चौहान, मन्नू प्रकाश, शिव प्रकाश और वेद प्रकाश चौहान ने। राजावत कॉम्प्लेक्स शाजापुर से ये पत्र है मनमोहन राजावत, मधु राजावत, राशि, रक्षित, चितरंजन, कमल, उमेश, सरोज, आरती, रेखा, रितिका, रिचा, स्वीटी, सागर, रिया, रीत, ऋषभ राजावत और पूरा राजावत परिवार। और साथ ही साथ ये पत्र छत्रपति संभाजीनगर से मिला है राजेश साबले पाटिल, राजदीप राजेश, राशि राजेश, श्रीमती शीतल राजेश और मेहर नगर उमरखेड़ महाराष्ट्र से अभिजीत गवाहकर, राही सरिता गवाहकर, सिद्धांत गवाहकर, प्रिंस एकांश और विश्वकर्मा नगर नागपुर से शैलेश गवाड़कर, वैशाली गवाड़कर, श्वेता, सुमित और कुमारी ध्वनि गवाड़कर परी ने साथ ही साथ इस गीत को सुनना पसंद किया है।

अगला गीत हम आपको सुनवाने जा रहे हैं हमारे इन श्रोताओं की पसंद पर, छत्तीसगढ़ भाटापारा दतरंगी से द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार वर्मा, दीपक कुमार और जावेंद्र कुमार वर्मा, महादेव घाट अमलेश्वर से डोमन ठाकुर, सुमन ठाकुर, मिथिलेश ठाकुर, तारिणी ठाकुर, सूरज, सुजला, ज्योति और रेयांश ठाकुर ने, डोंगरगांव जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से ये पत्र हमें मिला है। राष्ट्रपाल गजभिये, राधिका गजभिये, बेबी अनिष्का और तन्मय गजभिये का जयराज प्लॉट राजकोट से इस गीत को पसंद किया है। मधुसूदन भट्ट, आरती भट्ट, आरती पूजा जास्मिन और प्रयागराज भट्ट ने। खलनायक फिल्म का गीत हमारे इन श्रोताओं ने पसंद किया है। आवाज़ मनहर उदास और अलका याग्निक की है। गीत आनंद बख्शी का है, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की संगीत धुन पर अभी आप सुन रहे थे आनंद बख्शी का लिखा ये गीत अलका याग्निक और मनोहर उदास की आवाज़ों में खलनायक फिल्म से। इसी के साथ आपकी फरमाइश कार्यक्रम अब यहीं समाप्त करते हैं। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है।

ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। समय है एक अंतराल का।

अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की भूरी भूरी प्रशंसा कर रही है।
1: वो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल हर

कहानी बनकर तो कभी कविता बनकर, कभी कोई तराना तो कभी जिंदगी नामा, कभी खबरें हमारी जिंदगी में रंग भरे, मन की बात जन जन की बात, 1936 से आकाशवाणी।

पिछली कड़ियों में आपने जाना कि इंद्रप्रस्थ नरेश आदित्य सेन अपनी पुत्री का विवाह विजय श्रवा से करना चाहते थे। विजय श्रवा चंद्रहासिनी के प्रति आकर्षित तो था, परंतु प्रेम भुवन मोहिनी से ही करता था। इसी बीच संपूर्ण खंड राज्यों के सेनापति के रूप में विजय श्रवा का चयन हुआ। धारा के दरबार में विजय श्रवा ने हूण सेनापति के अपमानजनक पत्र को पढ़ा और आमात्य ऋषभदेव ने युद्ध के स्थान पर अपमानजनक संधि करने की वकालत की। भुवन मोहिनी ये न सुन सकी और उसने आमात्य का सिर धड़ से अलग कर दिया। हूणों के खिलाफ युद्ध में भुवन मोहिनी विजय श्रवा के साथ छाया की तरह रही और विजय श्रवा को जीत हासिल हुई। विजय श्रवा ने भुवन मोहिनी और राजमाता को दिए गए वचन के अनुसार चंद्रहासिनी से विवाह किया, सम्राट बना। भुवन मोहिनी उन दोनों के सुखमय जीवन के लिए समाज सेवा में जुट गई। जब वो वापस लौटी तो चंद्रहासिनी ने भुवन मोहिनी का अपमान किया। इससे दुखी होकर विजय श्रवा भुवन मोहिनी को अपने पास बुलाकर अलग रहने लगा। चंद्रहासिनी को ये बर्दाश्त नहीं हुआ। सम्राट विजय श्रवा ने उसको निष्कासित करने का आदेश दे दिया। भुवन मोहिनी के मनाने पर सम्राट विजय श्रवा ने अपना आदेश वापस तो ले लिया, परंतु स्वयं मुख्य महल से अलग रहने लगा। अब आगे क्या होता है सुनिए धारावाहिक भुवन मोहिनी की 11वीं कड़ी में।

0: अरे मैं पूछता हूं, इस तरह अंधेरे में कौन खड़ी है वहां?
1: अरे भुवन मोहिनी, आप कब आई देवी?
2: मेरे आगमन को गोपनीय रखिएगा अरण्यक।
1: तो क्या सम्राट को भी ना बताऊं?
2: नहीं अरण्यक, सम्राट कुशल तो है ना?
1: उनकी कुशलता के कहने ही क्या। राजप्रासाद से दूर निर्जन क्षेत्र में पर्णकुटी बनवाकर रह रहे हैं। राजकीय अधिकारी और मंत्रीगण शासन संबंधी आदेशों को प्राप्त करने वहीं पर्णकुटी पहुंचते हैं। और हां, राज परिवार के लोगों का प्रवेश निषिद्ध है।
2: क्या?
1: कभी कभी सम्राट राजमहल जाकर राजमाता से मिल लेते हैं, और वो भी बाह्य कक्ष में। राजकुमार को लेकर संरक्षक अवश्य पर्णकुटी में आ सकता है।
2: और साम्राज्ञी?
1: अरे उनका तो प्रवेश एकदम से निषिद्ध है। कई बार साम्राज्ञी ने पत्रों द्वारा उनसे मिलने की प्रार्थना की, परंतु उसका कोई परिणाम नहीं निकला। ऊपर से सम्राट ने पत्रवाहक को कड़े निर्देश दे दिए कि भविष्य में वो कभी भी उनके पत्र लेकर ना आए। और इतना ही नहीं देवी, द्वारपाल को निर्देश हैं कि साम्राज्ञी कभी बलपूर्वक प्रवेश करने का प्रयत्न करें तो उन्हें भी रोक दे।
2: ये कैसा दुर्दैव!
1: देवी, ये मुझसे बहुत बड़ा अपराध होगा यदि मैंने आपके आगमन की सूचना सम्राट को अविलंब न दी तो।
2: परंतु अरण्यक,
1: ये सम्राट के हित में होगा।
3: अरण्यक,
1: हाँ,
3: राजप्रसाद की राजनीति में बड़ी शांति से दिखती है।
1: क्यों सारथी, तुम्हें शांति से कोई कष्ट है क्या?
3: भला मुझे क्यों कष्ट होगा, मुझे तो प्रसन्नता है।
1: नियति को देखो सारथी, जिस देवी भुवन मोहिनी को साम्राज्ञी चंद्रहासिनी क्षण भर को भी सहन नहीं कर पाती थी, वही भुवन मोहिनी अब आराम से सम्राट द्वारा प्रदत्त एक महल में निवास करने लगी, सम्राट की आज्ञा से।
3: यही नहीं, सम्राट को जब इच्छा होती है भुवन मोहिनी को बुलवा लेते हैं और वो दिन दिन भर पर्णकुटी में रहती है, संगीत से सम्राट का मनोरंजन करती है, उनके साथ ही भोजन करती है। अरण्यक, क्या इसका पता साम्राज्ञी और राजमाता को नहीं होगा?
1: क्यों नहीं होगा सारथी, अवश्य होगा, पर वो कर ही क्या सकते हैं। हमें तो बड़ी प्रसन्नता है कि हमारे मित्र प्रसन्न है। सच पूछो तो सारथी, देवी भुवन मोहिनी का सम्राट के प्रति प्रेम बहुत ही पवित्र है और बहुत ही उदात।
3: तुम ठीक कहते हो अरण्यक।
1: मुझे तो अनुभव हो रहा है कि उनके इस पवित्र प्रेम की सुगंध पूरे वातावरण को और भी सुगंधित बना रही है।
3: परंतु अरण्यक, बहुत दिनों से देवी भुवन मोहिनी का स्वास्थ्य ठीक नहीं है।
1: मुझे ज्ञात है सारथी, कई वैद्य चिकित्सक भुवन मोहिनी को देख चुके हैं, परंतु वो समझ नहीं पाए कि उन्हें रोग कौन सा है। और वर्तमान में मित्र की एकमात्र चिंता का विषय भी यही है। चलता हूं सारथी, मित्र के पास पहुंचने का समय हो गया है।
3: अवश्य अरण्यक।
1: कक्ष के अंदर आ सकता हूं मित्र?
4: अरण्यक, क्या तुम भुवन मोहिनी के आवास गए थे?
1: अब आपके आदेश को न मानूं ऐसा कभी हुआ है?
4: कैसी है वो?
1: मित्र, उनकी स्थिति बहुत ही बुरी है। वो लगातार औषधियों की अवहेलना कर रही है। वैद्य के बहुत बाध्य करने पर ही वो कोई औषधि लेती है। परंतु वास्तविक समस्या ये है कि।
4: क्या समस्या है?
1: भुवन मोहिनी किसी से कुछ बोलती ही नहीं, ना तो किसी से बातें करती हैं, ना यही बताती हैं कि उन्होंने औषधि ली या नहीं। मित्र, ऐसा प्रतीत होता है कि मृत्यु शैया में पड़ी भुवन मोहिनी मानो मृत्यु को स्वयं आमंत्रित कर रही।
4: नहीं अरण्यक, वो ऐसा नहीं कर सकती। क्या उसे ज्ञात नहीं कि मेरे जीवन में उसके ना रहने का क्या अर्थ होगा? माना कि भुवन मोहिनी के बिना मैंने दिन महीने और वर्ष बिताए हैं, परंतु इस आशा में कि एक दिन वो आएगी। परंतु यदि वो
1: मित्र, देवी भुवन मोहिनी की अस्वस्थता सर्वसाधारण की चर्चा का विषय बन चुकी है। नर्तकी के गृह में जन्म लेने के बाद भी वो अपनी सेवाओं के लिए इतनी राष्ट्रव्यापी ख्याति अर्जित कर चुकी हैं कि अधिकांश जनता उनके शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की ईश्वर से कामना कर रही है। जनता की शुभकामनाएं अपना प्रभाव अवश्य दिखलाएंगी मित्र।
4: हम भी उसे मरने नहीं देंगे अरण्यक। अरण्यक, मैंने आदेश दिया था कि कोई न कोई सुयोग्य चिकित्सक सदैव उसके पास रहे। आदेश का पालन हो रहा है ना?
1: अक्षरशः पालन हो रहा है मित्र। चिकित्सक सदैव उनके पास रहते हैं मित्र। एक रहस्यमयी नारी भी उनके आसपास दिखाई देती है।
4: रहस्यमयी नारी? कौन है वो? क्या कोई चिकित्सक है या परिचारिका या वो दासी है?
1: इनमें से कोई नहीं है मित्र।
4: कोई नहीं है? तो ये बात हमें आज तक बताई क्यों नहीं गई? ना ही किसी चिकित्सक ने और ना ही किसी गुप्तचर ने और ना ही दास दासी ने।
1: क्योंकि साम्राज्ञी का ऐसा ही आदेश था।

0: साम्राज्ञी का आदेश? क्या सरोकार था साम्राज्ञी को भुवन मोहिनी की अस्वस्थता से?
1: मित्र, गुप्तचरों से ज्ञात हुआ है कि साम्राज्ञी भुवन मोहिनी के प्रति कृतज्ञता को प्रकट कर आपको प्रसन्न करना चाहती हैं। इसलिए उन्होंने इंद्रप्रस्थ से एक कुशल महिला चिकित्सक को बुलाया है।
0: तो राज्य कार्यालय से पता करो कि क्या इंद्रप्रस्थ से किसी महिला चिकित्सक को बुलाया गया है।
1: मैंने पता लगा लिया है, ऐसी किसी महिला चिकित्सक को इंद्रप्रस्थ से नहीं बुलाया गया है।
0: तो वो कौन है?
1: साम्राज्ञी के शैशव काल की सखी और संबंध में ममेरी बहन।
0: प्रमुख चिकित्सक को अविलंब उपस्थित कराओ।
1: जो आज्ञा मित्र।
2: भुवन मोहिनी की सेवा में लगे प्रमुख चिकित्सक आप हैं?
3: जी हाँ सम्राट।
2: प्रमुख चिकित्सक का क्या दायित्व तो होता है?
3: रोगी की चिकित्सा और पूरी देखरेख स्वामी।
2: क्या मैं जान सकता हूं कि भुवन मोहिनी ठीक क्यों नहीं हो रही?
3: यही तो समझ में नहीं आ रहा सम्राट। एक से बढ़कर एक औषधियां हम उन्हें दे रहे हैं, परंतु किसी का भी प्रभाव नहीं पड़ रहा है।
2: आप अपने सामने उन्हें औषधियां खिलाते हैं?
3: जी नहीं।
2: क्यों?
3: इसलिए कि रोगिणी औषधियां लेने में अनिच्छुक दिखती हैं, तो इंद्रप्रस्थ से आई चिकित्सक को, जो सदैव उसके पास ही रहती है, आवश्यक निर्देश दे दिया करता हूं।
2: उसका क्या नाम है?
3: नाम तो उसका नहीं मालूम देव।
2: नाम नहीं मालूम? उसे आपने नियुक्त किया है?
3: नहीं देव।
2: तो फिर किसने नियुक्त किया है उसे? उत्तर दो मुझे।
3: साम्राज्ञी ने।
2: साम्राज्ञी ने? उसके चिकित्सक होने का प्रमाण पत्र देखा आपने?
3: नहीं देव।
2: तो फिर वो चिकित्सक नहीं है?
3: नहीं है।
2: उसकी चिकित्सा नहीं, उसे विष दिया जा रहा है।
3: विष?
2: हाँ विष। एक बात ध्यान रखो चिकित्सक, यदि भुवन मोहिनी के जीवन के साथ कोई अप्रिय घटना हो गई तो तुम भी जीवित नहीं बचोगे। अब तुम्हें क्या करना होगा तुम निर्णय करो। जाओ यहां से।
0: अरण्यक।
1: बोलिए मित्र।
0: ध्यान से सुनो, अपरिचित महिला चिकित्सक का भुवन मोहिनी के पास रहना भय से रिक्त नहीं। तुम स्त्री वेश में भुवन मोहिनी के समीप रहो, प्रत्येक क्षण देखते रहो कि वो रहस्यमय स्त्री क्या क्या करती है। यदि वो अपनी ओर से कुछ।
1: मैं सब समझ गया मित्र, आगे और बताने की आवश्यकता नहीं है। अब मुझे आज्ञा दें।

0: मैं स्त्री वेश धारण करके देवी भुवन मोहिनी के आवास में आ गया हूँ। कहाँ है भुवन मोहिनी? ओ, वो वहां एक पलंग पर लेटी हूँ। उनके पास लगता है वही अपरिचित महिला चिकित्सक है। क्या करूं, चलता हूं वहीं, देखता हूं क्या होता है।
1: नमस्ते।
2: नमस्ते, तुम कौन हो?
1: कमला।
2: कमला, तुम नई आई हो क्या?
1: लो और सुनो, स्वयं नई हो तुम, हमें नई कहती हो। हम तो जब इतने छोटे थे तब से हैं इस महल में। तुम अपना नाम बताओ।
2: मेरा नाम? मेरा नाम कुमारी विमला है।
1: तुम भी कुमारी, मैं भी कुमारा। मतलब ये कि मैं भी कुमारी, मेरा नाम कमला, तुम्हारा नाम विमला। अच्छा है ना, लगता है जैसे जुड़वा बहने हो।
2: अच्छा अच्छा ठीक है। देखो कमला, मैं कई दिनों से साम्राज्ञी से नहीं मिल पाई हूँ, इसलिए मैं जा रही हूँ। तुम यहीं रहना और कोई भी वैद्य चिकित्सक आए
1: जो दवा

0: मैं कहेंगे मैं दे दूंगी।
1: वो नहीं देनी है।
0: वो नहीं देनी है?
1: अरे तुम कहां से आ गई? देखो यहाँ के सभी दासियों को अच्छी तरह ज्ञात है कि जो दवा मैं चाहूंगी वही भुवन मोहिनी को दी जाएगी, यहाँ के वैद्य चिकित्सकों की नहीं।
0: अच्छा तो क्या तुम भी चिकित्सक हो?
1: हाँ इसीलिए तो।
0: तो फिर ठीक है, जो तुम कहोगी वही दवा देंगे। लेकिन ये
2: ठीक क्यों नहीं हो रही है तुम्हारी दवा से?
1: हाँ
0: लेकिन ये ठीक क्यों नहीं हो रही है तुम्हारी दवा से?
1: असाध्य रोग है, फिर भी ठीक हो जाएगी, समय लगेगा। अच्छा सुनो, संध्या को आऊंगी और रात में भी रहूंगी, तब तुम चली जाना।
0: ठीक है।
1: तो समझ गई ना?
3: हाँ।
1: ये यहाँ मेरी दवाई रखी है, हर घंटे तुम्हें खिलाना है, पर ध्यान रहे किसी वैद्य के सामने मत खिलाना और उसे ये बताना भी नहीं, वरना समझती हो ना क्या होगा?
0: क्या होगा?
1: तेरी खाल उतर जाएगी।
0: उतर जाएगी? कौन उतारेगा?
1: साम्राज्ञी।
0: क्या? अरे नहीं नहीं, मुझे खाल नहीं उतरवानी, मैं मात्र तुम्हारी ही औषधियां उनको दूंगी, वैद्य चिकित्सकों की नहीं, तुम निश्चिंत रहो।
1: मैं जाती हूँ।
3: जाओ कहीं।

0: अब मैं भुवन मोहिनी को बता दूं कि वास्तव में मैं हूं कौन। कितनी सूख गई देवी। आंखें खोलिए देवी। भुवन मोहिनी देवी।
1: कौन?
0: मैं अरण्यक हूं। मैं
1: अरण्यक?
0: हाँ, अरण्यक ही हूं मैं। आपको षड्यंत्र से बचाने के लिए आया हूं। सम्राट ने भेजा है, आप निश्चिंत रहिएगा। और सुनिए, इस वेश में मेरा नाम कमला है। कमला, जब आप पुकारें कमला कहकर ही पुकारें।
1: ठीक है अरण्यक। सम्राट कैसे हैं?
0: बहुत चिंतित हैं देवी, परंतु अब उनकी भी चिंता समाप्त हो जाएगी। मैं आ गया हूं ना, लीजिए वैद्यों की दी गई दवा खा लीजिए।
1: हाँ, दो।
0: वास्तविक औषधियों के सेवन से आप शीघ्र ही स्वस्थ हो जाएंगी। और हां, वो चुड़ैल कोई भी दवा दे तो बिल्कुल मत खाइएगा।
1: उसका नाम विमला है अरण्यक।
0: आप जानती हैं उसको?
1: हाँ, राजकुमारी की ममेरी बहन है। परंतु यहाँ क्यों बुलाया गया उसे, नहीं जानती।
0: आपको मारने के लिए, इससे अधिक मत पूछिएगा, ठीक है ना?
1: हाँ ठीक है अरण्यक। देव से कहिएगा हमारी चिंता ना करें।
0: अरे अब किस बात की चिंता, अब सब ठीक हो जाएगा। तनिक ठहरिएगा देवी, मैं बाहर बैठी मोटी मोटी दासियों को रवाना तो कराऊं।
1: अरण्यक किस षड्यंत्र की बात कर रहे थे? कौन मारना चाहता है मुझे? मैंने किसका क्या बिगाड़ा है? हे प्रभु, यदि अनजाने ही किसी का कुछ बुरा हुआ हो मेरे हाथों तो क्षमा करना प्रभु।
0: सब कहने लगी कि तुम कौन हो, कहां से आई। मैंने कहा कि साम्राज्ञी की ननिहाल से, साहब की सब भाग गई।
1: अरण्यक, इस विमला के हाथों मैंने मात्र एक बार औषधि ग्रहण की थी।
0: अच्छा,
1: और परिणाम ये हुआ कि 3 दिनों तक अचेत रही। इसीलिए मैं कोई भी औषधि ले ही नहीं रही थी अरण्यक। इन दासियों को बड़े बड़े उपहार देकर उसने सबको अपने वश में कर लिया था। अरण्यक, आप ना आते तो जीवन का अंत ही दिख रहा था मुझे। अरण्यक, एक काम करेंगे?
0: बोलिए देवी।
1: वो दवा

0: जो विमला मुझे देती थी उस संदूक में रखी हैं। आप उन दवाओं को आज ही सम्राट के पास भिजवाकर उनकी जांच करवाइए।
1: ये आदेश तो पहले ही सम्राट मुझे दे चुके हैं। मैं अभी लेके जाता हूं।
2: सम्राट की जय हो।
3: आइए चिकित्सक महोदय, आपने उस रहस्यमयी महिला द्वारा दी गई औषधियों की जांच पूरी की?
2: हाँ सम्राट, और ये प्रमाणित हो चुका है कि वो औषधियां नहीं वरन
3: वरन
2: बहुत ही तीक्ष्ण विष थे सम्राट।
3: वो चिकित्सिका इस समय कहाँ होगी?
1: साम्राज्ञी से भेंट करने उनके महल गई हैं।
3: हमें तुरंत महल जाना है, रथ तैयार करो।

0: अरण्य के इस महल में हमारे प्रवेश को गुप्त रखा जाए।
1: जो आज्ञा मित्र।
2: प्रणाम सम्राट।
1: चुप रहो, कोई अभिवादन नहीं।
0: ये कौन थी?
1: ये संरक्षिका थी इस महल की।
0: अरे सुनो, तुम सभी दासियां यहाँ क्या कर रही हो?
2: साम्राज्ञी की आज्ञा की प्रतीक्षा कर रहे हैं सम्राट।
0: और साम्राज्ञी कहाँ है?
2: विश्राम निकेतन में।
0: उनके साथ और कौन है?
2: उनकी ममेरी बहन कुमारी विमला।
0: ओह, वो दोनों वहाँ क्या कर रही होंगी?
2: हम लोगों को ज्ञात नहीं है देव। हाँ, सुनने में आया है कि सुयोग्य चिकित्सिका होने के कारण साम्राज्ञी ने उन्हें इंद्रप्रस्थ से बुलाया है भुवन मोहिनी की चिकित्सा के लिए।
0: आवरण्यक
1: जी।
2: आज साम्राज्ञी के अपशकुनों की भयानक घड़ी उपस्थित है।
0: ठहरो आवरण्यक, कुछ ध्वनियां सुनाई दे रही हैं।
1: हाँ हाँ।
3: मैं केवल एक बार ही अपनी दवा दे सकी, इसके पश्चात उसने कोई दवा ग्रहण ही नहीं की। इन दिनों में वो केवल एक ही बार मुझसे बोली भी।
4: अच्छा, क्या कहा उसने?
3: और क्या कहती, दवा देते समय बोली, मैं कोई दवा ग्रहण नहीं करूंगी, मैं अब जीना नहीं चाहती।
4: वो अब जीना नहीं चाहती? तो ये लो।
3: ये क्या है?
4: जिस पात्र में वो दवाओं का सेवन करती हो, उसमें इस औषधि को मात्र स्पर्श करा देना।
3: अच्छा,
4: ध्यान रहे, मात्र स्पर्श हो, इतना ही पर्याप्त होगा उसके मरने के लिए।
3: इतना शक्तिशाली विष। इसे मैं अपने वक्षस्थल में छिपा लेती हूँ।
4: विमला बहन, जब भुवन मोहिनी हमारे पितृग्रह में रहती थी, तब वो मुझसे अधिक तुमको चाहती थी और तुम पर पूर्ण विश्वास करती थी। यही सोचकर मैंने तुम्हें बुलाया था।
3: यहाँ भी उसी विश्वास के साथ मिली थी, किंतु पहली दवाई के बाद संभवतः या तो वो मुझ पर संदेह करने लगी या सचमुच दवा सेवन नहीं करना चाहती, या हो सकता है सचमुच ही उसमें जीने की लालसा न बची हो। हाँ, ये जो कमला नाम की नई सेविका आई है, इसे भुवन मोहिनी की दास दासियां तक नहीं जानती, परंतु भुवन मोहिनी का उस पर विश्वास कुछ अधिक ही है।
4: अच्छा, लो ये मूल्यवान हार उसे पहना देना, वो भी तुम्हारे वश में हो जाएगी।
3: ये तो बड़ा मूल्यवान लगता है, पहनकर दर्पण में देखूं तो। आहा, इसे मैं ही क्यों ना धारण करूं बहन।
4: छी, लोभिनी। अरे, तुझे मैं ऐसे न जाने कितने हार दूंगी, पहले काम करके तो दिखा। ये हार उसी कमला को देना। संभवतः सम्राट ने उसे विशेष रूप से बुलवाया हो भुवन मोहिनी की देखरेख के लिए।
3: अच्छा ठीक है,
4: ये दूसरा ले, इसे तो अपने लिए रख।
3: ओ मेरी प्यारी बहन,
4: ये उससे अधिक हीरे माणिक वाला है।
3: अच्छा, अब मैं चाहती हूँ, मेरे पास अधिक समय नहीं है, न जाने पल में क्या हो जाए।
4: ठहर तनिक, मैं किसी दासी के साथ तुझे भिजवाती हूँ। कोई है यहाँ? कहाँ गई सबकी सब?
0: सबकी सब एक स्थान पर इकट्ठी कर दी गई हैं साम्राज्ञी।
4: सम्राट,

0: साम्राज्ञी को अधिक कष्ट न उठाना पड़ेगा। मैं स्वयं कुमारी विमला को पहुंचाने के लिए उपस्थित हूं। नीच स्त्री, कहां गई वो चिकित्सिका?
1: वो उधर छुप रही है स्वामी।

0: ठहर चांडालनी, निकाल वो विष की शीशी, कहाँ छुपा रखी है, निकाल कुलटा।
1: निकालती हूँ, ये रही सम्राट।
0: अरे नक, इससे दोनों हार भी छीन लो, चल
2: निकाल। दोनों हार कहाँ है?
1: ये है सम्राट।
0: अब इन दोनों की गत मैं बनाता हूँ, चलो दोनों।

अभी आप सुन रहे थे संग्रहालय से, इस कार्यक्रम में भुवन मोहिनी की 11वीं कड़ी। यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। पेश है इस घंटे की खास खबरें।

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में इस साल के दूसरे रक्षा अलंकरण समारोह में वीरता पुरस्कार प्रदान करेंगे। इस अवसर पर राष्ट्रपति सशस्त्र बलों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेशों के पुलिस कर्मियों को वीरता पुरस्कार प्रदान करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेशल्स के 50वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया। इस प्रतिष्ठित सम्मान को प्राप्त करने वाले भारत के पहले प्रधानमंत्री बने। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा आज नई दिल्ली में आयोजित होने वाली केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण परिषद की 16वीं बैठक में एनीमिया मुक्त भारत अभियान परिचालन के दिशा निर्देश जारी करेंगे। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया गुना जिले के 4 दिवसीय दौरे पर हैं। प्रवास के अंतिम दिन आज केंद्रीय मंत्री विभिन्न जन कल्याणकारी और लोकहित कार्यक्रमों में सहभागिता कर रहे हैं। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव और केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी आज नीमच में 500 मेगावाट और शाहपुर में 450 मेगावाट के सौर पार्क का उद्घाटन करेंगे। इस मौके पर मुरैना की 440 मेगावाट सोलर प्लस स्टोरेज परियोजना का पावर परचेज एग्रीमेंट भी होगा। प्रदेश में कल से पल्स पोलियो अभियान की शुरुआत हो चुकी है। इस अभियान के अंतर्गत आज और कल घर घर पोलियो की दवा पिलाने के लिए टीम पहुंचेगी। श्री अमरनाथ जी यात्रा जम्मू कश्मीर में 3 जुलाई से शुरू होने वाली है। श्री अमरनाथ यात्रा की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और भोपाल स्थित मध्यप्रदेश जनजातीय संग्रहालय में शलाका जनजातीय चित्र प्रदर्शनी चल रही है। गौंड चित्रकार मनीषा ध्रुवे के चित्र प्रदर्शित हैं। यह प्रदर्शनी 30 जून तक चलेगी। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।

स्वागत है हमारे सभी श्रोताओं का स्वास्थ्य विशेष कार्यक्रम स्वास्थ्य दर्पण में। मैं हूं आपकी रेडियो दोस्त नेहा जैन। आप सभी को मेरा प्यार भरा अभिवादन, नमस्कार। श्रोताओं, मौसम, उम्र और जगह के हिसाब से हम सबकी अपनी प्राथमिकताएं और आवश्यकताएं बदलती रहती हैं, लेकिन एक बात जो हम सबके लिए हमेशा एक जैसी रहती है वो है हमारा और हमारे परिवार का स्वस्थ रहना, और इसके लिए हम हर संभव प्रयास भी करते हैं, लेकिन बीमारी कभी भी दरवाजे पर दस्तक देकर नहीं आती है। श्रोता, अचानक जब कोई बीमारी आ जाती है तब इलाज का खर्च कई परिवारों के लिए चिंता का कारण बन जाता है। ऐसे में जरूरत होती है एक ऐसे सहारे की जो स्वास्थ्य के साथ साथ आर्थिक सुरक्षा भी दे। श्रोताओं, इसी सोच के साथ भारत सरकार द्वारा आयुष्मान भारत योजना शुरू की गई है। इस योजना का उद्देश्य आम लोगों तक बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाना और यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी परिवार आर्थिक कठिनाई के कारण इलाज से वंचित ना रहे। इस योजना के माध्यम से पात्र परिवारों को अस्पताल में भर्ती होने पर इलाज सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं। उन्हें सूचीबद्ध सरकारी और निजी अस्पतालों में प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए तक के उपचार की सुविधा मिलती है। इस योजना का लाभ सरकार द्वारा निर्धारित पात्र परिवारों को मिलता है, साथ ही 70 वर्ष या उससे अधिक आयु के सभी वरिष्ठ नागरिकों को भी इस योजना का लाभ मिलता है। श्रोताओं, आपका नाम पात्रता सूची में है या नहीं ये आप आयुष्मान भारत की आधिकारिक वेबसाइट, कॉमन सर्विस सेंटर या सूचीबद्ध अस्पतालों में आयुष्मान मित्र से जान सकते हैं। श्रोताओं, स्वास्थ्य से बड़ा कोई धन नहीं है, इसीलिए सही जानकारी रखें, अपनी पात्रता की जांच करें और पात्र बनकर इस महत्वपूर्ण योजना का लाभ उठाएं, क्योंकि स्वस्थ रहकर ही हम खुश रह सकते हैं और अपने आप से कह सकते हैं लव यू जिंदगी।

0: श्रोता, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम स्वास्थ्य दर्पण और अब कार्यक्रम में वक्त है आज की भेंट वार्ता का। योग और मोटापा, इस विषय पर हम आपको सुनवा रहे हैं आज की भेंट वार्ता, जिसमें विशेषज्ञ हैं डाइटिशियन और योगाचार्य ममता गुरु और इनसे बातचीत कर रही हैं अर्चना सक्सेना।
1: श्रोताओं, माता पिता हमेशा अपने बच्चों को सही मार्ग दिखाना चाहते हैं, फिर चाहे वो शिक्षा हो, संस्कार हो या सेहत ही क्यों ना हो। उनका हमेशा यही स्वप्न होता है कि उनके बच्चे हर हाल में स्वस्थ और खुशहाल जीवन व्यतीत करें। लेकिन आज के दौर में बच्चों को मोटापे जैसी कई स्वास्थ्य संबंधी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। तो आज इसी महत्वपूर्ण विषय पर बातचीत करने के लिए हमने अपने स्टूडियोज में आमंत्रित किया है डाइटिशियन और योगाचार्य ममता गुरु को। ममता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं।
2: नमस्कार।
1: सबसे पहले तो आज हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आजकल ओबेसिटी यानी कि मोटापा एक गंभीर समस्या बनती जा रही है, तो क्या कारण है या ये कहें कि ये किन किन कारणों से हो सकता है?
2: देखिए, कारण तो बहुत सारे होते हैं और सबसे पहले तो हमारे घर से ही शुरू होते हैं वो कारण, क्योंकि हमारा लाइफ स्टाइल, और इसमें सबसे बड़ा रोल माँ का होता है, क्योंकि जैसे हम हैबिट डाल देते हैं घर में जिस तरीके से लाइफ स्टाइल की, तो वैसा ही वो परिवार में परिवेश बनता जाता है और कहीं ना कहीं वो एक ड्रॉबैक हो जाता है, जैसे बहुत ज्यादा लाड़ प्यार करना और सारी चीजें, तो वो भी कहीं ना कहीं इसका एक रीजन बन जाता है। फिर मेडिकल पॉइंट्स भी रहते हैं मोटापे के।
1: अगर हम कंपेयर करें हमारे बचपन के समय की, या ये कहें कि आज के बच्चों से हम पुराने समय के बच्चों की कंपैरिजन करें, तो आज हमें चाहे वो टीनेज वाले बच्चे हों या बढ़ती उम्र के बच्चे हों या फिर छोटे बच्चे हों, सभी में ओबेसिटी का रेशियो कहीं बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, तो बच्चों में ये ओबेसिटी का क्या कारण है?
2: देखिए, रीजन बेसिक ये है कि न्यूट्रिएंट्स, जो न्यूट्रिएंट्स हमको रेगुलर रूटीन में चाहिए बॉडी के डेवलपमेंट्स के लिए, वो हमको नहीं मिल रहे हैं। कारण क्या है कि टेस्ट पर बच्चे ज्यादा जाते हैं, फास्ट फूड्स ले लिए तो कैलोरीज तो मिल गई, भूख भी दब गई, लेकिन जो न्यूट्रिएंट्स मिलना चाहिए एक्चुअली वो चीजें नहीं मिली। तो जब क्या होता है, विटामिन्स की डेफिशिएंसी बॉडी में होने लगती है, तो भी कहीं ना कहीं मोटापा बढ़ने लगता है। दूसरा रीजन क्या है कि फिजिकल उत्साह नहीं, क्योंकि आप देखिए, एक छोटा सा बच्चा भी मोबाइल लेकर के बैठ जाता है, वो घंटों बैठा रहेगा, आवाज तक मुंह से नहीं करेगा, और जबकि पहले के जब कंपेयर स्टडी अगर हम करें तो पहले ऐसा नहीं होता था। हम ही लोगों ने पिट्ठू और पता नहीं कौन कौन से गेम, पोशम पावर, बहुत सारी चीजें हमने खेली है, लेकिन आज के हमारे बच्चे ये नाम को भी जानते हैं, तो उनको तो नाम भी नहीं पता ये। तो एक रीजन ये भी है मोटापे का, जो हर एज ग्रुप में हमको देखने के लिए मिल रहा है।
1: अभी आपने हमको जो कारण बताए बच्चों में ओबेसिटी के, तो एज एन एडवाइस टू पेरेंट्स क्या कहना चाहेंगे, उन्हें क्या करना चाहिए जिससे इस प्रॉब्लम को कम किया जा सके?
2: आप समझाइए बच्चों को कि वो एटलीस्ट थोड़ा सा फिजिकल करें। फिजिकल का मतलब ये कि स्पोर्ट्स में कुछ इंक्लूड हो जाए, कुछ नहीं तो स्टेडियम ज्वाइन करा दीजिए, कुछ भी एक्टिविटी जिसमें उनका फिजिकल हो सके। आजकल क्या होता है, पेरेंट्स ही बोलते थे अरे उसके पास तो टाइम कहाँ है, वो पढ़ेगा कि क्या करेगा। तो लेकिन मेरा कहना ये है कि एक डिसिप्लिन और एक टाइम टेबल हर एक व्यक्ति को फॉलो करना चाहिए, चाहे किसी भी एज ग्रुप का हो। छोटे से बच्चे की अगर हम आदत डाल देंगे तो वो आप देखिए खुद अपना एक टाइम टेबल मैनेज करेगा, मुझे इतने बजे उठना है, और देखिए सबके पास 24 घंटे हैं, बहानों का मुझे लगता है अंत नहीं है, लेकिन उसी टाइम में अगर हम कुछ कर सकते हैं तो वो हम वाकई में कर सकते हैं। तो हमें ये बच्चों में आदत डालना चाहिए।
1: आपने आहार पोषण खान पान की बात की, तो निश्चित ही खान पान एक बहुत अहम पार्ट होता है हमारी लाइफ स्टाइल का, तो हमें बच्चों को क्या बैलेंस डाइट या क्या संतुलित आहार देना चाहिए जिससे कि उन्हें फिट और हेल्दी रखा जा सके?
2: बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और हमारे सराउंडिंग में ही है इसका आंसर, कि जितने भी सीजनल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आते हैं उनका भरपूर इंटेक करना चाहिए, और जितना भी हो सके आप पेट भर के अच्छे से खाना खाइए, ताकि ये नहीं रहे कि थोड़ी देर में फिर और कुछ खा लिया, थोड़ी देर में फिर और कुछ खा लिया। तो यदि हम एक बार पूरी बैलेंस डाइट लेते हैं, दाल चावल सब्जी रोटी दही सलाद, ये सारी चीजें अगर हम एक बार में ले लेते हैं, तो हमको फिर ऐसी भूख नहीं लगेगी, जैसे लगता है ना टेम्पटेशन हो रहा है अब कुछ खा लो फिर कुछ खा लो, तो कहीं ना कहीं एक ड्रॉबैक है वजन को बढ़ाने का। और इससे क्या होता है, जब हमारा वजन बढ़ता है तो मेंटली भी शिथिलनेस हमारी बॉडी में आती है, तो दिमाग भी उतना सोच नहीं पाता, उतना क्रिएटिव नहीं रह पाता। तो अगर क्रिएटिव रहना है तो बॉडी को भी हमें क्रिएटिव और एक्टिव रखना पड़ेगा।
1: ममता जी, जैसे कि बात चल रही है ओबेसिटी यानी कि मोटापे की, तो मोटापे का बच्चों के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है, क्या योग इस समस्या को कम करने में मदद कर सकता है?
2: बिल्कुल करता है, और यदि अपन सही यौगिक क्रियाएं करें

0: तो आपको मेंटल फिजिकल दोनों रिजल्ट्स मिलेंगे और ब्रेन भी आपका इतना बढ़िया वर्क करेगा और बॉडी हमेशा एनर्जेटिक और रिफ्रेश रहेगी और मोटापा कभी भी बढ़ेगा नहीं, और बल्कि धीरे धीरे बॉडी शेप में आएगी, फेस पे ग्रेस आएगा, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आपकी विल पावर स्ट्रांग होगी, साथ ही इम्यून स्ट्रांग होगा, क्योंकि ये सब चीजें वहीं पर दब जाती है जब हमारा वेट बढ़ जाता है, माइंड भी डल हो जाता है। लेकिन जब हम इस पर विजय प्राप्त करते हैं तो ये जो हमारे अंदर की क्वालिटीज है वो सारी निखर के बाहर आती है और मन भी सुंदर हो जाता है, हमारा मस्तिष्क भी बहुत अच्छा वर्क करता है।
1: तो योग से इस समस्या को कम करने में हमें कैसे मदद होगी? कुछ ऐसे आसन हमें आप बता सकते हैं जो कि बच्चों में बढ़ती हुई ओबेसिटी को कम करने के लिए कुछ फायदेमंद हो?
0: बहुत अच्छा, हमारा एक आसन का कॉम्बिनेशन है जिसको कहते हैं सूर्य नमस्कार। 12 आसन है, सारे स्ट्रेचिंग पोजेस हैं जो कि मेंटल फिजिकल दोनों रिजल्ट देता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि बच्चों के लिए इससे बेटर कुछ नहीं है, क्योंकि आजकल हाइट भी बहुत शॉर्ट होती जा रही है, तो ये हमें उसमें भी इम्प्रूवमेंट देता है, साथ ही हमारी मेंटल स्ट्रेंथ में भी हेल्पफुल है। बॉडी की पूरी स्ट्रेचिंग करने के संग क्या होता है, बॉडी का एक फिगर बहुत सुंदर शेप आ जाता है और सुंदरता बढ़ती है। जब सुंदरता हमको अपने आप में हम बहुत सुंदर दिखेंगे तो कॉन्फिडेंस लेवल अलग डेवलप होता है, तो बैक बेंचर भी नहीं बनेंगे, फ्रंट में आ जाएंगे। तो वो चीजें सब बच्चों को बहुत बढ़िया रिजल्ट देती है। संगी कुछ थोड़े से प्राणायाम कर लें तो हमारी मेमोरी को भी और कॉन्सेंट्रेशन के लिए भी बहुत अच्छा रहेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल भ्रामरी प्राणायाम है, अनुलोम विलोम प्राणायाम है, किसी गुरु के मार्गदर्शन में सीख लें, एक ही दो सेटिंग में आपको करेक्शन हो जाता है। सूर्य नमस्कार सीख लें और उसको रेगुलर करते रहें।
1: योग और संतुलित आहार का पालन करने से बच्चे भविष्य में भी क्या ओबेसिटी या मोटापे की तकलीफ से या कहें कि उससे जुड़ी बीमारियों से बचे रह सकते हैं?
0: बिल्कुल, डेफिनेटली। अब हम देखें, आजकल मुझे ऐसा लगने लगा है कि क्योंकि डेली रूटीन में हमारे पास बहुत लोग आते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है यंगस्टर्स की संख्या रेगुलर बढ़ रही है हमारे पास में, और उसमें मैं बोलूंगी उम्र भी कुछ नहीं है, क्योंकि छोटे बच्चा भी आ रहा है और बड़ा भी आ रहा है, और जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स फेस कर रहे हैं बच्चे वो भी आ रहे हैं। स्ट्रेस तो सबके ऊपर है, छोटे बच्चे पे भी है, तो कहीं ना कहीं योग हमको इन सब चीजों से बचा लेता है। मेडिकली भी कोई अगर प्रॉब्लम मान लीजिए आ गई है बॉडी में, हेरिडिटी से भी आ जाती है कई बार हमारी गलत आदतों से भी आ जाती है, तो अगर ऐसा कुछ आ भी गया तो वो भी हम योग से इजीली करेक्शन कर सकते हैं, क्योर कर सकते हैं और नॉर्मल बेटर फिट लाइफ को हम जी सकते हैं।
1: जैसे कि आजकल यंग गर्ल्स में हम देखते हैं पीसीओडी या पीसीओएस, बहुत ज्यादा हार्मोनल प्रॉब्लम्स देखने को मिल रही हैं, तो क्या योग से इन हार्मोनल इम्बेलेंसिंग्स को ठीक किया जा सकता है? ऐसे कुछ आसन हमें बताएं जो इनके लिए फायदेमंद हो, क्योंकि ये समस्या आजकल बहुत ज्यादा देखने को मिल रही है। ममता जी,
0: जैसा मैंने बताया कि सूर्य नमस्कार वो तो करना ही है, वो कर लीजिए, कम्प्लीट स्ट्रेचिंग पोजेज है, और जैसे पीसीओडी पीसीओएस या फिर स्ट्रेस एंजाइटी, ये बहुत सारी चीजें जो यंगस्टर्स में हम अभी देख रहे हैं, उसको रिलीव करने के लिए ध्यान मुद्राएं, कुछ आसन, वज्रासन, सुप्त वज्रासन, जैसे आपने बोला कि जो हार्मोनल डिसबैलेंस को मेंटेन करने के लिए, तो सुप्त वज्रासन है, मत्स्य आसन है, अर्ध मत्स्य इंद्रासन, ये कुछ आसन ऐसे हैं, थोड़े से ट्विस्टिंग पोजेज हैं, थोड़े से डिफिकल्ट हैं, पर इनका अभ्यास यदि करते हैं तो ये रिजल्ट्स जबरदस्त देते हैं। मतलब आपको कभी भी वो प्रॉब्लम रिवाइज ही नहीं होगी और बल्कि क्योर हो जाएगी और नॉर्मल लाइफ जी लेंगे। लेकिन फिर यही बोलूंगी कि एक बार कि हमको कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, तो हमको थोड़ा सा समय देना पड़ेगा, फिर आप देखिए इतने जबरदस्त रिजल्ट्स मिलेंगे कि आपकी सारी परेशानियां ही खत्म हो जाएंगी।
1: जैसे कि अभी हमने बात की यंग गर्ल्स की, वैसे ही आजकल बहुत ज्यादा सुनने में आ रहा है जो यंगस्टर्स हैं, कहीं भी बैठे हुए हार्ट अटैक आ गया, चलते हुए हार्ट अटैक आ गया, डांस करते हुए आ गया, और उम्र की कोई सीमा नहीं है, तो क्या कारण है और उनके लिए योग कैसे फायदेमंद हो सकता है?
0: मेरे ख्याल से प्रश्न तो सबके दिमागों में कहीं ना कहीं होगा, क्योंकि हम डेली न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, न्यूज देख रहे हैं, चाहे अपन उस व्यक्ति को जानते हो ना जानते हो, लेकिन एक झटका सबको लगता है। फिर एक बेसिक रीजन यहीं पर है, हमारी लाइफ स्टाइल और हेरिडिटी। अगर आपको लगता है कि आपके हेरिडिटी में ये इस टाइप के केसेस कंटिन्यू हर पीढ़ी में हो रहे हैं, तो फिर आप उसके लिए अवेयर हो जाइए, कुछ करिए। कुछ करिए का मतलब ये कि आप योगिक क्रियाएं करिए, जिससे किसी भी चीज को देखिए पोस्टपोन कर सकते, वो हमारे हाथ में है। जैसे ऊपर वाले ने जीवन तो आपको दिया, लेकिन जो जीवन हम जी रहे हैं वो तो हमारे हाथ में है। हम कैसा जी रहे हैं, हम अंतिम समय पर 10-15 लोगों की सेवा लेके जा रहे हैं, 10-15 लोगों की सेवा करते हुए जा रहे हैं, निर्धारित हमारे ऊपर है। तो वो ही बस चीज को फॉलो करें कि हमारा बैकग्राउंड में क्या है, हमारी हिस्ट्री क्या है। या मान लीजिए अगर आपको किसी को भी बीपी थोड़ा भी हो गया, उम्र की बात नहीं कर रही हूं मैं, किसी भी उम्र में, तो हम उसके लिए अवेयर हो जाएं, डॉक्टर का गाइडेंस बराबर लें, जो उनकी गाइडेंस है उसको प्रॉपर करें, हम फिजिकल प्रॉपर करें, यौगिक क्रियाएं गुरु के मार्गदर्शन में करें। ये नहीं कि हम कई बार क्या होता है घर में ही बैठ करके करें, पता चला बीपी इतना शूट अप हो गया, वहीं आप फेंट हो गए, तो कोई भी ऐसा रिस्क ना लें फिर, और अपनी मॉनिटरिंग पूरी करते रहे, अपना एनालिसिस पूरा, थक गए हैं तो रेस्ट करें, ऐसा नहीं कि फिर भी करे जा रहे हैं, तो एक्सेस भी नुकसान करता है और कुछ भी ना करना भी नुकसान देता है, तो दोनों चीजों में हमको बहुत अवेयर रहने की जरूरत है।
1: यदि बच्चों को हमें योगाभ्यास प्रारंभ कराना है ममता

0: जी, तो उसकी सही उम्र क्या है और उसे कैसे प्रारंभ कराया जा सकता है?
1: बहुत अच्छा प्रश्न है। मैं तो बोलती हूँ 5 साल के बच्चे से ही शुरू कर दें योग, तो कहीं पर कोई हमें दिक्कत आएगी ही नहीं। हमारा बच्चा भी स्वस्थ, हम भी हैप्पी, फैमिली भी खुश, और कहीं कोई दिक्कत नहीं। और बच्चों को क्या होता है, वो बहुत सॉफ्ट बॉडी होती है क्योंकि ग्रोइंग एज है, तो उनको क्या होता है कि मूवमेंट्स बहुत, मतलब इतने बढ़िया सुंदर आसन करेंगे, डिफिकल्ट से डिफिकल्ट आसन, पर अगर वो फ्लेक्सिबिलिटी अगर एक बार आ गई बॉडी में तो जीवन भर आनंद देगी वो तो। लेकिन एक चीज और बोलना चाहूंगी, जब जागे जब सवेरा। मान लीजिए इतनी उम्र में नहीं शुरू करा लेकिन हमें जब समझ में आया हम तभी शुरू कर लें।
0: बिल्कुल। अब एक और प्रश्न ये जानना चाहूंगी कि कुछ ऐसे कॉमन आसन योग के जो हर व्यक्ति कर सकता हो और फायदेमंद भी हो।
1: देखिए, सबसे मुख्य है प्राणायाम। प्राणायाम का अर्थ है प्राण प्लस आयाम, एडिशन ऑफ लाइफ इज कॉल्ड प्राणायाम। तो प्राणायाम से हम शुरू करें, कोई भी उम्र हो, और कुछ पर्टिकुलर आसन जैसे वज्रासन है, मत्स्य आसन है, मार्जरी आसन है। एक्चुअली योग में सिर्फ आसन और प्राणायाम ही नहीं है, बंध मुद्राएं भी हैं। तो हम इनके संग थोड़ा सा अभ्यास उसका भी अगर कर लें तो जो हमारे इंटरनल रिएक्शंस और जो हमारे इंटरनल ऑर्गन्स का जो रिएक्शन फंक्शनिंग है प्रॉपर अगर हो गया तो फिर बहुत बेस्ट रहता है। तो कुछ आसन है थोड़े बहुत कर लें, सूर्य नमस्कार है, पवन मुक्तासन कर लें, पवन मुक्तासन सीरीज नंबर 1, 2, 3, ऐसे 2-3 सीरीज हैं, उत्तान पादासन की सीरीज है, और जैसा मैंने पहले भी बोला सूर्य नमस्कार, उसमें कंप्लीट 12 आसन का जो एक स्ट्रेचिंग पोजेज है वो बहुत जबरदस्त लाभदायक है। कुछ थोड़ा सा एक पैकेज टाइप का 10-15 मिनट का भी बना लेंगे ना तो वो हमको कंप्लीट बेनिफिट देगा।
0: ममता जी, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी। अब चलते चलते हमारे श्रोताओं को आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे?
1: मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगी कि 24 घंटे में से सिर्फ 45 मिनट ऐसे निकाल लीजिए कि आप योगिक क्रियाएं कर लें, कुछ फिजिकल कर लें, सारी बीमारियां दूर, फिट और फाइन। जैसे आप अपने मोबाइल की बैटरी चार्ज करते हैं ऐसे वो 45 मिनट में आपकी बैटरी चार्ज हो जाएगी, तो मेंटल फिजिकल दोनों शानदार हो जाएगा। जीवन शैली को सुधार लें, जीवन शैली सुधर गई, खाना पीना सुधर गया, तो मतलब मुझे लगता है उससे अच्छा फिटनेस तो कुछ और होगी ही नहीं।
0: इतनी अच्छी और सार्थक जानकारी देने के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। नमस्कार।
2: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे योग और मोटापा विषय पर भेंटवार्ता। श्रोताओं, आज की भेंटवार्ता का संदेश यही है कि मोटापे से घबराने की नहीं, सही दिशा में छोटे छोटे कदम बढ़ाने की जरूरत है। तो योग को अपनी जीवन शैली में अपना शामिल करें और यूं ही आगे चलते रहें।

श्रोता, हम बात कर रहे हैं हमारे हेल्थ एंड टेक्नोलॉजी सेगमेंट की, जहां हम बात करते हैं स्वास्थ्य और विज्ञान की उन नई तकनीकों की जो हमारे जीवन को सुरक्षित, आसान और बेहतर बना रही हैं। आज की दुनिया में तकनीक सिर्फ हमारे मोबाइल या कंप्यूटर तक सीमित नहीं है, बल्कि अस्पतालों और हमारे घर में प्रयोग होने वाली मेडिकल उपकरणों का भी महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुकी हैं। स्मार्ट हेल्थ डिवाइसेस ने इलाज को तेज, सटीक और सुविधाजनक बनाया है, और जब तकनीक आगे बढ़ती है तो उसकी सुरक्षा भी उतनी ही जरूरी होती है। इसीलिए इन डिवाइसेस की साइबर सिक्योरिटी की जाती है। श्रोताओं, आज अस्पतालों में हार्ट मॉनिटर, इंसुलिन पंप, पेसमेकर, एमआरआई मशीन और कई अन्य उपकरण डिजिटल तकनीक से संचालित होते हैं। इनमें मरीजों की महत्वपूर्ण जानकारी भी जुड़ी रहती है। श्रोताओं, ये उपकरण जब कंप्यूटर नेटवर्क या इंटरनेट से जुड़े होते हैं तो उनकी सुरक्षा करने के लिए जो तकनीक उपाय किए जाते हैं उसे साइबर सिक्योरिटी कहा जाता है। या यूं कहें कि जैसे हम अपने घर की सुरक्षा के लिए ताला लगाते हैं, वैसे ही मेडिकल डिवाइसेस और उनसे मरीजों की जो जानकारी है उसे सुरक्षित रखने के लिए डिजिटल सुरक्षा उपाय अपनाए जाते हैं। डिवाइस के सॉफ्टवेयर को समय समय पर अपडेट कर सुरक्षित पासवर्ड, विशेषज्ञों द्वारा समय समय पर सुरक्षा परीक्षण से इन डिवाइसेस की सिक्योरिटी की जाती है। श्रोता, अगर आप भी घर में किसी ऐसे स्मार्ट हेल्थ डिवाइस का उपयोग करते हैं तो डिवाइस को समय समय पर अपडेट करते रहें, आधिकारिक ऐप और लिंक का ही प्रयोग करें, क्योंकि जब तकनीक का सही और सुरक्षित उपयोग हो तो उम्मीदें भी नई उड़ान भरती हैं। इन्हीं उम्मीदों के साथ सुनते हैं ये गीत।

श्रोताओं, बारिश का मौसम दस्तक दे रहा है। ये मौसम जहां गर्मी से राहत देता है, वहीं स्वास्थ्य के लिए नई चुनौतियां भी लेकर आता है। श्रोताओं, कुछ आदतों को बदलकर हम बारिश में होने वाली बीमारियों से बच सकते हैं। साफ पानी, ताजा भोजन, हाथों की स्वच्छता और मच्छरों से बचाव ही इस मौसम में सुरक्षा कवच का काम करता है। तो इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखें और स्वस्थ और सुरक्षित रहें। और अब कार्यक्रम में वक्त हो गया है आप सभी से विदा लेने का। आप सब स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ अनुमति दीजिए आपकी रेडियो दोस्त नेहा जैन को। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम स्वास्थ्य दर्पण। ये कार्यक्रम आकाशवाणी भोपाल का योगदान था। यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। समय है अंतराल का।

इसके साथ ही अंतराल का समय हुआ पूरा। यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए आप सुनिए लोक संगीत के कार्यक्रम में अर्चना खरे से बुंदेली लोकगीत।

इसके साथ ही लोक संगीत का कार्यक्रम समाप्त हुआ। यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए अब सुनिए सुगम संगीत का कार्यक्रम। आज आप सुनेंगे रत्नेश दुबे से ये गजल।

0: अभी आप सुन रहे थे सुगम संगीत का कार्यक्रम। यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। समय है अंतराल का।
1: सुनिए NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे आकाशवाणी भोपाल पर।
2: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
3: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
4: भोर की चौखट पर भक्ति की धारा,
5: ऑफिस जाने की जल्दी मगर देश दुनिया की खबर भी जरूरी।
6: ये आकाशवाणी है, अब आप समाचार सुनिए।
4: ऑफिस या घर से निकलते ही उफ, ये ट्रैफिक।
5: आकाशवाणी है ना,
7: बातों ही बातों में हर सुबह 10 से 11 बना लो पूरी दुनिया को अपना दोस्त।
5: ऑफिस में थोड़ा रिलैक्सिंग म्यूजिकल ब्रेक,
4: शाम सुहानी हो,
8: आकाशवाणी के साथ जुड़िए ना।
5: घर पहुंचते ही थकान, कैसे हो मनोरंजन,
4: आकाशवाणी है ना। चैन की नींद से पहले कुछ भूले बिसरे पल, हर पल
5: सफर में
4: आपके साथ
5: आकाशवाणी।

0: कभी रुलाकर, कभी कहानी बनकर, तो कभी कविता बनकर, कभी कोई तराना तो कभी जिंदगी नामा, कभी खबरें हमारी जिंदगी में रंग भरें। मन की बात, जन जन की बात, 1936 से आकाशवाणी आपके साथ।
1: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, लीजिए अब सुनते हैं।

दूसरा आदमी इस फिल्म का गीत अभी आपने सुना लता मंगेशकर किशोर कुमार की आवाज़ में। गीतकार थे मजरू और संगीत था राजेश रोशन का।

फिर वही दिल लाया हूँ। उस फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे हैं मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में, गीतकार है मजरू और संगीत है ओपी नैयर का।

0: इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम यहीं समाप्त हुआ। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।
1: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार।

नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अफ्रीकी देश सेशल्स की अपनी यात्रा के तीसरे दिन आज विक्टोरिया स्थित नवशक्ति विनायगर मंदिर का दौरा किया और पूजा अर्चना की। उन्होंने वहां रहने वाले भारतीय प्रवासियों से भी मुलाकात की। श्री मोदी ने पीस पार्क में महात्मा गांधी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। इसके बाद श्री मोदी अपना दौरा संपन्न कर दिल्ली के लिए रवाना हुए। कल प्रधानमंत्री मोदी ने सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस समारोह में भाग लिया। ये सेशल्स की स्वतंत्रता की 50वीं वर्षगांठ है। श्री मोदी विशिष्ट अतिथि के रूप में समारोह में शामिल हुए। प्रधानमंत्री को पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास में नेतृत्व के लिए सेशल्स के सर्वोच्च सम्मान गार्जियन ऑफ द ब्लू होराइजन से सम्मानित किया गया था। ये सम्मान पाने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बने। केंद्रीय नवीन और नवकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी और मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव आज नीमच में

500 मेगावाट और शाजापुर में 450 मेगावाट के सौर पार्क का उद्घाटन करेंगे। इस मौके पर परियोजनाओं 440 मेगावाट की सोलर प्लस स्टोरेज परियोजना, पावर परचेज एग्रीमेंट और 1553 करोड़ 98 लाख रुपए की औद्योगिक इकाइयों और विकास कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण भी किया जाएगा। नवीन और नवकरणीय ऊर्जा विभाग के अपर मुख्य सचिव मनु श्रीवास्तव ने बताया कि कार्यक्रम में प्रदेश के नवीन और नवकरणीय ऊर्जा मंत्री राकेश शुक्ला भी उपस्थित रहेंगे। मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री के साथ प्रदेश में नवकरणीय ऊर्जा मंत्री शुक्ला की उपस्थिति में भोपाल में 440 मेगावाट के मुरैना सोलर प्लस स्टोरेज परियोजना का पावर परचेज एग्रीमेंट होगा। उन्होंने बताया कि मुरैना सोलर प्लस स्टोरेज प्रदेश की पहली सोलर ऊर्जा भंडारण परियोजना है। इस परियोजना में 2.70 रुपए प्रति यूनिट की दर निविदा पर प्राप्त हुई है, जो देश में न्यूनतम है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में इस साल के दूसरे रक्षा अलंकरण समारोह में वीरता पुरस्कार प्रदान करेंगी। इस अवसर पर राष्ट्रपति सशस्त्र बलों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेशों के पुलिस कर्मियों को वीरता पुरस्कार प्रदान करेंगी। ये पुरस्कार असाधारण बहादुरी का प्रदर्शन करने वाले नौ सैनिकों को दिए जाते हैं। ये सम्मान देश के आतंकवाद, उग्रवाद और सीमावर्ती क्षेत्रों में चुनौतियों के खिलाफ निरंतर लड़ाई को भी दर्शाते हैं। साथ ही विमानन, समुद्री अभियानों और मानवीय मिशनों में दिखाई गई असाधारण बहादुरी को भी मान्यता दी जाती है। प्रदेश में मॉनसून की रफ्तार फिलहाल थमी हुई है। अभी तक केवल 15 जिलों तक मॉनसून पहुंच पाया है, जबकि 40 जिलों में अभी इसकी आमद नहीं हुई है। इस बीच मौसम विभाग ने आज 6 जिलों में भारी बारिश और कई अन्य जिलों में तेज वर्षा का अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के अनुसार उज्जैन, देवास, छिंदवाड़ा, पांडुर्ना, मंडला और बालाघाट में अगले 24 घंटों के दौरान 4 इंच या उससे अधिक बारिश होने की संभावना है। इसके अलावा भोपाल, रायसेन, सीहोर, राजगढ़, विदिशा, इंदौर, झाबुआ, अलीराजपुर, थार, बुरहानपुर सहित कई जिलों में तेज बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। इससे पहले रविवार को मंदसौर और रतलाम में तेज बारिश हुई, जबकि रतलाम में आधा इंच से अधिक वर्षा दर्ज की गई। इसके अलावा गुना, श्योपुर, बड़वानी, शाजापुर, सीहोर, उज्जैन और छतरपुर सहित कई जिलों में भी बारिश रिकॉर्ड की गई। अब कुछ समाचार संक्षेप में। शिवपुरी जिले में पल्स पोलियो अभियान की शुरुआत कल से हो चुकी है। अभियान के अंतर्गत आज और कल घर घर पोलियो की दवा पिलाने के लिए स्वास्थ्य विभाग के दल पहुंच रहे हैं। खंडवा जिले में आमा खुजरी जंगल में वन भूमि पर दोबारा हुए अतिक्रमण को हटाने के लिए आज सुबह प्रशासन ने बड़े स्तर पर अभियान शुरू किया। वन, राजस्व और पुलिस विभाग के करीब 600 अधिकारी कर्मचारी सुबह 7 बजे से 30 जेसीबी मशीनों के साथ कार्रवाई में जुटे हैं। पन्ना पुलिस ने तत्परता निभाते हुए पवई थाना क्षेत्र से अपहृत एक कपड़ा व्यापारी के 20 वर्षीय बेटे को रात भर चले सर्च ऑपरेशन के बाद सकुशल बरामद कर लिया है। पुलिस ने इस मामले में 3 आरोपियों की पहचान कर ली है, जो फिलहाल फरार हैं। खरगोन जिले की बड़वाह के पास चोरल नदी में अचानक जल स्तर बढ़ने से बीच धारा में फंसे इंदौर के 3 युवकों को स्थानीय पुलिस ने अस्थायी रस्सी के सहारे सुरक्षित बाहर निकाल लिया। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन शाम 7:10 पर। दीजिए इजाजत। नमस्कार।

0: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे दोपहर समाचार, जिसे हम आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित करेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज शाम राष्ट्रपति भवन में वीरता पुरस्कार प्रदान करेंगी। हरियाणा और राजस्थान के बीच यमुना जल बंटवारे की 3 दशक पुरानी परियोजना को मंजूरी मिली। सर्वोच्च न्यायालय ने राम मंदिर दान मामले में कथित वित्तीय अनियमितताओं की अदालत की निगरानी में जांच की मांग वाली जनहित याचिका पर तत्काल सुनवाई से इनकार किया। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने 10वीं कक्षा के वर्तमान बैच को त्रिभाषा नीति से छूट दी। सरकार ने व्यापार सुगमता बढ़ाने के लिए सुधार सूचना तंत्र शुरू किया। दिल्ली में मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण कल से शुरू होगा और फीफा फुटबॉल विश्व कप के पहले नॉकआउट मुकाबले में कनाडा ने दक्षिण अफ्रीका को 1-0 से हराया। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में इस वर्ष के दूसरे रक्षा अलंकरण समारोह

0: में वीरता पुरस्कार प्रदान करेंगी। शाम 5 बजे आयोजित समारोह में सशस्त्र बलों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों तथा राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की पुलिस के बहादुर जवानों और अधिकारियों को उनकी असाधारण वीरता के लिए सम्मानित किया जाएगा। एक रिपोर्ट।
1: इस अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सशस्त्र बलों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेशों के पुलिस कर्मियों को वीरता पुरस्कार प्रदान करेंगी। ये पुरस्कार असाधारण बहादुरी का प्रदर्शन करने वाले सैनिकों को दिए जाते हैं। ये सम्मान देश की आतंकवाद, उग्रवाद और सीमावर्ती क्षेत्रों में चुनौतियों के खिलाफ निरंतर लड़ाई को भी दर्शाते हैं। साथ ही विमानन, समुद्री अभियानों और मानवीय मिशनों में दिखाई गई असाधारण बहादुरी को भी मान्यता दी जाती है। इससे पहले राष्ट्रपति ने इसी महीने की 8 तारीख को राष्ट्रपति भवन में रक्षा अलंकरण समारोह के पहले चरण में वीरता पुरस्कार प्रदान किए थे। समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेशल्स की अपनी 3 दिवसीय यात्रा के बाद स्वदेश के लिए रवाना हो गए हैं। यात्रा के अंतिम दिन श्री मोदी ने विक्टोरिया स्थित नवशक्ति विनयगर मंदिर में दर्शन और पूजा अर्चना की। उन्होंने वहां रहने वाले भारतीय प्रवासियों से भी मुलाकात की। बाद में प्रधानमंत्री ने पीस पार्क में स्थित महात्मा गांधी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सेशल्स की 3 दिवसीय यात्रा दोनों देशों के संबंधों को नई गति देने वाली रही। इस यात्रा के दौरान श्री मोदी ने सेशल्स के राष्ट्रपति डॉक्टर पैट्रिक हरमेनी के साथ द्विपक्षीय संबंधों के विभिन्न पहलुओं पर विस्तार से चर्चा की। दोनों नेताओं ने स्वास्थ्य, शिक्षा, समता निर्माण, समुद्री सुरक्षा और रक्षा जैसे क्षेत्रों में सहयोग को और बढ़ावा देने पर सहमति जताई। साथ ही हिंद महासागर क्षेत्र में अवैध मछली पकड़ने, मादक पदार्थों की तस्करी और समुद्री डकैती जैसी चुनौतियों पर विचार विमर्श किया। यात्रा के दौरान UPI, स्वास्थ्य, कृषि, नौवहन, अंतरिक्ष सहयोग, प्रत्यर्पण और लाइन ऑफ क्रेडिट से जुड़े कई समझौता ज्ञापनों का आदान प्रदान हुआ। इसके साथ ही प्रधानमंत्री मोदी को पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास में उनके योगदान के लिए गार्जियन ऑफ द ब्लू होराइजन से भी सम्मानित किया गया। यह पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास के क्षेत्र में सेशल्स का सर्वोच्च सम्मान है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने कल सेशल्स की नेशनल असेंबली के विशेष सत्र को भी संबोधित किया और ऐसा करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बने। विशाल और विष्णु के साथ अंकित कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल सेशल्स में मॉरिशस के प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन चंद्र राम गुलाम से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने भारत और मॉरिशस के बीच चल रहे सहयोग की समीक्षा की। साथ ही भारत की ओर से दिए गए विशेष आर्थिक पैकेज के तहत चल रही परियोजनाओं की प्रगति पर भी चर्चा की गई। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। गृह मंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में हरियाणा और राजस्थान के बीच जल बंटवारे समझौते को लेकर एक बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा भी उपस्थित थे। इस अवसर पर जल शक्ति मंत्री CR पाटिल ने कहा कि समझौते के अंतर्गत राजस्थान के हिस्से का पानी मानसून के दौरान हथनीकुंड बैराज से पश्चिमी यमुना नहर प्रणाली से होकर गुजरने वाली भूमिगत पाइपलाइन के माध्यम से पहुंचाया जाएगा।
3: इस परियोजना के अंतर्गत हथनीकुंड बैराज से पश्चिमी यमुना शहर के माध्यम से भूमिगत पाइपलाइन द्वारा मानसून के दौरान राजस्थान को उसके हिस्से का जल उपलब्ध कराया जाएगा, जिससे चुरू, सीकर, झुंझुनू तथा राजस्थान के अन्य जल संकटग्रस्त क्षेत्रों को पेयजल की आवश्यकताओं की दीर्घकालिक पूर्ति सुनिश्चित होगी।
0: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने आज त्रिभाषा नीति पर दिशा निर्देश जारी किए। बोर्ड ने कहा कि कक्षा 10वीं के वर्तमान बैच को नई भाषा नीति का पालन नहीं करना होगा। बोर्ड ने यह भी कहा कि कक्षा 7वीं, 8वीं और 9वीं में पढ़ रहे वर्तमान बैच के छात्रों को भी कक्षा 10वीं में पहुंचने पर तीसरी भाषा में बोर्ड परीक्षा देने की आवश्यकता नहीं होगी। बोर्ड ने कहा कि कक्षा के अनुरूप संसाधन सामग्री समयबद्ध तरीके से उपलब्ध कराई जाएगी। नीट UG परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक मामले में दिल्ली की एक अदालत ने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI जांच के अंतर्गत 10 आरोपियों की न्यायिक हिरासत 11 जुलाई तक बढ़ा दी है। आरोपियों को उनकी पिछली न्यायिक हिरासत की अवधि समाप्त होने पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राउस एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया। सर्वोच्च न्यायालय ने आज श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को प्राप्त दान में कथित वित्तीय अनियमितताओं से जुड़ी एक जनहित याचिका पर तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया। याचिका में अदालत की निगरानी में वित्तीय अनियमितताओं की जांच और गहन लेखा परीक्षण की मांग की गई थी। न्यायमूर्ति एमएम सुंदरेश और शीलू नाग की बेंच ने याचिका की तात्कालिकता पर सवाल उठाते हुए कहा कि ग्रीष्मकालीन अवकाश के बाद अदालत के खुलने पर याचिका को सूचीबद्ध किया जाए। सरकार ने विधिक मापन अधिनियम 2009 के अंतर्गत सुधार सूचना व्यवस्था लागू की है। ये प्रावधान जनविश्वास अधिनियम 2026 द्वारा लागू किया गया है। इसके अंतर्गत निर्दिष्ट प्रक्रियात्मक या विनियामक नियमों का पहली बार उल्लंघन करने वाले कारोबारियों पर दंडात्मक कार्रवाई से पहले उन्हें अपनी गलती सुधारने का अवसर दिया जाएगा। एक रिपोर्ट।
4: उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने कहा कि इस सुधार का उद्देश्य व्यापार सुगमता बढ़ाना, स्वैच्छिक अनुपालन को प्रोत्साहित करना, अनावश्यक मुद्दों को कम करना और विश्वास आधारित नियामकीय ढांचे को मजबूत करना है। मंत्रालय ने बताया कि नई व्यवस्था के अंतर्गत विधिक मापन अधिकारी संबंधित संस्थान को सुधार सूचना जारी कर कमियों को दूर करने के लिए उचित समय देंगे। यदि निर्धारित अवधि के भीतर सुधार कर लिया जाता है तो दंडात्मक और कानूनी कार्रवाई से बचा जा सकता है। मंत्रालय ने कहा कि ये व्यवस्था निर्माताओं, आयातकों, पैकरों, डीलरों, मरम्मतकर्ताओं, व्यापारियों, लघु और मध्यम उद्यमों और अन्य विनियमित संस्थाओं पर लागू होगी। मंत्रालय ने कहा कि ये सुधार उपभोक्ता संरक्षण को कमजोर किए बिना पारदर्शी और कारोबार अनुकूलन नियामकीय व्यवस्था सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। विष्णु की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
0: उपराष्ट्रपति और राज्यसभा अध्यक्ष श्री सीपी राधाकृष्णन ने आज संसद भवन में राज्यसभा के 8 नवनिर्वाचित और पुनः निर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाई। इन सदस्यों में कर्नाटक से कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और भाजपा के एम नागराज, पंजाब से भाजपा नेता तरुण चुग, गुजरात से मानसिंह मेरामन परमार और जितेंद्र मेघजी भाई कंजरिया, राजस्थान से डॉ अलका सिंह, मणिपुर से अधिकारी मयूम शारदा देवी और महाराष्ट्र से एनसीपी नेता राजेंद्र हीरालाल जैन शामिल हैं। तमिलनाडु में करूर से एआईएडीएमके विधायक एमआर विजय भास्कर ने आज विधानसभा अध्यक्ष जेसीडी प्रभाकर को अपना इस्तीफा सौंपा। श्री प्रभाकर ने बताया कि उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया गया है। इसके साथ ही विधानसभा से इस्तीफा देने वाले एआईएडीएमके विधायकों की संख्या बढ़कर 7 हो गई है। दिल्ली में विशेष गहन पुनरीक्षण के अंतर्गत घर घर जाकर मतदाताओं को मतदाता गणना प्रपत्र वितरित करने का कार्य कल से शुरू होगा। दिल्ली के मुख्य चुनाव अधिकारी अशोक कुमार ने आज नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में इसकी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि बूथ स्तरीय अधिकारी बीएलओ कल से मतदाता गणना प्रपत्र वितरित करेंगे।
5: जो हमारे लिए डेट है हाउस टू हाउस, जिसमें बीएलओज एक एक घर जाकर सभी इलेक्टर्स को इनुमरेशन फॉर्म डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, वो 30 तारीख से शुरू हो जाएगी और 29 जुलाई तक फॉर्म वापसी की भी डेट है। और इसके लिए जो हमारे 13,033 बूथ्स हैं, वो सभी पे बीएलओज अपॉइंटेड हैं, तो सभी बीएलओज को उनके इनुमरेशन फॉर्म हमने दे दिए हैं, जो कि कल सुबह से अपनी कार्रवाई शुरू कर देंगे। इसके साथ साथ ऑनलाइन फॉर्म भरने की भी सुविधा दी गई है।
0: मतदाता www.voters.eci.gov.in पर ऑनलाइन भी गणना प्रपत्र भर सकते हैं। मध्य गुजरात क्षेत्र पर केंद्रित 2 दिवसीय वाइब्रेंट गुजरात क्षेत्रीय सम्मेलन का आज वडोदरा स्थित जीएसएफसी विश्वविद्यालय में प्रारंभ हुआ। सम्मेलन का उद्घाटन गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और केंद्रीय आवास तथा शहरी मामलों और विद्युत मंत्री मनोहर लाल की उपस्थिति में हुआ। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने औद्योगिक विकास को गति देने में विद्युत क्षेत्र की महत्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि सुदृढ़ योजना के कारण भारत ने इस ग्रीष्मकाल में 271 गीगावाट की रिकॉर्ड चरम बिजली मांग को सफलतापूर्वक पूरा किया। अमेरिका और ईरान जवाबी सैन्य कार्रवाई रोकने और कलकत्ता की राजधानी दोहा में फिर से वार्ता शुरू करने पर सहमत हो गए हैं। इस वार्ता का उद्देश्य होर्मुज जलडमरू मध्य से संबंधित विवाद का समाधान करना है।
6: पिछले कुछ दिनों में दोनों देशों के बीच सैन्य कार्रवाई तेज हो गई थी। अमेरिका ने ईरान पर युद्ध विराम का उल्लंघन करने का आरोप लगाते हुए उसके सैन्य ठिकानों पर हमला किया था। इसके जवाब में ईरान ने बहरीन और कुवैत में अमेरिकी सैन्य अड्डों पर बैलिस्टिक मिसाइलें और ड्रोन से हमले किए। दोनों देश फिलहाल सैन्य कार्रवाई रोकने पर सहमत हुए हैं ताकि हॉर्मुज जलडमरू मध्य से जहाजों की आवाजाही सामान्य बनी रहे। पहले ये वार्ता स्विट्जरलैंड में ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर होनी थी, लेकिन हालात बदलने के बाद इसका स्थान और विषय दोनों बदल दिया गया है। समाचार कक्ष से अमीशा।
0: बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने कहा है कि कानूनी मामलों, मौत की सजा और आवामी लीग की राजनीतिक गतिविधियों पर प्रतिबंध के बावजूद वे इस वर्ष के अंत तक बांग्लादेश लौटेंगी। एक टीवी चैनल को दिए साक्षात्कार में शेख हसीना ने अपने खिलाफ जारी मामलों को राजनीतिक रूप से प्रेरित बताया। उन्होंने कहा कि मौजूदा सरकार न्यायपालिका के बल पर आवामी लीग को देश की राजनीति से बाहर करने का प्रयास कर रही है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने पवित्र अमरनाथ गुफा में प्रथम पूजा संपन्न कर वार्षिक अमरनाथ यात्रा की औपचारिक शुरुआत की। यात्रा 3 जुलाई से प्रारंभ होकर 28 अगस्त को समाप्त होगी। ओडिशा के पवित्र शहर पुरी में आज अद्वितीय आध्यात्मिक उत्साह का माहौल रहा। हमारे संवाददाता ने बताया है कि पुरी में वार्षिक देव स्नान पूर्णिमा के लिए लाखों श्रद्धालु एकत्र हुए।
7: आज पुरी में लाखों भक्तों ने भगवान जगन्नाथ के पवित्र देवस्नान पूर्णिमा समारोह देखा, जो इस साल की रथ यात्रा की उत्सव की औपचारिक शुरुआत है। सदियों पुरानी मंदिर परंपराओं के अनुसार देवताओं को मंदिर परिसर के भीतर स्थित पवित्र सुना कुआ यानी स्वर्ण कुप से लाए गए पवित्र सुगंधित जल के 108 घड़ों से स्नान कराया गया। विस्तृत स्नान के बाद देवताओं को गजानन के रूप में सजाया गया। अब वे अणसर के 2 हफ्ते लंबी अवधि के दौरान एकांतवास में रहेंगे और अगले महीने की 16 तारीख को शुरू होने वाली सालाना रथ यात्रा से पहले नव जौवन दर्शन के लिए फिर से प्रकट होंगे। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: फुटबॉल में फीफा विश्व कप के नॉकआउट चरण में कनाडा ने दक्षिण अफ्रीका को 1-0 से हरा दिया। अमेरिका के लॉस एंजलिस में खेले गए मुकाबले में कनाडा के स्टीफन यूस्टाकियो ने एकमात्र गोल किया। मौसम विभाग ने कल तक पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र और सिक्किम में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, केरल और माहे में बुधवार तक तेज बारिश की संभावना है। अगले 3 से 4 दिन में दक्षिण पश्चिम मानसून के उत्तरी अरब सागर के कुछ हिस्सों, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में ऐसा ही मौसम बने रहने की संभावना है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में लघु व्यवसायों के विकास और उद्यमियों के लिए अवसर विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। परिचर्चा में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के अपर सचिव और विकास आयुक्त डॉ. रजनीश भाग लेंगे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज शाम राष्ट्रपति भवन में वीरता पुरस्कार प्रदान करेंगी। हरियाणा और राजस्थान के बीच यमुना जल बंटवारे की 3 दशक पुरानी परियोजना को मंजूरी मिली। सर्वोच्च न्यायालय ने राम मंदिर दान मामले में कथित वित्तीय अनियमितताओं की अदालत की निगरानी में जांच की मांग वाली जनहित याचिका पर तत्काल सुनवाई से इनकार किया। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने 10वीं कक्षा के वर्तमान बैच को त्रिभाषा नीति से छूट दी। सरकार ने व्यापार सुगमता बढ़ाने के लिए सुधार सूचना तंत्र शुरू किया। दिल्ली में मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण कल से शुरू होगा और फीफा फुटबॉल विश्व कप के पहले नॉकआउट मुकाबले में कनाडा ने दक्षिण अफ्रीका को 1-0 से हराया। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
8: यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए आप सुनते हैं कार्यक्रम आपकी फरमाइश। आपकी फरमाइश के लिए ये पहला गीत सुनना चाहते हैं हमारे ये साथी बोरखेड़ा जिला उज्जैन से विनोद मूणत, नेहा जैन, दीपक मयंक मूणत, चेतन नाहटा, दिलीप सिंह पवार, दीक्षा कुश मूणत, लाबरिया भेरू इंदौर से अनिल बामनिया, प्रमीला बामनिया, नंदनी मुस्कान, नीलम सावन, कृष्ण कुमार, ऋतिक कुणाल, केतन, गांधी चौक रोपड़ पंजाब से हरदेव मीका, बलविंदर बिरक, जयतेंग बिरक, मीका बिरक, इन सभी साथियों ने सुनना चाहा है त्रिशूल फिल्म का ये प्यारा सा गीत, जिसके लिए आवाज़ है लता मंगेशकर, नितिन मुकेश की, गीतकार हैं साहिर और संगीत है खयाम का।

आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आपकी फरमाइश, और आपकी फरमाइश के लिए ये अगला गीत सुनना चाहते हैं हमारी ये साथी कवर कॉलोनी बड़वा से प्रवीण श्रीमाली, मीना श्रीमाली, आदित्य आदित्य, शिवानी श्रीमाली, मीनूराज श्रीमाली, और खंडवा से संजय पंचोलिया, प्रियंका, गुनगुन, संप्रीत, हेमेंद्र, सन्मति पंचोलिया, और धमतरी छत्तीसगढ़ से रामचंद्र माखीजा, सविता माखीजा, काफिर, स्वाति माखीजा, इन सभी श्रोता साथियों ने सुनना चाहा है। और ये प्यारा सा गीत है ये फिल्म आसपास से, जिसके लिए आवाज़ है लता मंगेशकर, किशोर कुमार की, गीतकार हैं आनंद बख्शे और संगीत है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

0: इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आपकी फरमाइश, और आपकी फरमाइश के लिए ये अगला गीत है फिल्म मेरे हमदम मेरे दोस्त से, जिसके लिए आवाज़ है लता मंगेशकर की और गीत लिखा है मजरों ने, संगीत है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का। और सुनना चाहते हैं सिंहपुर बड़ा से राजेश नेमा, संगीता भावना प्राची नेमा, राजकोट से मधुसूदन भट्ट आरती पूजा जासमीन प्रयागराज भट्ट, अमलेश्वर छत्तीसगढ़ से डूमन ठाकुर सुमन ठाकुर मिथिलेश ठाकुर तारिणी ठाकुर सूरज ठाकुर सुजला ठाकुर ज्योति ठाकुर और रियांश ठाकुर।
1: चलो

कार्यक्रम का अगला गीत हमने लिया है फिल्म आपकी कसम से, जिसके लिए आवाज़ है लता मंगेशकर, किशोर कुमार की, गीतकार है आनंद बख्शी, संगीत आर डी बर्मन का। और सुनना चाहते हैं बलिया उत्तर प्रदेश से ओम प्रकाश राय, उषा राय, अमित राय, हैप्पी राय, गाजीपुर से प्रतीक राय, रोशनी राय, प्रांजल राय, और ये साथी हैं बड़खेरा कटनी से संतोष सिंह ठाकुर, सुनील सिंह, अवधेश कुमार दुबे, सुमेर पटेल, शेख जमील मंसूरी और प्रभाकर जोनले, आरती जोनले, ये दो साथी हैं हमारे नांदेड़ महाराष्ट्र से।

आपकी फरमाइश के लिए ये अगली फरमाइश भेजी है हमारे इन सभी साथियों ने। ये साथी हैं औरंगाबाद महाराष्ट्र से राजेश सांबले पाटिल, राजदीप राजेश, राशि राजेश, शीतल राजेश, श्रद्धानंद आर्य, अभयनंद आर्य, परमानंद आर्य बक्सर से, और भाटापारा दत्तरेंगी छत्तीसगढ़ से द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार वर्मा, दीपक कुमार, जावेंद्र कुमार वर्मा। आप सभी श्रोता साथी सुनना चाहते हैं आन मिलो सजना इस फिल्म का ये गीत, जिसके लिए आवाज़ है लता मंगेशकर की, गीतकार हैं आनंद बख्शी, संगीत है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

0: यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है और अब पेश है इस घंटे की खास खबरें।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अफ्रीकी देश सेशल्स की अपनी यात्रा के तीसरे दिन आज विक्टोरिया स्थित नवशक्ति विनायगर मंदिर का दौरा किया और पूजा अर्चना की। उन्होंने वहां रहने वाले भारतीय प्रवासियों से भी मुलाकात की। इसके बाद वे दौरा संपन्न कर दिल्ली रवाना हुए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में इस साल के दूसरे रक्षा अलंकरण समारोह में वीरता पुरस्कार प्रदान करेंगी। इस अवसर पर राष्ट्रपति सशस्त्र बलों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेशों के पुलिस कर्मियों को वीरता पुरस्कार प्रदान करेंगे। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी और मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव आज नीमच में 500 मेगावाट और शाजापुर में 450 मेगावाट के सौर पार्क का उद्घाटन कर रहे हैं। इस मौके पर मुरैना की 440 मेगावाट सोलर प्लस स्टोरेज परियोजना का पावर परचेज एग्रीमेंट भी होगा। सर्वोच्च न्यायालय ने आज श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को प्रावधान में कथित वित्तीय अनियमितताओं की अदालत की निगरानी में जांच और फॉरेंसिक ऑडिट की मांग वाली जनहित याचिका पर तत्काल सुनवाई करने से इनकार कर दिया। प्रदेश में कल से पल्स पोलियो अभियान की शुरुआत हो चुकी है। इस अभियान के अंतर्गत आज और कल घर घर पोलियो की दवा पिलाने के लिए टीम पहुंच रही है। श्री अमरनाथ जी यात्रा जम्मू कश्मीर में 3 जुलाई से शुरू होने वाली है। श्री अमरनाथ यात्रा की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और मौसम विभाग ने आज उज्जैन, देवास, छिंदवाड़ा, पांडुना, मंडला और बालाघाट में 4 इंच और उससे अधिक बारिश होने की संभावना जताई है। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।

शाम 5:33 पर और 6:30 पर सुनिए फिल्म संगीत। एनसीआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम होगा शाम 6 बजे। प्रादेशिक समाचार दर्शन 6:45 पर आप सुनेंगे। और आजकल 6:40 पर

सुर्खियों में ये कार्यक्रम होगा आज रात 8 बजे, 8:15 पर सुनिए फिल्म संगीत, 9:30 पर सुनिए पब्लिक स्पीक जिसे हम आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित करेंगे, रात 10 बजे आप सुन सकते हैं रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा जिसे हम आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित करेंगे। और रात 10:30 पर सुनिए शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम राग रजनी। इस कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे सज्जन लाल ब्रह्म भट्ट से राग यमन कल्याण में ख्याल गायन।

मीडिया 1593 किलोहर्ट्ज़ पर, साथ ही डीटीएच के ऑडियो चैनल और न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर यह आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। 3:03 हुए हैं। हमारी ये सभा यहीं संपन्न होती है। शाम की सभा में 5 बजे हमारी आपसे फिर मुलाकात होगी, पर इस बीच डीटीएच पर हमारा प्रसारण जारी रहेगा।

0: पर भी बात करने वाले हैं, वो
1: बिल्कुल।
0: है व्यसन, जो कि एक गंभीर समस्या बनता जा रहा है।
1: और कथा सुधा के अंतर्गत आज हम सुनेंगे एक आज की कसर, ये
0: जी
1: कहानी सुनेंगे। करवट ली है यहाँ पर ले ली है, और जहाँ पे अभी नहीं ली वहाँ पर भी लेगी, तो क्यों ना पहले एक गीत सुनते हैं फिर हम आगे बढ़ते हैं।
0: ये गीतों के माध्यम से हम हर जगह बरसात को न्योता दे रहे हैं।

0: तो मंजरी जी, ये बात तो हमने कर ली कि बरसे फुहार हर जगह, और अब क्या किया जाए?
1: अब हम सबको कथा सुधा में कहानी जो है हमारी वो सुनाएंगे एक आज की कसर।
0: जी
1: तो लीजिए सब लोग कहानी सुनिए।
2: कथा सुधा, भाव भरी कहानियों का सागर, जिसकी लहरें कभी मुस्कुराहट सजाएंगी तो कभी आंखें नम कर जाएंगी। सामाजिक सरोकार से लेकर परिवार तक की होंगी बातें, कुछ मनोरंजन होगा तो कुछ सीख भी मिल जाएगी। हर बार नई अनसुनी कहानी की अलग अंदाज में होगी बयानी। कहानी की मौलिकता बनाए रखते हुए श्रोताओं के लिए कार्यक्रम रोचक और सुगम हो, इसलिए कहानी में थोड़े बहुत बदलाव किए गए हैं। आशा है आपको कथा सुधा में डूबना अच्छा लगेगा।
0: कथा सुधा में आज सुनिए मुंशी प्रेमचंद की कहानी एक आज की कसर।
3: सारे नगर में महाशय यशोदा नंद का बखान हो रहा था। नगर ही में नहीं, समस्त प्रांत में उनकी कीर्ति की जाती थी। समाचार पत्रों में टिप्पणियां हो रही थीं, मित्रों से प्रशंसापूर्ण पत्रों का तांता लगा हुआ था। समाज सेवा इसे कहते हैं, उन्नत विचार के लोग ऐसा ही करते हैं। महाशय जी ने शिक्षित समुदाय का मुख उज्ज्वल कर दिया। अब कौन ये कहने का साहस कर सकता है कि हमारे नेता केवल बात के धनी हैं, काम के धनी नहीं हैं। महाशय जी चाह

आते तो अपने पुत्र के लिए उन्हें कम से कम 20,000 रुपए दहेज में मिलते, उस पर खुशामद घाते में। मगर लाला साहब ने सिद्धांत के सामने धन की रत्ती बराबर परवाह न की और अपने पुत्र का विवाह बिना एक पाई दहेज लिए स्वीकार किया। वाह वाह, हिम्मत हो तो ऐसी हो, सिद्धांत प्रेम हो तो ऐसा हो, आदर्श पालन हो तो ऐसा हो। वाह रे सच्चे वीर, अपनी माता के सच्चे सपूत, तूने वो कर दिखाया जो कभी किसी ने ना किया था। आज हम बड़े गर्व से तेरे सामने मस्तक नवाते हैं।

0: महाशय यशोदा नंद के दो पुत्र थे। बड़ा लड़का पढ़ लिखकर फाजिल हो चुका था, उसी का विवाह तय हो रहा था और आप सब समझ चुके कि बिना कुछ दहेज लिए। आज तिलक था, शाहजहांपुर से स्वामी दयाल तिलक लेकर आने वाले थे। शहर के गणमान्य सज्जनों को निमंत्रण दे दिए गए थे, लोग जमा हो गए थे, महफिल सजी हुई थी। एक प्रवीण सितारिया अपना कौशल दिखाकर लोगों को मुग्ध कर रहा था। दावत का सामान भी तैयार था। मित्रगण यशोदा नंद को बधाइयां दे रहे थे।
1: वाह भाई यशोदा नंद, तुमने तो कमाल कर दिया।
2: अरे जनाब, ये कहिए कि झंडे गाड़ दिए?
1: हाँ,
2: अब तक जिसे देखा मंच पर व्याख्यान झाड़ते ही देखा। जब काम करने का अवसर आता था तो लोग दुम लगा लेते थे।
1: हाँ, और कैसे कैसे बहाने गाड़े जाते हैं। साहब, हमें तो दहेज से सख्त नफरत है, ये मेरे सिद्धांत के विरुद्ध है, पर क्या करूं, बच्चे की मां नहीं मानती। कोई अपने बाप पर फेंकता है तो कोई और किसी खर्राट पर।
2: अजी, कितने तो ऐसे बेहया हैं जो साफ साफ कह देते हैं कि हमने लड़के को शिक्षा दीक्षा में जितना खर्च किया है वह हमें मिलना चाहिए। मानो उन्होंने ये रुपए किसी बैंक में जमा किए थे।
1: खूब समझ रहा हूं, आप लोग मुझ पर छींटे उड़ा रहे हैं। इसमें लड़के वालों का ही सारा दोष है या लड़की वालों का भी कुछ है?
2: अरे भाई साहब, लड़की वालों का क्या दोष है सिवाय इसके कि वह लड़की का बाप है।
1: सारा दोष ईश्वर का, जिसने लड़कियां पैदा की। क्यों?
2: मैं ये नहीं कहता न सारा दोष लड़की वालों का है न सारा दोष लड़कों वालों का, दोनों ही दोषी हैं। अगर लड़की वाला कुछ न दे तो उसे यह शिकायत करने का कोई अधिकार नहीं कि डाल क्यों नहीं लाए, सुंदर जोड़े क्यों नहीं लाए, बाजे गाजे पर धूमधाम के साथ क्यों नहीं आए। बताइए।
1: हाँ, आपका ये प्रश्न गौर करने लायक है। मेरी समझ में तो ऐसी दशा में लड़के के पिता से ये शिकायत नहीं होनी चाहिए।
2: तो यूं कहिए कि दहेज की प्रथा के साथ ही डाल, गहने और जोड़ों की प्रथा भी त्याज्य है। केवल दहेज को मिटाने का प्रयत्न करना व्यर्थ है।
1: हाँ हाँ, सही है।
3: ये भी लेम एक्सक्यूज है, मैंने दहेज नहीं लिया है। लेकिन क्या डाल गहने न ले जाऊंगा?
1: महाशय, आपकी बात निराली है। आप अपनी गिनती हम दुनिया वालों के साथ क्यों करते हैं? आपका स्थान तो देवताओं के साथ है।
4: 20,000 की रकम छोड़ दी, क्या बात है।
3: हाँ, मेरा तो यह निश्चय है कि हमें सदैव प्रिंसिपल पर स्थिर रहना चाहिए। प्रिंसिपल के सामने मनी की कोई वैल्यू नहीं है। दहेज की कुप्रथा पर मैंने खुद कोई व्याख्यान नहीं दिया, शायद कोई नोट तक भी नहीं लिखा। हाँ, कॉन्फ्रेंस में इस प्रस्ताव को सेकंड कर चुका हूं। मैं उसे तोड़ना चाहूं भी तो आत्मा तोड़ने न देगी। मैं सत्य कहता हूं, ये रुपये लूं तो मुझे इतनी मानसिक वेदना होगी कि शायद मैं इस आघात से बच भी ना सकूं।
1: आपके कॉन्फ्रेंस आपको सभापति न बनाए तो उसका घोर अन्याय है।
3: हाँ, मैंने अपनी ड्यूटी कर दी, उसका रिकॉग्निशन हो या ना हो मुझे इसकी परवाह नहीं।
0: इतने में खबर हुई कि महाशय स्वामी दयाल आ पहुंचे। लोग उनका

0: अभिवादन करने के लिए तैयार हुए। उन्हें मसनद पर ला बिठाया और तिलक का संस्कार आरंभ हो गया। स्वामी दयाल ने एक ढाक के पत्तल पर नारियल, सुपारी, चावल, पान आदि वस्तुएं वर के सामने रखी। ब्राह्मणों ने मंत्र पढ़े, हवन हुआ और वर के माथे पर तिलक लगा दिया गया। तुरंत घर की स्त्रियों ने मंगलाचरण गाना शुरू किया। यहाँ महफिल में महाशय यशोदा नंद ने एक चौकी पर खड़े होकर दहेज की कुप्रथा पर व्याख्यान देना शुरू किया। व्याख्यान पहले से लिखकर तैयार कर लिया गया था। उन्होंने दहेज की ऐतिहासिक व्याख्या की।
1: पूर्व काल में दहेज का नाम भी न था महाशयों। कोई जानता ही न था कि दहेज या ठहरोनी किस चिड़िया का नाम है। सत्य मानिए, कोई जानता ही न था कि ठहरोनी क्या चीज है। पशु या पक्षी, आसमान में या जमीन में, खाने में या पीने में। बादशाही जमाने में इस प्रथा की बुनियाद पड़ी। हमारे युवक सेनाओं में सम्मिलित होने लगे। ये वीर लोग थे, सेनाओं में जाना गर्व समझते थे। माताएं अपने दुलारों को अपने हाथ से शस्त्रों से सजाकर रण क्षेत्र भेजती थी। इस भांति युवकों की संख्या कम होने लगी और लड़कों का मोल तोल शुरू हुआ। आज ये नौबत आ गई है कि मेरी इस तुच्छ महातुच्छ सेवा पर पत्रों में टिप्पणियां हो रही हैं, मानो मैंने कोई असाधारण काम किया है। मैं कहता हूं, अगर आप संसार में जीवित रहना चाहते हो तो इस प्रथा का तुरंत अंत कीजिए।
2: मेरे मन में एक शंका है, क्या इसका अंत किए बिना हम सब मर जाएंगे?
1: अगर ऐसा होता तो क्या पूछना था, लोगों को दंड मिल जाता। और वास्तव में ऐसा होना चाहिए। ये ईश्वर का अत्याचार है कि ऐसे लोभी, धन पर गिरने वाले, बुर्दा फरोश, अपनी संतान का विक्रय करने वाले नराधम जीवित हैं और समाज उनका तिरस्कार नहीं करता, मगर ये सब बुर्द फरोश हैं।
0: व्याख्यान बहुत लंबा और हास्य भरा हुआ था। लोगों ने खूब वाह वाह की। अपना वक्तव्य समाप्त करने के बाद उन्होंने अपने लड़के परमानंद को मंच पर खड़ा किया। उसे उन्होंने एक छोटा सा व्याख्यान लिखकर दे रखा था। मुस्कुराता हुआ मंच पर आया और एक जेब से कागज निकालकर बड़े गर्व के साथ उच्च स्वर में पढ़ने लगा।
3: प्रिय बंधुवर नमस्कार, आपके पत्र से विदित होता है कि आपको मुझ पर विश्वास नहीं है। मैं ईश्वर को साक्षी करके धन आपकी सेवा में इतनी गुप्त रीति से पहुंचेगा कि किसी को लेश मात्र भी संदेह न होगा। हाँ, केवल एक जिज्ञासा करने की धृष्टता करता हूँ। इस व्यापार को गुप्त रखने से आपको जो सम्मान और प्रतिष्ठा लाभ होगा और मेरे निकटवर्ती में मेरी जो निंदा की जाएगी उसके उपलक्ष्य में मेरे साथ क्या रियायत होगी। मेरा विनित अनुरोध है कि 25 में से 5 निकाल कर मेरे साथ न्याय किया जाए।
0: महाशय यशोदा नंद घर में मेहमानों के लिए भोजन परसने का आदेश करने गए थे। निकले तो ये वाक्य उनके कानों में पड़ा, चेहरा फक हो गया। झपट कर लड़के के पास गए, कागज उसके हाथ से छीन लिया और बोले,
1: नालायक, ये क्या पढ़ रहा है? ये तो किसी मुवक्किल का खत है जो उसने अपने मुकदमे के बारे में लिखा था। ये तू कहां से उठा लाया? शैतान, जा वो कागज ला जो मैंने तुझे लिख कर दिया था।
4: पढ़ने दीजिए, इस तहरीर में जो लुत्फ है वो किसी दूसरी तकरीर में ना होगा।
2: सही बात है, जादू वो जो सिर चढ़ के बोले।
4: भाई अब जलसा बर्खास्त कीजिए, मैं तो चला।
2: वाह वाह वाह वाह, यहाँ

0: अभी चलते हुए? अरे
1: अरे बैठिए बैठिए, पत्तल लगाए जा रहे हैं। अरे बैठिए ना आप लोग, बैठिए बैठिए।
0: बेटा परमानंद, जरा यहां तो आना। सुनो, तुमने यह कागज कहाँ पाया?
2: बाबूजी ही तो लिखकर अपने मेज के अंदर रख गए थे, मुझसे कहा था कि इसे पढ़ना, अब बेकार मुझसे खफा हो रहे हैं।
1: वो ये कागज था, मैंने तो मेज के ऊपर ही रख दिया था। तूने ड्रॉर में से क्यों निकाला इस कागज को?
2: मुझे मेज पर नहीं मिला।
1: तो मुझसे क्यों नहीं कहा? ड्रॉर क्यों खोला? देखो आज मैं तुम्हारी कैसे खबर लेता हूं, तुम भी याद करोगे।
3: अरे भाई, ये और क्या है, इसी को तो लीडरी कहते हैं कि अपना उल्लू सीधा करो और नेक नाम भी बनो।
0: शर्म आनी चाहिए, यह त्याग से मिलता है, समझे? धोखाधड़ी से नहीं।
3: मिल तो गया था, पर बस एक आंच की कसर रह गई।
0: सच बताऊं, ईश्वर पाखंडियों को यों ही दंड देता है।
4: ये कहते हुए लोग उठ खड़े हुए। यशोदानंद समझ गए कि भंडा फूट गया, अब रंग न जमेगा। बार बार परमानंद को कुपित नेत्रों से देखते और डंडा तौलकर रह जाते थे। इस शैतान ने आज जीती जिताई बाजी जो खो दी थी। मुंह में कालिख लग गई, सिर नीचा हो गया। गोली मार देने का काम किया है। उधर रास्ते में मित्र वर्ग यूं टिप्पणियां करते जा रहे थे।
3: ईश्वर ने मुंह में कैसी काली मां लगाई कि हयादार होगा तो अब सूरत ना दिखाएगा।
5: ऐसे ऐसे धनी मानी विद्वान लोग ऐसे पतित हो सकते हैं? मुझे यही आश्चर्य है। लेना है तो खुले खजाने लो, कौन तुम्हारा हाथ पकड़ता है? ये क्या कि माल चुपके चुपके उड़ाओ और यश भी कमाओ?
0: मक्कार का मुंह काला।
3: हाँ, यशोदानंद पर बड़ी दया आ रही है। बेचारे ने इतनी धूर्तता की, उस पर भी कलई खुल ही गई। बस एक आंच की कसर रह गई।
6: एक आज की कसर, मुंशी प्रेमचंद की ये कहानी आपने सुनी कथा सुधा में। इस कहानी में भाग लेने वाले कलाकार रेणु चतुर्वेदी, जी श्याम, जयंत पात्रिकर, यूनुस खान और दीपक केसावलेकर। प्रस्तुति अनुश्री पाठक। परिकल्पना और निर्देशन रेणु चतुर्वेदी। तो मंजरी जी, क्या संदेशप्रद कहानी थी?
7: बहुत अच्छी लग रही थी सुनकर, बहुत अच्छा लग रहा था। तो हमारे सभी साथियों को भी बहुत पसंद आई होगी, है ना? तो अब सुनते हैं गीत, उसके बाद हम अपने विषयों पर चर्चा करेंगे।
6: जी।

0: तो मंजरी जी, सब गीत सुन लिए, कहानी सुन ली, लेकिन बातें कब होंगी ये बताइए।
1: भाई बातें तो हमारा जो विषय है व्यसन एक गंभीर
0: जी
1: समस्या है नेहा। और आज के समय में जो ये नशा है केवल एक बुरी आदत नहीं बल्कि समाज के सामने एक गंभीर चुनौती बन चुका है।
0: जी
1: और विशेष रूप से युवाओं और युवतियों में कुछ लोग इस आदत को जो है वो आधुनिकता स्टाइल और फैशन का प्रतीक मानने लगे हैं। और नई पीढ़ी जिसे जेंजी का नाम दिया गया है वो इन आदतों को हाई सोसाइटी के संग स्टेटस सिंबल मान रही है। उसे लगता है कि ये जो आदत है इसको करने में कोई बुराई नहीं है, ये तो मॉडर्न समाज का फैशन है। देर रात तक पार्टी क्लब रिसॉर्ट्स में दोस्तों संग मादक पदार्थों का नशीले पदार्थों का सेवन करना, डांस करना, जश्न मनाना, उनको लगता है कि बस एक तो ये तो एक जस्ट एक एंजॉयमेंट है, फन है। लेकिन सच्चाई ये है कि इस आदत को कभी फैशन नहीं माना जा सकता
0: जी
1: है, ना ही ये हो सकता है। और ये एक ऐसा व्यसन है जो धीरे धीरे व्यक्ति के स्वास्थ्य, परिवार, करियर और पूरे समाज को नुकसान पहुंचाता है।
0: बिल्कुल, क्योंकि शुरुआत में तो कई लोग दोस्त के दबाव में आके या फिर दिखावा होता है या कोई कभी कभी जिज्ञासा होती है या तनाव हो जाता है तो उससे बचने के लिए मद्यपान करते हैं, धूम्रपान करते हैं, तंबाकू या अन्य नशीले पदार्थों का वो सेवन करते हैं और लगता है कि उनका व्यक्तित्व अधिक आकर्षक इससे दिखाई देगा और स्वीकार किए जाएंगे लोगों के बीच, जैसे लोगों के बीच वो रह रहे हैं। लेकिन तथाकथित ये जो फैशन है धीरे धीरे आदत और फिर लत में बदल जाता है और ये जो लत है वो बड़ी नुकसान करती है, जैसे कि आपने कहा स्वास्थ्य पर नुकसान है, शरीर के साथ साथ मानसिक संतुलन भी इससे प्रभावित होता है, निर्णय लेने में बहुत ही परेशानियां आती है, पढ़ाई में मन नहीं लगता, काम में मन नहीं लगता, आर्थिक समस्याएं भी पड़ती हैं, परिवार में हो तो तनाव पैदा हो जाता है, कई बार इसकी वजह से अपराध, सड़क दुर्घटना और हिंसा जैसी घटनाएं भी बढ़ जाती हैं। इससे
1: बिल्कुल
0: संबंधित और बातें करेंगे लेकिन एक अंतराल ले लें।

0: अंतराल के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है विविध भारती पर। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम
1: सखी सहेली और बातें चल रही थी कि हम ये जो गंभीर समस्या है व्यसन की,
0: हाँ।
1: तो नेहा इसमें क्या होता है कि जब ऐसी लत को आप लेकर के चलते हैं, ड्राइव करते हैं, तो उसके साथ साथ आप रील बनाने लग जाते हैं, वीडियो बनाकर
0: हाँ।
1: ब्लैकमेल करना भी एक आदत शुमार हो जाती है लोगों की, और शोषण करना जैसी बातें कितनी आए दिन होती रहती है, हम खबरों में भी देखते हैं, और इससे वो लोग अपनी जिंदगी से हाथ धो बैठते हैं।
0: जी।
1: लेकिन हमारे जो युवा युवतियां हैं वो इतनी न्यूज़ सुनने के बाद भी, समाचार सुनने के बाद भी, वो
0: जी
1: लोग जागते नहीं, जागरूक नहीं होते, सतर्क

0: नहीं होते कि उन्हें इन चीजों से दूर रहना चाहिए।
1: हाँ
0: और सोचो उन माता पिता पर क्या बीतती होगी जब इस स्थिति में उनका बेटा या बेटी फंस जाते हैं, तो बहुत ही शर्मिंदगी की बात होती है। उनके अच्छा नहीं लगता है कि परिवार की इस तरह से सब जगह वैसी बातें हो रही हैं उनके बारे में। तो बच्चों को ये चीज़ सोचना चाहिए। और इसके लिए क्या है कि आप इसको फैशन, मतलब अगर मानते हैं तो बहुत ही गलत बात है, ये
1: जी
0: फैशन नहीं है, फैशन आप और चीज़ों का कीजिए,
1: जी
0: लेकिन ये चीज़ इन चीज़ों से आप दूर रहिए। और अपनी अपनी जो अच्छी शिक्षा है, जो आपको पिता माता चाहते हैं कि आपका बच्चा, मेरा बच्चा अच्छा पढ़े लिखे, तो उस तरफ ध्यान दीजिए। आप अच्छी शिक्षा लीजिए, स्वस्थ जीवन शैली अपनाइए, खेल संगीत साहित्य और रचनात्मक कार्य कीजिए, जिससे कि आपका नाम रोशन है, ना कि आप इस वजह से आपके नाम को कहा जाए कि ये
1: जी
0: बच्चा गलत लत का शिकार है, ऐसा ना करें,
1: और
0: है ना?
1: कई बार इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि परिवार में, विद्यालय में, समाज में, सब हम मिलकर अगर युवाओं को इसके दुष्प्रभावों के बारे में अगर हम बताएं, या मित्रों का सही चुनाव कैसे करना चाहिए, या उनका जो तनाव है, तनाव तो सभी को होता है, तो तनाव का सकारात्मक रूप से कैसे समाधान कर सकते हैं, कैसे खुद को आत्मसंयमित हो सकते हैं कि नहीं, जो अगर हमारे साथी नशा कर रहे हैं या ऐसे लोगों के आसपास हम हैं या ऐसी चीज़ें हमें आकर्षित करनी है, तो कैसे खुद को हम ये बताएं कि नहीं, ये चीज़ सही नहीं है, तो हमें इससे
0: बिल्कुल
1: बचना है। तो इसके लिए आत्मसंयम बहुत ज़रूरी है। और जब हम देखते हैं कि क्या आजकल अगर हम देखते हैं तो ऐसा लगता है कि जो ये व्यसन है, नशा है, वो एक नई पहचान की तरह आते जा रहा है, कि मान लीजिए सिगरेट है या नशीले पदार्थ हैं, तो उनका सेवन करना आधुनिकता मानी जाती है। ऐसा लगता है कि वह कितनी अच्छी तरह से, कितने अच्छे लग रहे हैं,
0: बिल्कुल
1: ऐसा युवाओं का जो नज़रिया बदल रहा है उसके लिए ही वो उस तरफ ज़्यादा आकर्षित हो रहे हैं। फिर अगर ऐसा हो रहा है, क्योंकि उसके तो पैकेट्स में ही सारी लिखे होते हैं
0: लिखे
1: कि
0: रहे
1: क्या क्या
0: साथ
1: नुकसान हो सकते हैं
0: नुकसानदेह।
1: उसके, और अगर हम देखें तो इसके बहुत सारे दुष्परिणाम ही हैं जो आसपास भी दिख जाएंगे अगर वो देखते हैं
0: बिल्कुल
1: तो। बहुत सी गंभीर समस्याएं होती हैं, कभी कभी लोग कहते हैं कि स्टेटस है या कूल दिखते हैं हम इससे, तो ये जो चीज़ें हैं वो सोशल मीडिया के ज़रिए या फिल्मों के ज़रिए कई बार, क्योंकि फिल्मों में भी बताया जाता है कि किसी खास किरदार को दिखाने के लिए उस तरह की चीज़ें करना
0: दिखाते हैं।
1: लगता है उन्हें ज़रूरी, तो इस वजह से वो पूरा जो एक शुरुआत में बताया जाता है, स्पष्टीकरण दिया जाता है कि इस तरह का कोई भी काम वो व्यक्ति नहीं करे, एक किरदार को दिखाया जा रहा है,
0: बिल्कुल।
1: तो
0: और नेहा
1: उस किरदार में आपको क्यों ढलना है।
0: क्यों ढलना है, और
1: जी
0: नेहा जब कोई इस तरह की चीज़ों को लेता है तो उसका जो धुआं है वो सामने वाला अगर नहीं लेता है तो
1: जी
0: उसके, वो सांस तो ले रहा है ना, तो उसके लंग्स में जा रहा है, तो कहीं ना कहीं उसके फेफड़ों को भी नुकसान हो रहा है। आप
1: जी
0: अपना तो नुकसान कर ही रहे हैं लेकिन आपके साथ दूसरे को भी नुकसान हो रहा है। अब घर
1: हाँ
0: में आप अगर आप ले रहे हैं तो बच्चे भी देख रहे हैं, बच्चों को भी लंग्स में जा रहा है, तो
1: जी
0: कहीं ना कहीं पूरे परिवार को इससे क्षति होती है। तो हमारे जो युवा बच्चे युवतियाँ हैं उनको कहना चाहिए कि वो सतर्क रहें, इस तरह की आदतों से दूर रहें। और हमारे साथी में देखो लिखते हैं कि व्यसन एक दीर्घकालीन गंभीर मानसिक बीमारी है जो मस्तिष्क की कार्य प्रणाली को बाधित करता है। किसी को धूम्रपान, तंबाकू सेवन या कैफी पदार्थ पीने का व्यसन हो जाता है जो शरीर और दिमाग को काफी नुकसानदायी होता है। आजकल एक नया व्यसन चल रहा है मोबाइल का, जिसका ज्यादा उपयोग करने से आंखों के साथ गर्दन के लिए भी काफी नुकसानदेह हो सकता है। व्यसन कोई भी हो, उनके अधीन होने में खुद का नुकसान ही होता है, इसीलिए इससे दूरी बनाने में ही समझदारी है। अगर आपको व्यसन रखना है तो रेडियो का रखिए, विद भारती पर मनभावन गीत संगीत सुनना सबसे बड़ा फायदेमंद होगा। तो बहुत अच्छी सी बात आपने
1: जी
0: अंत में लिख दी है, तो बच्चों को सोचना चाहिए।
1: बिल्कुल। तो कुछ अच्छी चीज़ों का हम, क्योंकि किसी भी चीज़ की अगर लत लगती है तो वो ऐसे, हालांकि लत को बुरी चीज़ों, बुरी आदतों के साथ ज़्यादा जोड़ा जाता है, फिर भी अगर हम जोड़ रहे हैं हमारे साथी कि संगीत के साथ आप कर सकते हैं, या पढ़ने के साथ अलग अलग किताबों का आप शौक पाल सकते हैं, उसके प्रति आप उतने ज़्यादा दीवानगी पाल सकते हैं कि बस
0: बिल्कुल
1: उसको आप, उसके लिए आप कुछ भी करने को तैयार हैं, तो फिर भी आपके व्यक्तित्व का विकास होगा, कुछ ना कुछ आपके लिए फ़ायदेमंद ही
0: बिल्कुल
1: होगा। हमारे एक साथी लिखते हैं कि व्यसन एक दीर्घकालीन समस्या है जो आपके जीवन के कई पहलुओं को प्रभावित कर सकती है, जिनमें शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य, रिश्ते और करियर शामिल है, और इसमें मादक पदार्थों के सेवन से संबंधित विकार, ये दो मुख्य प्रकार उन्होंने बताया व्यसन के, और व्यवहार संबंधी व्यसन। तो इसका इलाज लेकिन संभव है, जितनी जल्दी हो उतनी जल्दी इलाज कर लेना चाहिए, यानी कि व्यसन मुक्ति के भी बहुत से केंद्र हैं वहाँ अगर आप जाकर, क्योंकि अगर आपको आदत हो गई तो उसे छुड़ाना भी आवश्यक है, तो
0: बिल्कुल
1: एक अच्छी तरह से अगर आप छुड़ाते हैं तो आसानी से आप उससे बच सकते हैं। वहीं वो कह रहे हैं कि मस्तिष्क का एक दीर्घकालिक रोग है जो सीखने और बार बार पर होने वाले व्यवहारों को प्रभावित करता है। इसे आमतौर पर किसी विशेष पदार्थ पर निर्भरता के रूप में पहचाना जाता है जो आदतन उपयोग को प्रेरित करता है, लेकिन अन्य बाहरी कारकों जैसे घटनाओं से भी संबंधित ये हो सकता है। जैसे इसके लक्षण उन्होंने बताते हुए लिखा है कि तीव्र लालसा होती है, आत्मनियंत्रण खो सकते हैं, वापसी के लक्षण होते हैं।

0: यानी कि अगर एक बार आपने छोड़ दिया उनका जो भी मूल तत्व जो कहना चाह रहे हैं, तो एक बार अगर आपने छोड़ दिया तो खुद को उसी स्थिति में बनाए रखना थोड़ा कठिन भी हो सकता है, क्योंकि आपके मन में फिर से वो लालसा हो सकती है कि एक बार फिर से क्यों ना उसे चखा जाए या फिर से क्यों ना उस ओर बढ़ा जाए। तो वहां आत्मसंयम रखना बहुत जरूरी है। छोड़ना फिर भी आसान है, लेकिन छोड़े रहना थोड़ा मुश्किल है, तो वहां संयम बनाए रखना बहुत जरूरी है।
1: बिल्कुल, और अगर आप मन में ठान लेंगे तो आप कर भी सकते हैं, उससे दूरी बना भी सकते हैं। हमारे साथी और लिखते हैं कि व्यसन एक गंभीर समस्या है, स्मार्टफोन का व्यसन एक बड़ी चुनौती है। स्वयं शिस्त और सेल्फ कंट्रोल एक ही उपाय है। जिन्होंने ये फोन बनाया था उनको भी ये बात पता थी, उन्होंने एक राक्षस बना दिया है। 3-4 साल के बच्चों के हाथ में स्मार्टफोन देखता हूँ तो दुख होता है, चर्चा के इंतजार में, इन्होंने लिखा है। कथा सुधा एक आज की कसर सुनेंगे इन्होंने, तो वो तो हमने सुना ही दी है।
0: तो ये सब तो हमने सुन लिया, लेकिन एक गीत भी तो सुने।

0: तो देखो
1: जीवन की
0: भाई,
1: बात बताता है ये गीत कितना अच्छा मंजे जी, है ना
0: बिल्कुल, एक दूसरे के प्रति समर्पित होना ये बहुत बड़ी बात है। इस
1: जी।
0: गीत से भी संदेश मिलता है। और देखा जाए, विवाह जो है वो बंधन नहीं, रिश्तों को समझने का सबसे सुंदर एक सफर है। अक्सर लोग विवाह को बंधन कह देते हैं नेहा, लेकिन सच तो
1: हाँ
0: ये है कि विवाह किसी को बांधने का नहीं, बल्कि दो अलग अलग व्यक्तियों को समझने और स्वीकार करने का नाम है। ये ऐसा रिश्ता है जहाँ केवल दो लोग ही नहीं, बल्कि दो परिवार, दो संस्कृतियाँ, दो आत्मीय और दो सोच एक साथ चलना सीखती हैं।

0: और विवाह का अर्थ अपनी पहचान खो देना नहीं, बल्कि एक दूसरे की पहचान का सम्मान करना है। जहाँ प्रेम हो, भरोसा हो, विश्वास हो और संवाद हो, वहाँ विवाह कभी बंधन नहीं लगता है। बंधन तो तब महसूस होता है जब रिश्ते में अधिकार अधिक और अपनापन कम हो जाए, है
1: वाकई
0: ना?
1: मंजरी जी, और एक सफल वैवाहिक जीवन की अगर हम बात करें तो उसकी नींव ही इस बात पर है कि जो पति पत्नी हैं वो एक दूसरे को बदलने की कोशिश ना करें, बल्कि एक दूसरे को समझने की और स्वीकार करने का प्रयास करें। हर व्यक्ति अपनी परवरिश, अपनी सोच और अनुभवों के साथ ही आता है, और इसलिए मतभेद होना तो स्वाभाविक है, लेकिन मन भेद नहीं होना चाहिए। कहीं हो
0: बिल्कुल
1: सकता है वो कुछ अलग काम करते हों, आप कुछ अलग तरह से जीवन जी रहे हों, तो ये समझिए कि उनकी उनकी वो आदतें हैं। एक खास
0: बिल्कुल
1: उम्र तक आप पहुंच चुके हैं और वो भी, तो एक जो आदतें हैं वो नहीं बदलती हैं, तो उन्हें
0: बिल्कुल,
1: स्वीकार जितनी जल्दी किया जाए
0: वो
1: वही
0: भी
1: सब
0: अच्छा है। और
1: है
0: दोनों को
1: जी।
0: पहल करनी पड़ती है इस
1: हाँ
0: रिश्ते में। रिश्ते तब मजबूत होते हैं जब छोटी छोटी बातों पर संवाद होता है, जब गलती होने पर अहंकार नहीं बल्कि क्षमा आगे आती है, और जब वो खुशी के साथ साथ कठिन समय भी में नेहा एक दूसरे का हाथ
1: हाँ
0: थामे रहते हैं, कभी एक दूसरे से कुछ नहीं छुपाए, झूठ नहीं बोले, हमेशा सच बोले। यदि कोई अपनी लाइफ में तीसरा दखल देने की सोच रहा है तो उसके बारे में पति को बताए, जिससे मुसीबतों से बचा जा सकता है। यानी कि विवाह को कोई कोई जो है वो कैद नहीं है, बल्कि एक ऐसी साझेदारी है जहाँ दोनों का सम्मान समान सम्मान होता है, समान अधिकार है, और अपने सपनों को पूरा करने का अवसर मिलता है। इसमें मैं से अधिक हम का भाव होता है, लेकिन हम बनाते हुए किसी को मैं खोना भी नहीं चाहिए। यानी
1: जी
0: जब शादी के लिए वो समय आए, तो जब शादी कर रहे हैं तो उसको निभाने के बारे में सोचना चाहिए। ये
1: जी
0: नहीं कि आज किया और कल हम अलग हो रहे हैं, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, है
1: जी
0: ना?
1: जहां तक संभव हो आपको ये देखना चाहिए कि ऐसा ना हो कि एक छोटी सी
0: हाँ
1: बात पर आपने इसे बहुत बड़ा बना लिया। आपको हर पहलू का, हर नजरिए को देखना
0: बिल्कुल
1: जरूरी है, और उसे उस सोच के साथ ही आगे बढ़ने की कोशिश करें। और हमारे साथी लिख रहे हैं कि विवाह को एक नैतिक सामाजिक बंधन माना जाता है, ना कि बोझ। विश्वास, प्यार और सहयोग के नाजुक रेशमी रिश्तों में बंधा हुआ जड़तारी वस्त्र यानी शादी ब्याह है। उसे तहे दिल से निभाना पति और पत्नी दोनों का कर्तव्य है। दो अनजान राहों का एक हो जाना, सुख दुख में एक दूसरे का हाथ थामना, यही विवाह की असली खूबसूरती है। और उन्होंने तो वो भी कहा, वट पूर्णिमा की पूजा भी आज है, जो प्रेम, समर्पण, त्याग और आत्मविश्वास की पवित्र सीख देती है,
0: क्या बात
1: और
0: है
1: वैवाहिक बंधन से जुड़ी हुई ये एक
0: जी,
1: बहुत ही अच्छी परंपरा है।
0: बिल्कुल। और हमारे साथी एक लिखते हैं कि विवाह केवल दो लोगों का साथ नहीं, बल्कि दो दिलों, दो परिवारों और दो जीवन यात्राओं का सुंदर मिलन है। इसे बंधन कहना उचित नहीं, क्योंकि सच्चा विवाह प्रेम, विश्वास, सम्मान और आपसी समझ पर टिका होता है। जब पति पत्नी एक दूसरे की भावनाओं, सपनों और परिस्थितियों को समझते हैं, तभी उनका रिश्ता मजबूत बनता है। जीवन में मतभेद आ सकते हैं, लेकिन संवाद, धैर्य और सहयोग हर कठिनाई को आसान बना देते हैं। विवाह का वास्तविक अर्थ एक दूसरे को बदलना नहीं, बल्कि एक दूसरे को स्वीकार करना और हर परिस्थिति में साथ निभाना है। इसलिए विवाह बंधन नहीं, बल्कि रिश्तों को समझने, संजो और प्रेम से निभाने की एक खूबसूरत यात्रा है नेहा।
1: वही हमारे एक साथी लिखते हैं कि विवाह का बंधन का मतलब बंधन नहीं है, अपने रिश्ते को समझें। कुछ लोग शादी तो कर लेते हैं पर शादी के बाद नए रिश्तों को अपना नहीं पाते, खासकर कन्या। वो लोग शादी कर लेती हैं ससुराल को और ना ही अपने सास ससुर को जल्दी अपना पाती हैं, समय लगता है। रिश्ते नहीं समझती बल्कि एक बंधन समझती हैं, अब हम इस रिश्ते से बन चुके हैं। लेकिन वो सच्चे दिल के रिश्ते हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। ये नहीं समझते कि अरे अभी हमें रिश्ता निभाना है, ये बंधन है, ऐसा नहीं होना चाहिए। कह रहे हैं कि अपने माता पिता की तरह ही उन्हें माने और उनके साथ रहें। और वो आगे कहते हैं कि ससुराल वालों से भी ये कहना चाहेंगे कि लड़के के ससुराल वाले हों या लड़की के ससुराल वाले, दोनों को ही टाइम दें। लड़के के लिए भी नया होता है दामाद बनना, और नए लोगों को माता पिता का दर्जा देना थोड़ा समय लगता है। ये लड़कियों के लिए भी नया होता है, ये नहीं कि आज आप थोप दें कि हमारा रिश्ता जुड़ गया है तो आप हमारे अनुसार, हमारे नियमों के अनुसार रहें, तो इसमें समय लगता है। तो ये बहुत
0: बिल्कुल
1: ही अच्छी तरह से इन्होंने दोनों नजरिया पेश किया, क्योंकि
0: बिल्कुल
1: आमतौर पर लड़कियों के लिए इसलिए मुश्किल होता है क्योंकि वो अपना घर बार छोड़कर नए घर में जा रही हैं और उन्हें तो पूरे समय वहां
0: पूरे
1: रहना है,
0: समय ना
1: जबकि जो नए दामाद बने हैं उन्हें तो कभी कभी ही आना है। तो
0: जी
1: कभी कभी आने में तो इंसान 2-3 दिन तो फिर भी चला सकता है, लेकिन अगर आपको पूरे दिन वहां रहना है तो बहुत सारे नियम कानून अगर नए तुरंत ही दे दिए जाए
0: दे
1: उन
0: दिए
1: पर,
0: जाए तो वो घबरा
1: तो वो एक
0: जाते हैं।
1: घबराहट होती है और ऐसा लगता है कि क्या ये मेरा घर नहीं है। वो जो
0: बिल्कुल,
1: एक मन में स्थिति आती है ना कि भाई ये मेरा घर नहीं है, क्या इतनी सारी चीजें ये सब करना है।
0: और सब लोग देखो उम्मीद भी
1: हाँ
0: लगा लेते हैं उस नई लड़की से कि
1: जी
0: ये तो आएगी तो हर काम कर लेगी, सबकी उम्मीदों
1: जी
0: पे
1: जी
0: खरी
1: जी जी
0: उतरेगी। तो ऐसा नहीं है, आप लोग मिलके काम करिए तो उस बच्चे को भी अच्छा लगेगा।
1: जी
0: और हमारे साथी लिखते हैं, विवाह बंधन नहीं, रिश्तों को समझे। आज की युवा पीढ़ी विवाह के पवित्र रिश्ते को जिस सरलता से ले रही है, आज हर माता पिता और परिवार के बड़ों के लिए अत्यंत आवश्यक हो गया है कि नई पीढ़ी को विवाह के पवित्र

रिश्ते का महत्व समझाए। विवाह पति पत्नी का रिश्ता अंतिम सांस तक का होता है। पति और पत्नी दोनों को एक दूसरे के मिसाल कायम करनी चाहिए ताकि दोनों में प्रेम बढ़े। और हम सोचते हैं एक गीत सुन लिया जाए नेहा।

0: तो
1: तो
0: नेहा,
1: ये जब शादी ब्याह की बातें होती है तो नाच गाने की और सब बातें भी हो जाती हैं,
0: बिल्कुल
1: लेकिन असली जो भी होता है मौका तो उसके बाद ही होता है, क्योंकि निभाना तो उसके बाद ही
0: बिल्कुल है। और बहुत खुशी खुशी निभाइए अपने रिश्ते को, है ना। तो हमारे एक साथी लिखते हैं कि विवाह को एक नैतिक सामाजिक बंधन माना जाता है, ना कि बोझ। विश्वास, प्यार और सहयोग के नाजुक रेशमी रिश्तों में बंधा युवा जर तारी वस्त्र यानी शादी ब्याह है, उसे तहे दिल से निभा पाती पति और पत्नी दोनों का कर्तव्य निभाना, मतलब दो अनजान राहों का एक हो जाना, सुख दुख में एक दूसरे का हाथ थामना, यही विवाह की असली खूबसूरती है। देखो ना, आज की सती सावित्री वाली वट पूर्णिमा की पूजा भी है, ये तुमने मेरे ख्याल से ये वाला
1: जी।
0: संदेश लिया
1: और
0: था।
1: हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि विवाह को एक समझौता या बोझ मानने के बजाय इसे जीवन को सुंदर बनाने का एक जरिया समझना चाहिए। जब दो लोग एक दूसरे को बिना किसी शर्त के समझने का प्रयास करते हैं, तब विवाह बंधन नहीं बल्कि एक खूबसूरत सफर बन जाता है।
0: बिल्कुल। और एक लिखते ही, विवाह दो आत्माओं का स्वैच्छिक मिलन है, ये कोई बंधन नहीं है, ये दो लोगों के बीच बराबरी और सम्मान का रिश्ता है। एक अच्छा विवाह दोनों पार्टनर्स को व्यक्तिगत रूप से बढ़ने में मदद करता है। वाकई में जब आपकी शादी होती है, आपका

0: पार्टनर है तो एक दूसरे के साथ अपने विचार साझा करते हैं, और हम कहीं मुसीबत में होते हैं तो वो हमें संभालता है, उसको परेशानी होती है तो हम संभालते हैं। तो
1: जी
0: कहना चाहिए सुख दुख तो देखो आते ही रहते हैं जीवन में, लेकिन हमें उन्हें कैसे निभाना है वो हमें सीखना चाहिए शादी के बाद। वही बहुत ज़रूरी होता है कि एक दूसरे को बातों को समझें और कुछ भी ना छुपाएं। आप
1: जी
0: सच बोले तो हमेशा आपकी बात को वो समझेंगे कि हाँ ये हमेशा सच बोलती है, तो
1: जी
0: इससे आपका एक विश्वास भरोसा बढ़ेगा आपके ऊपर।
1: इससे एक आपकी जो एक आपका एक व्यक्तित्व है उनके सामने क्लियर सही तरीके से आएगा कि ये जो भी बोलना है, चाहे वो बात अच्छी लग रही हो ना लग रही हो, या वो बात कैसी भी हो, ये सच हमें बता देंगे, या
0: बिल्कुल
1: ये सच हमें बता देंगे जो भी है दोनों के लिए। तो एक तरह से देखिए, हमारे साथियों ने इतने सारे कमेंट्स किए तो सब में उन्होंने यही कहा है कि मिलजुल कर अगर रहें और आपसी सामंजस्य बिताएं, एक दूसरे को वक्त दें, और एक दूसरे के साथ जो दूसरा साथी अगर थोड़ा बदल भी रहा है वक्त के साथ तो उसे स्वीकार करें, क्योंकि हर व्यक्ति बदलता है।
0: बिल्कुल
1: तो बस समझकर चलने से एक दूसरे के साथ ही यही विवाह का एक कह सकते हैं कि मूल मंत्र है।
0: मूल मंत्र
1: विवाह को अच्छी
0: है
1: तरह से
0: जी।
1: बंधन नहीं है, लेकिन साथ चलने का नाम है विवाह, जिसमें
0: अब देखो विवाह जब कर ही लिया है तो पति को क्या पसंद है वो भी समझें, क्योंकि कहते हैं कि अगर दिल जीतना है तो खाना वाना अच्छा सा बनाइए और दिल जीत लीजिए। तो
1: खाना तो बनाएंगे लेकिन गाना कब सुनाएंगे?
0: तो चलो पहले गाना सुना देते हैं।
1: बिल्कुल।

0: तो
1: तो
0: देखो,
1: मनाने का तो सबसे अच्छा तरीका यही है कि कुछ खिलाया जाए. अच्छा अच्छा
0: चलो
1: है
0: फिर
1: ना.
0: बना देते हैं दाल की कचौड़ी।
1: हाँ
0: इसके लिए मैदा लेंगे और 2 कप मैदा लेंगे, और इसमें घी या तेल जो है वो मोयन के लिए डालेंगे, नमक डालेंगे और इसको हम गूथ लेंगे। और जो भरने की सामग्री है उसके लिए उड़द की दाल बिना छिलके वाली 1/2 कप, ये करीब 3-4 घंटे भीगी हुई, और इसको पीस के रख लें जब भीग जाए अच्छे से।
1: जी
0: और बेसन इसमें लगेगा 2 चम्मच, सौंफ दरदरी और 1 चम्मच साबुत धनिया कुटा हुआ, 1 चम्मच जीरा, 1/2 चम्मच हींग, 1 चुटकी लाल मिर्च पाउडर, 1/2 चम्मच गर्म मसाला, 1/4 चम्मच अमचूर पाउडर और नमक स्वाद के अनुसार आप लीजिए, और तलने के लिए तेल। और बस जो आपने आटा गूंथ कर रखा है मैदा वगैरह उसको उसको एक बार और वापस गूंथ लीजिए। और इधर जो आपने भरावन था उसको आपको भीगी हुई उड़द की दाल को बिना पानी डाले दरदरा पीस लीजिए। एक पैन में तेल गरम करिए, इसमें हींग जीरा सौंफ धनिया और बेसन डालकर भूने। इसके बाद पिसी हुई दाल डालें और सभी मसाले जो हैं वो मिर्च, लाल मिर्च, गरम मसाला, अमचूर डालकर धीमी आँच पर इसको तब तक भूने जब तक मिश्रण पूरी तरह से सूखा और भुरभुरा ना हो जाए। और इसमें आप नमक भी डाल दीजिएगा, नहीं मालूम पड़ा नमक भूल गए, है ना।
1: हाँ
0: और जब ये अच्छे से भून जाए तो आपने जो मैदे का आटा तैयार किया था उसकी लोई बनाइए, दाल को भरिए और कचौड़ी को धीमी धीमी आँच पर आप तल लीजिए, है ना। और इसको खाया जाता है आलू की रसेदार सब्जी के
1: वो
0: साथ।
1: हम रेसिपी बताएंगे, पर एक बात यह है कि आपने कहा ना

0: कि कहीं नमक डालना भूल गए। अगर भरावन में आप नमक डालना भूल गए तो बिल्कुल भी बुरा मत नहीं, जिसको आईबीपी हो उसे आप खिला सकते हैं बड़ी आसानी से।
1: हाँ, लेकिन जिसको नमक जिसको फीकी लगेगी वो यही कह रही है क्या बना दिया।
0: तो आलू की सब्जी के लिए उबले हुए आलू चाहिए 4 से 5, हाथ से आप उसको बड़े टुकड़े कर सकते हैं। टमाटर 2 बारीक कटे हुए, हरी मिर्च 2-3 बारीक कटी हुई, अदरक 1 इंच, हींग आधा छोटा चम्मच, मसाले चाहिए 1 छोटा चम्मच जीरा, 1 छोटा चम्मच सौंफ और मेथी का दाना आधा छोटा चम्मच, और पाउडर जो मसाले चाहिए वो हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर और लाल मिर्च पाउडर आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, बाकी दोनों 1-1 छोटा चम्मच आप डाल सकते हैं, और नमक आपके स्वाद के अनुसार। अमचूर पाउडर भी इसमें डालिए 1 छोटा चम्मच, और 1 छोटा चम्मच गरम मसाला तेल आपको 2 बड़े चम्मच लगेंगे। सरसों का तेल अगर डालें तो बहुत अच्छा लगेगा। हरा धनिया बारीक कटा हुआ चाहिए। तो तेल गरम किए कढ़ाई में, हींग जीरा सौंफ और मेथी दाना डालकर उसको तड़काइए, और इसमें कटी हुई हरी मिर्च अदरक और कटे हुए टमाटर डाल दीजिए, और टमाटर थोड़ा नरम होते तक इसको पकाना है। फिर हल्दी धनिया लाल मिर्च पाउडर और नमक डाल दीजिए, और मसालों को तब तक भूनिए जब तक तेल ना छोड़ दें। फिर इसमें आलू डालिए हाथ से फोड़ कर, और आलू डालने के बाद थोड़ी देर 1-2 मिनट तक उसको अच्छे से चलाइए, और उसके बाद 2-3 कप पानी डालिए। अंत में आप अमचूर पाउडर डाल दीजिए, और गरम मसाला डालना है तो भी डाल सकते हैं। हरा धनिया डालें, गर्मा गर्म आलू की सब्जी तैयार है। कचौड़ियाँ तो बन ही चुकी हैं,
1: बिल्कुल।
0: तो आप दोनों ये सारी चीज़ें खाइए, और देखिए समय ऐसा बता रहा है कि आप समोसा और जो छोले की जो रेसिपी थी ना, समोसा बना हुआ लाइए, छोले अपने घर में अपने हिसाब से बनाइए, दोनों को मिलाकर खाइए।
1: बिल्कुल
0: जी,
1: तो बस कार्यक्रम से लेते हैं विदा। तो सभी को मंजरी वर्मा और
0: नेहा शर्मा का नमस्कार।

0: सखी सहेली
1: कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक।
0: सखी सहेली।

0: आज के सेहतनामा कार्यक्रम में आप सुनेंगे जाने माने गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट डॉक्टर गौरव मेहता से ममता सिंह की बातचीत का दूसरा और अंतिम भाग।
1: नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आपकी रेडियो सखी ममता सिंह। अपने श्रोताओं को बताते हैं कि आज मुंबई के कोकिलाबेन हॉस्पिटल के जाने माने गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट डॉक्टर गौरव मेहता हमारे साथ विविध भारती के स्टूडियो में हैं और आज पेट की बीमारियों के बारे में और फैटी लिवर के बारे में जानकारी दे रहे हैं। हमारे श्रोताओं की ओर से भी डॉक्टर साहब कुछ सवाल आए हैं। एक तो IBS के बारे में सवाल था, एसिडिटी के बारे में बहुत सारे श्रोताओं ने लिखा जिस पर हमने चर्चा की ही, और कुछ श्रोताओं ने लिखा है कि हमें पेट में दर्द रहता है और सारे जांच करवा लिए लेकिन फिर भी सब कुछ रिपोर्ट नॉर्मल आई, फिर भी पेट में दर्द रहता है, इसकी क्या वजह हो सकती है? एक तो इन्फेक्शन, तो उसकी भी दवा कर चुका हूँ फिर भी तकलीफ नहीं जा रही है।
2: तो जब जो पेट का दर्द होता है उसके कई कई कारण होते हैं। अगर पेट का दर्द ज़्यादा देर तक रहे तो क्लियरली इन्फेक्शन तो हो नहीं सकता
1: जी।
2: एक दूसरी बात ये भी हमारे यहाँ कि हम एंटीबायोटिक बहुत जल्दी ले लेते हैं। कोई भी दर्द हुआ, पेट में दर्द हुआ, एक दो लूज मोशन हमने एंटीबायोटिक ले ली, तो वो हमको अवॉइड करना चाहिए। एंटीबायोटिक शुड बी टेकन ओनली एज अ लास्ट रिसोर्ट। अगर कुछ नहीं ठीक हो तो एंटीबायोटिक फॉर शॉर्ट पीरियड्स ऑफ टाइम। पेट के दर्द के अगेन कई कारण होते हैं। एसिडिटी से किसी को पेट में दर्द हो सकता है, पेट में अल्सर हो सकता है, तो पेट में और कई ऑर्गन्स होते हैं, पैंक्रियाज होता है, पैंक्रियाज में अगर तकलीफ हो जाए, जो अल्कोहल पीते हैं उससे पेट में कभी कभी अल्सर हो सकता है, पेट में पैंक्रियाटाइटिस हो सकता है, अगर कॉन्स्टिपेशन हो उससे पेट में दर्द हो सकता है, पार्ट ऑफ इरिटेबल बाउल सिंड्रोम जो मैंने पहले कहा था IBS, उसमें भी पेट में दर्द हो सकता है। तो पेट का दर्द इज़ अ वेरी वेरी ब्रॉड टॉपिक, उसमें बहुत से कारण होते हैं। अगर पेट का दर्द थोड़े दिनों तक रहे और चला जाए तो उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। अगर पेट का दर्द जारी रहे, दो से तीन दिन तक पेट का दर्द जारी रहे, उसके साथ अगर आपको बुखार आए या वॉमिटिंग हो, लूज मोशन हो या कॉन्स्टिपेशन हो, तब डॉक्टर को दिखाना चाहिए, क्योंकि ये कुछ सीरियस प्रॉब्लम भी हो सकती है। फॉर एग्जांपल अपेंडिसाइटिस। अपेंडिसाइटिस का सबसे इम्पॉर्टेंट सिम्टम पेट का दर्द होता है। तो डोंट इग्नोर पेट का दर्द, एक दो दिन तक हो तो घर के नुस्खे कर सकते हैं, मगर अगर कोई अलार्म सिम्टम्स हो जैसे बुखार, वॉमिटिंग, तब डॉक्टर को दिखाइए।
1: जी, तो ये आपने बड़ी ज़रूरी बात कही है और उसमें यहाँ बहुत सारे लोग घरेलू इलाज करने लगते हैं। घरेलू इलाज की व्यवस्था तब थी जब मेडिकल साइंस एडवांस नहीं था। आज जब मेडिकल साइंस उपलब्ध है तो सीधे डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। और डॉक्टर साहब, हम एसिडिटी की बात जब कर रहे थे तो वहाँ मेरे जहन में एक बात आई कि बहुत सारे लोग एसिडिटी के शिकार होते हैं। क्या एसिडिटी का असर गले पर भी पड़ता है, थ्रोट पर, या आवाज़ पर भी पड़ता है? हमने सुना है कि आवाज़ फटने लगती है, ख़राब होने लगती है, इसके बारे में जानकारी दीजिए हमारे श्रोताओं को।
2: बिल्कुल सही कहा आपने। जब एसिडिटी बहुत ज़्यादा हो जाए तो एसिड ऊपर आके गले को इरिटेट करता है और गले में हमारे वोकल कॉर्ड्स होते हैं जहाँ से हमारी आवाज़ निकलती है। स्पेशली जब हम रात को सो जाएं, नींद में हो, और अगर आपको एसिड रिफ्लक्स हो तो ये गले में आके गले को इरिटेट करता है। कई पेशेंट कहते हैं गले में दर्द हो रहा है, किसी किसी की आवाज़ बदल जाती है। तो नॉर्मली ये सारे पेशेंट पहले ENT को जाके देखते हैं, ये गला ख़राब है। ENT जब अपना कैमरा डाल के गले में देखता है तो उनको पता चलता है कि जहाँ से खाने की पाइप शुरू होती है वहाँ पर काफ़ी लाल हो चुका है, विच टेल्स यू कि ये एसिड रिफ्लक्स के कारण है। तो एसिड रिफ्लक्स से गला ख़राब हो सकता है, एसिड रिफ्लक्स से गले की आवाज़ जा सकती है, ऐसे लगता है हमको हमेशा कि गले में कुछ अटका हुआ है। तो एसिड रिफ्लक्स कैन कॉज ऑल दिस प्रॉब्लम्स इन पेशेंट्स।
1: तो मतलब आवाज़ की दुनिया में जो लोग काम कर रहे हैं और उन्हें अगर एसिडिटी की समस्या है तो फौरन जागृत हो जाएं और डॉक्टर से संपर्क करें। और बात आवाज़ की चली है तो एक गाना है, मेरी आवाज़ ही पहचान है, अगर ये गाना आप कहें तो हम सुनवाएं।
2: बिल्कुल बिल्कुल, बढ़िया गाना है, बहुत सुनना चाहिए,
1: सुनते हैं।

0: डॉक्टर साहब, गाने के बाद हमारे श्रोताओं को बताइए, बीच में पेट के अल्सर का भी जिक्र किया था, और पेट के अल्सर के हालांकि अब तो लोग डॉक्टर्स कहते हैं कि बहुत आसान है इलाज, लेकिन जिस मरीज को होता है वो बहुत जल्दी घबरा जाता है। तो क्या अल्सर का इलाज दवाइयों से भी संभव है या ऑपरेशन करना ज़रूरी होता है?
1: नहीं, आज के ज़माने में तो हम अल्सर का ऑपरेशन करते ही नहीं हैं,
0: जी
1: क्योंकि अभी इतनी बढ़िया दवाइयाँ निकल रही हैं जो अल्सर की ट्रीटमेंट टैबलेट से हो जाती है। पर क्वेश्चन है कि अल्सर क्यों हो रहे हैं? अगर आज के ज़माने में अल्सर हो तो हमको ढूंढना चाहिए क्यों होते हैं
0: क्यों हो
1: अल्सर।
0: रहा है?
1: ज़्यादातर अल्सर होते हैं जब हम पेन किलर्स बहुत खा लें, जैसे कभी जोड़ों का दर्द हो गया, हेडेक हो गया, तो लोग पेन के दवाइयाँ लेते रहते हैं,
0: जी
1: तो पेन मेडिसिन से अल्सर होने की संभावना बहुत हाई रहती है। स्ट्रेस से भी अल्सर हो सकता है, उसको स्ट्रेस अल्सर्स बोलते
0: जी
1: हैं। एसिडिटी से भी अल्सर हो सकता है, और रेयरली रेयरली पेट का अल्सर एक साइन ऑफ कैंसर भी हो सकता है। द रीज़न हम अभी आजकल सर्जरीज नहीं कर रहे, क्योंकि जो एसिडी की दवाइयाँ हैं वो अगर आप खाओ तो मोस्ट अल्सर्स 6 से 8 हफ्ते के अंदर मिट जाते हैं। तो पुराने ज़माने में ये दवाइयाँ नहीं होती थी, तो अल्सर लोगों के चले रहते थे, जबकि फट जाए तो सर्जरी कराओ। आज के ज़माने में अल्सर की सर्जरी इज़ ऑलमोस्ट अनहर्ड ऑफ, दवाइयों से 6 से 8 हफ्ते में मोस्ट अल्सर्स ठीक हो जाते हैं।
0: जी, तो ये बहुत सही बात आपने बताई है, लेकिन अल्सर की पहचान कैसे करें, मतलब मरीज को कैसे पता चले कि उसे अल्सर है, क्या सिम्टम होते हैं खासतौर से?
1: नॉर्मली अल्सर में आपको पेट में, जहाँ पेट शुरू होता है, छाती के जस्ट नीचे बीच में सेंटर में पेन होगा।
0: जी
1: कभी कभी ये पेन खाने के बाद हो सकता है, कभी कभी ये पेन खाने से पहले हो सकता है, कभी कभी पेशेंट को वॉमिटिंग होती है और वॉमिटिंग में ब्लड भी आ सकता है,
0: जी
1: कभी कभी ये ब्लीडिंग मोशन में भी हो सकती है। काला कलर का अगर मोशन हो गया मतलब पेट में अल्सर की ब्लीडिंग हो रही है, तो ये संभावना हो सकती है। अगर आपको ब्लीडिंग हो जाए, वॉमिटिंग हो जाए ब्लड की, पेट में दर्द हो जो खाने के बाद या खाने के पहले हो, दैट टेल्स यू कि आपके पेट में अल्सर होने की संभावना काफ़ी हाई है।
0: जी और एक बहुत बड़ी समस्या है, हमारे श्रोताओं की ओर से भी सवाल है, ये नींद और पेट की बीमारियों का क्या संबंध है, कि बहुत कम नींद लेके आजकल लोग काम करते हैं बहुत टेंशन में, तनाव में, तो उसका क्या असर पेट पर पड़ता है?
1: हाँ बिल्कुल सही, बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि अगर हम ठीक से सोए ना, अगर हमारी नींद पूरी ना हो, तो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम पूरा ख़राब हो जाता है। हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम भी एक क्लॉक पे काम करता है, सुबह उठते हैं, मोशन होता है, और फिर पेट खाली होता है, फिर पूरे दिन हम खाना खाते हैं, अगले दिन फिर से सोते हैं, हमारी साइकिल रीसेट होती है, अगेन नेक्स्ट दिन मोशन होता है। चूँकि स्लीप साइकिल खराब हो या लेट सोते हैं, लेट उठते हैं, ये स्लीप पैटर्न खराब हो जाता है। तो कॉन्स्टिपेशन इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो हम देखते हैं आजकल के युवाओं में, जो लेट नाइट बैठे रहते हैं, जंक फूड खाते हैं, फाइबर कम खाते हैं, कॉन्स्टिपेशन होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं स्लीप डिप्राइव्ड पेशेंट को, जब स्लीप पैटर्न ठीक ना हो। अगर आप टाइम पे नहीं सो, खा के तुरंत सो गए, तो एसिडिटी की संभावना ही काफ़ी ज़्यादा होती है। और अगर हम टाइम पे ना सोए, 7 से 8 घंटे नींद पूरी ना करें, तो हमको शुगर होने के चांसेस भी होते हैं ज़्यादा, फैटी लिवर के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं। तो स्लीप इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप, दर्शक देख नहीं रहे कि मेरे हाथ में एक रिंग पहनी हुई है मैंने, ये मेरी स्लीप रिंग है, ये मुझे कहती है कि मैं कितना सोया हूँ कल रात को,

0: ठीक से सोया हूँ कि नहीं, अगर मेरी नींद पूरी नहीं हुई है तो ये मुझे कहेगी कि मैंने नेक्स्ट दिन मुझे इतने बजे सोना है। अगर मैं इसको फॉलो करूँ अपने स्लीप पैटर्न को, तो मेरा पेट भी ठीक रहता है, एसिडिटी भी नहीं होती, वेट भी कंट्रोल में रहता है। अगर आप स्लीप पैटर्न्स को ठीक करें तो अपने वेट को भी कंट्रोल कर सकते हैं।
1: तो ये तो बहुत ज़रूरी बात आपने बताई है, क्योंकि आजकल तो सोने का किसी का समय फिक्स नहीं होता है, तो शिफ्ट ड्यूटी करने वाले लोगों को पेट की समस्या ज़्यादा होती है कुछ ऐसा?
0: बिल्कुल, या एब्सोल्युटली बिल्कुल। हमारे ओपीडी में काफ़ी कंपनी के पेशेंट्स आते हैं जो अर्ली मॉर्निंग शिफ्ट ख़त्म करके आते हैं हमारे पास देखने, और मोस्टली सबको इधर कॉन्स्टिपेशन की तकलीफ रहती है या एसिडिटी की तकलीफ रहती है, एंड दिस इज़ रिलेटेड टू द शिफ्ट वर्क। तो आई थिंक शिफ्ट वर्क पेशेंट्स को डेफिनेटली ज़्यादा प्रॉब्लम होती है।
1: जी, हमारे एक श्रोता की ओर से सवाल है कि ये गट फ्लोरा क्या होता है?
0: गट फ्लोरा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ जो अभी लास्ट एटलीस्ट 10 साल से डिस्कवर हुई है। जो हमारा पेट इंटेस्टाइन होता है उसमें कई तरह के बैक्टीरिया होते हैं,
1: जी
0: जो हम सिंपल टर्म्स में देर इज गुड बैक्टीरिया एंड देर इज बैड बैक्टीरिया। जो गुड बैक्टीरिया हो अगर ज़्यादा हो तो डाइजेशन ईजी हो जाता है, गुड बैक्टीरिया ज़्यादा हो तो ओवरऑल बॉडी का फंक्शनिंग बेटर होता है।
1: जी
0: तो बहुत
1: जी
0: बार अगर हमको लूज मोशन हो, हमने एंटीबायोटिक ले ली, तो हमारे गुड बैक्टीरिया मर जाते हैं। जब वो मर जाते हैं तो पेट के मसले और बढ़ जाते हैं, लूज मोशन ज़्यादा होता है, पेट ठीक नहीं लगता, पेट का दर्द होता है। तो इसके लिए प्रोबायोटिक्स डेवलप हुई हैं गुड बैक्टीरिया जो हम देते हैं
1: जी
0: इंटेस्टाइन्स को, एंड इट हेल्प्स नॉट ओनली मेक द इंटेस्टाइन डाइजेस्ट फूड बेटर बट ऑल्सो इम्प्रूव इम्यूनिटी, बॉडी की इम्यूनिटी को भी ठीक करता है गुड बैक्टीरिया।
1: जी तो उसके लिए जो प्रोबायोटिक दवाएं आती हैं वो लेना
0: तो मैं तो
1: पड़े?
0: कहूँगा कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट गुड बैक्टीरिया और गुड प्रोबायोटिक्स जो हमारे घर में है ना, फर्मेंटेड फूड्स और दही,
1: दही?
0: दही से अच्छा कोई प्रोबायोटिक नहीं है। बट ऑब्वियसली अगर ये आप नहीं ले सकते, बहुत लोग दही नहीं खाते या फर्मेंटेड फूड्स नहीं टॉलरेट कर सकते, तो उनके लिए देर इज गुड बैक्टीरिया अवेलेबल टू टेक, यू कैन टेक इट ऑलमोस्ट डेली।
1: जी, बहुत बढ़िया। यहाँ पर एक गाना सुनते हैं डॉक्टर साहब, बताइए कौन सा गाना सुनवाएं?
0: तो ये एक बहुत पुराना सॉन्ग है, बहुत पुरानी मूवी कर्ज का, दर्दे दिल दर्दे जिगर, ये गाना
1: क्या
0: मुझे
1: बात
0: बहुत
1: है,
0: पसंद है।
1: आशिक बनाया आपने, बढ़िया गाना है, सुनते हैं यही गाना।

0: गाने के बाद डॉक्टर साहब, हमारे श्रोताओं की ओर से एक सवाल है कि फैटी लिवर की समस्या है, इसे योगासन से क्या ठीक कर सकते हैं और एक्सरसाइज से दवाओं के साथ साथ कर सकते हैं क्या, किस तरह के एक्सरसाइज?
1: बिल्कुल, जैसे मैंने कहा कि अगेन पेशेंट जब हमारे पास आते हैं, दवाई नहीं देनी है, हमने पहले एक्सरसाइज देनी है। तो एक्सरसाइज इंक्लूड योगा, योगा के साथ एक्सरसाइज है जिससे आपका हार्ट रेट बढ़े, एक्सरसाइज है जिससे आपको पसीना आए, जिससे आपके कैलोरीज बर्न हो। तो खाली योगा नहीं, योगा के साथ ऐसी एक्सरसाइजेज जिसके आपसे आपका हार्ट रेट बढ़े, एरोबिक एक्सरसाइजेज जो बोलते हैं हम
0: जी,
1: ना,
0: जी.
1: साथ में योगा इज गुड बिकॉज योगा से मसल बनती है। तो अगर मसल बढ़ाओगे तो आपका फैटी लिवर जल्दी जाएगा।
0: जी बिल्कुल. क्या पतले लोगों को भी, जो बहुत दुबले पतले होते हैं, उनको भी फैटी लिवर होता
1: हाँ
0: है?
1: बिल्कुल, इनफैक्ट उनको जो फैटी लिवर होता है वो और नुकसान डेंजरस होता है, उसको हम लीन नैश बोलते हैं।
0: जी
1: पहले हमको लगता था कि जिसका वेट ज़्यादा हो उनको ये बीमारी होती है, पर अगर आप देखा जाओ कंट्रीज लाइक जापान जहाँ पे लोग काफ़ी पतले हैं, पर उधर इंसिडेंस ऑफ फैटी लिवर बहुत ज़्यादा है, उसको हम लीन नैश बोलते हैं। जो
0: जी
1: हमें लगता है कि हम सब, जैसे इंडियन पॉपुलेशन को ले लो, सारे सॉर्ट ऑफ दुबले पतले, पतले हाथ पतले पैर होते हैं, मगर जो मेन फैट होता है वो बेली में होता है, मेरे जो तोंद जो बोलते हैं सबकी निकल आती है, वो फैट इज अ मोस्ट डेंजरस फैट। तो आपका हाथ पैर पतला होगा, आप पतले लगोगे, मगर अगर आपका स्कैन करेंगे हम, सीटी स्कैन एमआरआई, तो पूरा फैट है वो पेट के अंदर आएगा, एंड दैट इज अ फैट विच इज अ मोस्ट डेंजरस फैट। तो इसको लीन नैश बोलते हैं। ये पेशेंट्स को भी फैटी लिवर के साथ सिरोसिस होने की संभावना ज्यादा होती है।
0: जी. और पेट के इन्फेक्शन के बारे में बताइए कि क्यों इन्फेक्शन होता है? किसी किसी को बार बार इन्फेक्शन होता है, बार बार लूज मोशन, कई कई बार लूज मोशन के लिए जाना पड़ता है, तो इसके बारे में हमारे श्रोताओं को बताइए.
1: अगेन लॉट ऑफ इट इज हमारी इम्यूनिटी कैसी है, हम क्या कैसा खाना खा रहे हैं। जैसे मैं अपने पेशेंट्स को बोलता हूँ जिनको लूज मोशन दोबारा दोबारा होता है, मेक श्योर आप कुक्ड खाना खाओ, साफ सुथरा खाना खाओ। अगर आप बाहर रेस्टोरेंट में जा रहे हो तो अवॉइड द चटनी, समोसा खा लो या जो भी खाना है, रोटी सब्जी खा लो, पर सलाद मत लो। बट अगर ये इमोशन दोबारा दोबारा होता रहे, दैट कुड मीन अ साइन ऑफ अदर मेडिकल प्रॉब्लम। जैसे आपको पेट के इंटेस्टाइन के अल्सर हो सकते हैं, एक तरह की बीमारी बोलते हैं IBD, इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज, जिसमें इंटेस्टाइन्स में और बड़ी आंतरी में छाले होते हैं, उसे दोबारा दोबारा लूज मोशन हो सकते हैं, कभी ब्लीडिंग हो सकता है, कई फूड एलर्जीज होते हैं जिसके कारण नौजिया, वॉमिटिंग, लूज मोशन हो सकते हैं, जैसे मैंने कहा सीलैक डिजीज, ग्लूटिन एलर्जी। तो अगर ये सिम्टम्स थोड़े दिन तक रहे तो वी कैन मैनेज, पर अगर ये दोबारा दोबारा होते रहे तो मेक श्योर यू सी योर गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट और थोड़ा बेसिक चेकअप कराओ कि कोई और बीमारी ना हो, जिसको ट्रीटमेंट बिल्कुल अलग होती है।

0: जी। और एक बात डॉक्टर साहब, ये भी बताइए कि जो अमूमन एक्सरसाइज से सेहत अच्छी होती है, लेकिन पेट की एक्सरसाइज, ख़ास तौर से जो योगा करते हैं, उनमें बहुत सारे ऐसे हैं जो पेट की बहुत फास्ट फास्ट एक्सरसाइज करते हैं, पेट को फुलाना पचाना, ये कहाँ तक कारगर है, सही है या गलत है?
1: हाँ, इसमें भी ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि बहुत रिगरस स्टमक की एक्सरसाइज करना भी अच्छी नहीं है। पेट की जो हमारी लाइनिंग है, उसमें दो बड़े मसल्स होते हैं। वो मसल्स को अगर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेच करो तो आगे जाके वो वीक हो जाते हैं, और मसल के बीच का जोड़ निकल जाता है, और हर्ने होने के रिस्क होते हैं, पेट भार आ जाता है ज़्यादा उल्टा। तो यू हैव टू बी केयरफुल, जो भी एक्सरसाइज करो ध्यान से करो, अंडर सुपरविजन करो, सही तरीके से करो। अगर उसको ठीक से नहीं करोगे, ज़्यादा जोर लगाओगे पेट पे, तो हर्निया होने का रिस्क ज़्यादा होता है।
0: जी, तो मतलब पेट की एक्सरसाइज से पाचन क्रिया पर फर्क पड़ता है
1: बिल्कुल पढ़ सकता है।
0: जी। और डाइजेशन सही रखने के लिए कुछ है ऐसी कारगर दवा, कोई इलाज है लोगों के, क्योंकि हर कोई वो कहता है कि मुझे तो खाना पचता ही नहीं है, क्या करें?
1: हाँ, तो ये जो खाना पचता नहीं है, इसके भी पूछना पड़ता है पेशेंट को, क्यों नहीं पच रहा है? तो
0: हाँ
1: बोलते हैं हमको खाना पचता ही नहीं है, पर उनको कॉन्स्टिपेशन होती है, कब्जियत होती है। तो मेरा मानना होता है कि खाना आपको बहुत अच्छा पच रहा है, पूरा खाना आपने डाइजेस्ट कर लिया, आपको तो कॉन्स्टिपेशन हो गई है। जिसको नहीं पचे, मतलब उसको लूज मोशन हो रहे हैं। तो पूछना जरूरी है कि प्रॉब्लम क्या है। पचना नहीं पचना इज अ डिफरेंट सॉर्ट ऑफ,
0: जी
1: पेशेंट
0: जी
1: का जो आउटलुक होता है वो अलग होता है। पच नहीं रहा है तो मोस्ट टाइम्स ये पेशेंट का मतलब होता है या तो उनको कॉन्स्टिपेशन हो रही है या उनको एसिडिटी हो रही है। तो उसको बेसिक प्रॉब्लम्स को ट्रीट करो। अगर कॉन्स्टिपेशन है तो फाइबर बढ़ाओ खाने में, पानी बढ़ाओ। मोस्ट टाइम्स हमने देखा है डाइट में, स्पेशली यंग किड्स पानी बहुत कम पीते हैं, तो
0: जी
1: पानी
0: जी
1: नहीं पीते हैं कॉन्स्टिपेशन होती है, पानी नहीं पियो तो और तकलीफें होती हैं, डिहाइड्रेशन होता है, फिर से कॉन्स्टिपेशन होती है, फिर खाना नहीं खाते, तो इट्स अ विशियस साइकिल। तो आई थिंक बैलेंस डाइट, न्यूट्रिशन, वाटर इनटेक, गुड फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। मैं हमेशा अपने पेशेंट्स को कहता हूँ कि जो आपकी प्लेट है ना खाने की, वो कलरफुल होनी चाहिए। मतलब पेट में आपके दो तरह की भाजियाँ हो जाएं, एक रेड हो जाए, एक ग्रीन हो जाए, रोटी हो जाए, वो कोई भी, गेहूं की ले लो, ज्वार की ले लो, थोड़ा सा राइस लो, दाल ले लो, एंड इफ यू नॉन वेजिटेरियन एक छोटा सा मीट का पोर्शन हो जाए, बट योर प्लेट शुड बी कलरफुल।
0: लेकिन अभी एक चलन चला है कि या तो एक एक अन्न खाओ, चावल खाओ या रोटी खाओ, तो कुछ लोग ये भी करते हैं कि सिर्फ कढ़ी चावल खा लिया, सिर्फ दाल चावल, तो इससे बचना चाहिए मेरे
1: बिल्कुल,
0: ख्याल
1: इसमें तो खाली कार्बोहाइड्रेट खाए आपने, प्रोटीन तो बहुत मिनिमम हो गया।
0: से। तो बिल्कुल। और डॉक्टर साहब, यहाँ पर एक गाना सुनते हैं, फिर हम आगे और बढ़ते हैं।
1: एक और गाना जो मुझे काफ़ी पसंद है, बहुत पुरानी पिक्चर है, रॉकी पिक्चर का, क्या यही प्यार है। ये गाना वाज क्वाइट फेमस
0: जी
1: मेरे स्कूल के टाइम पे,
0: जी
1: और
0: क्या
1: काफ़ी
0: बात
1: सुना
0: है
1: है हमने।
0: जी।

0: डॉक्टर साहब, बीच में एसिडिटी की बात कर रहे थे जो बहुत बड़ी समस्या है, वहां पर एक बात रह गई थी, वो ये कि कहीं एसिडिटी की वजह से, एसिड रिफ्लक्स की वजह से बीमारी को थोड़ी असावधानी हो, या तो कहीं कैंसर का रूप भी लेती है वो
1: हाँ
0: आगे
1: बिल्कुल
0: चलकर।
1: बिल्कुल हो सकता है। अगर आपको एसिडिटी हो रही है, जलन हो रही है और आप दवाई नहीं ले रहे ठीक से, या आपने इसका इलाज ना किया हो, तो जो एसिड होता है वो तेज़ाब है बेसिकली, ऊपर आके खाने की पाइप को जलाते रहता है, जला जला के फिर आगे एक अल्सर बनाता है, और यही अल्सर आगे जाके कैंसर भी बन सकता है, जिसमें खाने की पाइप का कैंसर हो जाता है और खाने की पाइप छोटी हो जाती है और अटकने लगता है। इसके लिए मैंने पहले कहा था, अगर खाना अटक रहा हो तो एंडोस्कोपी करना बहुत ज़रूरी है। अनकंट्रोल्ड एसिड रिफ्लक्स कैन लीड टू कैंसर्स इन द फूड पाइप।
0: जी, और ये जो एसिडिटी की समस्या, एसिड रिफ्लक्स, इसके लिए एक तो आपने एंडोस्कोपी बताया जांच, और क्या क्या जांच की पद्धति है, क्योंकि अभी तो टेक्निक बहुत एडवांस हो चुकी है, हमारे श्रोताओं को जानकारी
1: हाँ तो
0: दीजिए।
1: बेसिक एंडोस्कोपी तो सेम रही है, एंडोस्कोपी टेक्निक काफ़ी सेम ही है। जिस तरीके से हम देखते हैं, जो इमेजिंग होती है वो चेंज हो गई है।
0: जी
1: अभी काफ़ी हाई डेफिनेशन मॉनिटर्स हैं, 4K मॉनिटर्स हैं। हम हमारे एंडोस्कोपी के टाइम पे एक बटन दबाते हैं जिससे लाइट चेंज हो जाती है, हमको और बेटर दिखता है। हमारे मशीन्स पे अभी AI भी लगना शुरू हो गया है, जो अगर हम सपोज ब्लिंक कर रहे हैं, हमने लेफ्ट एंड राइट देख लिया एक सेकंड के लिए, पर वो मशीन पकड़ लेती है कि यहाँ पे कोई प्रॉब्लम है, और रुक जाती है और हमको कहती है कि यहाँ पे ठीक से देखो। ये एक सॉर्ट ऑफ टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट हो गया, AI इन एंडोस्कोपी। दूसरा, अगर एंडोस्कोपी नॉर्मल है, हमको कुछ नहीं मिल रहा है, तो हम कभी कभी खाने की पाइप का प्रेशर मेजरमेंट करते हैं, उसको मैनोमेट्री बोलते हैं। छोटी सी पाइप डालते हैं नाक से पेट में और वो पूरे खाने की पाइप के प्रेशर्स मेजर करती है, ये क्या प्रेशर की प्रॉब्लम है जिसके कारण खाना आगे नहीं जा रहा है या रिफ्लक्स कर रहा है। और फिर लास्ट एक और टेस्ट है, जिसमें हम खाने के पाइप में एक पाइप डाल देते हैं और वो पाइप के साथ पेशेंट घर चले जाता है, और जब उसको एसिडिटी लग रही हो रहा है, एक बटन दबाता है, और विद इन 24 to 48 hours हम वो पूरे खाने के पाइप का टेस्टिंग करते हैं कि कितना एसिड रिफ्लक्स हो रहा है। पेशेंट जो कह रहे हैं कि हमको एसिड रिफ्लक्स है, ज़रूरी नहीं है वो एसिड रिफ्लक्स हो, वो सिम खाली एक सिम्टम हो सकता है। तो
0: जी
1: उसको 24 आवर pH मैनोम pH प्रोब बोलते हैं, जिसमें हम डिटेक्ट करते हैं कि

0: एक्चुअली एसिड ऊपर आ रहा है कि नहीं आ रहा है. सो देर आर मेनी अदर वेज टू डिटेक्ट द एसोफेगस.
1: जी, तो इतनी सारी इलाज की और जांच की सुविधाएं हैं, तो मेरे ख्याल से तकलीफ हो तो सीधे डॉक्टर के पास जाना चाहिए अपनी अटकलें लगाने के बजाय. डॉक्टर साहब, एक पेट संबंधी एक बीमारी है जो कॉमन हो रही है आजकल, कोलाइटिस. ये क्या है, कौन सी बीमारी है और इससे क्या तकलीफें होती हैं?
0: तो कोलाइटिस बेसिकली एक ब्रॉड टर्म है. कोलाइटिस मतलब बड़ी आंतड़ी में कुछ इशू है. अभी वो इशू अगर लूज मोशन हो तो उसको भी लोग कोलाइटिस का नाम दे देते हैं. जो बीमारी हमको डिटेक्ट करनी है उसको आईबीडी बोलते हैं, इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज, जिसमें बड़ी आंतरी कोलन के अंदर छाले होते हैं और लूज मोशन और ब्लीडिंग होता है, तो उसको आईबीडी बोलते हैं. ये जानना जरूरी है कि आपको कोलाइटिस आईबीडी वाली है कि नहीं, क्योंकि अगर आईबीडी की कोलाइटिस है तो ट्रीटमेंट उसकी लाइफ लॉन्ग रहती है. ये इम्यून मीडिएटेड डिसऑर्डर है. अगर इसको ट्रीटमेंट नहीं करो तो आगे जाके कैंसर भी बन सकता है. जो दूसरी कोलाइटिस होती है वो नॉन स्पेसिफिक कोलाइटिस होती है, मतलब हमको लूज मोशन हो गए और लूज मोशन बीच में होते रहते हैं और उसको नाम दे दिया कोलाइटिस, बट दैट इज़ नॉट रियली अ डिजीज़. इट इज़ बेसिकली अ पार्ट ऑफ इरिटेबल बाउल सिंड्रोम ओनली. तो जानना कि आपको अल्सर वाली कोलाइटिस है कि नॉन अल्सर वाली कोलाइटिस बहुत ज़रूरी है.
1: तो मतलब डॉक्टर के पास संपर्क करें, यही ज़्यादा बेहतर होता है. और अब डॉक्टर साहब, एक गाना सुनते हैं पहले. यहाँ
0: शायद मेरी शादी का ख्याल
1: सुनते हैं डॉक्टर साहब ये गाना.

0: अब डॉक्टर साहब बताइए कि आईबीएस और फैटी लिवर, एसिडिटी, जो पेट संबंधी की जो बीमारियां हैं, बड़ी महत्वपूर्ण बीमारियां हैं, इनसे बचने के लिए किस तरह की अवेयरनेस रखें, किस तरह की सजगता रखें और क्या सावधानी बरतें हमारे श्रोता?
1: तो ये जितनी भी ये बीमारियाँ आई थिंक ये अवेयरनेस घर से शुरू होती हैं, बचपन से शुरू होनी चाहिए। एज ग्रोइंग अप एज अ किड हमारे घर में एजुकेशन होनी चाहिए अबाउट डाइट। आई थिंक डाइट सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट अगर कोई सीख है वो डाइट है, कि प्रोटीन क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, फैट क्या होता है। ये तीन बेसिक पिलर्स हैं हमारे लिए जिसके ऊपर हम खाना खाते हैं, कितना प्रोटीन खाना चाहिए, कितना कार्बोहाइड्रेट खाना चाहिए, कितना फैट खाना चाहिए। सो डाइट इज़ वन पिलर ऑफ हेल्थी सोसाइटी, हेल्थी पेट की गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिकल इश्यूज के लिए। सेकंड पिलर इज एक्सरसाइज एंड न्यूट्रिशन। तो
0: जी
1: आई
0: जी
1: थिंक न्यूट्रिशन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बेस्ड ऑन व्हाट आई टोल्ड एंड एक्सरसाइज। एक्सरसाइज करोगे तो पेट की काफ़ी बीमारियां अपने आप ही ठीक हो जाएंगी, स्पेशली फैटी लिवर, आईबीएस, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, एसिड रिफ्लक्स डिजीज। द थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट पिलर ऑफ एनी जीआई प्रॉब्लम इज एजुकेशन, के कब आपको टेस्टिंग करनी चाहिए, कब आपको डॉक्टर को देखना चाहिए। तो अगर ये तीन पिलर्स हम करें, न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज एंड व्हेन डू यू गेट सेल्फ टेस्टेड एंड सी अ डॉक्टर, ये तीन चीज़ें अगर हम कर पाए ना तो काफ़ी हद तक हमारी बीमारियां कम हो जाएंगी।
0: जी डॉक्टर साहब, हमने कई लोगों को ये सुना है कहते हुए कि सिर दर्द हो रहा है और सिर दर्द की दवा न लेके एसिडिटी की दवा लेते हैं तो सिर दर्द ठीक हो जाता है, या उल्टी की दवा लेते हैं तो सिर दर्द ठीक हो जाता है। तो मुझे बहुत अचरज हुआ कि उल्टी की दवा लेने से सिर दर्द कैसे ठीक हो गया, ये
1: हाँ,
0: क्या समस्या है?
1: ये बहुत बढ़िया सवाल है, क्योंकि ये पेशेंट जब हमारे पास भी आते हैं कि अगर मेरे को एसिडिटी हो गई और सर दर्द हो गया है और
0: हाँ
1: एसिडिटी की दवाई लो तो मेरा सिर दर्द चले जाता है,
0: जी
1: तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि मोस्ट ये पेशेंट्स को माइग्रेन होता है, बेसिकली खाना खाया नहीं होता टाइम पे, स्ट्रेस होता है, हेडेक शुरू हो जाती है, तो एसिडिटी की दवाई लो तो एसिडिटी चली जाती है, पर फॉर सम रीज़न द स्ट्रेस गोज़ डाउन एंड द माइग्रेन ऑल्सो गोज अवे। तो वेरी इंपॉर्टेंट टू फाइंड आउट कि इनको माइग्रेन है कि नहीं। तो फर्स्ट पार्ट आपका सवाल था कि हेडेक होती है पर एसिडिटी की दवाई लो हेडेक चली जाती है, तो ये मैंने अपनी सारी किताबें छांट ली हैं, मुझे
0: जी
1: इसका जवाब किधर नहीं मिला। ये मैंने बाहर कभी नहीं देखा, ये मैंने इंडियन पेशेंट्स में ही देखा है कि
0: जी
1: एसिडिटी की दवाई लो मेरी हेडेक चली गई है।
0: जी जी
1: तो आई डोंट नो द एग्जैक्ट रीजन फॉर इट, बट जब मैं पेशेंट्स मेरे पास ये कंप्लेन लेके आते हैं ना, तो मेरा सबसे फर्स्ट क्वेश्चन होता है कि ये माइग्रेन ना हो, क्योंकि
0: ओके
1: माइग्रेन कैन ट्रिगर बोथ एसिड रिफ्लक्स, नॉजिया, वॉमिटिंग एंड हैव हेडेक्स। माइग्रेन को ठीक करोगे

0: तो ये भी ठीक हो जाएगा। नाउ ऐसा भी हो सकता है कि पेशेंट ने बहुत देर तक खाना ना खाया हो, इसके लिए एसिडिटी हो, अगर हम खाना स्किप करें तो हमारी शुगर्स कम होगी तो अपने आप हेडेक शुरू हो जाएगी ना, तो दैट इज ऑल्सो पॉसिबिलिटीज इट्स बिकॉज ऑफ स्किपिंग मील्स, इसके
1: जी
0: लिए
1: जी
0: आपको एसिडिटी हो रही है, इसके लिए आपको हेडेक हो रहा है।
1: जी हमने भी कई बार एक डॉक्टर से और पूछा था ये सवाल, तो उन्होंने कहा था नहीं, सिर दर्द और एसिडिटी का कोई ताल्लुक नहीं, लेकिन कुछ डॉक्टर्स ने
0: कुछ
1: कहा
0: तो
1: कि
0: है, देर इज सम
1: जी हाँ
0: कोरिलेशन बिटवीन
1: ओके,
0: डाइट, नॉट
1: तो
0: ईटिंग ऑन टाइम, एसिडिटी एंड हेडेक्स।
1: जी, पर आजकल ये समस्या बहुत हो रही है लोगों में कि स्टमक अपसेट होता है तो सिर दर्द होने लगता
0: हाँ
1: है, तो माइग्रेन अगर किसी को है मान लीजिए तो किस डॉक्टर के पास जाना
0: तो
1: चाहिए?
0: अगर माइग्रेन है तो वी शुड सी अ न्यूरोलॉजिस्ट, जो ब्रेन के डॉक्टर होते हैं,
1: ओके
0: बिकॉज बहुत ध्यान से देनी पड़ती है क्योंकि सम ऑफ द माइग्रेन मेडिसिन कैन कॉज एसिडिटी। तो अगर आपको
1: यस
0: एसिडिटी ऑलरेडी है तो
1: हाँ
0: माइग्रेन स्पेशलिस्ट को जब देखोगे तो यू हैव टू टेल कि आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम है, तो दे मेक श्योर दे गिव एन एंटासिड उसके साथ।
1: जी। और हम फैटी लिवर के बारे में बात कर रहे थे कि फैटी लिवर जिनको होता है, जिन पता चल जाता है, तो कई बार ऐसा लगता है कि कुछ लोग बहुत अल्कोहल लेते हैं या धूम्रपान करते हैं, सुपारी खाते हैं, तो क्या ये एक बड़ी वजह है फैटी लिवर की,
0: बिल्कुल
1: तो
0: बिल्कुल
1: या
0: बिल्कुल
1: फिर जो लोग नहीं लेते हैं उन्हें भी होता है, तो
0: हाँ,
1: ये
0: तो अगर आप लिवर का टुकड़ा ले लो और फैटी लिवर है सपोज किसी को, वो लिवर का एक पीस निकाल के पैथोलॉजिस्ट को दिखाओ, वो पैथोलॉजिस्ट आपको बोल नहीं पाएगा, कह नहीं पाएगा कि ये पेशेंट अल्कोहल पीने के कारण फैटी लिवर हुआ है कि नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर है। दोनों सेम चीज़ करते हैं। अगर आप अल्कोहल ना पियो, आपकी कार्बोहाइड्रेट इंटेक ज़्यादा हो, तो लिवर में एक्स्ट्रा कार्बोहाइड्रेट फैट की तरह डिपॉजिट हो जाता है। अल्कोहल इज ऑल्सो लाइक अ कार्बोहाइड्रेट, वो भी सेम चीज़ होता है, एक्सेसिव अल्कोहल पीने से लिवर के अंदर फैट करके डिपॉजिट हो जाता है। द ओनली वे हम अल्क कर पाते हैं कि अल्कोहल है नॉन अल्कोहल, पेशेंट को पूछ के, हिस्ट्री के ऊपर। तो अगर आपको फैटी लिवर ऑलरेडी है तो अल्कोहल आपको जरा भी नहीं पीनी चाहिए, वैसे भी अल्कोहल नहीं पीनी चाहिए, बिकॉज इट इज़ अ ग्रेड वन कार्सिनोजेनिक, मतलब अल्कोहल कैन कॉज कैंसर्स नॉट ओनली ऑफ द लिवर बट ऑल्सो ऑफ द माउथ, द फूड पाइप, द स्टमक
1: जी
0: एंड
1: जी
0: अदर ऑर्गन्स। तो अगर आपको ऑलरेडी एक बीमारी है तो आप उस पर दूसरी बीमारी क्यों डालोगे?
1: जी
0: धूम्रपान टबैको सेम चीज़, धूम्रपान टबैको करने से एसिडिटी ज़्यादा होती है, ऑलरेडी एसिडिटी से अल्सर होके कैंसर होने की संभावना ज़्यादा है, उसके ऊपर से आप धूम्रपान करो, तंबाकू खाओ, तो ये प्रॉब्लम काफ़ी बढ़ सकती है। अल्कोहल और फैटी लिवर गो हैंड इन हैंड।

नमस्कार। मीडियम वेव 374.5 मीटर अर्थात 800 किलोहर्ट्ज एवं न्यूज ऑन EIR ऐप पर हम आकाशवाणी के जबलपुर केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 5 बजे हैं। अब आकाशवाणी मध्य प्रदेश के कार्यक्रम हम आकाशवाणी भोपाल से रिले करेंगे।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज विश्व की विविध संस्कृतियों के सम्मान पर बल दिया। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पर एक संस्कृत सुभाषित साझा करते हुए कहा कि विश्व की विविध संस्कृतियों का सम्मान करने से लोगों के बीच विश्वास और सहयोग की भावना बढ़ती है। उन्होंने कहा कि इससे आपसी समझ और भाईचारे को बढ़ावा भी मिलता है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में हरियाणा और राजस्थान के बीच जल बंटवारे समझौते को लेकर एक बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी उपस्थित थे। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने महान संत समाज सुधारक कबीरदास की जयंती पर उन्हें नमन किया। डॉ. यादव ने कहा कि संत कबीरदास जी ने सामाजिक कुरीतियों, आडंबर, अंधविश्वास के विरुद्ध जन जागृति की। उनकी अमर कृतियां अनंत काल तक समाज को लोक कल्याण की दिशा देती रहेंगी। सर्वोच्च न्यायालय ने आज श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को प्राप्त दान में कथित वित्तीय अनियमितता की अदालत की निगरानी में जांच और फोरेंसिक ऑडिट की मांग करने वाली जनहित याचिका पर तत्काल सुनवाई करने से इनकार कर दिया। और मौसम विभाग ने आज उज्जैन, देवास, छिंदवाड़ा, पांडुना, मंडला और बालाघाट में 4 इंच तथा उससे अधिक बारिश होने की संभावना जताई है। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।

ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए अब सुनिए युवा श्रोताओं का कार्यक्रम युवा वाणी। हमारा आज का ये कार्यक्रम आकाशवाणी भोपाल की प्रस्तुति है।

हेलो नमस्कार और गुड इवनिंग दोस्तों, आपने ट्यून इन किया है आकाशवाणी को और मैं हूं आपके साथ आपका अपना रेडियो दोस्त दिपेश बर्डे और आप सुन रहे हैं अपना पसंदीदा कार्यक्रम युवाओं के दिलों की वाणी यानी युववाणी। दोस्तों आज हम बात करेंगे एक ऐसे विशेष दिवस की जो पृथ्वी के उस हिस्से को समर्पित है जहां प्रकृति की सबसे अद्भुत विविधता, सांस्कृतिक समृद्धि और विकास की अपार संभावनाएं मौजूद है। जी हां, हम बात कर रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय उष्णकटिबंधीय दिवस यानी इंटरनेशनल डे ऑफ द ट्रॉपिक्स की, जिसे हर वर्ष 29 जून को मनाया जाता है। दोस्तों सबसे पहले यह जान लेते हैं कि उष्णकटिबंधीय क्षेत्र या ट्रॉपिक्स आखिर होते क्या है। तो दोस्तों पृथ्वी पर कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच का क्षेत्र उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहलाता है। यह क्षेत्र भूमध्य रेखा के आसपास फैला हुआ है और यहाँ पूरे वर्ष अपेक्षाकृत अधिक तापमान तथा अच्छी मात्रा में सूर्य प्रकाश मिलता है और भारत का अधिकांश भाग भी इसी उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में आता है। दोस्तों जानेंगे इस दिवस के बारे में कई महत्वपूर्ण जानकारियां, मगर उससे पहले आपको सुनवाते हैं आज की शाम का पहला गीत फिल्म जन्नत 2 से।

दोस्तों, अभी आपने सुना जावेद अली की आवाज में यह गीत। दोस्तों, इस दिवस को मनाने की शुरुआत संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा वर्ष 2016 में की गई थी। इसका उद्देश्य उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों के महत्व, उनकी चुनौतियों और संभावनाओं के प्रति वैश्विक जागरूकता को बढ़ाना है। दोस्तों, यदि हम प्राकृतिक संपदा की बात करें तो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र पृथ्वी की जैव विविधता का खजाना है। दुनिया के लगभग 80% से अधिक पौधे और पशुओं की प्रजातियां सीधे रूप से इन क्षेत्रों से जुड़ी हुई है। विश्व के ज्यादातर वर्षा वन, मैंग्रोव वन, प्रवाल भित्तियां और अनेक दुर्लभ जीव जंतु यही पाए जाते हैं। दोस्तों, उष्णकटिबंधीय वन न केवल वन्य जीवों का घर है, बल्कि वे पृथ्वी के ग्रीन लंग्स भी कहे जाते हैं। ये वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करके जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। दोस्तों, उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों का महत्व केवल पर्यावरण तक सीमित नहीं है। विश्व की लगभग 40% से अधिक आबादी इन्हीं क्षेत्रों में निवास करती है। यहाँ अनेक भाषाएं, संस्कृतियां, परंपराएं और जीवन शैलियां देखने को मिलती है। भारत, ब्राजील, इंडोनेशिया, नाइजीरिया और कई अन्य देश इस क्षेत्र का हिस्सा है। दोस्तों, इन क्षेत्रों में कृषि भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। चाय, कॉफी, गन्ना, केला, नारियल, मसाले और चावल जैसी अनेक फसलें उष्णकटिबंधीय जलवायु में ही बेहतर ढंग से विकसित होती है। भारत के किसानों की आजीविका भी काफी हद तक इसी जलवायु पर निर्भर करती है। दोस्तों, लेकिन जहां संभावनाएं हैं, वही चुनौतियां भी कम नहीं है। जलवायु परिवर्तन का सबसे अधिक प्रभाव उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों पर ही देखने को मिल रहा है। बढ़ता तापमान, अनियमित वर्षा, चक्रवातों की बढ़ती तीव्रता, बाढ़ और सूखे जैसी घटनाएं लोगों के जीवन और आजीविका को प्रभावित कर रही है। वनों की कटाई, प्रदूषण और प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक दोहन भी चिंता का विषय है। यदि हम समय रहते उन चुनौतियों का समाधान न करें तो जैव विविधता और पर्यावरण दोनों को गंभीर क्षति पहुंच सकती है। दोस्तों, भारत जैसे देश के लिए यह दिवस विशेष महत्व रखता है। हमारे यहाँ पश्चिमी घाट, सुंदरबन, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और पूर्वोत्तर भारत जैसे क्षेत्र जैव विविधता के दृष्टिकोण से अत्यंत समृद्ध है। इन क्षेत्रों का संरक्षण केवल पर्यावरणीय आवश्यकता नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के प्रति हमारी जिम्मेदारी भी है। दोस्तों, अब प्रश्न उठता है कि हम व्यक्तिगत स्तर पर क्या कर सकते हैं। तो उत्तर बहुत ही सरल है। दोस्तों, पेड़ लगाए और उनका संरक्षण करें, जल और ऊर्जा की बचत करें, प्लास्टिक के उपयोग को कम करें, स्थानीय और पर्यावरणीय अनुकूल उत्पादों को बढ़ावा दें, प्रकृति और जैव विविधता के संरक्षण के प्रति जागरूकता फैलाएं। दोस्तों, ये छोटे छोटे प्रयास मिलकर बड़े परिवर्तन का आधार बन सकते हैं। और दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय उष्णकटिबंधीय दिवस हमें याद दिलाता है कि प्रकृति और मानव जीवन एक दूसरे से गहराई से जुड़े हैं। यदि हम उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों की रक्षा करेंगे तो हम पृथ्वी के भविष्य को सुरक्षित बनाएंगे, क्योंकि दोस्तों, प्रकृति के साथ संतुलित जीवन शैली ही हमारे सुरक्षित और बेहतर भविष्य का आधार है। चलिए दोस्तों, अब आपको सुनवाते हैं आज की शाम का अगला गीत फिल्म लूडो से।

दोस्तों अभी आपने सुना अरिजीत सिंह की आवाज में यह गीत। दोस्तों अब बात करते हैं एक ऐसे विषय की जो आज हम सभी के जीवन का जरूरी हिस्सा बन चुका है, डिजिटल पेमेंट और साइबर सुरक्षा। दोस्तों कुछ वर्ष पहले तक अधिकांश लेन देन नगद राशि के माध्यम से किया जाता था, लेकिन आज तकनीक के विकास और इंटरनेट की बढ़ती पहुंच ने हमारे भुगतान करने के तरीकों को पूरी तरह बदल दिया है। दोस्तों अब किराने की दुकान से सामान खरीदना हो, बिजली का बिल जमा करना हो, मोबाइल रिचार्ज कराना हो, रेल टिकट बुक करना हो या किसी मित्र अथवा परिजन को पैसे भेजने हो, यह सब कुछ कुछ सेकंड में हो जाता है। दोस्तों इसी बदलाव को हम डिजिटल पेमेंट के नाम से जानते हैं। डिजिटल पेमेंट का अर्थ है बिना नगद राशि के इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भुगतान करना। आज मोबाइल फोन के जरिए QR कोड स्कैन करके भुगतान करना आम बात हो गई है। इसके अलावा इंटरनेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और विभिन्न डिजिटल भुगतान मंचों का उपयोग भी तेजी से बढ़ रहा है। दोस्तों भारत आज दुनिया के उन देशों में शामिल है जहां डिजिटल लेन देन सबसे तेजी से बढ़ रहा है। गांवों से लेकर महानगरों तक, छोटे दुकानदारों से लेकर बड़े व्यापारियों तक, हर कोई डिजिटल भुगतान को अपना रहा है। दोस्तों डिजिटल पेमेंट के अनेक लाभ है। सबसे पहला है सुविधा, अब हमें बड़ी मात्रा में नकदी साथ लेकर चलने की आवश्यकता नहीं पड़ती। दूसरा लाभ है समय की बचत, बैंक की लंबी कतारों में खड़े रहने के बजाय हम घर बैठे ही भुगतान कर सकते हैं। तीसरा लाभ है पारदर्शिता, प्रत्येक लेन देन का रिकॉर्ड सुरक्षित रहता है, जिससे आर्थिक गतिविधियों का हिसाब रखना आसान हो जाता है। इसके अतिरिक्त डिजिटल भुगतान से नकदी के प्रबंधन की लागत भी कम हो जाती है और अर्थव्यवस्था को अधिक संगठित बनाने में सहायता मिलती है। चलिए दोस्तों वक्त हो चला है आपको आज की शाम का अगला गीत सुनवाने का, फिल्म एजेंट विनोद से।

लेकिन दोस्तों, हर तकनीक के साथ कुछ चुनौतियां भी आती है। डिजिटल भुगतान के बढ़ते उपयोग के साथ साइबर अपराधों में भी वृद्धि देखी जा रही है। ऐसे में साइबर सुरक्षा का महत्व और भी बढ़ जाता है। दोस्तों, साइबर सुरक्षा का अर्थ है इंटरनेट और डिजिटल माध्यमों पर हमारी व्यक्तिगत जानकारी, बैंक खातों और वित्तीय लेनदेन को सुरक्षित बनाए रखना। आज साइबर ठग लोगों को धोखा देने के लिए नए नए तरीके अपनाते हैं। कभी वह बैंक अधिकारी बनकर फोन करते हैं, कभी लॉटरी या पुरस्कार जीतने का लालच देते हैं, तो कभी किसी संदिग्ध लिंक पर क्लिक करने के लिए कहते हैं। दोस्तों, कई बार लोगों को ऐसा संदेश भेजा जाता है जिसमें लिखा होता है कि आपका बैंक खाता बंद होने वाला है या आपका KYC अपडेट नहीं है। घबराकर लोग दिए गए लिंक पर क्लिक कर देते हैं और अपनी गोपनीय जानकारी साझा कर बैठते हैं। और दोस्तों, कुछ मामलों में ठग OTP, ATM पिन, CVV नंबर या UPI पिन पूछकर लोगों के खातों से पैसे निकाल लेते हैं। दोस्तों, यह याद रखना बहुत आवश्यक है कि कोई भी बैंक, सरकारी संस्था या अधिकृत एजेंसी कभी भी फोन, संदेश या ईमेल के माध्यम से आपका OTP, पासवर्ड, ATM पिन या UPI पिन नहीं मांगती है। यदि कोई व्यक्ति ऐसी जानकारी मांगता है तो यह धोखाधड़ी का संकेत हो सकता है, या मीम की भाषा में कहे तो यह एक रॉन्ग नंबर है। दोस्तों, साइबर अपराधों से बचने के लिए कुछ महत्वपूर्ण सावधानियां अपनाना बेहद आवश्यक है। सबसे पहले, अपने OTP, पासवर्ड, UPI पिन को पूरी तरह गोपनीय रखें। दूसरा, किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा भेजे गए लिंक पर क्लिक ना करें। तीसरा, मजबूत पासवर्ड का उपयोग करें और समय समय पर उसे बदलते रहें। चौथा, सार्वजनिक वाईफाई नेटवर्क पर वित्तीय लेनदेन करने से बचें। और दोस्तों, यदि कभी किसी प्रकार की ऑनलाइन धोखाधड़ी हो जाए तो तुरंत अपने बैंक को सूचित करें और साइबर अपराध हेल्पलाइन पर शिकायत दर्ज करें। दोस्तों, आज भारत डिजिटल अर्थव्यवस्था की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। डिजिटल पेमेंट ने न केवल हमारे जीवन को आसान बना दिया है, बल्कि आर्थिक गतिविधियों को भी नई गति प्रदान की है। लेकिन इस सुविधा का लाभ तभी सुरक्षित रूप से उठाया जा सकता है जब हम साइबर सुरक्षा के प्रति जागरूक रहे। दोस्तों, तकनीक हमारे जीवन को बेहतर बनाने के लिए है। आवश्यकता केवल इस बात की है कि हम इसका उपयोग समझदारी और सतर्कता के साथ करें। चलिए दोस्तों, अब आपको सुनाते हैं आज की शाम का ये अगला गीत।

दोस्तों अब वक्त हो चला है आज की रोजगार सूचना का। दोस्तों दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड यानी DSSB द्वारा जूनियर साइंटिफिक असिस्टेंट के विभिन्न पदों पर भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 16 जून से प्रारंभ हो चुकी है जो 15 जुलाई तक किए जा सकेंगे। इच्छुक अभ्यर्थी DSSB की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। चलिए दोस्तों अब आपको सुनाते हैं आज की शाम का ये आखिरी गीत।

चलिए दोस्तों, वक्त हो चला है आपको अलविदा कहने का। जल्द ही आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।

0: युवा श्रोता सुन रहे थे अपना कार्यक्रम युववाणी। हमारा आज का ये कार्यक्रम आकाशवाणी भोपाल की प्रस्तुति था।
1: आकाशवाणी का ये जबलपुर केंद्र है

मीडियम वेव पर हम आकाशवाणी के जबलपुर केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 5:33 हुए हैं। प्रस्तुत है फिल्म संगीत।

कार्यक्रम का ये पहला नगमा अभी आप सभी ने सुना श्रोताओं, जुबिन नौटियाल की आवाज़ में बागी 2 फिल्म से। संगीत निर्देशन मिथुन का। अब सुनिए अगला गीत, शिरीन फरहाद की तो निकल पड़ी। इस फिल्म का भी ये गाना हम आप सभी को सुनवाने जा रहे हैं श्रोताओं। इस गीत को लिखा है अमिताभ भट्टाचार्य ने और संगीत दिया है जीत गांगुली ने। और आवाज़ है के और श्रेया घोषाल की।

से जुबिन नौटियाल और नीति मोहन की आवाज में, संगीत निर्देशन आर्को का। और अब सुनिए MS धोनी द अनटोल्ड स्टोरी फिल्म से ये गाना अरिजीत सिंह की आवाज में। गीत लिखा है मनोज मुंतशिर ने और संगीत दिया है अमाल मलिक ने।

0: ये गीत अभी आपने सुना आर्टिकल 15 से आयुष्मान खुराना की आवाज़ में, और इसी गीत के साथ ही आज के फिल्म संगीत कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये जबलपुर केंद्र है। अब लीजिए सुनिए आज और कल प्रसारित और अनुप्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रमों के बारे में संक्षिप्त जानकारी। आज शाम 6 बजे से आप सभी सुनेंगे एनसीईआरटी पर आधारित प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। लोक संगीत सुनिएगा 6:30 पर, कलाकार होंगी ममता चंद्रकर। शाम 6:40 पर आजकल और प्रादेशिक समाचार दर्शन, ये दोनों ही कार्यक्रम हम आकाशवाणी भोपाल से रिले करेंगे। शाम 7:21 पर कृषि जगत, इसके अंतर्गत सुनिएगा स्वीट कॉर्न की उन्नत खेती विषय पर डॉक्टर नम्रता जैन से ली गई वार्ता। ये था कार्यक्रमों का विवरण। आकाशवाणी का ये जबलपुर केंद्र है। शाम की 5:58 हुए हैं। न्यूज हेडलाइंस हम आकाशवाणी भोपाल से रिले करेंगे।
1: मध्य प्रदेश है।

0: जब सुनिए इस घंटे की खास खबरें।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में आयोजित कार्यक्रम में इस वर्ष के दूसरे रक्षा अलंकरण समारोह में वीरता पुरस्कार प्रदान किए। इस अवसर पर राष्ट्रपति सशस्त्र बलों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेशों के पुलिसकर्मियों को पुरस्कार प्रदान किए। सरकार ने सोशल मीडिया पर प्रसारित उस वीडियो का खंडन किया है जिसमें दावा किया गया है कि प्रधानमंत्री मोदी ने आसानी से धन लाभ दिलाने वाले किसी निवेश प्लेटफॉर्म का समर्थन किया है। पीआईबी की तथ्य जांच इकाई ने बताया कि यह वीडियो फर्जी और एआई से निर्मित है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने केंद्रीय नवीन और नवकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी की उपस्थिति में नीमच में आयोजित कार्यक्रम में 2080 करोड़ रुपए लागत के 500 मेगावाट नीमच और 450 मेगावाट शाजापुर सोलर पार्क का उद्घाटन किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने 1553 करोड़ 98 लाख रुपए लागत के उद्योगों और अन्य विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन कर क्षेत्रवासियों को सौगात दी। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा ने कहा है कि सरकार ने पहले, दूसरे और तीसरे स्तर की स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार करके देश की स्वास्थ्य प्रणाली को काफी मजबूत किया है। श्री नड्डा ने कहा कि नागरिकों और स्वास्थ्य प्रणाली के बीच संपर्क के पहले बिंदु के रूप में 1,86,000 आयुष्मान आरोग्य मंदिर स्थापित किए गए हैं और भोपाल के मानस भवन में कल शाम 5 बजे काव्य पाठ और महिला सम्मान कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इसमें भोपाल के कवि हरिवल्लभ, धूमकेतु मदन मोहन समर और उज्जैन के अशोक भाटी प्रस्तुति देंगे। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
2: ये आकाशवाणी का जबलपुर केंद्र है। शाम के 6 बजे हैं। प्रस्तुत है एनसीईआरटी पर आधारित प्रायोजित कार्यक्रम उमंग।

0: सबदंग।
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं को विमलेश का नमस्कार
3: और अजीत का भी नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आप सबका उमंग कार्यक्रम में। आइए सुनते हैं आज का सुविचार जिसे हमें भेजा है ग्राम जसवाड़ी जिला खंडवा मध्य प्रदेश से दुर्गेश नागनपुरे, राधेश्याम नागनपुरे, वंदना, भावना, बिंदु, गोलू, कुसुमबाई, बाबू दिव्यांश और सूरज जी ने। लिखते हैं,
2: पेड़ धरती के फेफड़े हैं, वे हवा को शुद्ध करते हैं और हमें नया जीवन देते हैं।
3: धन्यवाद आप सबको इस सुंदर विचार के लिए। आइए अब सुनते हैं श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। तो पहला संदेश हमें मिला है खुर्जा उत्तर प्रदेश से तिलकराज अरोड़ा, प्रकाश अरोड़ा, चंदन अरोड़ा और अंकुश अरोड़ा जी का। लिखते हैं,
2: सर अजीत जी, मैडम विमलेश जी, सप्रेम नमस्ते जी। उमंग कार्यक्रम में श्रोता संवाद के मासिक संस्करण का बेसब्री से इंतजार करते हैं। ये कार्यक्रम बेहद पसंद आता है।
3: आप आगे लिखते हैं, कार्यक्रम में सीआईईटी एनसीईआरटी के मीडिया निर्माण प्रभाग की अध्यक्षा प्रोफेसर भारती कौशिक और विमलेश जी की बातचीत प्रशंसा योग्य लगी। कार्यक्रम में समावेशी शिक्षा पर सुनाई गई विस्तार पूर्वक जानकारी बेहद पसंद आई। ये जानकारी रिकॉर्ड करके परिवार के छोटे बड़े सभी सदस्यों को भी हमने सुनवाई
2: जी।
3: इस कार्यक्रम की सभी ने तारीफ की। समावेशी शिक्षा पर विस्तार पूर्वक जानकारी सुनवाने के लिए आभार प्रकट करते हैं। अगला संदेश हमें मिला है
2: गांव ढाणी कुतुबपुर तहसील हांसी जिला हिसार हरियाणा से रामधारी गुर्जर, अवनी गुर्जर, रियांशी गुर्जर, ओजस गुर्जर, गुरदीप गुर्जर, प्यारी बिटिया मीठी, अनाया गुर्जर और बेबी किरत ने। वो लिखते हैं,
3: कार्यक्रम उमंग के प्रस्तुतकर्ता विमलेश जी और अजीत जी को सप्रेम नमस्कार। आपका ये कार्यक्रम विविध जानकारी और मनोरंजन के साथ साथ शिक्षा भाषाई विविधता को बढ़ाने में महत्वपूर्ण कार्य कर रहा है। इस कार्यक्रम का हम बेसब्री से इंतजार करते हैं। ऐसी बेहतरीन प्रस्तुति के लिए आपको तहे दिल से शुक्रिया। अगला संदेश हमें मिला है करसोग जिला मंडी हिमाचल प्रदेश से योगेश ठाकुर जी का। बड़ा खूबसूरत लिखा है,
2: जून महीने के शुरुआती समय में उमंग प्रसारण का श्रोता संवाद कार्यक्रम एक नए अंदाज में प्रस्तुत किया गया जिसने इस कार्यक्रम को अर्थपूर्ण बना दिया और एक प्रकार की नवीनता का संचार किया। सभी श्रोताओं को ये नवीन संस्करण अवश्य पसंद आया होगा।
3: आप आगे लिखते हैं, इस कार्यक्रम की परिचर्चा में आपने समावेशी शिक्षा जैसे अत्यंत

0: संगीक असमकालीन विषय की ओर सभी श्रोता बंधुओं का ध्यान आकर्षित किया। प्रोफेसर भारती जी ने बड़ी सरलता से और विस्तार पूर्वक समावेशी शिक्षा का परिचय प्रस्तुत किया, अर्थ समझाया तथा समावेशी शिक्षा और समतामूलक शिक्षा के बीच का अर्थ स्पष्ट किया। शिक्षा जगत में इन दिनों समावेशी शिक्षा की खूब चर्चा होती रहती है। उमंग कार्यक्रम के मासिक संस्करण श्रोता संवाद में भी इसका विस्तार पूर्वक उल्लेख किया गया। ये जानकर और कार्यक्रम सुनकर बहुत ही सकारात्मकता का अनुभव हुआ। आगे आप लिखते हैं,
1: श्रोता संवाद का सभी को बेसब्री से इंतजार रहता है। प्रोफेसर राजेंद्र पाल जी के साथ जितने भी अंक प्रसारित किए गए हैं उन सभी ने श्रोताओं के मस्तिष्क पटल पर एक गहरी छाप छोड़ी है। श्रोता संवाद हमारे और आपके बीच सक्रिय संवाद का एक विशेष सेतु है। आशा है कि उमंग प्रसारण में नवाचार, रचनात्मकता, आपसी संबंध और संवाद का ये क्रम चलता रहेगा।
0: आपको बहुत बहुत धन्यवाद योगेश ठाकुर जी, आपने बड़ी खूबसूरती से श्रोता संवाद कार्यक्रम के बारे में अपनी प्रतिक्रिया दी है, आपका धन्यवाद। अगला संदेश हमें मिला है गोनियाना मंडी भटिंडा पंजाब से गुरप्रीत सिंह जस्सल जी का। लिखते हैं,
1: समावेशी शिक्षा पर आधारित कार्यक्रम सुना, बहुत अच्छा लगा। हमारी जानकारी भी बढ़ी और मैं ऐसे शिक्षाप्रद कार्यक्रम जरूर सुनता हूँ। आकाशवाणी भटिंडा का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने ये प्रसारण हमारे लिए प्रस्तुत किया है।
0: और अगला संदेश हमें मिला है ऊपरकोट बुलंदशहर से निघत परवीन, शाहनवाज, सरफराज, फरदीन, सुहान, अरजान, अबान और अबासी परिवार के सभी सदस्य और केंद्रपाड़ा ओडिशा से देशदीप दास। धन्यवाद श्रोताओं संदेश भेजने के लिए। इसी तरह से बने रहिए आपके प्रिय शैक्षिक कार्यक्रम उमंग के साथ। अब बारी है पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के उत्तर जानने की। तो हमारा पहला प्रश्न था, सूर्य एक गैस का गोला है जो हाइड्रोजन और हीलियम गैस से बना है, ये दोनों गैसें ठंडी होती हैं, तो फिर सूर्य से गर्मी कैसे पैदा होती है?
1: इसका उत्तर है साथियों, हाइड्रोजन और हीलियम गैसें ठंडी होती हैं, लेकिन जब उनके बीच नाभिकीय संलयन या न्यूक्लियर रिएक्शन होता है तो गर्मी पैदा होती है।
0: हमारा दूसरा प्रश्न था, भीम बैठका की गुफाओं की खोज किस पुरातत्वविद ने की थी?
1: इसका उत्तर है साथियों, भीम बैठका की गुफाओं की खोज प्रसिद्ध पुरातत्वविद विष्णु वाकणकर जी ने की थी, जिसके लिए उन्हें नागरिक सम्मान पद्मश्री से सम्मानित किया गया था।
0: और अब सुनिए हमारा तीसरा प्रश्न। हमारा प्रश्न था, कुटुम्बसर की गुफाओं में फुसफुसाकर बोलने पर भी आवाजें साफ साफ क्यों सुनाई देती हैं?
1: इसका उत्तर भी जान लेते हैं साथियों, इन गुफाओं की बनावट ऐसी होती है कि गुफाओं की दीवारें और छत ध्वनि तरंगों को परावर्तित या रिफ्लेक्ट करती हैं। गुफाएं गहरी हैं इसलिए वहां बाहर का शोर भी लगभग नहीं के बराबर होता है, इसलिए वहां धीमी आवाज भी स्पष्ट सुनाई देती है।
0: और अब हमारा अगला प्रश्न, हमने आपसे पूछा था बोर्रा गुफाओं की खोज किसने और कैसे की?
1: बोर्रा गुफाओं की खोज ब्रिटिश भूवैज्ञानिक विलियम किंग जॉर्ज द्वारा की गई थी।
0: जी, और अब सुनिए हमारा अंतिम प्रश्न। हमारा अंतिम प्रश्न था, सिजू की गुफा में एक पैसेज है जिसे टूथ पैसेज कहते हैं, क्यों?
1: सिजू गुफाओं में एक पैसेज को टूथ पैसेज कहते हैं क्योंकि वहां चट्टानों की बनावट मानव दांतों की श्रृंखला से मिलती जुलती है।
0: तो साथियों, ये थे हमारे पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के उत्तर। और अब सुनिए आज का प्रश्न। आज का प्रश्न है, भारत को और किन किन नामों से जाना जाता है और इसका संवैधानिक नाम क्या है? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
1: भारत को और किन किन नामों से जाना जाता है और इसका संवैधानिक नाम क्या है?
0: 8800440559 है हमारा IBRS नंबर और audio@cieet.nic.in है हमारे ईमेल का पता। साथ ही साथ CIET NCERT को इंस्टा, एक्स, फेसबुक और लिंक्डइन पर भी फॉलो करना ना भूलिए। आइए अब सुनते हैं आज के शैक्षिक कार्यक्रम। तो श्रोताओं, हमारा पहला कार्यक्रम है बुधनी गई है जंगल।
1: ये कार्यक्रम एक जनजातीय लोक कथा पर आधारित है जिसके द्वारा पेड़ पौधों के संरक्षण और पर्यावरण की स्वच्छता का संदेश दिया गया है।

0: बहुत थक गया आज तो। बुधनी, अरे ओ बुधनी,
1: आई रे आई। आ गया बुधवा।
0: हाँ।
1: ले आया लकड़ी। आ, इतनी सी चुब्बा कहाँ रह गया? अम्मा अम्मा अम्मा, देख कितने जामुन लाया हूँ जंगल से। इतना बड़ा पेड़ ढूंढा है मैंने आज जामुन का। कल से रोज जाऊंगा बापू के साथ जंगल, वहाँ बहुत सारे पेड़ हैं अम्मा। हाँ। अरे चुप भी कर, क्या करूँ इतने सारे पेड़ों का। तेरा बापू तो एक भी पेड़ ना काट सकता। रोज यही जरी मरी सी सूखी टहनियां तोड़ लाता है बस।
0: फिर वही बात, अरे मैं क्यों काटूं पेड़ है? जब इतनी सारी लकड़ियों की टहनियां ऐसी मिल जाती है, काम तो चल जाता है ना।
1: काम चल जाता है, काम चल जाता है। हाँ नहीं तो

0: अरे ढेर लकड़ी लाओगे तो इतने सारे पैसे मिलेंगे बेचने से।
1: अच्छा,
0: कुछ कहना करिया, कुछ आड़े पकत के लिए कुछ समझता तो है ना। हाँ
2: अरे भोली, जब तक जंगल है तब तक आड़ा बखत आएगा ही नहीं, ना लकड़ी की कमी ना फल।

0: हाँ, या तो कल एक बड़ा सा पेड़ काट कर लाओ, नहीं तो मेरा मरा मुंह देखो।
1: अरे अरे रोने लगी। अरे सुन तो। अच्छा अच्छा सुन, आप चुप भी हो जा बुधनी, काट लाऊंगा एक पेड़ बड़ा सा। है तो ये पाप ही, हमारा ओझा भी यही कहता है कि पूरे विधि विधान के बाद ही काटो एक पेड़ और फिर लगाओ 10 पेड़, और पुरखों की भी यही रीत है। मगर तू कलह मत कर, मैं काटूंगा पेड़।
2: बापू दुख मत कर, कल हम पेड़ काटेंगे ही नहीं, कोई बहाना बना देंगे। ठीक
1: हाँ, यही ठीक रहेगा। अरे तू तो बड़ा सयाना है रे चुब्बा।
0: बातें कर रहे हो दोनों?
1: कुछ नहीं,
0: जरूर मुझे बुद्ध बनाने की बात होगी। हाँ।
1: नहीं नहीं नहीं,
0: अब तो मैं भी चलूंगी तुम्हारे साथ। हाँ? अपने सामने कटवाऊंगी पेड़। अब तुम लोगों का कोई भरोसा है क्या?
1: नहीं नहीं नहीं, तू क्या करेगी जंगल में जाकर, हम काट लाएंगे ना एक अच्छा सा पेड़।
2: हाँ माँ, वहाँ ऐसे ऐसे भयानक जानवर होते हैं, ऐसे ऐसे जानवर होते हैं।
0: अरे चुप, जैसे मैं तो कभी जंगल गई ही नहीं, मैंने तो सोच लिया है मैं जंगल जाऊंगी ही। सुबह जल्दी उठकर सारी तैयारी करनी है, दिन भर का खाना बनाना है। अब चलो खाना खाकर जल्दी सो जाओ।

0: अम्मा अम्मा,
1: अरे अरे क्या हुआ?
2: अरे चुप्पा चुप्पा, क्या हुआ बेटा?
1: डर मत बच्चे, मैं यही हूँ तेरे पास।
2: अरे कोई डरावना सपना देखा क्या? क्या सपना देखा तूने?
0: मुझे डर लग रहा है अम्मा।
1: कोई डरावना सपना देखा होगा बच्चे? अरे क्या देखा तूने?
0: अम्मा अम्मा, मैंने देखा कि हम जंगल में पेड़ काट रहे हैं और अम्मा पेड़ रोने लगा, मुझे मत काटो मत मारो, मुझे दर्द होता है, मेरी लकड़ी ले लो, पत्ते ले लो, फूल ले लो, फल ले लो, पर मुझे मत मारो, मैं तो तुम्हारा मीत हूँ माँ। माँ उसने ये कहा, उसने कहा अम्मा मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है अम्मा, और वो रोने लगा। अम्मा अम्मा जोर जोर से रोया, मगर हमने उसे काट ही दिया, काट ही दिया। वो चिल्लाया अम्मा, मैं भी चिल्लाया।
2: चुप्पा चुप्पा,
1: सोचा सोचा बेटे सोचा, डर मत। अरे वो तो सपना था। सोचा सोचा बेटा, मैं तेरे पास ही तो लेटी हुई हूँ यहाँ, है? सोचा बेटे सोचा सोचा, शाबाश अच्छा बेटा है ना, चुप्पा तो सोएगा। सोचा सो गया, इसने तो मुझे डरा ही दिया। अरे कैसे कैसे सपने देखता है ये?
2: तो फिर कल पेड़ काटने नहीं जाना ना?
1: क्यों नहीं, बिल्कुल जाना है। जा जा सो जा। अरे वो तो सपना था, उससे क्या होता है। अरे सो जा, सुबह जल्दी उठना है।

0: चुब्बा, अरे ओ चुब्बा, अरे उठ बेटा, बुधवा उठो ना, भोर हो गई, मैं तैयारी करती हूँ चलने की।
1: अरे तो जाना ही पड़ेगा, तू मानेगी नहीं?
0: ना, मैं तो ना मानू। चल
1: चल, तेरी यही हट है तो चल चल चुब्बा।
0: अरे कुल्हाड़ी तो ले लो, पेड़ के हाथों से काटोगे।
1: अरे हाँ, वो तो मैं भूल ही गया था, आदत नहीं है ना।
0: आदत नहीं है, ये नियत ना है वो। चल चुब्बा, वो रस्सी उठा, लट्ठों को बांधना भी तो होगा ना।
2: अच्छा अम्मा।
0: अरे अब चलो भी।
1: चलो
2: चलो, चलो।

0: मुंह क्यों लटका रखा है बाप बेटे ने? पेड़ की लकड़ी बेचकर जो पैसा मिलेगा उससे तुम्हारे लिए भी तो चीजें आएंगी अच्छी अच्छी।
1: अम्मा मुझे नहीं चाहिए अच्छी चीजें। हाँ
2: मुझे भी नहीं।
0: ठीक है तुम लोग मत लेना, सारी अच्छी अच्छी चीजें मैं अपने लिए लाऊंगी बस।

0: तो साड़ी लूंगी।
1: अरे बाप रे, इस जंगल में शेर भी है क्या?
2: अरे शेर तो नहीं है, कोई बघेरा वगैरह होगा। अरे डर मत, ये कुल्हाड़ी है ना, वैसे भी इस तरफ आदमियों का आना जाना लगा रहता है, इससे जानवर इधर नहीं आते।
1: फिर भी
3: अम्मा तू भी चले वापस?
1: ना वापस तो फिर भी नहीं जाएंगे हम। हाँ
3: अम्मा क्या सोच रही है?
4: यही कि कौन सा पेड़ काटना ठीक रहेगा। क्यों बुधवा, ये जामुन कैसा रहेगा रे?
2: ये जामुन?
4: हाँ
2: चलो इसी को काट देते हैं।
3: नहीं नहीं नहीं नहीं अम्मा, इसे नहीं, ये तो फलों से लदा है।
2: हाँ।
3: हर साल फल देता है, इसे मत काटो।
4: हाँ ये बात तो ठीक है, जामुन कहाँ से खाऊंगी। तो फिर फिर उस साल के पेड़ को काटते हैं चलो।
2: अरे रे क्या बात करती हो, वो तो अभी पूरा बढ़ा भी नहीं है, ये तो वैसे हुआ कि जैसे किसी को छुटपन में ही मरना पड़े।
4: हाय रे, बात तो तुम्हारी सच है।
3: तो अम्मा ऐसा करते हैं, वो जो देवदार के बहुत सारे पेड़ है ना, उनमें से एक को काट देते हैं।
4: अरे नहीं नहीं नहीं नहीं, कितने सुंदर हैं ये पेड़, अरे उन्हें रहने दो। ये रोन का पेड़ कैसा रहेगा बुधवार?
2: ये
4: है भी काफी पुराना, फल भी नहीं है इस पर। तो
2: फूल तो हैं, फल भी आएंगे, अरे हजारों पक्षियों की भूख मिटाएंगे। नहीं नहीं नहीं नहीं, ठीक नहीं रहेगा इसे काटना। चलो ठीक है, काटना ही है तो ये नीम का पेड़ काट देते हैं।
4: अरे पागल हुआ है, ये नीम का पेड़ तो दवा दारू के काम आता है, कोई बीमारी नहीं जिसका इसके पास इलाज ना हो। हाँ
2: अच्छा, तब तो अरार का पेड़ भी छोड़ना पड़ेगा है?
4: क्यों?
2: इसका भी नीम वाला हाल है, बल्कि ये तो सुना है सबकी किस्मत भी जानता है, इसे कौन काटे।
3: चलो आगे देखते हैं, कोई ना कोई बेकार पेड़ तो मिल ही जाएगा, ऐसा क्या है।
4: हाँ हाँ चलो चलो, आगे चलकर देखते हैं। चलो
5: देखो ये पेड़,
4: देख लो।
3: अम्मा अम्मा वो देखो, ओक का पेड़, और वहीं बबूल भी है। चलो अम्मा काटे
4: चलो। इधर से निकल कर आओ।
3: अच्छा
4: आई, क्या हुआ चुप्पा?
2: क्या हुआ?
3: अम्मा अम्मा कांटा चुप गया। आई
4: अरे दिखा दो।
3: अम्मा लगता है पेड़ कह रहे हैं हमें मत काटो, हमें मत काटो। बापू इन्हें मत काटना, देखो ये रो रहे हैं।
2: ठीक है नहीं काटेंगे।
3: देखा अम्मा कैसे लहलाने लगे, जान बचने से खुश हो रहे होंगे है ना।
2: हाँ बेटा, ये देखो ये चीड़, देवदार, ओक, खजूर और तार।
4: हाँ।
2: ये तो है ही सदाबहार, इन्हें काटने से क्या फायदा?
1: अरे नुकसान भी क्या है?
2: बहुत नुकसान है, हमारे पुरखे कहते थे इन्हीं की बदौलत हवा पानी साफ रहता है, बरखा होती है, बाढ़ रुकती है। सोचो हमारी तरह सभी लोग चल दें पेड़ काटने तो कितना नुकसान हो जाए।
4: रहने दो अपनी बातें, कोई और पेड़ ढूंढो। ये कौन सा पेड़ है, ना फूल ना फल?
2: क्या पता, मुझे सबके नाम थोड़ी मालूम है, मगर मैं तो इसे नहीं काटूंगा।
3: क्यों? देखो ना माँ, ये पेड़ हजारों लाखों कीड़ों का घर है, उन्हें दूध पिला रहा है।
4: और वो वाला, उसमें तो ना कीड़े दूध पी रहे हैं, ना फल है, ना फूल है, कुछ भी नहीं है उसमें, और ना ही उससे कोई लाभ है, उसे तो काटो कम से कम।
3: नहीं नहीं नहीं नहीं अम्मा, उसे छोड़ दो। देखो अम्मा, इस पेड़ की घनी पत्तियों में सैकड़ों पंछियों का घोंसला है।
2: हाँ।
3: पेड़ कटा तो वो सब बेघर हो जाएंगे। सोचो माँ, अगर हमारा कोई घर तोड़ दे तो हमें कैसा लगेगा।
2: हाँ बिल्कुल,
4: सचमुच इस पर तो कोयल भी रह रही है। बुधवा रहने दे इसको भी।
2: अच्छा।
4: मुझे कोयल का गाना बहुत अच्छा लगता है, तू रहने दे इस पेड़ को। तो
2: ठीक है। अरे सुन, कोयल खुश होकर तुझे धन्यवाद दे रही है बुधनी।
3: अम्मा जिन जिन पेड़ों को तुमने बचा लिया वो सभी तुम्हें दुआएं दे रहे होंगे।
4: मुझे बनाओ मत, मैंने अभी बदला नहीं है अपना इरादा। चलो ढूंढो काटने लायक पेड़। हाँ। लो, इसमें हंसने की क्या बात है, चलो ढूंढो ना।
2: अरे अब कहाँ से ढूंढे, जंगल के सारे पेड़ों को तो तूने बख्श दिया, अब किसे काटे।
4: क्या सारे पेड़ों को बख्श दिया?
2: और क्या।
4: ना जी ना, अभी तो हजारों

0: होंगे इस जंगल में।
1: हाँ है तो सही, मगर वो सब भी इन्हीं के भाई बंद हैं। जो बात इनके साथ वही उनके साथ।
0: जीवा जीवा जी, अब तो पेड़ नहीं कटेगा, नहीं कटेगा।
2: अरे चुप।
1: क्या हुआ?
2: अरे चुप्पा। हाँ, पेड़ अब नहीं कटेगा। तो यही बात थी ना, तुम दोनों शाम को फुसफुसा कर यही बातें कर रहे थे ना, कि अम्मा को जंगल में बहला लेंगे और पेड़ नहीं काटेंगे। है,
1: तू समझ गई है?
0: तू भी तो मान गई ना कि कोई भी पेड़ कटने लायक नहीं है। अब तू ही बता किसे काटे।
1: बता?
2: रहने दे रहने दे, तुम दोनों बड़े सयाने हो, मुझे हमेशा ऐसे ही बहला देते हो। मैं जिस भी पेड़ पर हाथ रखूंगी, तुम उसी के बारे में ऐसी ऐसी बातें बनाओगे कि मुझे को दया आ जाएगी। हाय रे, मेरी इच्छाएं क्या कभी पूरी नहीं होंगी?
1: होंगी होंगी, जरूर होंगी, मगर ऐसे नहीं।
2: फिर कैसे?
1: चल घर, चलते चलते बताता हूँ कि कैसे।
2: चल। बता।
1: सुन, हम सब मिलकर बहुत सारे पेड़ लगाएंगे अपने घर के आगे। फिर हमें फल मिलेंगे, फूल मिलेंगे, बुलबुलें आएंगी, कोयल गाएंगी, गीत गाएंगी, महुआ सींचेंगे, हम फिर मेले जाएंगे, खूब काम करेंगे। हम तीनों मिलजुल कर ताल बनाएंगे, मछली पालेंगे, मछली, फल, सब्जी, महुआ, कटहल बेचेंगे। हाँ, पैसे पाएंगे, बुधनी को देंगे, बुधनी खुश होगी, कलह नहीं करेगी, बिल्कुल नहीं करेगी, झगड़ेगी भी नहीं। क्यों बुधनी, तब भी झगड़ेगी क्या?
0: क्यों अम्मा, तब भी झगड़ेगी?
1: बोल ना।
2: नहीं रे नहीं, मुझे क्या शौक है झगड़ने का।
1: सच्ची।

0: और आइए सुनते हैं कार्यक्रम अर्जुन का निशाना।
1: इस कार्यक्रम के द्वारा संदेश दिया गया है कि जीवन में आगे बढ़ने के लिए हमें अपना लक्ष्य निर्धारित करना चाहिए और उसे पूरा करने के लिए सतत प्रयत्नशील रहना चाहिए।
2: बात बहुत पहले की है। हमारे देश में एक राजा थे पांडु। पांडु के पांच पुत्र थे जिन्हें पांडव कहते हैं। युधिष्ठिर इनमें सब में बड़े थे। युधिष्ठिर से छोटे थे भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव। पांचों राजकुमार गुरु द्रोणाचार्य से अस्त्र शस्त्र चलाना सीखते थे। भीम गदा चलाने में बहुत कुशल थे और अर्जुन धनुष बाण चलाने में। गुरु द्रोणाचार्य समय समय पर अपने शिष्यों की परीक्षा लिया करते थे। एक दिन उन्होंने पेड़ पर मिट्टी की एक चिड़िया टांग दी। फिर राजकुमारों से चिड़िया की आंख पर बाण मारने को कहा। गुरु द्रोणाचार्य ने बारी बारी से अपने सभी शिष्यों को बुलाया। उन्होंने चिड़िया की ओर संकेत करते हुए पूछा,
3: उधर देखो, तुम्हें क्या दिखाई देता है?
2: किसी ने कहा,
4: गुरुजी, मुझे राजकुमार, पेड़ और चिड़िया सब कुछ दिखाई दे रहा है।
2: किसी ने कहा,
5: मुझे पेड़ और चिड़िया दिखाई दे रही है।
2: किसी ने कहा,
6: मुझे चिड़िया के पंख दिखाई दे रहे हैं।
2: अर्जुन की बारी आने पर द्रोणाचार्य ने उससे भी वही प्रश्न किया। अर्जुन ने कहा,
7: गुरुजी, मुझे तो केवल चिड़िया की आंख दिखाई दे रही है।
2: अब द्रोणाचार्य ने बारी बारी से सभी को बाण चलाने का आदेश दिया। अर्जुन का निशाना तो ठीक आंख पर लगा, किंतु और भाइयों का निशाना चूक गया। द्रोणाचार्य ने सभी राजकुमारों को बताया,
3: क्या तुम लोग समझ गए कि अर्जुन का तीर निशाने पर क्यों लगा? जिसे केवल लक्ष्य दिखाई दे वही सफल होता है। तुम लोगों को लक्ष्य के साथ साथ और बहुत सी चीजें भी दिखाई दे रही थीं, इसलिए तुम्हारा ध्यान बट गया और निशाना ठीक नहीं बैठा। अर्जुन का ध्यान केवल चिड़िया की आंख पर था, इसलिए उसका निशाना बिल्कुल ठीक बैठा और बाण ठीक चिड़िया की आंख पर लगा।
0: श्रोताओ, अभी आपने सुना कार्यक्रम अर्जुन का निशाना और अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अब अपने मित्र अजीत
1: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
0: नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे एनसीईआरटी पर आधारित प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। आकाशवाणी का ये जबलपुर केंद्र है। शाम के 6:30 हुए हैं। लीजिए सुनिए लोक संगीत। कलाकार हैं ममता चंद्राकर।

अभी आप सुन रहे थे लोक संगीत, आकाशवाणी का ये जबलपुर केंद्र है। अब अगला कार्यक्रम हम आकाशवाणी भोपाल से रिले करेंगे, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: आजकल।
1: आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत कार्यक्रम आजकल में आज का विषय है डिजिटल इंडिया। आले अमित कुमार सेन, वाचन स्वर राणा शाहिद।

भारत दुनिया का वो देश है जो तेजी से प्रगति कर रहा है और इस प्रगति में उसकी पहचान बन रहा है डिजिटल इंडिया। डिजिटल इंडिया भारत सरकार की एक प्रमुख पहल है जिसकी शुरुआत 1 जुलाई 2015 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की थी। इसका उद्देश्य भारत को डिजिटल रूप से सशक्त समाज और ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था में बदलना है। इस योजना ने अपने उद्देश्यों को काफी हद तक पूरा किया है। डिजिटल इंडिया जब शुरू हुई तो उसके 3 मुख्य स्तंभ रखे गए। पहला है डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, दूसरा डिजिटल साक्षरता और तीसरा है डिजिटल सेवा वितरण। साल 2025 तक के डेटा की बात करें तो डिजिटल इंडिया के जरिए इंटरनेट और ब्रॉडबैंड की पहुंच में भारी इजाफा हुआ है। साल 2014 में इंटरनेट कनेक्शन जहां 25.15 करोड़ थे तो वहीं साल 2024 में 96.96 करोड़ यानी लगभग 85% की वृद्धि दर्ज की गई। साल 2015 में ब्रॉडबैंड सब्सक्रिप्शंस जहां 9.9 करोड़ थे जो कि बढ़कर 2025 में 94.4 करोड़ हो गए। इसमें लगभग 10 गुना वृद्धि देखी गई। इस तरह साल 2025 में कुल इंटरनेट यूजर्स 1.03 अरब थे जो कि भारत की जनसंख्या का 70% है। भारत 5G विस्तार करने में विश्व में सबसे तेज देशों में शामिल है। अब हम डिजिटल भुगतान यानी UPI की बात करें तो अप्रैल 2025 तक 1,867.7 करोड़ लेन देन किया गया जिसका मूल्य 24.77 लाख करोड़ था। भारत विश्व में रियल टाइम ट्रांजैक्शन का 49% हिस्सा रखता है। भारत में डिजिटल पहचान और सेवाएं भी मौजूद हैं। इनमें मुख्य तौर पर आधार, डिजी लॉकर, उमंग और भारत नेट हैं। डिजिटल इंडिया ने फेसलेस, पेपरलेस और कैशलेस गवर्नेंस को बढ़ावा दिया। डेटा कीमतें बहुत कम हुई जिसमें ग्रामीण भारत भी डिजिटल इंडिया से जुड़ा। साल 2026 में डिजिटल इंडिया के जरिए AI और सेमीकंडक्टर क्रांति आई है। भारत ने इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन ISM 2.0 की शुरुआत की और नई दिल्ली में इंडिया AI इंपैक्ट समिट जैसे वैश्विक आयोजनों की मेजबानी की। स्वदेशी क्लाउड इकोसिस्टम मेघराज 2.0 का बड़े पैमाने पर विस्तार हुआ है जिसके तहत 2300 से अधिक सरकारी विभाग क्लाउड सेवाओं के माध्यम से जुड़े हैं। डिजी लॉकर से 67 करोड़ से अधिक उपयोगकर्ताओं को 967 करोड़ से ज्यादा डिजिटल दस्तावेज जारी किए जा चुके हैं। वहीं उमंग ऐप पर 2400 से अधिक सरकारी सेवाएं नागरिकों को घर बैठे मिल रही हैं। नागरिकों के व्यक्तिगत डेटा की सुरक्षा के लिए डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट को सख्ती से लागू किया गया। प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान के तहत 6.3

0: 9 करोड़ से अधिक ग्रामीण नागरिकों को डिजिटल रूप से साक्षर बनाया जा चुका है। यूपीआई का अंतर्राष्ट्रीय विस्तार भारत की डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर यानी डीपीआई की सफलता का एक प्रमुख उदाहरण है। एनपीसीआई यानी नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया और उसकी अंतर्राष्ट्रीय शाखा एनपीसीआई इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड के जरिए यूपीआई को वैश्विक स्तर पर ले जाने का प्रयास तेजी से चल रहा है। साल 2023 से सिंगापुर पे नाउ यूपीआई लिंकेज रियल टाइम P2P ट्रांसफर शुरू हुआ है। भारत सरकार का लक्ष्य है कि वित्त वर्ष 2029 तक डिजिटल इंडिया का विस्तार 20 से ज्यादा देशों तक किया जाए। दुनिया के कई देश भारत का यूपीआई जैसा सिस्टम अपनाने के लिए भारत से सहयोग ले रहे हैं। डिजिटल इंडिया अभियान केवल एक सरकारी योजना नहीं है, बल्कि यह आधुनिक भारत के निर्माण का एक सशक्त माध्यम बन चुका है। इस तकनीक ने समाज के सबसे निचले पायदान पर खड़े व्यक्ति को भी देश की मुख्य धारा से जोड़ने का काम किया है। इस तरह डिजिटल इंडिया आज भारत सरकार की मुख्य और सफल योजना में शामिल है।
1: आप सुन रहे थे कार्यक्रम आजकल, विषय था डिजिटल इंडिया। आलेख श्री अमित कुमार सेन का और वाचन स्वर राणा शाहिद का। यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है और अब समय है प्रादेशिक समाचार दर्शन का।

0: नमस्कार श्रोताओं, प्रादेशिक समाचार एकांश आकाशवाणी भोपाल के कार्यक्रम प्रादेशिक समाचार दर्शन में आपका स्वागत है। मैं हूं अभिषेक कटियार। श्रोताओं, जैसा कि आप जानते हैं कि इस कार्यक्रम में हम आपके लिए लेकर आते हैं जिलों की समसामयिक गतिविधियों पर एक रिपोर्ट, और इस बार का प्रादेशिक समाचार दर्शन केंद्रित है नशा मुक्त भारत अभियान पर, जो कि पूरे प्रदेश में 17 से 26 जून तक चलाया गया। तो आइए शुरू करते हैं प्रादेशिक समाचार दर्शन, जिसकी पहली रिपोर्ट है रतलाम जिले से, जहां पर नशे से दूरी है जरूरी अभियान के तहत पुलिस और प्रशासन दो तरफा कार्रवाई कर रहे हैं। पहली कार्रवाई नशे के अवैध कारोबार पर कड़े प्रहार के रूप में है, तो दूसरी कार्रवाई जन जागरूकता की है। इस बारे में और अधिक जानकारी दे रही हैं हमारी रतलाम संवाददाता अदिति मिश्रा।
1: नशे से दूरी है जरूरी, रतलाम जिले में नशा मुक्ति अभियान व्यापक स्तर पर संचालित हो रहा है। अभियान के तहत पुलिस और प्रशासन द्वारा दो तरफा कार्रवाई की जा रही है। रतलाम एसपी अमित कुमार के निर्देशन में रतलाम जिले में लगातार नशे का व्यापार करने वालों के खिलाफ पुलिस और आबकारी विभाग द्वारा कार्रवाइयां की जा रही हैं। हाल ही में रतलाम पुलिस ने एमडी स्मैक और अन्य ड्रग्स को पकड़कर भी बड़ी खेप हासिल की है। इसके साथ ही नशे का कारोबार करने वालों के अन्य ठिकानों पर भी लगातार पुलिस कार्रवाई हो रही है। दूसरी ओर कलेक्टर मीशा सिंह के नेतृत्व में पूरे जिले में नशे के खिलाफ जन जागरूकता अभियान भी चल रहा है। इसमें स्वास्थ्य विभाग के साथ ही अन्य विभागों द्वारा स्कूल और कॉलेजों में जाकर भी युवाओं को नशे के दुष्प्रभावों के बारे में जागरूक किया जा रहा है। तीसरे स्तर पर रतलाम के मेडिकल कॉलेज में नशा मुक्ति केंद्र का संचालन भी प्रारंभ किया जा चुका है। यहाँ विशेषज्ञ चिकित्सकों के मार्गदर्शन में अलग अलग थेरेपी, जिसमें कि मेडिकल के साथ ही योगा और काउंसलिंग के जरिए युवाओं को नशे की लत से बाहर आने के लिए भी सहायता प्रदान की जा रही है। रतलाम में चल रहे नशा मुक्ति अभियान में हर स्तर पर युवाओं को नशे से दूर रखने, इसके दुष्प्रभावों के बारे में बताने और किसी भी कारण गलत लत में पड़ चुके युवाओं को वापस सकुशल अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए भी पर्याप्त मदद दी जा रही है। समाचार दर्शन के लिए रतलाम से मैं अदिति मिश्रा।
0: प्रादेशिक समाचार दर्शन की अगली रिपोर्ट में हम रुख कर रहे हैं सीहोर जिले का, जहां जिला सामाजिक न्याय विभाग द्वारा नशा मुक्त भारत अभियान को उत्साहपूर्ण वातावरण में मनाया गया। इस बारे में ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सीहोर संवाददाता प्रदीप सिंह चौहान।
2: सीहोर जिले में जिला सामाजिक न्याय विभाग द्वारा नशा मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत नशा विरोधी सप्ताह मनाया गया। इस दौरान जिले भर में 17 जून से 26 जून तक शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में जन जागरूकता रैली एवं जन जागरूकता सभा का आयोजन किया गया। इस बार जिले में इस अभियान की थीम नशा मुक्त भारत अभियान विकसित भारत की पहचान पर आधारित रही। जिले के विभिन्न स्कूल और शैक्षणिक संस्थानों में नशा मुक्ति के विरुद्ध जन जागरण के लिए कई प्रकार की प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं, जिनमें चित्रकला,

0: विवाद, निबंध, प्रश्न पंच और अन्य प्रकार की प्रतियोगिताएं शामिल रही हैं। ग्राम पंचायतों में भी सामूहिक शपथ दिलवाई गई और नशे के विरुद्ध अलग जगाने के लिए कार्यक्रम आयोजित हुए। अंतिम दिन अंतर्राष्ट्रीय मादक द्रव्य दुरुपयोग एवं अवैध तस्करी निरोधक दिवस मनाया गया। इस अवसर पर आवासीय स्कूल से जिला स्तरीय जन जागरूकता रैली प्रारंभ हुई और पीएम कॉलेज ऑफ एक्सलेंस में इस रैली का समापन हुआ। इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में बताया गया कि नशा मुक्त भारत अभियान का उद्देश्य समाज के प्रत्येक वर्ग विशेषकर युवाओं को नशे की लत से दूर कर स्वस्थ, सुरक्षित एवं सशक्त समाज का निर्माण करना है। नशे के विरुद्ध जन भागीदारी ही इस अभियान की सबसे बड़ी शक्ति है। इस अवसर पर अतिथियों ने हस्ताक्षर अभियान में भाग लेकर सभी को नशा मुक्ति का संकल्प दिलाया और सेल्फी पॉइंट पर सेल्फी ली। नशा मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत आयोजित सप्ताह में विभिन्न प्रतियोगिताओं एवं गतिविधियों जिनमें मिनी मैराथन, नुक्कड़ नाटक, रंगोली, स्लोगन लेखन, निबंध लेखन, चित्रकला, हस्ताक्षर अभियान, सेल्फी पॉइंट सहित अनेक जन जागरूकता गतिविधियों के विजेताओं को इस समारोह में सम्मानित किया गया। रैली में ऑक्सफोर्ड स्कूल के बैंड द्वारा आकर्षक एवं प्रेरणादायी प्रस्तुति दी गई। इस बारे में जिला सामाजिक न्याय विभाग के सहायक संचालक महेश यादव ने जानकारी देते हुए बताया कि
1: सीहोर जिले में नशा मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत 17 जून से 26 जून तक पूरे सप्ताह शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में नशा मुक्ति के विरुद्ध प्रभावी जन जागृति के लिए विभिन्न आयोजन उत्साह के वातावरण में किए गए हैं। इस बार जिले में इस अभियान की थीम नशा मुक्त भारत अभियान विकसित भारत की पहचान पर आधारित रही है। जिले के विभिन्न स्कूलों और शैक्षणिक संस्थाओं में नशा मुक्ति के विरुद्ध जन जागरण के लिए कई कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिसमें चित्रकला, वाद विवाद प्रतियोगिता, निबंध, प्रश्न मंच, नुक्कड़ नाटक और इस प्रकार के अनेक प्रतियोगिताएं शामिल रही हैं। ग्राम पंचायतों में भी सामूहिक शपथ दिलाई गई और नशा के विरुद्ध अलख जगाने के लिए विभिन्न कार्यक्रम आयोजित हुए हैं। इस अवसर पर आवासीय स्कूल से नशे के विरुद्ध जन जागरण के लिए एक विशाल रैली निकाली गई है और इस रैली का समापन पीजी कॉलेज में किया गया है और जो एक सप्ताह में जो कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं उसका पुरस्कार वितरण भी संपन्न हुआ है।
0: सीहोर जिले से प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए मैं प्रदीप सिंह चौहान।
2: प्रादेशिक समाचार दर्शन की अगली रिपोर्ट में रायसेन में चलाए गए नशा मुक्त भारत अभियान पर जानकारी दे रहे हैं हमारे रायसेन संवाददाता विनीत माहेश्वरी।
3: अंतर्राष्ट्रीय मादक पदार्थ दुरुपयोग और अवैध तस्करी विरोधी दिवस के अवसर पर रायसेन जिले में नशा मुक्त भारत अभियान का आयोजन किया गया। सामाजिक न्याय विभाग के सहयोग से अजंता ललित कला समाज कल्याण समिति द्वारा 17 जून 2026 से 26 जून 2026 तक ग्रामीण क्षेत्रों में व्यापक जागरूकता अभियान चलाया गया। अभियान के तहत नशा मुक्ति प्रचार रथ ने गांवों का भ्रमण किया, जहां कलाकारों ने स्थानीय लोकगीतों के माध्यम से ग्रामीणों को नशे से दूर रहने का संदेश दिया। सलामतपुर के राजीव नगर में आयोजित मुख्य कार्यक्रम में भारत सरकार के ASO सेलेन पायल ने मादक पदार्थों के वैश्विक खतरों के प्रति संचेत किया। वहीं सामाजिक न्याय विभाग के उप संचालक मनोज बाथम ने युवा पीढ़ी को नशे से बचाने के लिए समाज के हर वर्ग के आगे आने की अपील की। संस्था की अध्यक्ष इंदिरा शर्मा ने कफ सिरप की बिना पर्ची बिक्री पर रोक लगाने के सरकार के निर्णय की सराहना की। इस दौरान राज्य स्तरीय मास्टर ट्रेनर वेद प्रकाश शर्मा ने उत्कर्ष नशा मुक्ति केंद्र में मिलने वाले निःशुल्क उपचार की जानकारी दी। कार्यक्रम के अंत में अधिकारियों और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने उपस्थित ग्रामीणों को नशा मुक्ति की सामूहिक शपथ भी दिलवाई। सामाजिक न्याय विभाग के उप संचालक मनोज बाथम ने बताया कि
4: नशा मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत रायसेन जिले में सभी महाविद्यालयों में तथा विद्यालयों में युवाओं को जन जागृति कार्यक्रम के माध्यम से नशे के दुष्परिणामों से अवगत कराया, साथ ही निबंध प्रतियोगिता, वाद विवाद प्रतियोगिता, भाषण प्रतियोगिता, चित्रकला प्रतियोगिता, रंगोली इत्यादि नशा से आधारित श्रृंखला में प्रथम आने वाले सभी युवाओं को दिनांक 1 जुलाई को आयोजित होने वाले कार्यक्रम में पुरस्कृत किया जाएगा।
3: प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए रायसेन से मैं विनीत माहेश्वरी।
2: नशा मुक्त भारत अभियान के तहत सतना जिले में जिला प्रशासन और राष्ट्रीय सेवा योजना के संयुक्त तत्वावधान में कई जगह पर नुक्कड़ नाटक सहित अनेक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इस बारे में और जानकारी दे रहे हैं हमारे सतना संवाददाता लाल बहादुर तिवारी।
5: सतना जिले में जिला प्रशासन एवं राष्ट्रीय सेवा योजना के संयुक्त तत्वाधान में जगह जगह नशा मुक्ति जागरूकता अभियान के अंतर्गत नुक्कड़ नाटक सहित अनेक कार्यक्रम

0: कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें स्वयंसेवकों ने अपने सशक्त अभिनय एवं संवादों के माध्यम से समाज को नशे के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक करने का सराहनीय प्रयास किया। नुक्कड़ नाटक के माध्यम से यह संदेश दिया गया कि नशा न केवल व्यक्ति के स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाता है, बल्कि उनके परिवार और पूरे समाज पर भी नकारात्मक प्रभाव डालता है। नशे के कारण पारिवारिक कलह, सामाजिक विघटन और सड़क दुर्घटनाओं में वृद्धि तथा कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का खतरा भी बढ़ जाता है, जिसमें असमय मृत्यु तक हो सकती है। कार्यक्रम में उपस्थित नागरिकों को नशे से दूर रहने, स्वस्थ जीवन शैली अपनाने तथा समाज को नशा मुक्त बनाने के लिए प्रेरित किया गया। उपस्थित नागरिकों ने नशा मुक्ति समाज के निर्माण में अपना सहयोग देने का भी संकल्प लिया। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए सतना से मैं लाल बहादुर तिवारी।
1: प्रादेशिक समाचार दर्शन में अब हम रुख करते हैं हीरो के लिए विश्व प्रसिद्ध पन्ना जिले का, जहाँ पर युवाओं और आम नागरिकों को नशे की लत से बचाने तथा एक स्वस्थ एवं समृद्ध समाज के निर्माण के उद्देश्य से नशा मुक्त सप्ताह चलाया गया। इस बारे में और जानकारी हमारे पन्ना संवाददाता दिलीप कुमार शर्मा से।
2: हीरो के लिए विश्व प्रसिद्ध पन्ना जिले में युवाओं और आम नागरिकों को नशे की लत से बचाने तथा एक स्वस्थ और समृद्ध समाज के निर्माण के उद्देश्य से 17 से 26 जून तक विशेष नशा मुक्ति सप्ताह अभियान चलाया गया। शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़ते मादक पदार्थों के सेवन पर अंकुश लगाने और प्रभावी व्यक्तियों को समाज की मुख्य धारा में वापस लाना इस अभियान का मुख्य एजेंडा रहा। इसमें प्रशासन, शासन और सामाजिक संस्थाओं के साझा प्रयासों से नशा मुक्त पन्ना, समृद्ध पन्ना का यह संकल्प अब पूरी दृढ़ता के साथ धरातल पर उतरता दिखाई दे रहा है। पन्ना कलेक्टर उषा परमार एवं पुलिस कप्तान निवेदिता नायडू के कुशल नेतृत्व में इस अभियान को गति मिली है। जिले की लक्षित ग्राम पंचायतों में जागरूकता बैठकों का दौर जारी है। स्कूल, कॉलेज और ग्रामीण चौपालों के माध्यम से युवा पीढ़ी को नशे के दुष्प्रभावों के प्रति सचेत किया जा रहा है। इस अभियान के तहत पन्ना जिले की आदर्श ग्राम पंचायत शाहनगर में छात्रों और आम नागरिकों को नशा मुक्त की सामूहिक शपथ दिलाई गई। बुंदेलखंड के पन्ना जिले में अवैध शराब और नशीले पदार्थों की बिक्री पर कड़ा प्रहार करने के लिए प्रशासन द्वारा एक समर्पित हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया है, जिस पर नागरिक गुप्त सूचनाएं प्रदान कर सकते हैं। उधर जिले की सामाजिक संस्था ब्रह्म कुमारी द्वारा 17 से 26 जून तक विशेष नशा मुक्ति सप्ताह का आयोजन किया गया, जिसके तहत विभिन्न जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस अभियान का समापन पवई के प्रसिद्ध जगन्नाथ स्वामी मंदिर प्रांगण में हुआ। इस वर्ष समापन कार्यक्रम की थीम नशा मुक्त भारत अभियान, विकसित भारत की पहचान रखी गई थी। इस अवसर पर ब्रह्म कुमारी बहन बीके सीता ने उपस्थित जनसमुदाय को संबोधित करते हुए नशा छोड़ो, जीवन से नाता जोड़ो का आत्मिक संदेश दिया।
3: नशा मुक्त सप्ताह के अंतर्गत ब्रह्म कुमारी विद्यालय के द्वारा पन्ना जिले के अनेक गांवों में नशा मुक्त होने की प्रतिज्ञा कराई गई। जिला जेल में कैदियों को भी नशा मुक्त होने की प्रतिज्ञा दिलाई गई एवं मेडिटेशन का अभ्यास कराया गया। पवई में 26 तारीख को नशा मुक्त सप्ताह का समापन किया गया एवं सभी से समाज को नशा मुक्त होने के लिए शपथ ली गई।
2: पन्ना जिले में यह नशा मुक्त अभियान अब केवल एक सरकारी औपचारिक कार्यक्रम न रहकर एक व्यापक जन आंदोलन का रूप ले चुका है। समाज के हर वर्ग, विशेषकर महिलाओं और युवाओं की सक्रियता एवं ऊर्जावान भागीदारी से जिले में सकारात्मक बदलाव की एक नई बयार बहने लगी है। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए पन्ना से मैं दिलीप कुमार शर्मा।
1: प्रादेशिक समाचार दर्शन की अंतिम रिपोर्ट है निवाड़ी जिले से, जहां कलेक्टर जमुना भिड़े के निर्देशन में नशा मुक्ति अभियान बीते 17 से 26 जून तक चलाया गया। इस बारे में और जानकारी दे रहे हैं हमारे निवाड़ी संवाददाता विवेक दांगी।
4: निवाड़ी जिले में नशा मुक्ति अभियान निवाड़ी कलेक्टर जमुना भिड़े के निर्देशन में किया गया। निवाड़ी कलेक्टर जमुना भिड़े ने सामाजिक न्याय विभाग के साथ ही स्वास्थ्य विभाग एवं अन्य अधिकारियों को ये निर्देशित किया था कि आपको प्रत्येक कॉलेज, स्कूल के छात्रों को ज्यादा से ज्यादा संख्या में जागरूक करना है, ताकि बच्चे नशे की बुरी लत से दूर हों। साथ ही निवाड़ी जिला जेल में भी सामाजिक न्याय विभाग के माध्यम से वहां नशा मुक्ति अभियान को लेकर के बंदियों को शपथ दिलाई गई। साथ ही नशे से शारीरिक क्या नुकसान होते हैं उसके बारे में भी बताया गया। जिले के प्रत्येक स्कूल, कॉलेज के छात्र छात्राओं, साथ ही गांव की जो टोलियां हों उनमें डॉक्टरों की टीम पहुंचे और उससे होने वाले शारीरिक नुकसान की जानकारी दे। ऐसी तमाम व्यवस्थाएँ बना करके निवाड़ी जिले में नशा मुक्ति अभियान निवाड़ी कलेक्टर जमुना भिड़े के निर्देशन में किया गया। समाचार दर्शन के लिए निवाड़ी से विवेक।

0: दांगी।
1: तो श्रोताओं, ये था हमारा कार्यक्रम प्रादेशिक समाचार दर्शन, जो इस बार केंद्रित था 17 से 26 जून तक चलाए गए नशा मुक्त भारत अभियान पर। प्रादेशिक समाचार दर्शन में फिलहाल इतना ही, अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे अन्य जिलों की समसामयिक गतिविधियों की रिपोर्ट को लेकर। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।

यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है। शाम के 7 बजने वाले हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार, जिसे हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। कृपया हमारे अगले प्रसारण की प्रतीक्षा कीजिए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं करिश्मा राय। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में आयोजित दूसरे रक्षा अलंकरण समारोह में वीरता पुरस्कार प्रदान किए। एयर मार्शल तरुण चौधरी, लेफ्टिनेंट जनरल नीरज वार्षेण, लेफ्टिनेंट जनरल विकास रोहेला, लेफ्टिनेंट जनरल हरविंदर सिंह वंद्रा और लेफ्टिनेंट जनरल मोहिंदर पाल सिंह को अति विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया गया। ये पुरस्कार जम्मू कश्मीर पूर्वोत्तर और देश की सीमाओं पर आतंकवाद, उग्रवाद और शत्रुतापूर्ण खतरों के खिलाफ भारत की निरंतर लड़ाई को दर्शाते हैं। साथ ही विमानन, समुद्री अभियानों और मानवीय मिशनों में असाधारण साहस के कार्यों को भी मान्यता देते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सेशेल्स की उनकी यात्रा काफी सार्थक रही और इससे भारत सेशेल्स मित्रता सुदृढ़ होगी। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 50 वर्षों में दोनों देशों के बीच संबंध गहरे विश्वास और साझा प्रगति पर आधारित रहे हैं। उन्होंने सेशेल्स की स्वतंत्रता के 50 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित राष्ट्रीय दिवस समारोह में भाग लेने पर भी प्रसन्नता व्यक्त की। हरियाणा और राजस्थान सरकार ने आज नई दिल्ली में यमुना जल परियोजना के निर्माण और कार्यान्वयन के समझौते पर हस्ताक्षर किए। गृहमंत्री अमित शाह ने इस अवसर पर कहा कि इस समझौते से हरियाणा और राजस्थान के लोगों की लगभग 3 दशकों से चली आ रही जल समस्या का समाधान हो जाएगा। इसी बीच जल शक्ति मंत्री CR पाटिल ने कहा कि समझौते के अंतर्गत मानसून के दौरान राजस्थान के हिस्से का पानी भूमिगत पाइपलाइन के माध्यम से हथनीकुंड बैराज से आपूर्ति किया जाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज नई दिल्ली में DRDO को वित्तीय शक्तियों का प्रत्यायोजन DFP 2026 जारी किया। इस अवसर पर रक्षा मंत्री ने कहा कि DFP 2026 अनुसंधान और विकास पारिस्थितिकी तंत्र से उभरने वाली प्रणालियों, प्लेटफॉर्मों और प्रौद्योगिकियों के तेजी से उत्पादन और रक्षा बलों में उनके समावेशन को सुगम बनाएगा। ब्रिक्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ब्रिक्स CCI के प्रतिनिधि मंडल ने आज नई दिल्ली में विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह से मुलाकात की। बैठक को संबोधित करते हुए डॉ. सिंह ने कहा कि वैश्विक नवाचार केंद्र के रूप में भारत की बढ़ती प्रतिष्ठा और उभरती प्रौद्योगिकियों में इसकी अग्रणी भूमिका उद्योग संगठन को मजबूत अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी बनाने का एक आदर्श अवसर प्रदान करती है, जो राष्ट्रीय विकास और वैश्विक प्रगति में योगदान देती है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने आज नई दिल्ली में स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए कई डिजिटल पहलों का शुभारंभ किया। सभा को संबोधित करते हुए श्री नड्डा ने कहा कि इन पहलों को सरकार द्वारा हासिल की गई एक महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया। उन्होंने कहा कि केंद्र ने स्वास्थ्य सेवाओं का दायरा बढ़ाया है, इससे देश के नागरिकों के लिए स्वास्थ्य सुविधाएं अधिक सस्ती और सुलभ हो गई हैं। सरकार ने सोशल मीडिया पर प्रसारित उस वीडियो का खंडन किया है जिसमें दावा किया गया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आसानी से धन लाभ दिलाने वाले किसी भी निवेश प्लेटफॉर्म का समर्थन किया है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने बताया कि यह वीडियो फर्जी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से निर्मित है। कार्यालय ने कहा कि प्रधानमंत्री ने ऐसी किसी भी निवेश योजना, उपकरण या प्लेटफॉर्म का समर्थन नहीं किया है। वेनेजुएला के भूकंप प्रभावित क्षेत्रों में ऑपरेशन अमिस्ताद के अंतर्गत तैनात भारतीय सेना का एक फील्ड अस्पताल पूरी तरह से चालू हो गया है। ये वेनेजुएला के लोगों को 2400 घंटे मुफ्त चिकित्सा सेवाएं प्रदान कर रहा है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि सेना भूकंप से प्रभावित लोगों की मदद कर रही है। देश में इस वर्ष मई में वार्षिक आधार पर औद्योगिक उत्पादन सूचकांक IIP पर आधारित औद्योगिक उत्पादन में 5.1% की वृद्धि हुई। बीते अप्रैल में देश के औद्योगिक उत्पादन में 4.9% की वृद्धि हुई है थी। किदाम्बी श्रीकांत US ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के उप विजेता रहे। पुरुष सिंगल्स फाइनल में श्रीकांत को चीनी ताइपे के सुलिंग ली यांग से हार का सामना करना पड़ा। और इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani. The news read by Abhishek Mukhopadhyay. President Draupadi Murmu presented the gallantry awards at the second defense investiture ceremony at Rashtrapati Bhavan this evening. Air Marshal Tarun Chaudhary, Lieutenant General Neeraj Varshney, Lieutenant General Vikas Rohela, Lieutenant General Harbinder Singh Vandra and Lieutenant General Mohinder Pal Singh were awarded Ati Vishisht Seva Medal. Vice President C.P. Radhakrishnan, Defence Minister Rajnath Singh, along with other union ministers and senior officials of the armed forces were also present on the occasion. Prime Minister Narendra Modi has said his visit to Seychelles has been full of substantive outcomes that will boost India-Seychelles friendship. In a social media post, the Prime Minister said during the past 50 years, the relationship between the two countries has been marked by deep trust and shared progress. Well, the next 50 years will be defined by innovation, sustainability and shared prosperity. He also expressed happiness on attending the National Day celebrations that marks 50 years of independence of Seychelles. He also thanked the President of Seychelles, Dr. Patrick Harmini, the government and the people of Seychelles for the affection. India's industrial output growth, as measured by the Index of Industrial Production, IIP, expanded by 5.1% in May this year on an annual basis. As per the data released by the Ministry of Statistics and Program Implementation, MOSPI, growth in the electricity and gas supply sector expanded by 9.9% in the last month. Manufacturing, as well as water supply, sewerage and waste management sectors posted a 5.5% growth. However, the mining and quarrying sector proved to be a laggard, decelerating by 1.6%. Along with the May IIP data, the Ministry has replaced the Wholesale Price Index with the Output Producer Price Index as a deflator for the new IIP series, with 2022-23 as a base year. Union Minister of Health and Family Welfare Jagat Prakash Nadda today said the government has significantly strengthened the country's healthcare system by expanding primary, secondary and tertiary healthcare services. Mr. Nadda launched a series of digital initiatives for the health sector in New Delhi. Addressing the 16th conference of the Central Council of Health and Family Welfare New Delhi, Mr. Nadda said 1.86 lakh Ayushman Arogya Mandirs have been established as the first point of contact between citizens and the healthcare system.
2: Applications launch is going to play a very important role. Under the visionary leadership of Prime Minister Shri Narendra Modi ji, many new initiatives have taken place in the past 12 years. The National Health Authority and PM Jai Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana has expanded the health facility and made it accessible and affordable throughout the length and the breadth of the country. And incorporates 62 crore people. And now India is the world's largest digital public infrastructure healthcare.
1: Delhi Cabinet today approved the Delhi Electric Vehicle EV policy, set for a phased four-year rollout starting from the 1st of next month. The ambitious framework commits a massive fiscal outlay of 15,000 crore rupees to complete

0: नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज दूसरे रक्षा अलंकरण समारोह में वीरता पुरस्कार प्रदान किए। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा, मध्य प्रदेश हरित ऊर्जा का पावर हाउस बन रहा है। नीमच और शाजापुर सोलर पार्क का किया उद्घाटन। राज्यपाल से मिले मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव। यूसीसी समेत विभिन्न योजनाओं और विकास कार्यों की दी जानकारी। और प्रदेश के 6 जिलों में आज भारी बारिश का अलर्ट, 40 जिलों में अभी मॉनसून का इंतजार। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में आयोजित दूसरे रक्षा अलंकरण समारोह में वीरता पुरस्कार प्रदान किए। एयर मार्शल तरुण चौधरी, लेफ्टिनेंट जनरल नीरज वार्ष्णेय, लेफ्टिनेंट जनरल विकास रोहेला, लेफ्टिनेंट जनरल हरबिंदर सिंह बंद्रा और लेफ्टिनेंट जनरल मोहिंदर पाल सिंह को अति विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया गया।
1: लेफ्टिनेंट जनरल अभिजीत सुरेंद्र पेंढारकर, अति विशिष्ट सेवा मेडल, युद्ध सेवा मेडल।
0: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, अन्य केंद्रीय मंत्री और सशस्त्र बलों के वरिष्ठ अधिकारी भी इस अवसर पर उपस्थित थे। ये पुरस्कार सशस्त्र बलों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और अन्य सुरक्षा एजेंसियों के कर्मियों द्वारा असाधारण वीरता के कार्यों को मान्यता देने के लिए दिए जाते हैं। ये पुरस्कार जम्मू कश्मीर, पूर्वोत्तर और देश की सीमाओं पर आतंकवाद, उग्रवाद और शत्रुतापूर्ण खतरों के खिलाफ भारत की निरंतर लड़ाई को दर्शाते हैं। साथ ही विमानन, समुद्री अभियानों और मानवीय मिशनों में असाधारण साहस के कार्यों को भी मान्यता देते हैं। केंद्रीय नवीन और नवकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि भारत दुनिया का दूसरा देश है जहां रेलवे का 100% इलेक्ट्रिफिकेशन हो चुका है। उन्होंने मध्यप्रदेश सरकार की सराहना करते हुए कहा कि रेलवे को यहां से बिजली मिल रही है। श्री जोशी नीमच में आयोजित ऊर्जा पार्क के उद्घाटन कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। यहां मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की उपस्थिति में सिंगल क्लिक के माध्यम से 2080 करोड़ रुपए लागत के 500 मेगावाट नीमच और 450 मेगावाट शाजापुर सोलर पार्क का उद्घाटन किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने 1553 करोड़ 98 लाख रुपए लागत के उद्योगों और अन्य विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया। केंद्रीय मंत्री ने यहां कहा कि मध्यप्रदेश हरित ऊर्जा का पावर हाउस बन रहा है।
2: पावर सेक्टर में मध्य प्रदेश ग्रीन पावर का, हरित ऊर्जा का पावर हाउस बन रहा है। इसके लिए मैं बहुत प्रसन्नता व्यक्त करता हूं और मुख्यमंत्री जी को और मैं शुक्ला जी को भी बहुत धन्यवाद अर्पित करता हूं, क्योंकि ये हर महीने आके मुझे मिलते हैं। जो भी हमारा स्कीम है, मुख्यमंत्री नाम से मुझे बोलते हैं, ज्यादा दे दो, ज्यादा दे दो, ज्यादा दे दो। लेकिन प्रधानमंत्री जी का आशीर्वाद मध्य प्रदेश के ऊपर ज्यादा है, इसलिए हम कैबिनेट में अप्रूवल करके देते ही रहते हैं।
0: कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने सोलर पावर यूनिट स्थापित

करने वाली कंपनियों के पदाधिकारियों को प्रशस्ति पत्र प्रदान कर सम्मानित किया। मुख्यमंत्री ने यहां विभिन्न योजनाओं के हितग्राहियों को हित लाभ भी प्रदान किए। मुख्यमंत्री ने कहा कि सबसे सस्ती बिजली अब नीमच में मिलेगी।

0: प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि सेशल्स की उनकी यात्रा काफी सार्थक रही, इससे भारत सेशल्स मित्रता सुदृढ़ होगी। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 50 वर्षों में दोनों देशों के बीच संबंध गहरे विश्वास और साझा प्रगति पर आधारित रहे हैं। अगले 50 वर्ष में ये संबंध नवाचार, स्थिरता और साझा समृद्धि से परिभाषित होंगे। उन्होंने सेशल्स की स्वतंत्रता के 50 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित राष्ट्रीय दिवस समारोह में भाग लेने पर भी प्रसन्नता व्यक्त की। उन्होंने सेशल्स के राष्ट्रपति डॉ. पैट्रिक हरमाइनी सरकार और सेशल्स के लोगों को धन्यवाद दिया। समाचारों में वक्त है ब्रेक का।
1: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक, साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर EIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsoneair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन EIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
0: मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने आज राज्यपाल मंगूभाई पटेल से लोकभवन पहुंचकर सौजन्य भेंट की। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने राज्यपाल को मध्य प्रदेश में समान नागरिक संहिता UCC लागू करने को लेकर 9 लाख से अधिक सुझाव प्राप्त होने, UCC को लेकर मिल रहे व्यापक जन समर्थन और इस संदर्भ में राज्य सरकार की आगामी कार्ययोजना से भी अवगत कराया। प्रदेश में जलगंगा संवर्धन अभियान के सफल क्रियान्वयन, गुरु पूर्णिमा पखवाड़ा में प्रस्तावित शैक्षणिक और सांस्कृतिक गतिविधियों, 4 कृषि उपजों को हाल ही में मिले GI टैग से संबंधित किसानों को मिलने वाले लाभ, सौर ऊर्जा परियोजनाओं के विस्तार, MSME और स्टार्टअप को प्रोत्साहन, औद्योगिक निवेश और रोजगार सृजन से जुड़े विभिन्न प्रयासों और सरकार को मिली उपलब्धियों पर भी विस्तार से चर्चा हुई। छतरपुर में जिला विकास समन्वय और निगरानी समिति दिशा की बैठक आज जिला पंचायत सभा कक्ष में आयोजित हुई। बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री टीकमगढ़ लोकसभा क्षेत्र के सांसद डॉ. वीरेंद्र कुमार ने की। बैठक में प्रमुख रूप से विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार और आजीविका मिशन, प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, जल निगम और लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, जल संसाधन विभाग, स्वास्थ्य विभाग, सहकारिता विभाग, वेयर हाउसिंग और नागरिक आपूर्ति निगम से संबंधित विषयों की समीक्षा की गई। पन्ना जिले में एक बार फिर एक आदिवासी किसान परिवार की किस्मत बदली है। यहां अहिर गवां क्षेत्र के एक निजी भूमि पर संचालित खदान से इस परिवार को 11.19 कैरेट का बेशकीमती जेम्स क्वालिटी का हीरा मिला है, जिसकी अनुमानित कीमत करीब 30 लाख रुपए बताई जा रही है। दिलचस्प बात यह है कि इस परिवार को करीब 2 साल पहले भी 19.22 कैरेट का विशाल हीरा मिला था, जो नीलामी में 93 लाख रुपए में बिका था। हीरा कार्यालय के अधिकारियों ने बताया कि मजदूर राकेश कौर ने इसी साल अप्रैल में पट्टा बनवाकर अपने 3 भाइयों और दारुश के साथ मिलकर खदान लगाई थी। करीब 2 महीने पहले की कड़ी मेहनत के बाद सोमवार को उन्हें चमचमाता हीरा हाथ लगा, जिसे उन्होंने तुरंत सरकारी हीरा कार्यालय में जमा करा दिया है। प्रदेश में मॉनसून की रफ्तार फिलहाल थमी हुई है। अभी तक केवल 15 जिलों तक मॉनसून पहुंच पाया है, जबकि 40 जिलों में अब भी इसकी आमद नहीं हुई है। इसी बीच मौसम विभाग ने आज 6 जिलों में भारी बारिश और कई अन्य जिलों में तेज वर्षा का अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के अनुसार उज्जैन, देवास, छिंदवाड़ा, पांडुना, मंडला और बालाघाट में अगले 24 घंटों के दौरान 4 इंच या उससे अधिक बारिश होने की संभावना है। इसके अलावा भोपाल, रायसेन, सीहोर, राजगढ़, विदिशा, इंदौर, झाबुआ, अलीराजपुर, धार, बुरहानपुर सहित कई जिलों में तेज बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। सतना से हमारे संवाददाता ने बताया कि जिले में शाम में तेज बारिश हुई है, जिससे लोगों को गर्मी से राहत मिली है। खंडवा जिले में वन भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराने के लिए प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। हमारे संवाददाता ने बताया कि गुड़ी रेंज के ग्राम आमा खुजरी में 105 हेक्टेयर वन क्षेत्र से अतिक्रमण हटाया गया। इस कार्रवाई का जायजा कलेक्टर ऋषभ गुप्ता और पुलिस अधीक्षक अगम जैन ने लिया। अब कुछ समाचार संक्षेप में। मंदसौर में उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा ने ग्राम गुर्जर बर्डिया में लगभग 333 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित गुर्जर बर्डिया महादेव मंदिर मार्ग, आरोग्यम उप स्वास्थ्य केंद्र और राधा कृष्ण गौशाला का लोकार्पण किया। जनजातीय कार्य विभाग ने छात्रावास और आश्रमों में निवासरत विद्यार्थियों की शिष्यवृत्ति की दरों में वृद्धि करने का निर्णय लिया है। इस संबंध में विभाग द्वारा आदेश जारी कर दिया गया है। खंडवा जिले की 7 शासकीय ITI संस्थाओं में 1480 सीटों पर प्रवेश प्रक्रिया जारी है। पर्यावरण और वनों के संरक्षण तथा हरित क्षेत्र के विस्तार हेतु धार वन मंडल के अंतर्गत वन मंडल स्तरीय रूट शूट वृक्षारोपण तकनीक प्रशिक्षण का आयोजन किया गया। आगरमालवा कलेक्टर प्रीति यादव ने आज आयोजित टीएल बैठक में वर्षा काल में मौसमी बीमारियों की रोकथाम के लिए सभी आवश्यक तैयारियां समय रहते पूरी करने के निर्देश दिए। मैहर में बढ़ते साइबर अपराधों के प्रति लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से ऑपरेशन सेफ क्लिक अभियान के तहत जागरूकता रथ रवाना किया गया। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन कल सुबह 7:10 पर। दीजिए इजाजत, नमस्कार।

0: रुक जा, असली नोट से क्यों खेल रहा है?
1: ब्रो, ये फटा है।
2: सुन, कटे फटे या पुराने नोट को
3: बैंक ब्रांच में एक्सचेंज कर सकते हैं।
1: वाओ, नया नोट मिलेगा?
2: हाँ, जिससे तू हमें पिज़्ज़ा पार्टी देगा।
3: आरबीआई कहता है, स्मार्ट बनो,
4: कूल रहो।
5: मीडिया वेब पर हम आकाशवाणी के जबलपुर केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 7:21 हुए हैं। प्रस्तुत है कृषि जगत।

कार्यक्रम सुनने वाले सभी किसान भैया भौजी अरुख हो तुलसा भिन्ना की राम राम। बुरा जो देखन मैं चला बुरा न मिलिया कोई, जो मन खोजा आपना मुझसे बुरा न कोई। भैया बिन्ना हरो जो पंक्ति की किया है आप समझ गए। अब आज इनको सबने याद करो, हम गए सुन्नो के स्कूल, उते पे प्रतियोगिता हती, अब सुन्नो प्रथम स्थान पे आई और मन बड़ो खुश हो गओ, बड़ो गदगद हो गओ, उन्हें बड़ो अच्छो चित्रण करो। अब कोनो तो कछु बनो हतो, कोनो कछु बनो हतो, पे सुन्नो बनी हती रविदास। अब अपने अपने सब ने अपनी अपनी भूमिका तो बड़ी उम्दा निभाई, पे सुन्नो उम्दा रविदास बनी हती। उन्हें पूरी लंबी लंबी दाढ़ी, उनको दिव्य चेहरा, माथे पे तिलक, सादा तपस्वी संत बन के अब ऐसो उन्हें चित्रण करो कि का बताइए, सबके मन में बाई छा गई और छाए भी काए ना। आज भी अपन इतिहास के महान संत कारक हों, देखो तो उनके जोन भी चित्रण हैं, उनकी जोन भी महान इतिहास की ग्रंथ हैं, वे अपन उरन के पढ़वे में मिलत हैं, सो अपन उखे अमल जरूर करत हैं। और अपनो भारत महान आए एक से बढ़ के एक, और सुन्नो ने तो आज का कहें उन्हें चित्रण में सबके बताओ, महान संत समाज को सुधार बेकेला ने अपने जोन कवि हते, उनने मुद के काम करे, उनने अंधविश्वास, जाति पाति, ऊंच नीच, धार्मिक भेदभाव, बुराई को किसो विरोध करो, सत्य प्रेम समानता को मार्ग उनने अपनाओ, सब किलाने वे प्रेरणा स्रोत तो रहें। और सुन्नो ने उम्दा उम्दा उनके बारे में सबके बताओ और बढ़िया चित्रण करके बताओ, सो सब के लगो कि आज वाकई में जो हमारे थे देश में महान संत हते, हम उनको याद जरूर करें। उनने जो भी कहा

उन्हें याद करो, कहो जीवो पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोई, ढाई आखर प्रेम के पढ़े सो पंडित हो। उन्हें मुद के विचार रखे प्रेरणा सोत, तो उनके रह ही जाती न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो म्यान। मनो एक से एक उनने तो जो लिखी अटका उकी बात ही कहा है, उनको पूरो विश्व याद करत है और हर वर्ग तक कबीर विचार आज भी प्रासंगिक है, उन्हें सभी याद कर रहे हैं आज। और उनके जन्मदिन पे सुन्नों ने भी सबके संदेश दो, प्रेम एकता भाईचारा सत्य ईमानदारी मानवता के मार्ग पे अपन के चलने हैं, कबीर विचार को अपन के अपनावने हैं। आज भारतीय संत कबीर दास जी को हम सत सत नमन भी कर रहे हैं।

0: हाँ तो भैया बड़ो उम्दा देशभक्ति गीत तो सुनो, रुद्रदत्त दुबे भैया की आवाज़ आती। और भैया आज सुनो ने तो अपने नाट्य रूपांतरण में सबके भाव विहोर कर दो, और अपन ने भी सुन के देख के ऐसो लगो कि का बताइए, अपने इतने संत जोन होते हैं वे वाकई में उन्हें हम याद करें, और अपने इतिहास भी ऐसे ही है कि हम उन्हें याद करते हैं, उनसे कछु सीख सकें हम, कछु हमाए लाने देश के लाने हमाए आवे वाली पीढ़ियन के काजे हम उन्हें याद जरूर करें। और जमाना तो ऐसा ही है कि का बताइए, आज की आबो हवा तो बदली है भैया। आज हम सुन्नो के स्कूल तो गए हते, उते पे समाज सेवी संस्था से जुड़े हते, जितने भी संस्था के सदस्य हते सब रन ने सौ सौ बेड़छा लगाए, सब ने संकल्प भी लाओ और सबके संकल्प भी दिलाओ कि उते पे स्कूल को मैदान है, तो सो सब चले गए। और गए तो बढ़िया मोड़ा ने मोड़िया ने जितते हते संगे सबरे स्कूल वाने ने संगी साथिया ने, कोनो उन्हें 5 लगाए कोनो उन्हें 10 लगाए, सबरन ने अपने अपने हिसाब से उते पे बिरछा लगाए। और भैया उको कारण भी जाई है, गर्मी बेजा पड़ रही है, पानी की कमी तो हो रही है जो गंभीर मुद्दा भी है, तो कारण जाई आए सबने बढ़ चढ़ के पेड़ लगाए, और पानी को इंतजार सबके हैं, फिन का फिर चाय पानी नाश्ता सबने करो। हमें चौपाल आने हैं तो सुसुन्नो ने कही आज हमें कछु खाने हैं, हमने कही झट्टी से बताओ तुम्हें का खाने हैं, हम बाई लेता हैं लोटतेम। सुने कही हमें कॉर्न चाट खाने, हमने कही जा काया है, हमने तो नहीं सुनी। उन्हें कही अरे मक्का मीठो, हमने कही हाँ हाँ सुनो तो है स्वीट कॉर्न, हाँ हाँ बनत तो है, हमने पिछली दफा खीप तो खाई थी पे हमें बिसर गओ है, तो अब ई बेरा अपनी इतनी फसल उम्दा नहीं भती हती। सो उन्हें कही कि ई बेरा फसल उतनी उम्दा नहीं है, बाजार से ले तइयो। सो हमने कही ठीक है हम ले आए हैं, हमने भी सोची बात तो सही आए, अपने भैया हरों ने पिछली दफा बेजा मेहनत करी हती, अब उन्हें उतो लाभ तो नहीं मिलो। भैया रो हमें पतो है आप और दिन रात की मेहनत करते ही हो, पे उम्दा से लाभ अपन औरन के चहने हैं। और आज ध्यान से सुनो कछु भूलियो ना, हम बता रहे हैं स्वीट कॉर्न की उन्नत खेती, बता रही हैं डॉक्टर नम्रता जैन जीत जी, और इनसे बतकाव कर रहे हैं अपने विपिन यादव भैया।
1: किसान बहन भाई और राम राम। आज व्यावसायिक रूप से स्वीट कॉर्न की बात होगी। स्वीट कॉर्न मतलब मीठा मक्का। तो ये महत्वपूर्ण बातचीत करने के लिए आज हमने आमंत्रित किया हुआ है हमारे कार्यक्रम में डॉक्टर नम्रता जैन जी को, जो कि सस्य विज्ञान विभाग कृषि महाविद्यालय जबलपुर से हमारे बीच में पधारी हुई हैं। नम्रता जी, इस कार्यक्रम में स्वागत है आपका।
2: नमस्ते, सभी किसानों को राम राम।
1: स्वीट कॉर्न की जो बात हम कर रहे हैं, इससे उनको लाभ क्या होगा?
2: ये इस समय बहुत ज्यादा सभी के लिए बड़ी फायदेमंद एक फसल भी है किसान भाइयों के लिए। हर व्यक्ति जो है, जैसे ही एक मौसम शुरू होता है हमारा बरसात का, हर कोई बाजार में दौड़ लगाता है कि अगर मीठी मक्का का भुट्टा मिलेगा तो वो लेंगे। तो इससे कृषकों को जो है एक अच्छा मुनाफा भी मिलता है। इसका एक लाभ भुट्टे के रूप में है, तो दूसरी तरफ पशु चारे के रूप में हरा चारा भी इससे पर्याप्त मात्रा में प्राप्त हो जाता है। तो ये

0: स्वाद में मीठा होता है, इसलिए पशु इसे बड़े चाव से पसंद करके खाते हैं।
1: जो लाभकारी मीठी मक्का या स्वीट कॉर्न बताया है, इसकी कृषि उत्पादन तकनीक क्या होनी चाहिए?
0: सामान्य रूप से हम जो मक्का लगाते हैं और ये जो हम स्वीट कॉर्न कहते हैं, इन दोनों की उत्पादन तकनीक में थोड़ा सा अंतर है। क्योंकि ये जो मक्का है इसको हम भुट्टा प्राप्त करने के लिए लगाते हैं, तो सबसे पहले इसमें ध्यान रखना चाहिए कि हमको लगाते समय जो कतार से कतार और पौधे के बीच की दूरी है वो इतनी रखनी चाहिए कि हमें पौध संख्या पर्याप्त मिले।
1: तो इसमें बुआई हम कब तक कर सकते हैं?
0: स्वीट कॉर्न की फसल है ये अपने क्षेत्र में भी दो ऋतुओं में आसानी से लगाई जा सकती है। एक तो हम लगा सकते हैं जो अभी जून के महीने में, और दूसरी जो है जनवरी माह के आखिरी में। लेकिन एक चीज ध्यान रखने की है कि उस समय यदि हम गर्मी के समय जनवरी फरवरी में लगा रहे हैं तो उस समय जो सिंचाई की व्यवस्था जिनके पास है वो कृषक ही इसको लगाएं, क्योंकि 7 से 10 दिन के अंतराल में सिंचाई देनी पड़ेगी।
1: जी, अब बात करें यदि हमारे क्षेत्र के लिए हमारे किसान बहन भाई कौन सी प्रजाति चुने।
0: इसमें दो तरह की प्रजातियां आती हैं, कंपोजिट और हाइब्रिड, जिसमें कि अगर हम अच्छी प्रजातियों की बात करें तो विन ऑरेंज, माधवी, मिस्टी, पूसा सुपर स्वीट कॉर्न 2, पूसा सुपर स्वीट कॉर्न 4, सीपी स्वीट किंग, इस तरह की कई उन्नत किस्में जो हैं वो स्वीट कॉर्न की उपलब्ध हैं।
1: स्वीट कॉर्न की बुआई करने का तरीका और उसकी बीज की दर, साथ साथ हम ये भी चाहेंगे कि आप बीज उपचार भी बता दें तो अच्छा रहेगा।
0: 60 सेंटीमीटर पंक्ति से पंक्ति की दूरी और 15 से 20 सेंटीमीटर पौधे से पौधे की दूरी रखना चाहिए, जिससे पौध संख्या पर्याप्त रहेगी। यदि हम प्रति एकड़ में बात करें तो 8 से 10 किलोग्राम बीज पर्याप्त होता है। अब इसमें भी किस्म यदि हल्के वजन की है तो कम बीज लगेगा, और ज्यादा वजन की है तो आपको 10 किलोग्राम प्रति एकड़ तक बीज जो है उपयोग करना चाहिए।
1: जी।
0: अब चूंकि हम इसको सीधे रूप से उपयोग करते हैं भुट्टे के रूप में, तो कोशिश करनी चाहिए कि हम कम से कम रसायनों का उपयोग करें।
1: बिल्कुल।
0: इसके लिए ट्राइकोडर्मा करके एक बीजोपचार के लिए हमारा जैविक उपचार आता है, जिसकी की 5 ग्राम मात्रा प्रति किलो बीज दर से उपचारित करके आसानी से बुआई की जा सकती है, जिससे कि जितने भी इसके रोग हैं, चाहे मृदा जनित हो या बीज जनित हो, इन रोगों की रोकथाम शुरू से ही हम आसानी से कर सकते हैं। यदि खेत में दीमक का प्रकोप है पहले से, थायोमिथोक्सम की 25 cc जो आता है उसकी 6 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज की दर से इसको बीज को उपचारित करना चाहिए, जिससे कि दीमक और तना छेदक जो कीट है उससे पौधे की रक्षा होती है।
1: नम्रता जी, जैसे कि आजकल हमारे किसान बहन भाई आधुनिक खेती कर रहे हैं और देखा जा रहा है कि वो अंतर्वर्ती फसल भी लेते हैं, तो यदि इसमें उनको एक सघन खेती करनी है तो कौन सी अंतर फसल मीठी मक्का के साथ वो ले सकते हैं?
0: तो उसमें सोयाबीन है, मूंग है, उड़द है, इन फसलों को अंतर्वर्ती खेती में लिया जा सकता है। आसानी से लेने के लिए जो मक्के की पौधे से पौधे की दूरी और पंक्ति से पंक्ति की दूरी जो है वो 30 सेंटीमीटर रख लें, और जो सोयाबीन, मूंग और उड़द है इनका भी जो है 30 सेंटीमीटर की दूरी पर पंक्तियों में लगाएं, तो बराबर बराबर दूरी पर लगाएं, जिसमें 2 कतार जो है वो मक्का की, फिर 4 कतार जो है वो आपकी सोयाबीन मूंग उड़द की, फिर 2 कतार मक्का की। इस तरह से लगाने से दोनों फसलें मिल जाती हैं और अधिक लाभ और उत्पादन प्राप्त होता है।
1: पोषण का कैसा ध्यान रखना होगा?
0: कि मीठी मक्का में यदि हम उर्वरक प्रबंधन की बात करेंगे तो सबसे पहले तो कृषक भाई जो गोबर की खाद होती है उसका 8 से 10 टन प्रति हेक्टेयर की दर से बुवाई के भी पहले जब खेत की आखिरी तैयारी करते हैं उस समय अपनी मिट्टी में मिला दें। उसके बाद जो नत्रजन है उसकी 120 किलोग्राम मात्रा, 60 किलोग्राम स्फुर, 40 किलोग्राम पोटाश, और साथ में इसमें जिंक और सल्फर दोनों की जरूरत होती है, तो 25 किलोग्राम जिंक सल्फेट प्रति हेक्टेयर की दर से भी शुरू में डाल देना चाहिए। अब जो नत्रजन डालते हैं उसकी 1/3 मात्रा जो है वो बुआई के समय डालें, जो बची हुई 1/3 मात्रा है वो 8 पत्ती की अवस्था में, और उसके बाद 1/3 बची है उसको पुष्पन के समय डालें।
1: सामान्यतः जो खरपतवार है इस व्याधि को कमतर गिना जाता है।
0: खरपतवारों का नियंत्रण बहुत जरूरी है, क्योंकि खरपतवार जो है हमारे पौधे से प्रतिस्पर्धा तो करते हैं। अगर हम जैविक रूप से लगा रहे हैं तो कृषक भाई मल्चिंग करके, मल्च करने का मतलब चाहे तो काली पॉलिथीन वाली जो मल्च करते हैं वो कर लें, और या फिर पैरा होता है, पुआल होता है, या खरपतवार के अवशेष जो कटे हुए होते हैं उनको भी खेत में बिछाकर उससे खरपतवार प्रबंधन शुरू की अवस्था से ही किया जा सकता है, पलवार जिसको कहते हैं। अब यदि हम रासायनिक विधियों की बात करें तो फिर 20 दिन की अवस्था में जब पौधा हो गया उस समय टेम्बोट्रियोन करके एक दवाई आती है, जिसकी 125 ग्राम एआई प्रति हेक्टेयर के हिसाब से, या फिर टोप्रामेजोन 33.680 की एक दवाई आती है जिसकी की 30 ग्राम AI प्रति हेक्टेयर के हिसाब से दवाई को 20 से 25 दिन पश्चात भी प्रयोग किया जा सकता है, जिससे सभी तरह के खरपतवार जो हैं वो खेत में कम हो जाते हैं।
1: जी जी, आपका क्या मार्गदर्शन होगा पानी के लिए, पानी की आवश्यकता के लिए इस फसल की?
0: बरसात के मौसम में ज्यादा चिंता की बात इसलिए नहीं कि बरसात होती है, जो दो क्रांतिक अवस्था है उस पर जरूर ध्यान रखें कि उस समय जो है वो खेत में नमी रहे। जैसे कि एक है आठ पत्ती अवस्था, जिस समय सबसे ज्यादा अच्छी वृद्धि अवस्था जिसको कहते हैं होती है, और दूसरी है पुष्पन अवस्था। अब यदि गर्मी के मौसम में लगाई गई है तो फिर 7 से 10 दिन के अंतराल में लगातार पानी देना चाहिए।
1: ये जो आपने दो अवस्थाएं बताई, आठ पत्ती अवस्था और पुष्पन, ये कितने कितने दिन बाद आती है बुआई के?
0: आठ पत्ती की जो अवस्था है ये लगभग आती है 25 दिन पे
1: जी,
0: और जो पुष्पन अवस्था है वो आ जाती है 40 दिन पे
1: जी।
0: तो उस समय जो है वो खेत में नमी की कमी ना हो।
1: कीट का प्रबंधन कैसे करना होगा स्वीट कॉर्न में, क्योंकि ये मीठे भुट्टों वाली फसल है तो कीट का प्रबंधन भी जरूरी हो जाता है।
0: मक्के में सबसे ज्यादा समस्या आती है वो आती है फॉल आर्मी वर्म की
1: जी,
0: और दूसरी आती है आपकी तना छेदक या जिसको हम स्टेम बोरर कहते हैं
1: जी।
0: नीम तेल का छिड़काव कर सकते हैं, 3 लीटर नीम के तेल में 200 ml साबुन का घोल को 200 लीटर पानी में इस घोल को तैयार करते हैं एक एकड़ के लिए। इसके बाद हमारे पास कुछ ट्रैप भी हैं जिसको कि जैसे प्रकाश प्रपंच है, फेरामोन ट्रैप है, इनको भी लगाकर जैविक खेती में जो है इन कीटों का आसानी से नियंत्रण किया जा सकता है।
1: बिल्कुल।
0: इसके बावजूद भी हमें कीट दिखाई दे रहे हैं तो फिर कीटनाशकों का प्रयोग करना आवश्यक हो जाता है, जिसमें कि इमामेक्टिन बेंजोएट करके जो दवाई आती है जिसकी की 0.4 ग्राम मात्रा प्रति लीटर पानी में घोलकर स्प्रे करने से इन कीटों का नियंत्रण हो जाता है।
1: जी नम्रता जी, अब चलते चलते सबसे महत्वपूर्ण बात जिसके लिए हम आज बैठे हुए हैं, किसान बहन भाई जागरूक हों और इस स्वीट कॉर्न की खेती करने के लिए इच्छुक हों, तो ये बताएं कि स्वीट कॉर्न की तुड़ाई कब होनी चाहिए और इसका लाभ कितना मिल सकता है उनको?
0: देखिए, तुड़ाई की यदि बात करें तो सबसे महत्वपूर्ण बात है अवस्था को समझना
1: जी।
0: अंकुरण के लगभग 45 से 50 दिन बाद जो है वो पौधे में आ जाती नर मंजरी
1: जी,
0: और उसके बाद 2 से 3 दिन बाद आ जाती है मादा मंजरी। अब ये दोनों आने के बाद ही परागण की क्रिया होती है, तो जब मादा मंजरी भी आ जाए उसके लगभग 20 से 25 दिन बाद ये जो भुट्टा है ये तैयार हो जाता है। उस समय देख लें कि जो भुट्टा है उसमें अच्छी तरह से दूध जो है वो तैयार हो गया है, मिल्क स्टेज पूरी हो गई है, उसके बाद इसकी तुड़ाई की जाती है
1: जी जी।
0: ज्यादा समय यदि छोड़ देंगे तो जो दाना है वो कड़क हो जाता है,
1: कड़क हो जाएगा।
0: भुट्टे की जो तुड़ाई है वो सुबह या शाम के समय ही की जाती है, उसका मुख्य कारण यह है कि दिन में जो है वो तेज धूप होने से उसको जब तोड़ते हैं ना तो उसमें जो पानी की मात्रा होती है वो प्रभावित होती है, इसलिए सुबह या शाम को करें। इसको ढेर लगाकर नहीं रखना है, एक के ऊपर एक ढेर लगा के नहीं रखते हैं, बल्कि इसको जो लकड़ी के डब्बे या कार्टून आदि में जो है पैक कर लें, और जो तापमान है वो बहुत ज्यादा ना हो उस समय इसको मार्केट में, जैसे सुबह और शाम को ही जो तुड़ाई करते हैं तो सुबह के समय का जो तुड़ाई हुई उसको बाजार पहुंचा दें यदि स्थानीय बाजार है, और नहीं है तो फिर इसको ठंडे स्थान पर स्टोर कर सकते हैं
1: जी।
0: लेकिन बस ढेर लगाकर स्टोर नहीं करना है, अगर इसको ढेर लगाकर रखेंगे तो इसकी गुणवत्ता में प्रभाव पड़ेगा, और चूंकि ये मुलायम होता है तो दबने से जो भुट्टा है वो खराब होता है। यदि आप अच्छी किस्म लगाएंगे तो इसकी एक एकड़ में 40 से 60 क्विंटल तक उपज आसानी से ली जा सकती है, और साथ ही 60 से 80 क्विंटल तक प्रति एकड़ में हरा चारा भी प्राप्त होता है।
1: तो नम्रता जी, जो आपने राह बताई है, हमें आशा है कि किसान बहन भाइयों की खेती की जो राह है वो मीठी मक्का से मीठी होगी, अच्छे मीठे परिणाम आएंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद।
2: नए जमाने की नई तस्वीर, अब छत पर लगे टीवी एंटेना को कहो गुड बाय सदा के लिए। समय के साथ बदलें, आगे बढ़ें, ले आएं आज ही दूरदर्शन का DD फ्री डिश। इसमें है आपके पसंदीदा 100 से ज्यादा टीवी चैनल्स, इसके अलावा 51 एजुकेशनल यानी पढ़ाई लिखाई वाले चैनल्स और 48 रेडियो चैनल्स, और तो और सेट टॉप बॉक्स लगवाने के बाद कोई खर्चा नहीं, बिल्कुल नहीं। डिजिटल क्रांति की ओर एक कदम और आपका डीडी फ्री डिश।
3: हाँ तो भैया, ये अंतराल के पहलू अपन ने जानो स्वीट कॉर्न के बारे में, और भैया टेम के संगे खेती के तरीके तो बदल रहे हैं, कम टेम में मुद के लाभ भी अपन ले रहे हैं, और एक फसल को साल में दो बेरा भी अपन लगा सकते हैं। मीठो मक्का उबाल के, भून के, सूप में, सलाद और मुद के व्यंजन में अपन औरे बना सकते हैं, और कान चाट तो खूब खाते हैं लोग, सैंडविच में भी उपयोग करते हैं, और मांग भी इसकी लगातार बढ़ रही है, और बाजारे में इसकी मुद की मांग है ही, और अंतर फसल उपयोग में भी अपन ला रहे हैं। स्वीट कॉर्न खेती फसल किसान भैया हरे उमे आए तो बढ़े ही बढ़े, संगे अपने जो नए युवक कृषक हैं उनके लाने भी देश की कृषि आधुनिक बनावे को प्रभावी माध्यम भी हो सकत है। उम्दा से हमने जान लो स्वीट कॉर्न की उन्नत खेती, बताती डॉक्टर नमिता जैन जी और इनसे बातचीत करते अपने विपिन यादव भैया। तो भैया हरो, हमें उम्मीद है ई बेरा अपने लगा खेती स्वीट कॉर्न की उम्दा करियो, और हम आहें आप और उनके लाने स्वीट कॉर्न खावे आपके घरे। सो आप बताइयो कि हमें कहाँ कहाँ से सुन रहे हो, कितने सुन रहे हो, और आप और ने स्वीट कॉर्न के बारे में का जानकारी भूल गए, और आप और के हम फिर सुना दे हैं, और आप अपनी चिट्ठिया पथिया के माध्यम से हमें ज़रूर बताइयो कि स्वीट कॉर्न की खेती आप और ने कैसे करी है, और कितने से भैया हरे हमें सुन रहे हैं। सो आपकी चिट्ठिया पतियान को हमें विशेष इंतज़ार रहते हैं, और हम आपकी चिट्ठिया पतिया अपने कार्यक्रम में ज़रूर शामिल करते हैं, और जिनने भी भैया हरे ने नहीं सुनो है सो भैया अपनी के माध्यम से हमें बताइयो, सो हम जरूर आप और के जा भेंटवार्ता जरूर सुनवा है। हमारे ते विषय विशेषज्ञ भैया टेम टेम पे आत रहते हैं, सो बे नई कछु कछु जानकारी लात रहते हैं, और हम आप और के काजे ई जानकारी के सुनात रहते हैं, और जरूर सुना है आगे भी। और भैया अपन और जाई चाहते हैं कि अपनी फसल उम्दा होए, और सबके पानी को इंतजार है, और पानी की कमी आए, पानी को इंतज़ार तो सब कर ही रहे हैं, और सुन्ना ने हमें कही कि चलो परो नर्मदा जी चल रहे हैं, तो हम गए होते, हम दो ही जन चले गए, हमने कहा देखो कि होते नर्मदा मैया को जल स्तर तो गिर गया, अब ई के कारण तो मुतके हैं भैया, और पानी की कमी तो सब जगह चल ही रही है, सो अपन खे कछु बचाव करने हैं, और देखो अपने शंकरलाल पटेल भैया का कह रहे हैं, सुनो तो।

हाँ तो भैया अपन और मुद के समझ गए हैं कि सुनी सुनी ज़िंदगी अपनी पानी के बिना। और भैया देखो आजकल एक चीज़ और हो रही है, ग्लोबल वार्मिंग। अब पृथ्वी के औसत तापमान में बढ़ोतरी तो हो रही है। अब पिछले कछु दशक से पृथ्वी को तापमान भी तेज़ी से बढ़ रहा हुआ है। इको कारण पृथ्वी को तापमान लगातार बढ़वो, ग्लोबल वार्मिंग के पाछे सबसे बड़ो कारण हम और आप आए। बढ़ती जनसंख्या, औद्योगिकीकरण, जंगल की मुद की कटाई, प्रदूषण, गाड़ी वाहनों को उम्दा उपयोग हो रहा है। कोनो भी आजकल पैदल चलबो नहीं चाह रहे, जिहे देखो वह गाड़ी से आवो जावो चाह रहे हैं। सो इको असर अपने स्वास्थ्य पे तो पड़ ही रहो है, इको असर पर्यावरण पे भी पड़ रहो है। सो अपन के भैया सचेत रहने हैं। मुद के पेड़ काटे जा रहे हैं, जहाँ से शुद्ध हवा अपन के नहीं मिल पा रही है, शुद्ध वातावरण अपन को नहीं मिल रहा हुआ है। अब असर तो केवल प्रकृति पे नहीं, अपने मनुष्य पे भी इको असर पड़ रहा है। इसे स्वास्थ्य गड़बड़ हो रहा है, बढ़ते तापमान के काजे हीट स्ट्रोक हो रहा है, जल संकट गहरा रहा है। और भैया अपने खाद्य उत्पादन में भी मुद की कमी हो रही है, और घरन घरन मुद की बीमारियां भी हो रही हैं। और पशु पक्षियों को देख लो, वन्य जीवों को जीवन भी उनको संकट में पड़ रहा हुआ है, कई प्रजातियां विलुप्त हो रही हैं। भैया कुल मिला के अपन जाई कह रहे हैं कि हम सबके मुद के प्रयास करने हैं मिलके। कोनो भी समस्या है तो उस समस्या को खत्म तो नहीं करो जा सकत या पे नियंत्रित जरूर करो जा सक है। और मुद के पेड़ अपन के लगाने हुए है, प्लास्टिक को उपयोग मुद के हो रहे हैं। जिते देखो आजकल तो पानी भी पी रहे हैं तो प्लास्टिक की बाटल में पी रहे हैं, खा रहे हैं तो प्लास्टिक के डब्बा में खा रहे हैं, और खा के नहे में फेंक रहे हैं। तो इसे हो का रहा है, इसे अपने ही नुकसान हो रहा है। सो भैया ये सब अपन के सावधानी से रखने हैं कि अपन का खा रहे हैं, का पी रहे हैं, की में कितनी मात्रा में ले रहे हैं। उम्दा से चाय भी पी रहे हैं तो प्लास्टिक की छोटी सी वो में पी रहे हैं, गिलसिया में, तो और कागज़ की भी नुकसानदेह है। ऐसा नहीं है कि अपन और उसको सेवन कर रहे हैं, कभों कभों की बात दूसरी के चलो कछु नहीं मिल रहा हो तो चलो अपन कहूँ जा रहे हैं अंते, सो चलो कभू कभू। लेकिन आजकल तो जीवन शैली अपना लो सबने, तो ई सब के छाड़ने हुए हैं। ऊर्जा की बचत अपन के करने हैं, अपने स्कूल हैं, घर हैं, सामाजिक वातावरण है, उते पे अपन जगह जगह वृक्ष लगाएं, पर्यावरण को अच्छो बना सकत हैं। पर्यावरण संरक्षण के प्रति अपने जितने भी आसपास के लोग हैं उन्हें जागरूक जरूर करें। अपन के मुद के पेड़ लगाने हैं, जीवन को बचावने हैं, धरती माँ हैं उनको मान तो अपन के बढ़ावने हैं। हरियाली को संकल्प जरूर ले, स्वच्छ बनावे हैं अपन और उनके अपनो वातावरण, अपनो देश और अपने आवे वारे कल को। पर्यावरण की रक्षा करने हैं।

हाँ तो भैया हरो, बिन्ना हरो, भौजी हरो, अब हो रही है चलबे की बिरिया। कल फिर हुए है आपोरन से मुलाकात, तब तक के लाने तुलसा बिन्ना की राम राम। जय जवान जय किसान।

अभी आप सुन रहे थे कृषि जगत, आकाशवाणी का ये जबलपुर केंद्र है। रात के 8 बजे हैं। अगला कार्यक्रम हम आकाशवाणी भोपाल से रिले करेंगे। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: लीजिए सुनिए कार्यक्रम सुर्खियों में।
1: सुर्खियों में ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए प्रधानमंत्री की सेशल्स यात्रा, समुद्री सुरक्षा और सुदृढ़ द्विपक्षीय संबंधों पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं विदेश मामलों के जानकार प्रोफेसर राहुल मिश्रा और आकाशवाणी संवाददाता कमल कुमार प्रजापति।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सेशल्स की 3 दिन की यात्रा आज समाप्त हुई और प्रधानमंत्री आज दोपहर स्वदेश लौटे। और ये यात्रा महत्वपूर्ण इस तरह से थी कि सेशल्स की स्वतंत्रता की 50वीं वर्षगांठ के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गेस्ट ऑफ ऑनर के तौर पर आमंत्रित किया गया था। और इसके अलावा भारत और सेशल्स के राजनयिक संबंधों का ये 50वां वर्ष भी रहा। आज हम इस विषय पर विस्तार से विश्लेषण कर रहे हैं। हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़े हैं विदेश मामलों के विशेषज्ञ प्रोफेसर राहुल मिश्रा। प्रोफेसर मिश्रा, बहुत बहुत स्वागत है आपका।
3: जी, बहुत बहुत धन्यवाद।
2: तो सबसे पहले हम इसी सवाल से इस चर्चा को शुरू करते हैं कि जिस तरह से भारत ग्लोबल साउथ की एक आवाज बनकर उभरा है और विकास के सहयोगी के तौर पर भारत एक बहुत बड़ा देश बनकर उभरा है, सेशल्स की यात्रा में आपको इस संबंध में क्या नजर आया?
3: देखिए, भारत और सेशल्स के बीच में संबंध पिछले 50 सालों में हमने देखा है कि वो दोनों देशों के बीच में जो संबंध है वो सिर्फ द्विपक्षीय स्तर पर नहीं है, उनमें एक बड़ा महत्वपूर्ण आयाम ये है कि भारत सेशल्स के लिए चाहता है कि वो हिंद महासागर में और हिंद प्रशांत क्षेत्र में जो चुनौतियां हैं, चाहे वो उसकी राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर हो या आर्थिक सुरक्षा संपन्नता को लेकर हो, सामुद्रिक सुरक्षा हो, इन तमाम आयामों पर सेशल्स ऐसी स्थिति में रहे कि वो न सिर्फ अपने ऊपर आने वाली चुनौतियों का सामना कर सके बल्कि क्षेत्र में भी, हिंद महासागर और हिंद प्रशांत क्षेत्र में भी वो इन चुनौतियों का सामना करने में एक सकारात्मक भूमिका निभा सके। तो मल्टीलैटरल एस्पेक्ट में भारत की कोशिश रही है कि सेशल्स एक रिस्पॉन्सिबल स्टेक होल्डर की भूमिका निभाए, तो ये दूसरा उसमें आयाम है। तीसरी एक चीज है कि भारत ने हमेशा ये कोशिश की है, जैसा कि हम जानते हैं कि महासागर नीति जो पहले सागर प्रधानमंत्री मोदी जी ने जिसका आगाज पहले किया था, अब वो महासागर नीति में, उसमें भी हम देखते हैं कि महासागर नीति के तहत उद्देश्य ये है कि जो छोटे आइलैंड स्टेट्स हैं, छोटे जो हिंद महासागर के और बड़े पैमाने पे अगर हम कहें कि ग्लोबल साउथ के जो छोटे द्वीपीय देश हैं, उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग करना, उनकी जरूरतें जो है, जनता की जो आवश्यकताएं हैं, इन देशों की जो आकांक्षाएं और उनकी जो चिंताएं, उनको दूर करना और उनको एक हाशिए से उठा करके उनको मेन स्ट्रीम में लाना, ये भारत की नीति रही है। तो भारत और सेशल्स के संबंधों में ये साफ तौर पर दिखता है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो वक्तव्य दिया कि हम साथ चलते हुए हम अपने संबंधों में भरोसे और भरोसे के साथ सहयोग और सहयोग से आज हम जन कल्याण की ओर बढ़ रहे हैं, ये हमें प्रधानमंत्री की विजिट में भी दिखता है और भारत सेशल्स के संबंधों में भी दिखता है। क्योंकि बड़े पैमाने पर भारत के जो भी, अगर हम लिस्ट ऑफ MOUs को देख लें या पिछले तमाम वर्षों में भारत ने जो सहयोग सेशल्स के लिए किया वो सेशल्स की जरूरतों पर केंद्रित रहा है। और ऐसा वहां के राष्ट्रपति डॉक्टर पैट्रिक ने भी कहा कि भारत सेशल्स के संबंध सेशल्स की जरूरतों को ध्यान में रखे गए हैं, और यही मुझे लगता है इस द्विपक्षीय संबंध की बड़ी खास बात है।
2: तो कैसे आप देखते हैं, किस तरह से भारत सेशल्स के विकास में भी अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है और जिस तरह से सहयोग भारत ने रखा है वो कैसे मदद करेगा दोनों देशों के रिश्तों को और प्रगाढ़ करने में?
3: MOUs की जहां तक बात है उसमें क्षमता को बढ़ाना, कैपेसिटी बिल्डिंग, सारे MOUs में कहीं ना कहीं वो दिख रहा है, चाहे वो रक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे वो सेशल्स के सिविल सर्वेंट्स की कैपेसिटी बिल्डिंग हो भारत के सुषमा स्वराज इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन अफेयर्स में, या फिर वो ICAR और सेशल्स की जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है उनके बीच में सहयोग हो, तो कैपेसिटी बिल्डिंग एक बहुत बड़ा आयाम है इन संबंधों का। साथ ही साथ जैसा कि हमने पहले भी देखा कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट सेशल्स के लिए एक बड़ी जरूरत है, तो वहां पर तमाम जो इंफ्रास्ट्रक्चर और कनेक्टिविटी के प्रोजेक्ट्स हैं उनमें भारत ने काम किया है और उसको आगे बढ़ाया जा रहा है। लेकिन मुझे लगता है जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने पहली बार, मुझे लगता है, किसी देश के साथ संबंधों में जन कल्याण की बात कही,
2: बिल्कुल,
3: और वो इसलिए है कि सेशल्स के लिए ना सिर्फ एक नया सेशल्स नेशनल हॉस्पिटल बनेगा इस MOU के तहत, बल्कि वो तमाम जेनरिक दवाएं और मेडिसिनल सप्लाईज जो है वो जन औषधि स्कीम के तहत सेशल्स को दी जाएंगी। तो एक तरह से हमें दिख रहा रहा है इन एमओयू के तहत कि बड़ा ही समेकित एक कॉम्प्रिहेंसिव डेवलपमेंट और कैपेसिटी बिल्डिंग और एग्रीमेंट्स का इन दोनों देशों के बीच में साइन हुआ है। जहां तक लाइन ऑफ क्रेडिट का सवाल है, उसमें भी एक बहुत जो 175 मिलियन की बात तमाम बार दोनों देशों के नीति निर्धारकों के बीच में बातचीत में भी आई और मीडिया में भी तमाम ये खबरें आई। इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि ये अम्ब्रेला लाइन ऑफ क्रेडिट एग्रीमेंट है जिसमें 125 मिलियन तो लाइन ऑफ क्रेडिट है, 50 मिलियन ग्रांट के तौर पर दिया जा रहा है। तो सेशल्स की जो आर्थिक क्षमता है उसको भी ध्यान में रखते हुए इन एग्रीमेंट को ये रूप दिया गया है, जो कि बहुत अच्छा है। साथ ही साथ देखिए, सेशल्स एक ऐसा देश है, छोटा सा देश है, जिसकी तटरेखा बहुत बड़ी है, 1.3 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर की उनकी तटरेखा है। तो उसके लिए स्पेस सैटेलाइट एप्लीकेशंस और कैपेसिटी बिल्डिंग उस क्षेत्र में, स्पेस के क्षेत्र में, रिमोट सेंसिंग के क्षेत्र में, सैटेलाइट इमेजरी के क्षेत्र में, ये मुझे लगता है कि सेशल्स की क्षमताओं को एक बड़े नए स्तर पर पहुंचाएगा, जिससे सेशल्स हिंद महासागर में भी जो नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी की जो चिंताएं हैं, चाहे वो पायरेसी को लेकर हो या ड्रग ट्रैफिकिंग नार्कोटिक्स को लेकर हो या गन रनिंग को लेकर हो, उनमें भी सेशल्स की क्षमता बढ़ेगी तो हिंद महासागर में मैरिटाइम डोमेन अवेयरनेस बढ़ेगी, जो दोनों ही देशों के लिए और क्षेत्र के लिए भी बहुत अच्छा है।
2: आइए सुनते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत और सेशल्स के संबंधों और समुद्री सुरक्षा के बारे में क्या कहा।
4: अवर कोऑपरेशन इन मैरिटाइम सिक्योरिटी, कैपेसिटी बिल्डिंग, हाइड्रोग्राफी एंड मैरिटाइम डोमेन अवेयरनेस रिफ्लेक्ट अवर शेयर्ड कमिटमेंट टू ए सेफर एंड मोर सिक्योर रीजन। आई मेट प्रेसिडेंट अल्बेनी टोपाथ दिस मॉर्निंग। अवर विजन इज कैप्चर्ड इन द आइडिया ऑफ महासागर, म्यूचुअल एंड होलिस्टिक एडवांसमेंट फॉर सिक्योरिटी and growth across regions Mahasagar. This vision recognizes that our futures are interconnected and interdependent, and we will continue to work together for a safer and more secure Indian Ocean region.
2: तो हिंद प्रशांत क्षेत्र में रणनीतिक संबंधों को दूसरे देशों के साथ मजबूत करना भारत के लिए कितना महत्वपूर्ण है और सेशल्स जैसे देश इसमें कितनी बड़ी एक साझेदारी की भूमिका निभा सकते हैं।
3: देखिए, भारत की हिंद प्रशांत क्षेत्र में, खासतौर से हिंद महासागर के क्षेत्र में, भारत की रणनीति सबसे पहले तो ये है कि दुनिया की तमाम महाशक्तियों के इतर भारत ये चाहता है कि इस क्षेत्र में सभी देश, सभी मित्र देश एक अपनी सकारात्मक भूमिका निभाएं, उनकी क्षमताओं को बढ़ाया जाए और सभी मिलकर कॉमन सिक्योरिटी पर काम करें, कोऑपरेटिव पीस के उद्देश्य पर काम करें, जिससे कि ये क्षेत्र न सिर्फ स्थिर रहे बल्कि शांति भी इस क्षेत्र में बनी रहे। इसलिए मैरिटाइम डोमेन अवेयरनेस इस लिहाज से बहुत जरूरी है और महासागर के कॉन्सेप्ट में सेशल्स की एक महत्वपूर्ण भूमिका है, उतनी ही महत्वपूर्ण मुझे लगता है जितनी की मॉरिशस या मालदीव्स या श्रीलंका की है। तो इस लिहाज से महासागर नीति के तहत भारत का जो उद्देश्य है, भारत का जो लॉन्ग टर्म विजन है कि सभी का विकास हो, जैसा कि मोदी जी ने कहा है कि सबका विकास, सबका प्रयास और सबका विश्वास, तो ये सारी चीजें इस नीति में हमें दिखती हैं। महासागर के लॉन्च होने के बाद 2025 में, सागर नीति को 2015 में लाया गया था, 2025 में उसे अपग्रेड करके महासागर नीति का रूप दिया गया। तो पिछले एक साल में हमने देखा कि तमाम जो हिंद महासागर के छोटे द्वीपीय देश हैं उनके साथ सहयोग में इस बात को बड़ी मुखर तौर पर कहा जा रहा है कि सभी देशों की क्षमताओं को एक साथ जोड़कर हिंद महासागर के क्षेत्र में हमें ट्रेडिशनल और नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी दोनों ही एस्पेक्ट्स में काम करना है। तो मुझे लगता है कि भारत की नीति बहुत स्पष्ट है कि एक इंक्लूसिव, रूल्स बेस्ड, पीसफुल और स्टेबल ऑर्डर हिंद महासागर और हिंद प्रशांत क्षेत्र में बने।
2: जी, सेशल्स की नेशनल असेंबली को भी प्रधानमंत्री ने संबोधित किया और दोनों देशों के मजबूत होते संबंधों को अपने संबोधन में रेखांकित भी किया था, तो उस संबोधन से भी कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों और बातों को आप हमारे श्रोताओं के समक्ष रखना चाहेंगे।
3: देखिए, एक खास पहलू भारत और सेशल्स के संबंधों में वहां पर मौजूद भारतीयों और भारतवर्षियों का योगदान है, जिसे प्रधानमंत्री जी ने कहा कि भारतीय जो नॉन रेजिडेंट इंडियंस है, एनआरआईज है, और जो हमारा डायस्पोरा है वहां पर, वो 8-10% की संख्या वहां पर टोटल पॉपुलेशन में देता है और उनका योगदान बहुत प्रमुख है। पहले तो वो 1770 में जब पहली बार भारतीय सेशल्स पहुंचे तो वो ब्लू कॉलर वर्कर्स थे, वो खेतों में और इंडस्ट्रीज में काम करने के लिए गए थे, लेकिन आज भारतीयों का

0: कई इस बात को प्रधानमंत्री मोदी जी ने रेखांकित किया। साथ ही साथ जो भरोसे की नींव पर आधारित जो ये संबंध है, इसमें ये जो तमाम एस्पेक्ट्स आते हैं, एक बहुत बड़ा मुद्दा है खाद्य सुरक्षा का, जो सेशल्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो हमेशा से भारत से चावल सेशल्स को जो है वो भेजा जाता है, कभी कभी वो एक्सपोर्ट के तौर पर, बहुत ऐसे भी ओकेजन आए हैं जब भारत ने चावल सिर्फ जो है वो सहायता के लिए भेजा। सेशल्स जैसे देश आज जलवायु परिवर्तन और बहुत तेजी से बदलती हुई ये जो क्लाइमेट डिबेट है अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, उससे जूझ रहे हैं। उनकी इन तमाम जो जलवायु परिवर्तन और क्लाइमेट रिलेटेड कैलामिटीज हैं, उनसे लड़ने में भारत क्या योगदान दे सकता है, दोनों देश मिलकर क्या काम कर सकते हैं, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री जी ने इस बात को भी कहा कि 50 साल का सफर हमने तय कर लिया है, अब आगे आने वाले 50 सालों में हमें क्या करना है। तो मुझे लगता है कि सेशल्स को लेकर एक बहुत दूरगामी नीति बनाने की बात उन्होंने कही, और इसमें सेशल्स के नीति निर्धारकों का, सेशल्स की जनता का और सेशल्स में रह रहे भारतवर्षियों का भी योगदान उन्होंने मांगा। तो मुझे लगता है कि एक बड़ा ही कॉम्प्रिहेंसिव, एक बड़ा ही व्यापक और इंक्लूसिव एजेंडा उन्होंने प्रस्तुत किया, जिसे सेशल्स की जनता और वहां के मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट और राष्ट्रपति ने बड़े ही खुले मन से स्वीकार किया।
1: जी, जो ग्लोबल साउथ कंट्रीज हैं, सेशल्स की अब हम चर्चा कर ही रहे हैं, तो इन देशों में जो अपने रणनीतिक संबंधों में भारत विकास का जो एक क्षेत्र लाया है और सहयोग और जनकल्याणकारी जो साझेदारी है इस क्षेत्र में जो आगे बढ़ रहा है, वो कैसे भारत अपने एक सकारात्मक प्रभाव को इन देशों के साथ प्रस्तुत कर रहा है और कैसे विश्व में ये एक संदेश भी जा रहा है कि भारत अपने सहयोगियों के साथ एक विकास का प्रबल सहयोगी बनकर उभर रहा है।
0: जी, जैसे मैंने पहले कहा कि भारत की महासागर नीति 2025 की, उसमें बहुत स्पष्ट है कि ग्लोबल साउथ के जो देश हैं, खासतौर से ये हिंद महासागर और हिंद प्रशांत क्षेत्र के देश हैं, उनके साथ सहयोग में एक बड़ा स्तंभ ये होना चाहिए कि इन देशों की, जिनकी बात दुनिया के किसी भी स्तर पर, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, चाहे वो संयुक्त राष्ट्र संघ हो या दुनिया के और जो प्लेटफॉर्म्स हैं उन पर, उनकी कॉप की जो मीटिंग्स हैं उन पर, इन छोटे देशों की बात सुनी नहीं जा रही। तो इसलिए ग्लोबल साउथ की आज सबसे मुखर और सबसे सशक्त आवाज बनकर भारत उभर रहा है, जो इन देशों की जनता की जो सर्वाइवल से जुड़े इश्यूज है, कृषि है, खाद्य सुरक्षा है, फिशरीज का सेक्टर है, मछली पालन का, क्योंकि इलीगल और अंडर रिपोर्टेड फिशिंग को लेकर के, IEUU जिसे कहते हैं, उसको लेकर के चिंताएं बहुत सारी हैं। तमाम जो नेचुरल डिजास्टर्स हैं, प्राकृतिक जो आपदाएं आती हैं, नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी थ्रेट्स आती हैं, उनमें भारत हमेशा से हिंद महासागर क्षेत्र में नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर रहा है और फर्स्ट रिस्पॉन्डर रहा है। तो इस बात को भी ग्लोबल साउथ के संदर्भ में भारत ने रखा है। भारत को, जैसा कि हम जानते हैं, दुनिया की फार्मेसी समझा जाता है, लेकिन आज सिर्फ अपने निर्यात को बढ़ाने के लिए भारत फार्मास्यूटिकल्स क्षेत्र का इस्तेमाल नहीं कर रहा है, इसका इस्तेमाल हो रहा है कि जनता, जो जन औषधि योजना जो भारत में लागू हुई, ये दुनिया के तमाम जो विकासशील देश हैं, ग्लोबल साउथ के सदस्य हैं, जिन्हें दुनिया के अग्रणी जो विकसित देश हैं उनसे कोई चिकित्सा से संबंधित या हॉस्पिटल से संबंधित, दवाओं से संबंधित, नई टेक्नोलॉजी से संबंधित जो समर्थन, जो सहयोग मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है, आज भारत उसको मुहैया कराने की स्थिति में है। तो इसलिए ग्लोबल साउथ को लेकर के भारत की नीति बहुत स्पष्ट है कि इन तमाम देशों को साथ में लेकर आगे बढ़ना है, तभी ग्लोबल साउथ एक ऐसे स्तर पर, ऐसे मुकाम पे पहुंचेगा जहां वो अपनी बात को पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से कह सके, ना कि सिर्फ जो अभी तक हमने ग्लोबल नॉर्थ ग्लोबल साउथ की डिबेट सुनी है, उसमें हमेशा ये होता है कि ग्लोबल साउथ के देश कहते हैं कि हमें और फंडिंग दी जाए, हमें ग्रांट्स दी जाए, हमें एड दी जाए। आज भारत अपने इन तमाम ग्लोबल साउथ के देशों की मदद के साथ ये कहना चाहता है, ये करना चाहता है कि ग्लोबल नॉर्थ और ग्लोबल साउथ एक ऐसे इस तरह से एक दूसरे को एंगेज करें कि ये वन वे डोनर और रेसिपिएंट रिलेशनशिप से बदले और साउथ अपनी बात को, अपने मुद्दों को कॉन्फिडेंस के साथ ज्यादा एसर्टिवली कह सके, और इसके लिए इनकी कैपेसिटीज को बढ़ाना जरूरी है। यही अफ्रीका के देशों में दिख रहा है, यही पैसिफिक आइलैंड के जो तमाम जो छोटे देश हैं, और हिंद महासागर में भी यही बात दिख रही है।
1: बिल्कुल, प्रोफेसर राहुल मिश्रा, बहुत धन्यवाद। भारत और सेशल्स के संबंधों पर आपने विस्तार से विश्लेषण रखा और निश्चित तौर पर हमारे श्रोताओं को बहुत कुछ इन संबंधों को लेकर जानकारी प्राप्त हुई होगी। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए।
0: धन्यवाद, नमस्कार।
2: अभी आप सुन रहे थे प्रधानमंत्री की सेशल्स यात्रा, समुद्री सुरक्षा और सुदृढ़ द्विपक्षीय संबंधों पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे विदेश मामलों के जानकार प्रोफेसर राहुल मिश्रा और आकाशवाणी संवाददाता कमल कुमार प्रजापति। यह कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन एआईआर और यूट्यूब चैनल न्यूज़ ऑन एआईआर

0: यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है। लीजिए एक बार फिर हाजिर हैं आपका पसंदीदा कार्यक्रम
1: आकाशवाणी का। ये जबलपुर केंद्र है। रात के 8:15 हुए हैं। प्रस्तुत है फिल्म संगीत और इस कार्यक्रम का पहला नगमा हम आपको सुनवाने जा रहे हैं श्रोताओं, लता मंगेशकर की आवाज़ में फिल्म गीत से। संगीत निर्देशन है कल्याण जी आनंद जी का।

किनारा फिल्म का ये गाना अभी आपने सुना लता मंगेशकर और भूपिंदर की आवाज़ में, बोल गुलजार के और संगीत निर्देशन आरडी परमन का। और अब सुनिए हसरत जयपुरी के लिखे हुए इस गीत को

ब्रह्मचारी फिल्म से सुनिए मोहम्मद रफ़ी और साथियों की आवाज़ में, और इस गीत के लिए धुन बनाई है शंकर जयकिशन ने।

अब सुनिए लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत निर्देशन में आनंद बख्शी का लिखा हुआ ये गाना मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में। फिल्म का नाम है दो रास्ते।

ये गीत आपने सुना हाथ की सफाई फिल्म से लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में। शब्द रचना गुलशन बावरा की और संगीत निर्देशन कल्याण जी आनंद जी का। और अब सुनिए आनंद बख्शी के लिखे हुए इस गीत को महबूबा फिल्म से आवाज़ किशोर कुमार की।

0: अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत। आकाशवाणी का ये जबलपुर केंद्र है। रात के 8:45 हुए हैं। समाचार संध्या हम आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित करेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं लवली निगम। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में रक्षा अलंकरण समारोह में वीरता पुरस्कार प्रदान किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सेशल्स के साथ 50 वर्ष पुरानी साझेदारी अब नवाचार, स्थिरता और साझा समृद्धि के माध्यम से आगे बढ़ेगी। प्रधानमंत्री सेशल्स की सफल यात्रा के बाद स्वदेश लौटे। मंत्रिमंडल ने बुनियादी ढांचा निवेश में तेजी लाने के लिए राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना कोष में 30,000 करोड़ रुपए के अतिरिक्त निवेश की प्रतिबद्धता को मंजूरी दी। पश्चिम बंगाल विधानसभा में असामाजिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए जन सुरक्षा और असामाजिक गतिविधि नियंत्रण विधेयक पारित। पूर्वोत्तर पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र बिहार, गोवा, महाराष्ट्र, कर्नाटक और केरलम के कुछ हिस्सों में कल मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट। और भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने 2028 ओलंपिक खेलों के लिए जगह पक्की की। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में आयोजित दूसरे रक्षा अलंकरण समारोह में वीरता पुरस्कार प्रदान किए। हमारे संवाददाता ने बताया है कि पुरस्कार सशस्त्र बलों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और अन्य सुरक्षा एजेंसियों के कर्मियों द्वारा असाधारण वीरता के कार्यों के लिए दिए जाते हैं।
2: राष्ट्रपति ने समारोह में 7 सर्वोत्तम युद्ध सेवा पदक, 30 परम विशिष्ट सेवा पदक, 12 उत्तम युद्ध सेवा पदक और 56 अति विशिष्ट सेवा पदक प्रदान किए। अति विशिष्ट सेवा पदक पाने वालों में एयर मार्शल तरुण चौधरी, लेफ्टिनेंट जनरल नीरज वार्ष्णेय और वाइस एडमिरल आनंद वाई सरदेसाई शामिल हैं। सर्वोत्तम युद्ध सेवा पदक से सम्मानित होने वालों में लेफ्टिनेंट जनरल प्रतीक शर्मा, एयर मार्शल नागेश कपूर और लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई शामिल हैं। परम विशिष्ट सेवा पदक पाने वालों में वाइस एडमिरल संजय वात्सयन, लेफ्टिनेंट जनरल मनजिंदर सिंह और एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित शामिल हैं। उत्तम सेवा पदक से सम्मानित होने वालों में लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ, एयर मार्शल मनीष खन्ना और वाइस एडमिरल तरुण सोपती शामिल हैं। ये पदक सशस्त्र बलों के उन अधिकारियों और कर्मियों को देश के प्रति उनकी असाधारण और विशिष्ट सेवाओं के लिए प्रदान किए गए हैं। सौम्या शरण के साथ अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सेशल्स की उनकी यात्रा काफी सार्थक रही और इससे भारत सेशल्स मित्रता सुदृढ़ होगी। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 50 वर्षों में दोनों देशों के बीच संबंध गहरे विश्वास और साझा प्रगति पर आधारित रहे हैं। उन्होंने सेशल्स की स्वतंत्रता के 50 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित राष्ट्रीय दिवस समारोह में भाग लेने पर भी प्रसन्नता व्यक्त की। प्रधानमंत्री सेशल्स की सफल यात्रा के बाद स्वदेश लौट आए हैं। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने ग्रीस के विकास मंत्री ताकिस थियोडोरिकाकोस से आज ग्रीस में मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री गोयल ने बताया कि उन्होंने व्यापार, निवेश, औद्योगिक सहयोग और सुदृढ़ आपूर्ति श्रृंखलाओं के माध्यम से भारत ग्रीस आर्थिक साझेदारी को मजबूत करने पर चर्चा की। राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना कोष NIIF में सरकार का कुल निवेश अब 60,000 करोड़ रुपए हो गया है। ये बुनियादी ढांचे और राष्ट्रीय महत्व के अन्य क्षेत्रों में केंद्र की निवेश प्रतिबद्धता को दर्शाता है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पिछले सप्ताह अवसंरचना निवेश को गति देने और देश में संस्थागत पूंजी को बढ़ावा देने के लिए कोष में 30,000 करोड़ रुपए के अतिरिक्त निवेश को मंजूरी दी थी। वित्त मंत्रालय के अनुसार इस अतिरिक्त निवेश का उपयोग NIIF के अवसंरचना केंद्रित दूसरे कोष की स्थापना के लिए किया जाएगा। अवसंरचना कोष द्वितीय के लिए लगभग 30,000 करोड़ रुपए प्रस्तावित हैं। इससे परिवहन, ऊर्जा, डिजिटल और शहरी अवसंरचना तथा ई मोबिलिटी जैसे उभरते क्षेत्रों में निवेश किया जाएगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। पश्चिम बंगाल विधानसभा में आज पश्चिम बंगाल जन सुरक्षा और असामाजिक गतिविधियों पर नियंत्रण विधेयक 2026 और पश्चिम बंगाल जन व्यवस्था रखरखाव संशोधन विधेयक 2026 पारित हो गया। पश्चिम बंगाल जन सुरक्षा और असामाजिक गतिविधियों पर नियंत्रण विधेयक 2026 के प्रावधानों के अंतर्गत जन सुरक्षा को खतरे में डालने और शांति व्यवस्था भंग करने वाली असामाजिक गतिविधियों के लिए किसी व्यक्ति को गिरफ्तारी के अंतर्गत अधिकतम 12 महीने तक हिरासत में रखा जा सकता है। ये विधेयक असामाजिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने, असामाजिक

0: सामाजिक तत्वों की कड़ी सजा देने के उद्देश्य से पारित किया गया है। चर्चा में भाग लेते हुए मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि अधिनियम बनने के बाद इन विधेयकों को असामाजिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने और राज्य में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए सख्ती से लागू किया जाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज नई दिल्ली में DRDO को वित्तीय शक्तियों का प्रत्यायोजन DFP 2026 जारी किया। इस अवसर पर रक्षा मंत्री ने कहा कि DFP 2026 अनुसंधान और विकास पारिस्थितिकी तंत्र से उभरने वाली प्रणालियों, प्लेटफॉर्मों और प्रौद्योगिकियों के तेजी से उत्पादन रक्षा बलों में उनके समावेश को सुगम बनाएगा। हरियाणा राजस्थान सरकार ने आज नई दिल्ली में यमुना जल परियोजना के निर्माण और कार्यान्वयन के समझौते पर हस्ताक्षर किए। गृह मंत्री अमित शाह ने इस अवसर पर कहा कि इस समझौते से हरियाणा और राजस्थान के लोगों की लगभग 3 दशक से चली आ रही जल समस्या का समाधान हो जाएगा। इस बीच जल शक्ति मंत्री CR पाटिल ने कहा कि समझौते के अंतर्गत मानसून के दौरान राजस्थान के हिस्से का पानी भूमिगत पाइपलाइन के माध्यम से हथनीकुंड बैराज से आपूर्ति किया जाएगा।
1: इस परियोजना के अंतर्गत हथनीकुंड बैराज से पश्चिमी यमुना शहर के माध्यम से भूमिगत पाइपलाइन द्वारा मानसून के दौरान राजस्थान को उसके हिस्से का जल उपलब्ध कराया जाएगा, जिससे चूरू, सीकर, झुंझुनू तथा राजस्थान के अन्य जल संकटग्रस्त क्षेत्रों को पेयजल की आवश्यकताओं की दीर्घकालिक पूर्ति सुनिश्चित होगी।
0: ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि समृद्ध और विकसित भारत का सपना तभी साकार हो सकता है जब गांव समृद्ध, आत्मनिर्भर और विकसित हों। नई दिल्ली में आयोजित 2 दिन के राष्ट्रीय ग्रामीण विकास सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित करते हुए श्री चौहान ने कहा कि गांव केवल लाभार्थी ही नहीं बल्कि विकास के प्रेरक शक्ति भी हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने आज नई दिल्ली में स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए कई डिजिटल पहलों का शुभारंभ किया। श्री नड्डा ने कहा कि इन पहलों को सरकार द्वारा हासिल की गई एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है।
2: Applications launch is going to play a very important role.
3: प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 सालों में कई नई पहलें शुरू की गई हैं। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण और प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना ने स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार किया है और उन्हें देश में सस्ता और सुलभ बनाया है। इसमें 62 करोड़ लोग शामिल हैं और अब भारत के पास दुनिया का सबसे बड़ा डिजिटल पब्लिक हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर है।
2: लार्जेस्ट डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर हेल्थ केयर।
0: श्री नड्डा ने कहा कि देश भर में लगभग 1,85,000 आयुष्मान आरोग्य मंदिर स्थापित किए गए हैं। आज नई दिल्ली में केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण परिषद के 16वें सम्मेलन में उन्होंने कहा कि आयुष्मान आरोग्य मंदिर नागरिकों के लिए प्राथमिक संपर्क केंद्र है जो पहले, दूसरे तथा तीसरे स्तर के स्वास्थ्य सेवाओं और स्वास्थ्य प्रणाली के बीच एक मजबूत सेतु का काम करते हैं। संचार और पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मध्य प्रदेश के गुना जिले के अपने 4 दिन के दौरे के दौरान लगभग 350 करोड़ रुपए के विकास परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास किया। ये परियोजनाएं पर्यावरण, सिंचाई, रेलवे, सड़क, बिजली, स्वास्थ्य सेवा और कौशल विकास से संबंधित हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल से 2 दिन के आंध्र प्रदेश के दौरे पर रहेंगी। राष्ट्रपति कल विजयनगरम में स्थित केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय के प्रथम दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी। महिला और बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कहा है कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार के सत्ता में आने के बाद से त्रिपुरा और नई दिल्ली के बीच की दूरी काफी कम हो गई है। उन्होंने बताया कि बेहतर संपर्क के कारण पूर्वोत्तर क्षेत्र में तेजी से विकास हुआ है। आज अगरतला के राजकीय अतिथि गृह में समाज कल्याण और सामाजिक शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक की। इस अवसर पर पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार सबका साथ सबके विकास के दृष्टिकोण के प्रति प्रतिबद्ध है। दिल्ली मंत्रिमंडल ने आज दिल्ली इलेक्ट्रिक वाहन नीति को मंजूरी दे दी। इसे 1 जुलाई से चरणबद्ध तरीके से शुरू किया जाएगा। नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि ये नीति पूरी तरह से इलेक्ट्रिक वाहनों, विशेष रूप से 0 उत्सर्जन वाहनों पर केंद्रित है। हमारी संवाददाता सौम्या शरण की रिपोर्ट।
4: श्रीमती गुप्ता ने बताया कि अगले चार वर्षों में इस नीति पर लगभग 7,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। वहीं 8,000 करोड़ रुपए की लागत से 30,000 से अधिक चार्जिंग स्टेशन और अन्य अवसंरचनात्मक तैयारियां की जाएंगी,
5: जिसमें हमने खरीद पे प्रोत्साहन दिया है, स्क्रैपिंग पे प्रोत्साहन दिया है, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना है और रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन की छूट भी इस पॉलिसी में दी गई है।
4: वहीं 30 लाख रुपए तक की कीमत वाली इलेक्ट्रिक कारों पर 100% रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन शुल्क में छूट दी जाएगी। श्रीमती गुप्ता ने बताया कि प्रोत्साहन राशि प्रत्यक्ष लाभ अंतरण DBT के माध्यम से लाभार्थियों के बैंक खातों में भेजी जाएगी। इस नीति से दोपहिया, तिपहिया, चार पहिया वाहन और N1 ट्रक जैसी वाहन लाभान्वित होंगे। इससे परिवहन व्यवस्था बेहतर होगी और दिल्ली एक स्मार्ट सिटी की दिशा में तेजी से आगे बढ़ेगी।
0: सरकार ने सोशल मीडिया पर प्रसारित उस वीडियो का खंडन किया है जिसमें दावा किया गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आसानी से धन लाभ दिलाने वाले किसी निवेश प्लेटफॉर्म का समर्थन किया है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने बताया कि वीडियो फर्जी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से निर्मित है। कार्यालय ने कहा कि प्रधानमंत्री ने ऐसी किसी भी निवेश योजना, उपकरण या प्लेटफॉर्म का समर्थन नहीं किया है। सरकार ने सोशल मीडिया पर प्रसारित उन कई खबरों का भी खंडन किया है जिनमें दावा किया गया था कि भारत के पेट्रोल पंपों पर एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल E20 के इस्तेमाल के खिलाफ चेतावनी वाले होर्डिंग लगाए गए हैं। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने कहा कि ये दावे झूठे हैं। इकाई ने कहा कि खुदरा पेट्रोल दुकानों पर ऐसा कोई होर्डिंग नहीं लगाया गया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newzoneair.gov.in और हमारे newzoneair ऐप पर भी उपलब्ध हैं। वेनेजुएला के भूकंप प्रभावित क्षेत्रों में ऑपरेशन अमिस्ताद के अंतर्गत तैनात भारतीय सेना का एक फील्ड अस्पताल पूरी तरह से चालू हो गया है। ये वेनेजुएला के लोगों को 2400 घंटे मुफ्त चिकित्सा सेवाएं प्रदान कर रहा है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि सेना भूकंप से प्रभावित लोगों की मदद कर रही है। अमरीका और ईरान सैन्य हमले रोकने तथा होर्मुज जल डमरू मध्य से वाणिज्यिक जहाजों का आवागमन फिर शुरू करने पर सहमत हो गए हैं। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दोनों पक्षों के बीच कल कतर में वार्ता के एक नए दौर की घोषणा की है। श्री ट्रंप ने सोशल मीडिया पर कहा कि ईरान ने इस संबंध में बैठक का अनुरोध किया है और ये बातचीत दोहा में होगी। इधर ईरान ने राष्ट्रपति ट्रंप के इस दावे को खारिज कर दिया है कि उप विदेश मंत्री काजिम गरीबाबादी ने कहा है कि कतर के साथ ईरान की बातचीत सामान्य रूप से जारी है। दोहा में तकनीकी वार्ता की खबरों की अभी तक पुष्टि नहीं हुई है। संयुक्त अरब अमीरात और ईरान के बीच सीधी उड़ान सेवाएं फिर से शुरू हो गई हैं। क्षेत्रीय संघर्ष के बाद से 28 फरवरी से दोनों देशों के बीच हवाई संपर्क निलंबित था। देश में इस वर्ष मई में वार्षिक आधार पर औद्योगिक उत्पादन सूचकांक IIP पर आधारित औद्योगिक उत्पादन 5.1% की वृद्धि हुई। बीते अप्रैल में देश के औद्योगिक उत्पादन 4.9% की वृद्धि हुई थी। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं मनोज पाठक।
6: बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स आज 372 अंक घटकर 76,728 पर बंद हुआ। उधर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 110 अंक कम होकर 23,946 दर्ज हुआ। और अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में $1 की तुलना में रुपया 14 पैसे कमजोर होकर ₹94.54 पर बंद हुआ।
0: भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने 2028 में होने वाले लॉस एंजलिस ओलंपिक खेलों के लिए स्थान पक्का कर लिया है। ICC ने पुष्टि की कि भारत सहित ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन और दक्षिण अफ्रीका ने भी ओलंपिक खेलों में जगह बना ली है। भारतीय टीम ने T20 विश्व कप में महाद्वीप में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के आधार पर क्वालिफाई किया है। फीफा फुटबॉल विश्व कप के नॉकआउट चरण में आज ब्राजील का सामना जापान से होगा। ये मैच भारतीय समयानुसार रात 10:30 से खेला जाएगा। वहीं देर रात 2 जर्मनी और पराग्वे आमने सामने होंगे। अमेरिका के फुलटन में किदाम्बी श्रीकांत US ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के उपविजेता रहे। पुरुष सिंगल्स फाइनल में श्रीकांत को चीनी ताइपे के सू लियांग से हार का सामना करना पड़ा। मौसम विभाग ने पूर्वोत्तर, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र, बिहार, कोंकण, गोवा, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरलम और माहे के कुछ हिस्सों में कल तेज वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अगले 2 में उड़ीसा, झारखंड, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, विदर्भ, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकाल में भी तेज बारिश हो सकती है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में रक्षा अलंकरण समारोह में वीरता पुरस्कार प्रदान किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सेशल्स के साथ 50 वर्ष पुरानी साझेदारी अब नवाचार, स्थिरता और साझा समृद्धि के माध्यम से आगे बढ़ेगी। प्रधानमंत्री सेशल्स की सफल यात्रा के बाद स्वदेश लौटे। मंत्रिमंडल ने बुनियादी ढांचा निवेश में तेजी लाने के लिए राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना कोष में 30,000 करोड़ रुपए के अतिरिक्त निवेश की प्रतिबद्धता को मंजूरी दी। पश्चिम बंगाल विधानसभा में असामाजिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए जन सुरक्षा और असामाजिक गतिविधि नियंत्रण विधेयक पारित। और भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने 2028 ओलंपिक खेलों के लिए जगह पक्की की। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
7: Good evening. This is Akashvani and I'm Saira Mushtaba with the news at 9. The headlines. President Draupadi Murmu confers gallantry awards at Defence Investiture Ceremony in Rashtrapati Bhavan. Prime Minister Narendra Modi says 50-year-old partnership with Seychelles will now advance through innovation, sustainability and shared prosperity. Returns home after successful visit to island nation. Cabinet approves additional investment of 30,000 crore rupees in National Investment and Infrastructure Fund to accelerate infrastructure investment. West Bengal Assembly passes Public Safety and Control of Anti-Social Activities Bill to curb anti-social activities. IMD issues orange alert for very heavy rainfall in parts of northeast, sub-Himalayan West Bengal, Bihar, Goa, Maharashtra, Karnataka and Kerala tomorrow. And Indian women's cricket team earns one of the first berths for 2028 Olympics. And now the news in detail. President Draupadi Murmu conferred gallantry awards to the personnel of the Defence Forces and the Indian Coast Guard during the Phase 2 of Defence Investiture Ceremony at Rashtrapati Bhavan this evening. Vice President C.P. Radhakrishnan, Defence Minister Rajnath Singh, along with other Union Ministers and senior officials of Armed Forces, were also present on the occasion. A report.
8: The President conferred 7 Sarvottam Yudh Seva Medals, 30 Param Vishisht Seva Medals, 12 Uttam Yudh Seva Medals and 56 Ati Vishisht Seva Medals at the ceremony. Some recipients of the Ati Vishisht Seva Medal included Air Marshal Tarun Chaudhary, Lieutenant General Neeraj Varshne and Vice Admiral Anand Vai Sardesai. Recipients of the Sarvottam Yudh Seva Medal included Lieutenant General Pratik Sharma, Air Marshal Nagesh Kapoor and Lieutenant General Rajiv Ghai. Among those honored with the Param Vishisht Seva Medal were Vice Admiral Sanjay Vatsayan, Lieutenant General Manjinder Singh and Air Marshal Ashutosh Dixit. Recipients of the Uttam Yudh Seva Medal included Lieutenant General Dhiraj Seth, Air Marshal Manish Khanna and Vice Admiral Tarun Sopti. The medals were awarded to personnel for distinguished service of an exceptional order with Soumya Sharan, Aman Yadav, Akashvani News, Delhi.
7: Prime Minister Narendra Modi has said that his visit to Seychelles has yielded significant results that will enhance the friendship between both the nations. The Prime Minister returned home after concluding his 3-day successful visit to the island nation. In a social media post, he said, "Over the last 50 years, the relationship between the two nations has been characterized by profound trust and mutual advancement, whereas the forthcoming 50 years will be shaped by innovation, sustainability and collective prosperity." Our correspondent has more on Prime Minister's visit.
9: On the final day of his visit, Mr. Modi visited and offered prayers at Navashakti Vinayagar Temple in Victoria. He also met the members of Indian diaspora there. He also paid floral tributes at the Mahatma Gandhi statue situated at Peace Park. In a social media post, Prime Minister Modi expressed happiness on attending the National Day celebrations that marks 50 years of independence of Seychelles. He also thanked the President of Seychelles, Dr. Patrick Hermine, the government and people of Seychelles for their affection. During the visit, Prime Minister Narendra Modi became the first Indian Prime Minister to address the National Assembly of Seychelles. During the visit, several MOUs and agreements in areas such as UPI, health agriculture, shipping, space cooperation, extradition and a line of credit were also exchanged between the two countries. With Aman's report, Aparajita Snatak, Akashvani News, Delhi.
7: Government's total commitment to the National Investment and Infrastructure Fund, NIIF, has now reached 60,000 crore rupees. This undertaking shows the center's investment commitment for infrastructure and other nationally important sectors. The Union Cabinet last week approved an additional investment commitment of 30,000 crore rupees in the fund to accelerate infrastructure investment and catalyze institutional capital into the country. According to the Finance Ministry, the additional investment will be used for setting up of NIIF's second infrastructure-focused fund, which shall be the successor to its first flagship fund with this mandate. NIIF is India's sovereign anchored fund, professionally run and managed by National Investment and Infrastructure Fund Limited. The governments of Haryana and Rajasthan signed an agreement for the construction and implementation of the Yamuna Water Project in the presence of Home Minister Amit Shah in New Delhi today. Speaking on the occasion, the Home Minister said the agreement has resolved nearly three-decade-old water-related problem faced by the people of Haryana and Rajasthan. Under the agreement, approximately 580 million cubic meters of water will be supplied from the Yamuna Canal to Rajasthan through three underground pipelines from the next month to October. Mr. Shah noted that the framework of this agreement will stand as a dispute-free agreement for many decades to come. Defence Minister Rajnath Singh today released the Delegation of Financial Powers to DRDO DFP 2026 to enhance efficiency, accountability and timely execution of strategic research and development projects in New Delhi. On the occasion, Mr. Singh said that the DFP 2026 will facilitate faster production and induction of systems, platforms and technologies emerging from the research and development ecosystem into the defence forces. The Defence Minister said the new framework will strengthen collaboration between industry and academia, boost self-reliance in defence technologies, and enhance national defence preparedness. Chief of Defence Staff General Anil Chauhan, DRDO Chairman Samir V. Kamath, and other senior officials were present at the event. Union Minister for Health and Family Welfare Jagat Prakash Nadda today launched a series of digital initiatives for the health sector in New Delhi. The launch includes Arogya Setu 2.0, Ayushman Sarthi chatbot, Ayushman app, eSushrut clinic, National Health Claims Exchange, and health standards to strengthen India's digital public infrastructure for health. The Health Minister addressed the 16th conference of the Central Council of Health and Family Welfare in New Delhi today.
2: Applications launch is going to play a very important role. Under the visionary leadership of Prime Minister Shri Narendra Modi ji, many new initiatives have taken place in the past 12 years. The National Health Authority and PM Jai Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana has expanded the health facility and made it accessible and affordable throughout the length and the breadth of the country. And incorporates 62 crore people. And now India is the world's largest digital public infrastructure healthcare.
7: This is Akashvani giving you the news. For quick news updates round the clock, follow us on our X handle at AI News Alerts. And for details of these stories and more, log on to our website www.newsonair.gov.in and download the News on AIR app. Welcome back. You're listening to News at 9. The West Bengal Public Safety and Control of Anti-Social Activities Bill 2026 and the West Bengal Maintenance of Public Order Amendment Bill 2026 have been passed in the State Legislative Assembly today. Under the provisions of the Public Safety Bill, a person can be detained for a maximum of 12 months under preventive arrest norm for anti-social activities, which may cause disturbance to public safety and disturb public peace and order. In the Maintenance of Public Order Amendment Bill, the original Act of 1972 has been amended with the objective to impose payment of compensation on individuals committing arson, vandalism, and damage to public and private properties. Offences under these two bills have been brought under Bharatiya Nyay Samhita and Bharatiya Nagrik Suraksha Samhita. The Delhi Cabinet today approved the Delhi Electric Vehicle or EV policy. Set for a phased four-year rollout starting from the first of next month, the ambitious framework commits a massive fiscal outlay of 15,000 crore rupees to completely transition the national capital towards zero-emission transit by 31st of March 2030. Addressing a press conference in New Delhi, Delhi Chief Minister Rekha Gupta said that the policy focuses entirely on electric vehicles, specifically zero-emission vehicles, with the ultimate goal of gradually transforming Delhi into a pollution-free city for the benefit of its residents.
10: We are very optimistic that Delhi's EV policy 2026 will prove to be a transformative and revolutionary policy. It will not only provide the state with a cleaner mode of transportation, but will also position Delhi as the nation's leader in sustainable, affordable and future-ready transportation.
7: Commerce and Industry Minister Piyush Goyal is leading a high-level Indian business delegation to Athens in Greece after concluding his visit to the United Kingdom. Mr. Goyal met the Development Minister of Greece, Takis Theodorikakos, today. Mr. Goyal said they discussed strengthening the India-Greece economic

0: आज मैं हूं आपके साथ प्रियंका अरोड़ा। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम यानी MSME किसी भी देश की अर्थव्यवस्था की मजबूत नींव होते हैं। वैश्विक अर्थव्यवस्था, रोजगार सृजन और नवाचार में छोटे व्यवसायों के महत्वपूर्ण योगदान को पहचानने और उन्हें बढ़ावा देने के लिए हाल ही में 27 जून को विश्व MSME दिवस मनाया गया। भारत की अगर बात करें तो कृषि के बाद रोजगार का दूसरा सबसे बड़ा स्रोत MSME क्षेत्र है। MSME न केवल रोजगार के लिए नए अवसर सृजित करते हैं बल्कि नवाचार को बढ़ावा देने, स्थानीय उद्योगों को सशक्त बनाने और आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को गति देने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। आज जब हम भारत विकसित भारत 2047 की बात कर रहे हैं तो उसके लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ने की दिशा में MSME क्षेत्र की भूमिका और भी महत्वपूर्ण हो जाती है। आज पब्लिक स्पीक में हमने यही विषय चुना है, लघु व्यवसायों का विकास और उद्यमियों के लिए अवसर। इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में है सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के अपर सचिव और विकास आयुक्त डॉक्टर रजनीश। आपका स्वागत है डॉक्टर रजनीश कार्यक्रम में।
1: धन्यवाद।
0: श्रोताओं, स्टूडियो की फोन लाइंस खुली है, आप भी अपने प्रश्न हमसे पूछ सकते हैं। स्टूडियो का नंबर है 2331-0481 या 2371-7117, 2371-7106 या 2331-4444। याद रखें, इससे पहले 011 जो दिल्ली का कोड है वो लगाना ना भूलें। व्हाट्सएप नंबर भी है 9289094044। और इसके अलावा आप जानते हैं ट्विटर हैंडल @AIRNewsAlerts पे भी #AskAIR के जरिए आप अपने सवाल पोस्ट कर सकते हैं। तो आगाज करते हैं आज के कार्यक्रम का। डॉक्टर रजनीश, भारत जैसे विशाल देश में हम देखते हैं कि शहरों की गलियों से लेकर गांवों तक बड़ी संख्या में छोटे छोटे उद्यम चल रहे हैं। बड़े उद्योगों की तुलना में इनका कितना महत्व है और MSME क्षेत्र का देश की अर्थव्यवस्था में क्या योगदान है?
1: प्रियंका जी, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम जो हैं, ये हमारी आर्थिकी में 31% से ऊपर योगदान रखते हैं
0: जी।
1: और अगर हम मैन्युफैक्चरिंग की बात करें तो 35% से ऊपर इनका योगदान है। एक्सपोर्ट्स में 48% से ऊपर योगदान सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों का है। सबसे बड़ी बात जो MSME की है वो जैसा आपने बताया कि एग्रीकल्चर के बाद लार्जेस्ट सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट MSMEs हैं। इनफैक्ट हमारे यहाँ MSMEs के माध्यम से 38 करोड़ से ऊपर लोग इस सेक्टर से जुड़े हुए हैं। और हम ये मानते हैं मिनिस्ट्री में कि जो हमारे विकसित भारत की प्रधानमंत्री जी की परिकल्पना है उसमें MSME का एक बहुत बड़ा योगदान इसलिए है क्योंकि इंक्लूसिव डेवलपमेंट में इनका एक बहुत बड़ी भागीदारी है।
0: सही बात है, 38 करोड़ से जितने ज्यादा लोग जिस क्षेत्र से जुड़े हों तो लाजमी है उस क्षेत्र पर ध्यान देना और भी महत्वपूर्ण हो जाता है और सरकार दे भी रही है। आगे चर्चा जारी रखते हैं, पहले अपने श्रोता से बात कर लेते हैं जो दिल्ली से जुड़े हैं, धर्मवीर जी।
2: नमस्कार मैडम।
0: नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में, आपका प्रश्न क्या है?
2: धन्यवाद, मैं धर्मवीर गांधीनगर दिल्ली से बोल रहा हूँ
0: जी।
2: तो एक्सपर्ट को नमस्कार। जैसे हमारे एक्सपर्ट भी जानते हैं कि गांधीनगर दिल्ली की सबसे एशिया की सबसे बड़ी रेडीमेड मार्केट है। यहाँ जो भी आपके लघु उद्योग और छोटे उद्योग सारे चलते हैं, तो इसमें क्या बेनिफिट मिलता है? क्योंकि यहाँ जैसे फैक्ट्री है, फैक्ट्री में कोई 50 भी स्टाफ काम करता है, कहीं 30 करता है, कहीं 90 स्टाफ काम करता है। इन लोगों को जानकारी नहीं है इसका कैसे ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठाया जाए
0: जी।
1: देखिए, MSME के अंदर हमारे कुछ बेनिफिट्स हैं जो कि सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम जो है वो प्राप्त कर सकते हैं। सबसे बड़ा बेनिफिट है बैंकों से सुगम और कम दर ब्याज के ऊपर ऋण प्राप्त करना। इनफैक्ट हमारे माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइजेस ये प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग के लिए एलिजिबल हैं। और मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा कि पिछले 10 वर्षों में 10 लाख करोड़ रुपए का क्रेडिट जो पहले इनको मिलता था, अब वो बढ़कर 36 लाख करोड़ के ऊपर हो गया है। तो पिछले 10 साल में 3 गुना से ऊपर की वृद्धि हम देखते हैं। जो एक्सेस टू क्रेडिट है माइक्रो और स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए वो प्रदान की गई है। दूसरी सबसे बड़ी बात हमने ये देखा है कि सूक्ष्म और लघु उद्यम जो है

0: वहाँ उद्यमियों को जब वो बैंक में अपना प्रोजेक्ट लेके जाते हैं या उनको कोई अपने व्यवसाय विस्तार के लिए धनराशि चाहिए होती है, तो उस समय नॉर्मली बैंक्स जो हैं वो कोलेटरल मांगते हैं,
1: जी
0: और कोलेटरल देना एक समस्या रहती है। तो मंत्रालय की तरफ से एक हमारी स्कीम चलती है जिसको हम CGTMSE बोलते हैं, क्रेडिट गारंटी फॉर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस। तो जितने भी माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइजेस हैं, इनको बिना कोलेटरल के ऋण देने की एक व्यवस्था इस योजना के माध्यम से की गई है। बेसिकली क्या होता है कि कोई बैंक अगर माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइज को लोन दे रहा है, तो उसका डिफॉल्ट रिस्क हम CGTMSE से कवर करते हैं। और मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि 2000 से ये योजना चल रही
1: जी
0: है, 2000 से लेकर 2020 तक 20 सालों में 3,20,000 करोड़ रुपए की क्रेडिट गारंटीज हमने दी,
1: दी है
0: और 2023 में एडिशनल 2,00,000 करोड़ की क्रेडिट गारंटीज हमें
1: जी
0: देनी थी। और 2,00,000 करोड़ की क्रेडिट गारंटीज का जो टारगेट था, हमने 3.5 साल में ही 10,00,000 करोड़ के ऊपर क्रेडिट गारंटीज और दी हैं।
1: दी
0: तो हमारा मंत्रालय की तरफ से एक बहुत बड़ा पुश ये रहता है कि जितने माइक्रो और स्मॉल
1: जी
0: एंटरप्राइजेज हैं, उनको अपने व्यवसाय विस्तार के लिए आसानी से बैंकों से ऋण प्राप्त
1: उपलब्ध
0: हो
1: हो
0: सके।
1: जाए। और उसमें सबसे बड़ी बात जो अक्सर चिंता का सबब रहता है कि गिरवी रखना पड़ेगा कुछ,
0: जी
1: तो इस केस में जो आप योजना है जो CGTMSE, उसके लिए आपको कोई गिरवी नहीं रखना कुछ, आप निश्चिंत होकर बैंक के पास जा सकते हैं और अगर सही है सारा प्रोजेक्ट तो आपको उस पर लोन मिल सकता
0: इसमें
1: है।
0: दो बातें मैं और बताना चाहूंगा। पहले कोलेटरल फ्री लेंडिंग की जो RBI की लिमिट थी वो 10,00,000 रुपए थी, तो हमने RBI से मैटर टेकअप किया कि इस लिमिट को बढ़ाया जाए, और इस वर्ष 1 अप्रैल से ये लिमिट दुगनी कर दी गई है। तो
1: जी
0: 20 लाख तक का लोन अगर कोई लेना चाहता है तो उसमें वैसे भी कोई कोलेटरल देने की आवश्यकता नहीं है, और क्रेडिट गारंटी स्कीम के अंदर 10 करोड़ रुपए तक का क्रेडिट गारंटीज हम लोग देते हैं। इसमें 75% से लेकर 85% तक का गारंटी कवर रहता है।
1: जी
0: तो एक ये योजना है जिसके माध्यम से हमने देखा है कि MSMEs अपने व्यवसाय विस्तार को आगे
1: जी
0: बढ़ावा दे रहे
1: जी
0: हैं।
1: बूस्ट अप मिलता है उनको। हरियाणा से एक और श्रोता जुड़े हैं, राजेंद्र जी।
2: नमस्कार जी, प्रियंका जी और विशेषज्ञ जी, नमस्कार जी। मैं ये जानना चाहता हूँ कि देश में लघु उद्योग तो काफी हैं, लेकिन कैसे माल बेचने की उनको बड़ी समस्या है। देश में या राज्य में ऐसी कोई मार्केट हो जो अपना माल बेच सके और वो अपना हुनर दिखा सके। दूसरा, जो अभी बैंक लोन आता है तो उसकी बैंक गारंटी होती है, तो वो आम आदमी की होती है, पता नहीं लगता अभी किस टाइम लोन आएगा, तो पता करने जाए तो ग्राहक कहते हैं खत्म हो चुकी है। तो ये लोगों में कैसे जानकारी फैले कि जो ग्रांट आए लोन का टाइम को तो पता लगे लोगों को। नमस्कार
1: जी।
0: तो आपने जो प्रश्न पूछा इसके दो भाग हैं। पहला ये जानना चाहते हैं कि मार्केटिंग में किस तरह से इनकी सहायता की जा सकती है। तो मैं यहाँ बताना चाहूँगा कि जो हमारे माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइजेस हैं, इसके लिए हमारा पब्लिक प्रोक्योरमेंट पॉलिसी ऑर्डर है, और ये हमारे एक्ट के तहत, MSME डेवलपमेंट एक्ट के तहत है, जिसके अंदर जितनी भी सेंट्रल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं उनको 25% अपनी खरीद जो है वो मैंडेटरली माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइजेस से करनी है। और दूसरी बात ये कि जब कभी माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइजेस किसी टेंडर में पार्टिसिपेट करते हैं तो 15% की प्राइस प्रेफरेंस भी उन्हें मिलती है।
1: अच्छा।
0: मतलब ये कि मान लीजिए अगर किसी ने टेंडर में जो लोएस्ट कोट किया है वो 100 रुपए है, और माइक्रो या स्मॉल एंटरप्राइज ने 115 तक का भी अगर कोट किया है, तो वो अगर हम उसे एक मौका देते हैं कि आप 100 रुपीज जो कि मिनिमम प्राइस कोट आया है, अगर आप उसको मैच करते हैं तो 25% वो ऑर्डर आपको मिलेगा। तो एक ये हमारी प्राइस प्रेफरेंस है जो माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइजेस के लिए है। इसके अलावा हम एक हमारी योजना है PMS, जिसके अंदर हम हमारे जो व्यवसायी हैं उनको ट्रेड फेयर्स में और मार्केटिंग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर पार्टिसिपेट करने में हम मदद करते हैं, तो उस योजना का ये लाभ ले सकते हैं। जो बैंक की इन्होंने बात की कि बैंक में लोन के लिए जाते हैं तो वहाँ गारंटीज के बारे में
1: पता
0: नहीं होता, तो ये एक्चुअली क्रेडिट गारंटी जो है इसके लिए आवेदन करने की माइक्रो या स्मॉल एंटरप्राइज को आवश्यकता नहीं है, ये क्रेडिट गारंटी हम बैंक को ही देते हैं। तो जब लोन इनको दिया जाता है तो उस समय बैंक्स जो है ये क्रेडिट गारंटी कवर हमारे CGTMSE से लेते हैं, और हम माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइजेस के अंदर और अधिक अवेयरनेस क्रिएट करने पे भी जो हमारी स्टेट गवर्नमेंट्स हैं और जो हमारी एमएसएमई एसोसिएशंस हैं उसके माध्यम से इस बात का प्रसार कर रहे हैं कि आप जब लोन लेने बैंक में जाएं तो कृपया सीजीटीएमएससी का जरूर हवाला दें ताकि आपको कोलेटरल जो है वो ना देना पड़े और कोलेटरल फ्री लेंडिंग जो है आप उसकी सुविधा
1: जी आप बिना गिरवी के ये ऋण प्राप्त कर सके। तो इसलिए जो सीजीटीएमएससी जो योजना का नाम है उसका जिक्र जरूर करें जब भी आप इस योजना का लाभ लेने जाते हैं। मध्य प्रदेश से जुड़े हैं विपिन सागर जी। विपिन जी आप आवाज सुन पा रहे हैं? हेलो जी हम फिर से संपर्क करने की कोशिश करेंगे उनसे। जहां तक अभी हमने बात की कि मार्केटिंग की तो जैसे एक जेम पोर्टल भी है उसके थ्रू भी जो छोटे व्यवसायियों को फायदा हो सकता है क्योंकि बहुत बड़ी मार्केट प्लेस है वो भी सरकार की ओर से तैयार की गई। क्योंकि ब्रांडिंग की जब बात करती है जो बड़े बड़े जो उद्योग हैं या अन्य हम जो कॉरपोरेट कंपनीज की बात करते हैं तो वो पैसा खर्च करके अपने दम पर अपनी पहचान बना लेते हैं लेकिन जो छोटे व्यवसाय हैं उनको कैसे पहचान मिले?
0: देखिए जेम पोर्टल के माध्यम से एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेटिव चेंज आया है प्रोक्योरमेंट्स में। पहली बात तो ये जितने गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं मिनिस्ट्रीज हैं सेंट्रल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं जो भी प्रोक्योरमेंट ये करते हैं इनको जेम से करना है ये हमारे जीएफआर के अंदर ये चीज निहित है। दूसरी बात ये कि जेम पे जो प्रोक्योरमेंट होता है क्योंकि ये एक फेसलेस प्रोक्योरमेंट है पोर्टल के ऊपर टेंडर फ्लोट होता है और उसके अंदर प्रोक्योरमेंट रिक्वायरमेंट्स हैं और कोई भी इसके अंदर बिड कर सकता है तो एक बहुत ही पारदर्शी रूप में जो माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइजेस हैं वो जेम का फायदा उठा रहे हैं। इनफैक्ट अगर हम देखें पिछले 5 साल में संख्या एमएसएमईज की जो जेम पे प्रोक्योरमेंट्स में पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो बहुत बड़ी है और इसके अंदर जो अमाउंट है प्रोक्योरमेंट का और जो अपॉर्चुनिटीज मिली हैं सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योगों को उसके अंदर भी बहुत विस्तार हुआ है।
1: जी हम चर्चा जारी रखते हैं पहले अपने श्रोता को ले लेते हैं। शिमला से जुड़े हैं राकेश जी।
3: जी नमस्कार।
1: नमस्कार
3: मैं राकेश बात कर रहा हूँ कोटखाई शिमला हिमाचल प्रदेश।
1: जी
3: जी मेरा ये प्रश्न है कि हम बागवानी क्षेत्र के लिए जो है एमएसएमई के लिए लोन लेना चाहते तो कितने परसेंट में ब्याज हमें मिलता है बागवानी क्षेत्र के लिए?
1: जी
0: देखिए जो एग्रीकल्चरल लोन्स हैं आप जानते हैं कि बैंक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है उसके वो खुद स्वयं निर्धारित करते हैं आरबीआई की गाइडलाइंस हैं। बैंक्स को ये इख्तियार है कि वो ये लोन के ऊपर रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या चार्ज करना है वो बैंक इसको डिटरमिन करता है। पर माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइजेस जो हमारी हैं और अगर आप हमारे उद्यम पोर्टल के ऊपर रजिस्टर होते हैं तो फिर आपको प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग की के लाभ मिलेंगे। प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग के अंदर जो ब्याज की दर है वो काफी कम रहती है। एक्चुअल क्या एग्जैक्ट आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा वो तो डिपेंड करता है कि लोन अमाउंट आप कितना चाहते हैं पर नॉर्मली 8-10% के बीच में अगर आप छोटा लोन लेना चाहते हैं तो प्राइवेट सेक्टर प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग में आप ये लोन की सुविधा प्राप्त कर सकते हैं। और कोटखाई क्योंकि सेब और बागवानी के लिए बहुत प्रसिद्ध इलाका है तो ये आप हमारे सीजीटीएमएससी का कवर भी इसके अंदर ले सकते हैं। और सबसे पहले आपको अपने जो आप व्यवसाय कर रहे हैं अगर आप प्रोसेसिंग में हैं तो फिर आपको इसके हमारे उद्यम पोर्टल के ऊपर रजिस्टर करना होगा।
1: मध्य प्रदेश से एक और श्रोता जुड़े हैं छतरपुर से राशिद अहमद खान जी।
4: जी नमस्ते मैम।
1: नमस्कार
4: मैं छतरपुर मध्य प्रदेश से राशिद अहमद खान।
1: जी
4: मेरे छोटे छोटे दो प्रश्न हैं कि लघु उद्योग की परिभाषा क्या है इन टर्म ऑफ लागत कितनी लागत होना चाहिए तब वो लघु उद्योग में आता है। दूसरा सवाल ये है कि प्रत्येक वर्ष 1 जुलाई से 7 जुलाई तक वन महोत्सव मनाया जाता है तो उसकी सभी लोगों को पूरे देशवासियों को मैं शुभकामनाएं देता हूं और ये पूछना चाहता हूं कि क्या नर्सरी प्लांट की कोई नर्सरी लगाई जाए या फूलों की खेती के लिए कोई प्लांट डाला जाए तो उसके लिए हमको लोन वगैरह मिल सकता है क्या प्लीज बता दीजिए। थैंक यू
0: राशिद जी मैं आपको बताना चाहूंगा कि माइक्रो स्मॉल मीडियम ये 3 श्रेणियां हैं एमएसएमई में और इनकी कैटेगराइजेशन की जाती है इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी और दूसरा टर्नओवर पे। अगर हम टर्नओवर की बात करें तो हमारे माइक्रो एंटरप्राइजेस बेसिकली जिनकी 10 करोड़ तक

0: की टर्नओवर है वो माइक्रो एंटरप्राइजेस रहते हैं, जिनकी 100 करोड़ तक की टर्नओवर है वो स्मॉल एंटरप्राइजेस हैं, और जिनकी 500 करोड़ तक की टर्नओवर है वो मीडियम एंटरप्राइजेस हैं। और इसी के अंदर जो इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी है वो 2.5 करोड़ तक की इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी माइक्रो के लिए है, 25 करोड़ स्मॉल के लिए है और 125 करोड़ मीडियम के लिए है। मैं यहाँ पर अपने श्रोताओं को ये भी बताना चाहूँगा कि ये डेफिनेशन एमएसएमई की हमने पिछले साल रिवाइज की थी, और ये लिमिट्स हमने टर्नओवर की लिमिट को हमने दुगना किया है, और इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी इसको 2.5 गुना बढ़ाया गया है। और इसका पर्पस ये है कि बहुत से हमारे एमएसएमई इस बात से चिंतित रहते थे कि अगर हम ग्रो करेंगे, बड़े होंगे, हमारी टर्नओवर बढ़ेगी या हम अपनी प्लांट एंड मशीनरी में इन्वेस्ट करेंगे तो हम एमएसएमई का स्टेटस खो देंगे और ये जो बेनिफिट एमएसएमई के मिलते हैं वो हम उनसे वंचित हो जाएंगे। तो इस चीज को देखते हुए इस डेफिनेशन को हमने बढ़ाया है। और दूसरा सवाल जो आपने बैंक से के रिलेशन में कहा है, तो प्रोसेसिंग यूनिट का अगर आप कोई प्लांट लगाना चाहते हैं तो निश्चित तौर पर आप बैंक को संपर्क करें, आपको लोन मिलेगा।
1: जी हम एक बार फिर से जुड़ गए हैं मध्य प्रदेश से विपिन जी।
2: जी नमस्ते मैम।
1: जी नमस्कार
2: मैम, मेरा सवाल ये था कि जो लघु उद्योग हैं जिनमें पहले से मतलब डाउनफॉल चल रहा है, किसी भी प्रकार का लघु उद्योग हो सकता है, तो पहले से ही अगर उनका क्रेडिट सही नहीं है बैंक का, तो क्या ऐसे में फाइनेंशियली हेल्प मिल सकती है जो योजना आप बता रहे हैं? क्योंकि अगर पहले ही वो लोन को ले चुके हैं और सक्सेस नहीं हो पाए हैं, और क्या इसमें सभी प्रकार के लघु उद्योग ही शामिल होते हैं या फिर कुछ छोड़ भी दिए गए हैं?
0: देखिए, आपने जो ये बात की कि लघु उद्योगों में या सूक्ष्म उद्योगों में डाउनफॉल है, तो इसमें मैं इस बात से थोड़ा मैं आपको अपना व्यू देना चाहूंगा। शायद जो आप कह रहे हैं वो पूरी तरह ठीक नहीं है।
1: शायद उन्होंने एक जनरल सवाल भी पूछा है, जैसे कोई उद्योग है अगर वो अच्छा नहीं चल रहा, क्रेडिट ले चुके हैं, नहीं चुका पाए होंगे, तो क्या उनको और दोबारा से फाइनेंस मिल सकता है इस लिहाज से?
0: जी, मैं इस प्रश्न का उत्तर दो तरह से देना चाहूंगा। पहले तो मैं ये बताना चाहूंगा कि सूक्ष्म और लघु उद्यमों की अगर हम सिर्फ बात करें, माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइजेस की, और मीडियम को भी अगर इसमें जोड़ लें, तो हमारा 2023 तक, 1 अप्रैल 2023 तक 1,65,00,000 एमएसएमईज हमारे साथ पंजीकृत थे। और ऐसे बहुत से एमएसएमईज थे जो कि काम कर रहे थे, हमारी अर्थव्यवस्था का पार्ट थे, पर हमारे उद्यम रजिस्ट्रेशन पोर्टल के ऊपर नहीं थे, औपचारिक रूप से नहीं थे। तो एक ड्राइव हमने चलाई स्टेट गवर्नमेंट्स के साथ, एमएसएमई एसोसिएशंस के साथ। आज ये संख्या 1,65,00,000 जो 2023 तक थी, 3 साल के अंदर ये संख्या बढ़कर 1,65,00,000 से 8,70,00,000 हो गई है। तो बहुत बड़ा एक व्यापक विस्तार फॉर्मलाइजेशन में हम देखते हैं कि एमएसएमई सेक्टर में पिछले 3 सालों में हुआ है। दूसरी बात ही हम मानते हैं कि एमएसएमई जो है वो हमारी इकोनॉमी के रेजिलियंस का पार्ट है, और काफी जो हमारी इकोनॉमी की रेजिलियंस है, अगर हम 31% कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, सो डेफिनेटली इट इज थ्रू द माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। जो इन्होंने स्पेसिफिक प्रश्न उठाया कि अगर मान लीजिए किसी एंटरप्राइज में थोड़ी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं और किसी कारण से वो अगर अपना लोन पे नहीं कर पाए हैं, तो क्या उनको कोई आगे सुविधा प्राप्त होती है? तो मैं यहाँ बताना चाहूँगा कि अगर मान लीजिए आपका कोई पेमेंट डिफॉल्ट है, वो पेमेंट डिफॉल्ट 30 दिन तक अगर आपने उस पेमेंट डिफॉल्ट को कवर नहीं किया है, तो आपका अकाउंट स्पेशल मेंशन अकाउंट में जाता है, इमीडिएटली उसको एनपीए नहीं घोषित किया जाता। फिर अगर एसएमए 0 स्टेज पे 30 दिन तक नहीं हुआ, 60 दिन तक भी अगर आपने अपने अकाउंट को सेटल नहीं किया है, तो वो एसएमए 1 स्टेज पे जाता है। 60 दिन में भी अगर नहीं हुआ, आपने 60 से 90 दिन तक उस अकाउंट को सेटल नहीं किया, तो वो एसएमए 2 स्टेज पे जाता है। इसमें बैंक्स प्रयास करते हैं कि आपको सहायता प्रदान करके जो है उस वित्तीय संकट से में आपका मदद किया जाए। 90 दिन तक अगर आप अपना लोन में कोई अगर इंस्टॉलमेंट पे नहीं कर पा रहे, तो उसके बाद ही वो एनपीए करार दिया जाता
1: है। और अगर कुछ थोड़ी सी उसमें इंस्टॉलमेंट में से कुछ अगर रकम चुका दे, तो फिर भी थोड़ा सा उस पर ध्यान दिया जाता है।
0: देखिए, एक चीज मैं बताना चाहूंगा कि भारत सरकार में वी बिलीव इन प्रूडेंशियल फाइनेंशियल नॉर्म्स। तो इनफैक्ट अगर आप देखेंगे तो भारतीय अर्थव्यवस्था में बैंकिंग जो है वो काफी मजबूत रही है, और उसका एक रीजन ये है कि हमारा फाइनेंशियल डिसिप्लिन जो बैंक्स के ऊपर है।

0: वो भी काफी सख्त है। तो इनफैक्ट बैंक्स को भी इंश्योर करना होता है कि उनके अकाउंट्स जो है वो क्लीन चले। तो ये 90 दिन का एक रिलीफ पीरियड है जिसके बीच में आप अपने अकाउंट्स को अगर मेंटेन कर पाते हैं तो उसमें आपको सहायता दी जाती है।
1: हरियाणा के करनाल से जुड़े हैं संजीव कुमार जी।
2: जी मैडम जी नमस्कार।
1: नमस्कार।
2: और जो एक्सपर्ट साहब हैं इनका भी नमस्कार।
0: नमस्कार।
2: हाँ जी सर, मैं ये जानना चाहता हूँ कि जैसे एमएसएमई होती है नए और इनमें जो लोग काम करते हैं तो एक तो के ओवर टाइम काम ना करवाएं, 8 घंटे से ज्यादा काम ना करवाएं, इसके लिए क्या किया गया अभी तक? और मिनिमम वेज इनमें एमएसएमई में कितने निर्धारित करी गई है जी? और वेलफेयर स्कीम के बारे में बताइए, किसके जो मजदूर काम करते हैं एमएसएमई उनके और वेलफेयर स्कीम्स कैसे होती है?
0: देखिए, जो आपने प्रश्न किया है उसमें मैं बताना चाहता हूँ। जहाँ तक मिनिमम वेजेस का प्रश्न है तो मिनिमम वेजेस रिस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट्स डिक्लेयर करती हैं, और जो स्टेट गवर्नमेंट्स मिनिमम वेजेस को डिक्लेयर करती हैं वो उसमें एरियाज डिफाइंड रहते हैं, अर्बन एरियाज, रूरल एरियाज, किस नेचर का वो काम है, स्किल्ड वर्क है, अनस्किल्ड वर्क है, तो उस हिसाब से मिनिमम वेजेस स्टेट गवर्नमेंट्स नोटिफाई करती हैं और हर साल ये टाइम टू टाइम रिवाइज भी होती हैं। तो किसी भी एंटरप्राइज में कोई अगर व्यक्ति काम कर रहा है तो आपके स्टेट में जो मिनिमम वेजेस डिक्लेयर्ड है आपकी कैटेगरी ऑफ वर्क के लिए, जिस श्रेणी में आपका स्किल लेवल आता है, तो उससे नीचे कोई भी एंटरप्रेन्योर आपको उससे कम वेजेस नहीं दे सकता, पहली बात तो ये। और दूसरी बात, हमारा मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के बहुत वेलफेयर स्कीम्स हैं जिनको जिनकी अनुपालना करनी होती है, और इसके अंदर ECIS का कवर जो है वो डिपेंडिंग की एक एंटरप्राइज में 10 लोग हैं 20 लोग हैं तो उस हिसाब से वो सारे कवर्स जो हैं वो भी प्राप्त रहते हैं। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि आप अपने स्टेट गवर्नमेंट में जो मिनिमम वेज नोटिफाइड है तो उसको ध्यान में रखते हुए आप देख सकते हैं कि आपकी वेज जो है वो मिनिमम वेज पे।
1: और उन्होंने ओवर टाइम का पूछा, अगर ऐसा किया जा रहा है तो कहीं शिकायत दर्ज कराई जा सकती है, कोई हेल्पलाइन नंबर है जहां?
0: मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट जो है उनके लेबर इंस्पेक्टर्स हैं जो हर स्टेट के अंदर रहते हैं, वहां पर अगर ऐसी कोई कंप्लेंट है या दिक्कत है तो आप शिकायत अपनी दर्ज करा सकते हैं। इसमें मैं ये भी कहना चाहूँगा कि कई बार हमने ये देखा मंत्रालय के पास, हमारे पास रिक्वेस्ट आई कि बहुत सी स्टेट्स जो हैं वो विमेन को नाइट शिफ्ट अलाउ नहीं करती हैं। मैं इस प्रश्न को थोड़ा सा दूसरे रूप में आपसे साझा करना चाहूँगा अपने श्रोताओं के लिए कि बहुत कुछ स्टेट्स ऐसी हैं जो नाइट शिफ्ट अलाउ नहीं करती थी, और एक रिक्वेस्ट थी विमेन एसोसिएशन की तरफ से हमारे पास कि नाइट शिफ्ट अलाउ की जाए, तो हमने स्टेट गवर्नमेंट से टेकअप किया और उसके बाद काफी स्टेट्स ने अब नाइट शिफ्ट जो है उसको भी अलाउ किया है।
1: हाँ, अब एक और श्रोता लेते हैं उत्तर प्रदेश के रायबरेली से, रमा शंकर वाजपेयी जी।
3: जी
1: नमस्कार, सवाल पूछे।
3: जो लघु ये बड़े धंधों के साथ अटैच होते थे पहले, अब निरंतर बड़े उद्योग धंधे जो है मरणासन्न हो चुके हैं, अब इसके लिए छोटे उद्योगों को क्या जो है सरकार का नजरिया?
0: जो आपने प्रश्न पूछा है मैं फिर एक बार ये दोहराना चाहूंगा कि जैसे मैंने बताया कि नंबर ऑफ माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस जो है वो काफी संख्या इसकी बढ़ी है, 1,65,00,000 से अब 8,70,00,000 से ऊपर हुए हैं, और हमारे एमएसएमईज जो है वो लार्जर कॉर्पोरेट्स का सप्लाई चेन का पार्ट है। हम ये मानते हैं कि जो सूक्ष्म उद्यम है वो आगे प्रोग्रेस करके लघु उद्योग या उद्यमी वो बने, और लघु जो है वो हमारे मीडियम एंटरप्राइजेस बने, और मीडियम एंटरप्राइजेस जो है वो ग्रेजुएट करे फॉर द लार्ज एंटरप्राइज। तो ये एक कड़ी है, ये एक चेन है, और मंत्रालय की तरफ से हमारा ये प्रयास रहता है कि एमएसएमईज की ग्रोथ और उनके विकास के लिए हमारी 18 से ऊपर फ्लैगशिप प्रोग्राम्स हैं। अभी जो हमने मेंशन किया अभी सिर्फ क्रेडिट और मार्केटिंग की बात हुई है, इसके अलावा टेक्नोलॉजिकल हैंड होल्डिंग सपोर्ट, क्रिएशन ऑफ कॉमन इंफ्रास्ट्रक्चर, क्रिएशन ऑफ क्लस्टर्स में हमारे कॉमन फैसिलिटी सेंटर्स, और इस तरह की बहुत सी योजनाएं हैं। हमारा डिलेड पेमेंट्स के लिए एक इंस्टीट्यूशनल प्लेटफॉर्म हमने तैयार किया है ट्रेड्स, जो कि आरबीआई रेगुलेटेड है, तो वो ट्रेड्स के अंदर भी पिछले 4 सालों में 40,000 करोड़ से बढ़कर 3,00,000 करोड़ से ऊपर के बिल डिस्काउंटिंग जो है वो हुए हैं, जिससे लोगों को डिलेड पेमेंट के अंदर जो एक समस्या आ रही थी उसका समाधान अब हो रहा है और इस तरह की बहुत सी हमारी योजनाएं हैं। तो मैं ये चाहूंगा कि हमारे मंत्रालय की जो वेबसाइट है या जो हमारा हेल्पलाइन नंबर है, अगर आपको कोई चीज है जिसके बारे में जानकारी आप चाहते हैं, तो 1800 180 6763 के ऊपर आप उनसे संपर्क कर सकते हैं और इसकी आपकी समस्या की जानकारी जो है उसमें हमारी कौन सी योजना आपके काम आ सकती है उसके बारे में आपको बताया जाएगा।
1: दिल्ली से जुड़े हमारे साथ कोको मस्ताना जी। कोको जी
4: हेलो
1: जी, हाँ अपना सवाल पूछे।
4: हाँ नमस्ते मैडम
1: जी।
4: हेलो
1: जी, हम सुन पा रहे हैं जल्दी से सवाल।
4: एक्चुअली में हमारा ना बुटीक है
1: जी
4: सिलाई का, तो उसमें हमारे पास दो कारीगर है, क्या हमारे को उसमें लोन मिल सकता है?
0: बिल्कुल आपको लोन मिल सकता है और इसमें मैं बताना चाहूंगा कि एक PMEGP हमारी, वैसे तो आपका एक एस्टेब्लिश्ड यूनिट है जो ऑलरेडी चल रहा है, अगर कोई साथी हमारे नया कोई यूनिट लगाना चाहते हैं और नया उद्यम स्थापित करना चाहते हैं तो प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम एक हमारी स्कीम है, इसके अंदर हम कैपिटल सब्सिडी भी देते हैं, तो इसमें आपको बैंकों के माध्यम से लोन मिल सकता है, आप इस योजना का लाभ जरूर लें।
1: हमारे पास व्हाट्सएप पे भी एक सवाल आया है, उन्होंने पूछा है कि MSME को ग्लोबल प्लेटफॉर्म मिलता है क्या?
0: जी बिल्कुल, MSME को डेफिनेटली ग्लोबल प्लेटफॉर्म मिलता है। जैसे मैंने बताया कि हमारे जो एक्सपोर्ट्स हैं उसमें 48% कंट्रीब्यूशन माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस की है, तो डेफिनेटली एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म हमारे MSMEs को मिलता है और इसके अंदर मंत्रालय की तरफ से हमारी चेष्टा ये रहती है कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को हम कैसे प्रमोट कर सके, किस तरह से और बेटर एक्सपोर्ट्स हम कर पाए बाय रिड्यूसिंग द कॉस्ट एंड इम्प्रूविंग द क्वालिटी। तो कॉस्ट कॉम्पिटिटिवनेस एंड क्वालिटी इम्प्रूवमेंट, ये दो एक पहलू हैं जिसके ऊपर हम काम करते हैं।
1: आपने उद्यम पोर्टल का जिक्र किया डॉक्टर रजनी, उस पर कैसे रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं और उसके क्या फायदे हैं, रजिस्टर करवाना क्यों जरूरी है?
0: देखिए उद्यम पोर्टल पे रजिस्टर कराने का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि एक एंटाइटलमेंट क्रिएट होती है। जब आप उद्यम पोर्टल पे रजिस्टर करते हैं अपने आप को तो आप MSME में औपचारिक रूप से शामिल हो जाते हैं, आपको एक पहचान मिलती है, आपकी एक एंटाइटलमेंट क्रिएट होती है। मैंने जैसे बताया है कि 20 से ऊपर योजनाएं हैं, फ्लैगशिप प्रोग्राम्स जो हम इंप्लीमेंट करते हैं, तो इन योजनाओं का आप लाभ तभी ले पाते हैं अगर आप उद्यम रजिस्ट्रेशन पोर्टल के ऊपर रजिस्टर्ड है। उद्यम रजिस्ट्रेशन पोर्टल 2020 में शुरू किया गया था, ये पोर्टल फुल्ली वॉलंटरी है, ऑनलाइन है और ये पोर्टल हमारा, इसमें हमारी API बैकिंग है जिसके अंदर हम GST, इनकम टैक्स और अलग अलग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो पोर्टल्स हैं उनसे जुड़े हुए हैं, तो इसका जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है वो बहुत सरल है। इसमें आपको अपना पैन नंबर और आधार नंबर, उसके बेसिस पे बेसिक जानकारी आप फिल करेंगे, बाकी डेटा हम ऑटो फेच करते हैं और उसके ऊपर आपका रजिस्ट्रेशन हो जाता है। ये सेल्फ डिक्लेरेशन बेसिस पे, ऐसा नहीं है कि कोई इंस्पेक्टर आपकी यूनिट पे आएगा, वहां पर जाके पहले आपकी यूनिट को इंस्पेक्ट करेगा, उसके बाद कोई आपको रजिस्ट्रेशन जो है उसकी अप्रूवल होगी, ये सेल्फ डिक्लेरेशन बेसिस के ऊपर है, आप अपने आप जो है स्वतः ही इसके अंदर रजिस्टर हो सकते हैं।
1: जाते जाते बहुत जल्दी से विश्वकर्मा योजना, PM विश्वकर्मा योजना शुरू की गई थी, उससे क्या लाभ हुआ है जो पारंपरिक कारीगर हैं और शिल्पकार हैं?
0: देखिए सबसे बड़ी बात तो ये कि 30 लाख लोगों को 5 साल में हमें जोड़ना था, 2023 में ये योजना सितंबर में शुरू की थी, 2028 तक हमारे को 30 लाख लोगों को जोड़ना था, ढाई साल में ही 30 लाख लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं, 30 लाख में से 24 लाख लोगों को हम प्रशिक्षण दे चुके हैं, 17 लाख लोगों को 15,000 रुपए का टूल किट प्राप्त हो चुका है, 6 लाख लोगों को 5,000 करोड़ से ऊपर के ऋण मिल चुके हैं, तो एक ब्रॉड मैंने आपको जानकारी।
1: तो बहुत बड़े स्तर पर योजनाओं का लाभ ले रहे हैं MSME। डॉक्टर रजनीश आप आए हमसे चर्चा की, इसके लिए धन्यवाद, अपने श्रोताओं का भी आभार व्यक्त करते हैं। अगले सोमवार को फिर से मुलाकात होगी एक नए विषय के साथ। प्रियंका अरोड़ा को दीजिए अनुमति, नमस्कार।
0: धन्यवाद प्रियंका जी।
5: मीडियम वेव पर हम आकाशवाणी के जबलपुर केंद्र से बोल रहे हैं, रात्रि के 10 बजे हैं। लीजिए सुनिए शास्त्रीय संगीत के अंतर्गत पंडित राजन मिश्र साजन मिश्र का गाया राग बुरिया में ख्याल।

अभी आप सुन रहे थे शास्त्रीय संगीत के अंतर्गत पंडित राजन मिश्र और साजन मिश्र का गाया राग पुरिया में ख्याल। आकाशवाणी का ये जबलपुर केंद्र है। रात के 10:30 हुए हैं। मन भावन फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम लेकर उपस्थित हूँ मैं दीप्ति सिंह। आप सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार और करते हैं आज के कार्यक्रम की शुरुआत इस गीत के साथ।

कार्यक्रम का ये पहला नगमा अभी आपने सुना श्रोताओं। आरडी बर्मन के संगीत निर्देशन में मजरूह सुल्तानपुरी का लिखा हुआ ये गाना किशोर कुमार की आवाज़ में। फिल्म का नाम बुढ़ा मिल गया। पसंद आप सभी की बेड़ी से। राजेश सोनी, कंचन सोनी गायत्री।

डोमने, वैष्णवी डोमने, चंचल डोमने, अर्जुन गविनकर और धीरज की। इसी गीत के लिए हमें एक और पत्र आया, नेपाल पहले सागर से, तिलक राणा, मीना राणा, मोनिका, नुपुर, ऋषिका और रॉबिन की। और अब सुनिए कार्यक्रम का अगला नगमा, जिसे गाया है लता मंगेशकर और महेंद्र कपूर ने। फिल्म का नाम है भरोसा। शब्द रचना राजेंद्र कृष्ण की और संगीत निर्देशन रवि का। फरमाइश करता है आप सभी तो बिहार ने वादा, गाजीपुर से प्रतीक राय, श्रीमती रोशनी राय, प्रांजल राय, नारायणपुर से ओम प्रकाश राय, श्रीमती उषा राय, अमित कुमार राय और हैप्पी राय की, सिंहपुर बड़ा से राजेश नेमा, संगीता, भावना और प्राची नेमा की।

अब सुनिए आनंद बख्शी के लिखे हुए इस गीत को मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर की आवाज़ में। फिल्म का नाम है आया सावन झूम के। फरमाइश करता आप सभी हैं इस गीत के आदर्श नगर मलोट से राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश शर्मा, मैंडी शर्मा, सौरभ शर्मा, शाइना शर्मा और निवान शर्मा की। छत्तीसगढ़ भाटापारा दतरेंगी से द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार वर्मा, दीपक कुमार वर्मा और झाविंद्र कुमार वर्मा की।

अब सुनिए उपकार फिल्म का ये गाना लता मंगेशकर की आवाज़ में। बोल हैं गुलशन बावड़ा के और धुन बनाई है काल्याणजी आलणजी ने। और इस गीत के लिए हमें अपना पसंदीदा पत्र भेजा है राजपुर से घीसू दिलवारे लक्ष्मी माधुरी सोनाली भगवान पुष्पा नेहा एकता अस्मिता सौरभ और कुणाल दिलवारे की। गांधी चौक रोपड़ पंजाब से हरदेव मिका बलविंदर पिरक चैतक पिरक और मिका पिरक की।

बालिका वधू फिल्म का ये गाना अभी आपने सुना अमित कुमार की आवाज़ में। शब्द रचना आनंद बख्शी की और संगीत निर्देशन आरटी बर्मन का। पसंद आप सभी की नेपाल पहले सागर से तिलक राणा, मीना राणा, मोनिका नुपुर, ऋषिका रॉबिन और खंडवा से अब्दुल गफ्फार टावर, खुश नसीब अब्दुल हक टावर, जियाडिक और मोहम्मद उमर टावर की। और अब सुनिए सौतन फिल्म का ये गाना लता मंगेशकर की आवाज़ में। धुन बनाई उषा खन्ना ने और इस गीत को लिखा साजन और प्रदीप कौशिक ने। फरमाइश करता है आप सभी इस गीत के। सरोज चौक अमरावती महाराष्ट्र से कमरुल्ला ठेकेदार, नसीम बेगम, आयशा खान, हदिया खान, असमा सालिया और रफूक की। गांधी बागा कोला से रमेश कटनकर और वैशाली कटनकर की।

अभी आप सुन रहे थे मन भावन, आकाशवाणी का ये जबलपुर केंद्र है। रात्रि के 11 बजे हैं। हिंदी में समाचार हम आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित करेंगे, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में आयोजित दूसरे रक्षा अलंकरण समारोह में वीरता पुरस्कार प्रदान किए। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ये पुरस्कार सशस्त्र बलों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और अन्य सुरक्षा एजेंसी के कर्मियों द्वारा असाधारण वीरता के कार्यों के लिए दिए जाते हैं।
1: राष्ट्रपति ने समारोह में 7 सर्वोत्तम युद्ध सेवा पदक, 30 परम विशिष्ट सेवा पदक, 12 उत्तम युद्ध सेवा पदक और 56 अति विशिष्ट सेवा पदक प्रदान किए। अति विशिष्ट सेवा पदक पाने वालों में एयर मार्शल तरुण चौधरी, लेफ्टिनेंट जनरल नीरज वार्ष्णेय और वाइस एडमिरल आनंद वाई सरदेसाई शामिल हैं। सर्वोत्तम युद्ध सेवा पदक से सम्मानित होने वालों में लेफ्टिनेंट जनरल प्रतीक शर्मा, एयर मार्शल नागेश कपूर और लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई शामिल हैं। परम विशिष्ट सेवा पदक पाने वालों में वाइस एडमिरल संजय वात्सायन, लेफ्टिनेंट जनरल मनजिंदर सिंह और एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित शामिल हैं। उत्तम युद्ध सेवा पदक से सम्मानित होने वालों में लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ, एयर मार्शल मनीष खन्ना और वाइस एडमिरल तरुण सोपती शामिल हैं। ये पदक सशस्त्र बलों के उन अधिकारियों और कर्मियों को देश के प्रति उनकी असाधारण और विशिष्ट सेवाओं के लिए प्रदान किए गए हैं। सौम्या शरण के साथ अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सेशल्स की उनकी यात्रा काफी सार्थक रही और इससे भारत सेशल्स मित्रता सुदृढ़ होगी। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 50 वर्षों में दोनों देशों के बीच संबंध गहरे विश्वास और साझा प्रगति पर आधारित रहे हैं। उन्होंने सेशल्स की स्वतंत्रता के 50 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित राष्ट्रीय दिवस समारोह में भाग लेने पर भी प्रसन्नता व्यक्त की। प्रधानमंत्री सेशल्स की सफल यात्रा के बाद स्वदेश लौट आए हैं। राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना कोष में सरकार का कुल निवेश अब 60,000 करोड़ रुपए हो गया है। ये बुनियादी ढांचे और राष्ट्रीय महत्व के अन्य क्षेत्रों में केंद्र की निवेश प्रतिबद्धता को दर्शाता है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पिछले सप्ताह अवसंरचना निवेश को गति देने और देश में संस्थागत पूंजी को बढ़ावा देने के लिए कोष में 30,000 करोड़ रुपए के अतिरिक्त निवेश को मंजूरी दी थी। पश्चिम बंगाल विधानसभा में आज पश्चिम बंगाल जन सुरक्षा और असामाजिक गतिविधियों पर नियंत्रण विधेयक 2026 और पश्चिम बंगाल जन व्यवस्था रखरखाव संशोधन विधेयक 2026 पारित हो गया। पश्चिम बंगाल जन सुरक्षा और असामाजिक गतिविधियों पर नियंत्रण विधेयक 2026 के प्रावधानों के अंतर्गत जन सुरक्षा को खतरे में डालने और शांति व्यवस्था भंग करने वाली असामाजिक गतिविधियों के लिए किसी व्यक्ति को 12 महीनों तक हिरासत में रखा जा सकता है। हरियाणा और राजस्थान सरकार ने आज नई दिल्ली में यमुना जल परियोजना के निर्माण और कार्यान्वयन के समझौते पर हस्ताक्षर किए। गृहमंत्री अमित शाह ने इस अवसर पर कहा कि इस समझौते से हरियाणा और राजस्थान के लोगों की लगभग 3 दशकों से चली आ रही जल समस्या का समाधान हो जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल से 2 दिन के आंध्र प्रदेश के दौरे पर रहेंगी। राष्ट्रपति कल विजयनगरम में केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय के प्रथम दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी। भारत ने अफगानिस्तान में पाकिस्तान के हवाई हमलों की आज कड़ी निंदा की। इन हमलों में महिलाओं और बच्चे समेत कई आम नागरिक मारे गए हैं। विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि पाकिस्तान की ये खुली आक्रामकता अफगानिस्तान की संप्रभुता पर हमला और क्षेत्रीय शांति और स्थिरता के लिए सीधा खतरा है। भारतीय सेना ने मीडिया की उन खबरों को खारिज कर दिया है जिनमें दावा किया गया था कि चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने हाल में अरुणाचल प्रदेश में घुसपैठ की और वहां शिविर स्थापित किए। सेना ने कहा कि ऐसी खबरें गलत और बेबुनियाद हैं। अमरीका और ईरान सैन्य हमले रोकने तथा हॉर्मुज जल डमरू मध्य से वाणिज्यिक जहाजों का आवागमन फिर शुरू करने पर सहमत हो गए हैं। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दोनों पक्षों के बीच कल कतर में वार्ता के नए दौर की घोषणा की है। इधर ईरान ने राष्ट्रपति ट्रंप के इस दावे को खारिज कर दिया है। उप विदेश मंत्री काजेम गरीबाबादी ने कहा कि कतर के साथ ईरान की बातचीत सामान्य रूप से जारी है। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने 2028 में होने वाले लॉस एंजलिस ओलंपिक खेलों के लिए अपना स्थान पक्का कर लिया है। आईसीसी ने आज पुष्टि की कि भारत सहित ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन और दक्षिण अफ्रीका ने भी ओलंपिक खेलों में जगह बना ली है। भारतीय टीम ने T20 विश्व कप में अपने महाद्वीप में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के आधार पर क्वालिफाई किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय किरण झा। President Draupadi Murmu conferred gallantry awards to the personnel of the Defence Forces and the Indian Coast Guard during the Phase 2 of Defence Investiture Ceremony at Rashtrapati Bhavan this evening. Vice President C.P. Radhakrishnan, Defence Minister Rajnath Singh, along with other union ministers and senior officials of our armed forces, were also present on the occasion. A report.
1: The President conferred 7 Sarvottam Yudh Seva Medals, 30 Param Vishisht Seva Medals, 12 Uttam Yudh Seva Medals and 56 Ati Vishisht Seva Medals at the ceremony. Some recipients of the Ati Vishisht Seva Medal included Air Marshal Tarun Chaudhary, Lieutenant General Neeraj Varshney and Vice Admiral Anand Vai Sardesai. Recipients of the Sarvottam

प्राइमरी स्टूडियो, प्राइमरी आ रहा है, प्राइमरी स्टूडियो की घड़ी में अभी 5:28:12:13:14 हो रहे हैं। कंसोल की घड़ी में 5:27:45:46:47 हो रहे हैं। कंप्यूटर माइक नंबर 2 सुनिएगा। वर्क स्टेशन नंबर 1 सुनिएगा।